किशोर कुमार जी की आवाज में दूरियां नजदीकियां बन गईं। बेहिसाब हसरते ना पालिए, बेहिसाब हसरते ना पालिए, जो मिला है सबसे पहले उसे संभालिए।

हजारों उलझने हैं राहों में, हजारों उलझने हैं राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी, बस चलते रहिए जनाब। 5:39 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी।

बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, समझने वाले तो खामोशी को भी समझ लेते हैं, ना समझने वाले जज्बातों का भी मजाक बना देते हैं। 5:45 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी मेरे यानी अर्जित के साथ।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 19वीं तिथि के तदनुसार 9 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:53 हुए हैं। अब हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दे दें। ठीक 6 बजे का समय रहेगा हिंदी में समाचारों का। 6:05 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार। छह बजकर 10 मिनट पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम अर्पण। 6:44 का समय रहेगा श्री रामचरित मानस गान का। छह बजकर 55 मिनट पर आप सुन सकेंगे संस्कृत में समाचार। ठीक 7 बजे का समय रहेगा हिंदी में समाचारों का और ठीक 7:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। सात बजकर 10 मिनट पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम गोल्ड सुप्रभात।

7:30 का समय रहेगा कार्यक्रम आज सवेरे। ठीक 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर आप सुन सकेंगे मॉर्निंग न्यूज। आठ बजकर 45 का समय रहता है हमेशा की तरह आप सुनेंगे कार्यक्रम म्यूजिकल दिल लगी। ठीक 9 बजे आप सुन सकेंगे हिंदी में समाचार। 9:05 पर आप एक बार फिर से सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार। और 9:10 पर जारी रहेगा कार्यक्रम म्यूजिकल दिल लगी। ये थे आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में जानकारी। 5:59 हो चुके हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है। आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीक की मदद से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। यह पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आज से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर देशभर में विशेष कार्यक्रम शुरू करेगा। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को की थी। इसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और अच्छी गुणवत्ता वाली प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। समारोह के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 75 रूपये का स्मारक सिक्का और 5 रूपये का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्षों में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब भारत के 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हैं। इससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।

0: रहा है। श्री गोयल ने देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि यह पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक के लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुई आग की दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रूपये और घायलों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमारस्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। यह फैसला अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया है। हालांकि दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष संघर्ष विराम चाहते हैं और शांति वार्ता जारी है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि उनका देश कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के प्रति प्रतिबद्ध है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों तक पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। Union Home Minister Amit Shah will launch the Land Port Management System LPMS in New Delhi today. This initiative reflects the government's commitment to smart border management, aiming to enhance efficiency, transparency and security in cross-border trade and passenger movement through technology-driven solutions. In Andhra Pradesh, 8 people succumbed to their injuries while 6 others were injured in a major fire accident at the Visakhapatnam steel plant of Rashtriya Ispat Nigam Limited yesterday evening. The accident occurred at around 4:15 p.m. during casting operations at Caster 2 of Steel Melt Shop 1. The injured have been admitted to the hospital and are undergoing treatment. Rashtriya Ispat Nigam Limited has initiated an investigation into the accident. In addition, a 3-member external inquiry committee headed by the director in charge of the Bokaro steel plant of Steel Authority of India Limited has been assigned to probe the incident. Union Steel Minister H.D. Kumaraswamy and Civil Aviation Minister Rammohan Naidu visited the Visakhapatnam steel plant accident site last night. Mr. Kumaraswamy announced a compensation of 25 lakh rupees for the kin of the deceased and 10 lakh rupees for the injured. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives in the fire incident. President Murmu extended her condolences to the families of those who lost their lives in the accident. Vice President C.P. Radhakrishnan prayed for the strength and courage to the bereaved families and wished for the speedy recovery of those injured. Prime Minister Modi has announced an ex gratia of 2 lakh rupees for the next of kin of each of the deceased and 50,000 rupees for the injured from the Prime Minister's National Relief Fund. He noted that the local authorities are providing all possible assistance to those affected. Iran and Israel have announced a halt in attacks against each other following an appeal by U.S. President Donald Trump for an

मन की सच्ची लगन, निस्वार्थ भाव और अर्पण के भाव के साथ जिसने भी किया है हरि का स्मरण, उसने पाया है इस जीवन में आनंद। अर्पण के कुछ ऐसे ही भाव लिए मंगल की इस प्रभात, मंगल की मुक्ता है आपके साथ। 6:11 और ठीक 53 सेकंड हुए हैं। आप आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर हैं। सुप्रभात।

भगवान शिव मोक्ष स्वरूप निर्गुण सर्वव्यापक इच्छा रहित और आकाश के समान व्याप्त हैं। करुणामय कल्याणकारी महादेव जीवन की नैया को पार लगाने वाले हैं। संत कहते हैं कि जिसने सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण किया है उसके जीवन से न केवल विपत्तियां टली हैं बल्कि वो मानव जन्म मरण के बंधन से भी मुक्ति पा गया है।

ये मन बार बार जहां जाकर बैठता है ना, वही माया है। जो विचार लगातार मन में भरे रहें, उसी का नाम माया है। संत कबीर कहते हैं कि एक माया ऐसी भी है जो राम से मिला देती है। ये मन ही है जो यत्र तत्र भागता रहता है। अगर इसी मन को ही ऐसा कर दें कि ये राम की ओर भागे, तो फिर हम भक्त हो जाएंगे, हम संत कहलाएंगे।

अर्पण के भाव के साथ मंगल की प्रभात, मंगल की मुक्ता है आपके साथ। जी हाँ, 6:30 और ठीक 48 सेकंड हो चले हैं। जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। जिस तन लगया इश्क कमाल, नाचे बेसुरते बेताल, दर्द मंद नूत ना कोई छेड़े, जिसने आपे दुख सहेड़े, जमना जीना मूल उखेड़े, बूझे अपना आप ख्याल, जिस तल लग्या इश्क कमाल, नाचे बेसुर ते बेताल। जी हाँ, ये परमात्मा का प्रेम है। जिसको ये प्रेम लग गया, वो केवल जश्न में है, वो केवल आनंद में है, और उसके जीवन में केवल और केवल शुक्राना ही है।

मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेर, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे प्रभु में। जी हाँ, जिसने जीवन में कर दिया अर्पण, वो केवल आनंद में है, फिर उसे कोई चिंता नहीं, वो अपने आप में ही शहंशाह बन गया। एक भक्त हमेशा अपने प्रभु से यही कामना करता है, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, जा तन की झाई पड़े, श्याम हरित धुत होए।

मेरलिन और सुनते रहिए अर्पण। 6:44 और ठीक 20 सेकंड हो चले हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब समय है श्री रामचरितमानस के पाठ का।

सखियां सीता जी को गौरी पूजन के लिए पुष्प वाटिका में ले आईं, जहां श्री राम को सीता के प्रथम दर्शन हुए। सीता ने भी श्री राम के श्यामल मनोहारी रूप को देखा कि तभी दोनों भाई वाटिका में उनकी आंखों से ओझल हो गए। वो चकित होकर चारों ओर देखने लगी कि राजकुमार क्षण भर में ही कहां लोप हो गए। उसी समय दोनों भाई लता कुंज में से ऐसे प्रकट हुए जैसे बादलों का आवरण हटाकर चांद निकल आता है। दोनों भाइयों के शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभा पा रही हैं। कानों में सुंदर आभूषण, टेढ़ी भ्रुकुटी और घूंघर वाले बाल, रत्नारी आंखों और मुस्कान की शोभा मन को सहज ही मोह लेती है। ये मनोहारी दृश्य देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। तभी एक सखी ने सीता जी से ठिठोली की, पार्वती का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को ही जी भरकर क्यों नहीं देख लेती। सिर से पैर तक श्री राम का सुंदर रूप देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके सीता जी को अवसाद हुआया। शिव जी के धनुष की कठोरता स्मरण कर हृदय में श्री राम की मूर्ति बसाए बिसोरती सीता सखियों समेत पार्वती पूजन को चल पड़ी।

0: मंत्रिणा शुभेन्दु अधिकारिणा सह नवदिल्ल्यां मेलनं कृतवती। राज्ये विभिन्नेषु क्षेत्रेषु ऋणप्राप्ति विषये सर्वकारस्य योजनानां कार्यान्वयनस्य विषयेऽपि चर्चा जाता। वित्तमंत्री सीतारामनः अघोषयत् यत् राज्य सर्वकारेण सह निकट समवायेन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजनादीनां नवीकृत संतृप्ति अभियानं प्रत्येकं योग्यं लाभार्थिम् आच्छादयितुं क्रियते। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल उक्तवान् यत् नवान्वेषणै वैश्विक सहभागित्वेन अन्तर्राष्ट्रीय आपणे प्रवेशस्य विस्तारेण च आगामिषु पञ्चवर्षेषु भारतस्य औषध निर्माण उद्योगस्य आकारः द्विगुणितः भविष्यति। श्रीगोयलवर्यः ह्यः नवदिल्ल्यां फार्मास्यूटिकल क्षेत्रस्य वैश्विक राजदूत सम्मेलनं 26,000 ग्लोबल ड्रग रेगुलेटर्स कॉन्क्लेव तथा 26,000 फार्मा एंड हेल्थ केयर इत्यस्य अन्ताराष्ट्रिय प्रदर्शन्याः पूर्वालोकन समारोहं च सम्बोधयन् इदमुक्तवान्। केन्द्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी वर्यः अवदत् यत् नरेन्द्र मोदिनः सर्वकारस्य द्वादश वर्षेषु भारतस्य अंगार खनन क्षेत्रयोः महतीं परिवर्तनम् अभवत्। महिला क्रिकेट क्रीडायां यूनाइटेड किंगडम देशस्य कार्डिफ नगरे 26,000 आईसीसी महिला विंशति प्रति विंशति विश्व चषक क्रीडायाः प्राक् ह्यः प्रथमायां पूर्वाभ्यास क्रीडायां भारतेन वेस्टइंडीज दलं 26 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरूआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रूपये का स्मारक सिक्का और 5 रूपये का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केन्द्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्ष में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में कल फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हो चुके हैं, जिससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। असम की प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि तेजपुर लीची की पहली खेप दुबई के लिए रवाना की गई है। श्री गोयल ने कहा कि इस साल से तेजपुर लीची को वैश्विक पहचान मिलेगी, किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त होगा और पूर्वोत्तर भारत के कृषि उत्पादों के लिए नए अवसर खुलेंगे। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हुए हैं। इनमें 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार ये हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमारस्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने भी मुख्य सचिव, जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। दुर्घटना की जांच जारी है। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक संपन्न हो गई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले शामिल थीं। अमरीका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि कांग्रेस की मंजूरी के बिना ये शुल्क नहीं लगाया जा सकता। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। ये फैसला अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच आज दम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों तक पहुंच गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Sarabjit Kaur. Union Home Minister Amit Shah will launch the Land Port Management System, LPMS, in New Delhi today. This initiative reflects the government's commitment to smart border management, aiming to enhance efficiency, transparency and security in cross-border trade and passenger movement through technology-driven solutions. Union Steel Minister H.D. Kumaraswamy and Civil Aviation Minister Rammohan Naidu visited the Visakhapatnam steel plant accident site last night. Mr. Kumaraswamy expressed condolences to the families of the deceased workers and announced an ex gratia of 25 lakh rupees for next of kin of the deceased and 10 lakh rupees for those injured. In addition, affected families will be allowed to continue residing in steel plant quarters. Their children will receive free education and one member of each family will be provided permanent employment. Mr. Kumaraswamy said Prime Minister Narendra Modi has also announced financial assistance of 2 lakh rupees to the families of the deceased and 50,000 rupees to the injured through the Prime Minister's National Relief Fund. 8 people were killed in the fire accident at the Visakhapatnam steel plant of Rashtriya Ispat Nigam Limited last evening. 6 people were injured, with the condition of 2 being critical. The Union Ministry of Steel said the accident occurred during casting operations when a sudden and severe explosion took place before the slide gate was opened to pour molten steel into the tundish. Following the explosion, a massive ball of fire rose to the ceiling. Iran and Israel have announced a halt in the attacks against each other following an appeal by US President Donald Trump for an immediate ceasefire. However, Tehran has warned that it will resume military action if Israel continues its strikes against Hezbollah targets in Lebanon. On the other hand, Israeli Defense Minister Israel Katz has also warned that Israel will again target Hezbollah's stronghold in southern Beirut if attacks on northern Israel continue. The latest exchange marked the most direct confrontation between Iran and Israel since a ceasefire was reached in April. Iran launched missiles towards Israeli territory on Sunday night, describing the attack as retaliation for Israeli strikes on Hezbollah strongholds near Beirut. In response, Israel targeted a petrochemical facility in southwestern Iran, alleging that it was involved in ballistic missile production. India has deeply regretted the renewed attacks in West Asia. In a statement, External Affairs Ministry said these developments

सपने खूबसूरत भी होते हैं जनाब, इन पर रखिए विश्वास, क्योंकि यही करेंगे आपके भविष्य का निर्माण। 7:11 और ठीक 5 सेकंड, मंगल की इस प्रभात, मंगल की मुक्ता है आपके साथ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 7.1 MHz पर। गोल्ड सुप्रभात।

0: जनाब जो प्यार में है उसके लिए तो मौसम हमेशा सुहाना है, लेकिन फिलहाल जो प्यार में नहीं है उसे तो सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। आज के मौसम की अगर बात करें तो आज का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। खुशखबरी ये है कि बुधवार से यानी कल और परसों के बाद से हल्का फुल्का मौसम बदल रहा है, टेम्परेचर में गिरावट है और वीरवार को बारिश भी दिखाई दे रही है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है तो उम्मीद तो बना के रख सकते हैं, इसीलिए 42 डिग्री आज का दिन हम निकाल देंगे, क्यों ठीक है ना। सुबह सूर्यास्त हुआ था 5:22 पर और सूर्यास्त का समय है आज शाम 7:18 का। दिल्ली की वायु की गुणवत्ता का जो स्तर है वो ठीक ठाक चल रहा है, आप वॉक पर जा सकते हैं, 100 के आसपास है एयर क्वालिटी इंडेक्स। और अगर अब भी आपको बिना बादल की बिजुरिया दिख रही है तो मान लीजिएगा कि आप भी प्यार में ही हैं।
1: ना तो आज बरसात का मौसम ना कहीं छाई बदरिया, फिर भी मोरे जिया रम चमके, अरे थम थम कोई बिझुरिया।
2: वाह वाह वाह, तुहार जवाब नाही

सुबह बाहर फैली इस ताजगी को आपके मन के भीतर भी ताजा करने के लिए हम लेकर आते हैं गोल्ड सुप्रभात, उम्मीदों से भरी इस रोशनी के साथ। जी हाँ, जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ और सुनते रहिए गोल्ड सुप्रभात।

और जो उम्मीद में होती ही बहुत ताकत है, और आंसू कई बार अच्छे भी होते हैं, खासतौर पर तब जब ये प्याज काटते वक्त आपको आते हैं। तो सच में आपको पता है, गर्मी के दिनों में कच्ची प्याज जो है वो हमारे शरीर के लिए एक बहुत बड़ी नियामत है, क्योंकि प्याज की जो तासीर है वो ठंडी होती है, ये लू से बचाती है हमें। और अगर ऐसी सैलेड में लेते हैं कच्चे प्याज को आप, काला नमक और नींबू डाल करके, तो ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। प्याज से हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है, क्योंकि इसमें सेलेनियम नामक एक तत्व होता है जो हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो बीमारियों से लड़ने की ताकत है, उसे बढ़ा देता है। ये प्याज हमारे दिल के लिए भी बहुत बेहतर है, क्योंकि प्याज में मौजूद गुण हमारे दिल को फायदा पहुंचाते हैं। प्याज की बात कर रहे हैं, प्यार की नहीं। हालांकि ये दोनों चीजें बहुत अच्छी है और इन दोनों की तासीर बहुत अच्छी है, हर मौसम में काम आने वाली है। इस प्यार के साथ बने रहिए, हर मौसम को सुहाना करते रहिए और हर प्रभात को गोल्ड सुप्रभात करते रहिए।

यहाँ रही आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ ही गोल्ड सुप्रभात के बाद अब समय है समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे का।

0: नमस्कार, आदाब और सुप्रभात। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुबह की ताजगी से भरा आपका अपना पसंदीदा न्यूज मैगजीन कार्यक्रम आज सवेरे। श्रोताओं, नई सुबह हो चुकी है। कल की नाकामियों को भूलकर आगे बढ़ने का वक्त है, क्योंकि असद भोपाली साहब कह गए हैं, रास्ता साफ है और शौके सफर जिंदा है। हम जिसे ढूंढ रहे हैं वो शहर जिंदा है। तो उठिए और अपने सफर पर निकलिए। और असद भोपाली साहब की बात हो ही गई है तो बता दें कि आज का हमारा ये सफर बेहद खास है, क्योंकि आज हमारे कार्यक्रम के आखिरी सेगमेंट में असद भोपाली साहब के साथ साथ कई प्रमुख हस्तियों के नाम हैं। इससे वीरता, संघर्ष, सुर और नारी शक्ति का एक ऐसा कारवां गुजर रहा है कि जिसे सुने बिना आप रह नहीं पाएंगे। हमेशा की तरह हम देश और दुनिया के मुख्य समाचार, मौसम का हाल और आज का इतिहास भी लेकर आए हैं। तो ज्ञान, वीरता, हौसले और सुरों के इस महासंगम में हमारे साथ बने रहे। कार्यक्रम आज सवेरे के इस अंक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त जया भारती, अपनी सहयोगी रेनू कटारिया के साथ। गुड मॉर्निंग रेनू।
1: गुड मॉर्निंग जया, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। एंड जया, यू हैव ऑलरेडी अपडेटेड आवर लिसनर्स अर्ली मॉर्निंग व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू हैव इन आज सवेरे इन दिस प्रोग्राम ऑफ हाफ एन आवर। बट फर्स्ट लेट अस बिगिन विद सम न्यूज एंड देन मूव ऑन टू द अदर सेगमेंट्स।
0: बिल्कुल
1: जी।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीक की सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। यह पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है।
1: India will host key meetings of the BRICS Agriculture Working Group and BRICS Agriculture Ministers in Indore, Madhya Pradesh from today till the 13th of this month. Addressing a press conference in Bhopal yesterday, Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan said, BRICS has become a powerful global platform. He said, BRICS nations hold around 42% of the world's agricultural land and also account for 45% of global food production. The meeting will be centered around farmers' income, employment, livelihood, agricultural credit and market access, food security, agricultural trade, climate adaptation and agri innovation will be the key themes.

0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रूपये का स्मारक सिक्का और 5 रूपये का डाक टिकट भी जारी करेंगे।
1: Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India's pharmaceutical industry is projected to double in size over the next 5 years, driven by innovation, global partnerships and expanding international market access. Mr. Goyal said this while addressing the Global Ambassador Meet on the Pharmaceutical Sector and the Curtain Raiser Ceremony of the Global Drug Regulators Conclave and International Exhibition of Pharma and Healthcare in New Delhi yesterday. He noted that India has signed 9 free trade agreements in recent years and now has trade agreements covering more than 50 countries, providing preferential market access across most of the developed world.
0: कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश के कोयला और खनन क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुआ है। हैदराबाद में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि भारत का कोयला उत्पादन रिकॉर्ड 1 अरब टन तक पहुंच गया है और देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक बन गया है। उन्होंने बताया कि कोयला क्षेत्र में लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिला है।
1: Moving on to some international news, in the United States, a federal judge has ruled that the fee of $1 lakh for H-1B applications imposed by President Donald Trump was unlawful. U.S. District Court Judge Leo Sorokin in Boston, Massachusetts, said in a ruling that the policy imposes a tax on H-1B petitions without the requisite delegation by the Congress. U.S.-based Indian diaspora advocacy groups have welcomed the federal court's decision, contending that it was appropriate for preserving U.S. competitive edge in innovation and entrepreneurship. The H-1B program is one of the most sought-after U.S. work visas that allows American companies to hire skilled global talent. Trump's order proposing a UST of 100,000 annual fee per H-1B worker left many uncertain about visa reforms and new requirements.
0: और अब चलते हैं खेल जगत की ओर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने इंग्लैंड और वेल्स में होने वाले आगामी महिला T20 विश्व कप के लिए कमेंटेटर्स की सूची जारी कर दी है और इस बार कमेंट्री टीम में कई दिग्गज महिला खिलाड़ियों के नाम भी शामिल हैं, जिनमें भारत की पूर्व कप्तान मिताली राज, अंजुम चोपड़ा और वेदा कृष्णमूर्ति के नाम प्रमुख हैं। इनके साथ दिनेश कार्तिक और चेतन स्ट्रू भी कमेंट्री पैनल का हिस्सा होंगे। महिला T20 विश्व कप का 10वां संस्करण शुक्रवार से शुरू होगा। उद्घाटन मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच बर्मिंघम के एस्वेस्टन मैदान पर खेला जाएगा।
1: एंड इन मेंस क्रिकेट, इंडिया ए विल टेक ऑन श्रीलंका ए इन द ओपनिंग मैच ऑफ द ट्राई नेशन ए सीरीज एट द रंगिरी डम्बोला इंटरनेशनल स्टेडियम इन श्रीलंका दिस मॉर्निंग। द मैच विल बिगिन एट 10 AM इंडियन टाइम। Tilak Verma, led men in blue, will be up against host Sri Lanka and Afghanistan in the triangular contest. India A will next face Afghanistan A at the same venue on Thursday. All the matches will be played in Dambulla, with the final match scheduled on 21st of this month.
0: और अब रुख करते हैं कुछ प्रमुख महानगरों का और जानते हैं वहां का हाल। तो शुरुआत चेन्नई से करें रेनू।
1: बिल्कुल करते हैं। एंड सम गुड न्यूज फ्रॉम चेन्नई मेट्रो। तमिलनाडु हैज रिकॉर्डेड 68 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स ऑफ प्रे अक्रॉस द स्टेट एज पार्ट ऑफ अ मेजर सर्वे एम्ड एट क्रिएटिंग बेसलाइन डेटा for long-term conservation. The study covered 49 forest divisions and involved 3,643 participants, including forest officials, researchers, and members of the Tamil Nadu Raptors Research Foundation. Surveys were conducted during both day and night. State Forest Secretary Supriya Sahu said the main goals were to establish data for long-term monitoring, identify key raptor habitats, and map their current distribution across the state.
0: अब समय है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के समाचारों का। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल दिल्ली में यमुना जीर्णोद्धार के मुद्दे पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि साफ और स्वच्छ यमुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का संकल्प है और सभी को मिलकर इसको जल्दी पूरा करना है। बैठक में तय किया गया कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष के अंत तक 99 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। अब तक 128 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन चुके हैं। श्री शाह ने बल देकर कहा कि यमुना जीर्णोद्धार परियोजना में कार्य प्रगति की हर 20 दिन में समीक्षा की जाएगी। उन्होंने बताया कि दिल्ली की डेयरियों के अपशिष्ट को यमुना में जाने से रोकने के लिए दिल्ली नगर निगम और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जाएगा, जिससे अपशिष्ट गोबर गैस और खाद में तब्दील होंगे। इस बीच दिल्ली से एक और खबर है कि दिल्ली को स्वच्छ, हरित और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह समझौता कल लोक निर्माण विभाग, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के बीच हुआ। यह पहल धूल रहित सड़कों, शहरी हरियाली और वैज्ञानिक सड़क प्रबंधन को बढ़ावा देगा।
1: मूविंग ऑन टू बेंगलुरु मेट्रो जया, Karnataka Home Minister Priyank Kharge has directed senior police officials to issue notices to pubs, bars, breweries, clubs, restaurants and other liquor serving establishments to strictly prevent the sale of alcohol to underage individuals. The decision follows a study conducted in four educational institutions in Bengaluru involving more than 4,090 students. The study found that 33% of young adults consumed alcohol, while nearly 18% used tobacco, significantly higher than the national averages. The minister directed strict age verification at entry points and before serving alcohol, mandatory age proof checks, strong action against establishments violating rules, and CCTV compliance to prevent underage access to such venues. So, parents, be alert, because most of the times, Jaya, kya hota hai? कि the kids at home are a little different from the kids when they are with their peers and with their friends. So the parents have to be alert over here and take notice of this.
0: जी, अब चलते हैं महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि धारावी पुनर्विकास परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र की संस्कृति और आजीविका को संरक्षित करते हुए निवासियों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। सिंगापुर और हांगकांग के आवास मॉडल से प्रेरित होकर इस योजना का लक्ष्य 2028 तक पात्र निवासियों को 10,000 घर उपलब्ध कराना है। धारावी के प्रसिद्ध मिट्टी के बर्तन बनाने के केंद्र कुम्हारवाड़ा के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। योजनाओं में चमड़ा, वस्त्र पुनर्चक्रण, मिट्टी के बर्तन और खाद्य प्रसंस्करण जैसे स्थानीय उद्योगों को भी समर्थन देना भी शामिल है। और युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है महाराष्ट्र से कि एनसीसी महाराष्ट्र ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत युवाओं के लिए इंटर्नशिप पहल शुरू की है। लेमन ट्री होटल्स के सहयोग से पुणे में 15 जून और मुंबई में 16 जून को प्लेसमेंट कैंप आयोजित किए जाएंगे। योग स्नातकों और एनसीसी कैडेटों को इंटर्नशिप के अवसर, व्यावहारिक कार्य अनुभव और मासिक वजीफा मिलेगा।
1: And carrying on with some more good news, the southwest monsoon has officially entered Telangana, making its initial onset in the southern district of Jogalamba Gadwal yesterday. According to the India Meteorological Department, IMD, conditions remain highly favourable for the monsoon to advance into the remaining parts of Telangana, Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh over the next 2 to 3 days. The Hyderabad Meteorological Centre has forecast light to moderate rainfall across isolated areas of the state through Wednesday. However, residents in certain southern and eastern districts should prepare for isolated heavy downpours. The IMD has also warned of thunderstorms, lightning and gusty winds reaching speeds of 40 to 50 km per hour. Maximum temperatures across the state are expected to hold steady during this period.
0: और अब बात करते हैं जॉय सिटी कोलकाता की। महापौर के इस्तीफे के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता नगर निगम बोर्ड को भंग कर दिया है और आयुक्त स्मिता पांडे को प्रशासक नियुक्त किया है। वह सभी नागरिक कार्यों का प्रबंधन करेंगी और अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेंगी। निगम की शक्तियां 6 महीने तक या नवनिर्वाचित पार्षदों के कार्यभार संभालने तक

0: लागू रहेंगी। तो ये थे अब तक के मेट्रो समाचार। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर जया और रेनू के साथ। कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अब जानते हैं कि मेट्रोज में मौसम कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम की। तो रेनू, जहां देश भर में मॉनसून आगे बढ़ रहा है कई हिस्सों में, उस बीच दिल्ली में तो गर्मी का प्रकोप जारी है।
1: बट आई सॉ सम क्लाउड्स इन द मॉर्निंग टुडे जया, एंड इट वाज सच अ नाइस फीलिंग कि आज जरूर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है।
0: नहीं, लेकिन आज बारिश का ऐसा कोई अनुमान नहीं है। हालांकि दिन के समय तेज सतही हवाएं चलेंगी। शहर में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, यानी कि तेज धूप रहेगी आज भी।
1: Yes.
0: अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और बारिश या गरज के साथ तूफान का अनुमान है। शहर में न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। और जॉय सिटी कोलकाता में आज तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार हैं। आज का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। और अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं रेनू से।
1: एंड इट्स गोइंग टू बी क्लाउडी थ्रू आउट ऑल द थ्री मेट्रोज जया। चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई विद पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रेन और थंडरस्टॉर्म। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 30 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 39 डिग्री। Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The minimum temperature was 22 degrees Celsius and the maximum will be around 30 degrees. And Hyderabad is also expected to have generally cloudy sky with moderate rain. The temperature will hover between a minimum of 24 degrees and a maximum of 36 degrees Celsius.
0: श्रोताओं, अब वक्त आ गया है अतीत के पार उन प्रमुख घटनाओं को याद करने का जिन्होंने आज के दिन अपनी एक विशेष पहचान दर्ज की। आज 9 जून 2026 है और
1: एंड एज ऑलवेज ऑल द डेट्स दैट वी हैव आर सो मच इम्पोर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द हिस्ट्री। सो बिगनिंग विद द ईयर इन 1902 ऑन दिस डे, दैट इज 9th of June, द ऑटोमैट रेस्टोरेंट, द फर्स्ट रेस्टोरेंट विद फूड vending machines opened in Philadelphia. In 1946, Bhumi Bol Adulya Dej was crowned as King Ram the Ninth of Thailand, going on to become one of the longest reigning monarchs in world history.
0: और आज के दिन 1934 में कार्टून चरित्र डोनाल्ड डक पहली बार डिज्नी वॉल द्वारा निर्मित एनिमेशन फिल्म द वाइज लिटिल हैंड में दिखाई दिया। और इसके कुछ दिनों के बाद वर्ष 1962 में गोवा की मुक्ति के बाद वहां लागू सैन्य प्रशासन को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर एक नागरिक सरकार को सत्ता सौंपी गई थी।
1: इन 1964 ऑन दिस डे लाल बहादुर शास्त्री टुक द ऑफिशियल ओथ एज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉलोइंग द पासिंग ऑफ जवाहरलाल नेहरू। शास्त्री गेव द कोटेशन जय जवान जय किसान विच मोटिवेटेड द वॉर अफेक्टेड इंडियंस टू बूस्ट देयर मोरल।
0: और इसके कुछ दिनों के बाद वर्ष 2004 में जर्मन इलेक्ट्रॉनिक संगीत बैंड क्राफ्टवर्क ने पहली बार भारत में मुंबई के एक विशेष समारोह में लाइव प्रदर्शन किया था, जिसने देश में इलेक्ट्रॉनिक संगीत के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा।
1: जी,
0: और अब समय है उन प्रमुख व्यक्तियों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
1: जी,
0: तो सबसे पहले हम याद कर रहे हैं फिल्म फेयर अवार्ड विजेता मशहूर गीतकार असद भोपाली साहब को। उन्हें ऐसे गीतकार में शुमार किया जाता है जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में 40 साल का लंबा संघर्ष किया। आज ही के दिन साल 1990 में हिंदी सिनेमा के ये अजीम शायर हमसे रुखसत हुए, जिनकी कलम से लिखे गाने आज भी हर धड़कन की आवाज है। याद कीजिए फिल्म पारसमणि का वो सदाबहार गीत।

अभिनेता सलमान खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म मैंने प्यार किया के लिए लिखे गीत कबूतर जा के लिए असद साहब को प्रतिष्ठित फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। अपने करियर में उन्होंने करीब 400 गाने लिखे जो आज भी गीत प्रेमियों के दिलों में जिंदा है। उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए चलिए सुनते हैं उन्हीं का लिखा एक और बेहद खूबसूरत तराना।

0: सच ब्यूटीफुल म्यूजिक, सच ब्यूटीफुल लिरिक्स. ये वाले गाने हम आज तक याद करते हैं और साथ साथ वी कीप हमिंग, यू नो, दे वर सच ब्यूटीफुल सॉन्ग्स. सो टुडे इज द बर्थडे ऑफ जॉन क्रिस्टोफर डेप द सेकेंड और जॉनी डेप, who is an American actor, producer and musician. He was nominated, or he has been nominated for 10 Golden Globe Awards, winning one for Best Actor for his performance of the title role in Sweeney Todd, the Demon Barber of Fleet Street, and has been nominated for 3 Academy Awards for Best Actor, among other accolades. He is regarded as one of the world's biggest film stars, and his most commercially successful films are the Pirates of the Caribbean series, the Fantastic Beast film series, Alice in Wonderland, Charlie and the Chocolate Factory, and The Tourist. But here we have a small dialogue from the movie Pirates of the Caribbean. Let's listen in to that.
1: Hang on a minute.
2: I just need to understand something.
1: Right, so you will fight against them, they will fight against you, all on account of him wanting to kill him. Where is the sense?
2: Exactly.
1: I say, let them fight each other. Or we lay back, watch, have a drink, play some wagers. Hey! Mm. Hi.
3: तो सुरों के महफिल में वापस से लौटेंगे, लेकिन उससे पहले जैसा हमने कार्यक्रम की शुरुआत में वादा किया था कि हम वीरता के कारवा में भी जाएंगे, तो इतिहास के पन्नों में कुछ तारीखें सिर्फ कैलेंडर का हिस्सा नहीं होती बल्कि वो हमारे वजूद और आजादी की गवाही देती है. आज 9 जून है और आज ही के दिन साल 1900 में महज 25 साल की उम्र में एक ऐसा नायक हमसे दूर चला गया जिसने अंग्रेजों की हुकूमत को हिलाकर रख दिया था. हम बात कर रहे हैं धरती आबा यानी धरती के पिता भगवान बिरसा मुंडा की. जिस उम्र में लोग अपना करियर ढूंढते हैं, धरती आबा बिरसा मुंडा ने उस उम्र में जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए उलगुलान यानी एक महाक्रांति की शुरुआत कर दी थी. उन्होंने झारखंड के जंगलों से अंग्रेजों और जमींदारों के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई. वो सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, वो आदिवासियों के लिए भगवान थे. उन्होंने समाज को कुरीतियों से निकाला, अंधविश्वास को दूर किया और लोगों को सिर उठाकर जीना सिखाया. आज ही हम उन तीन शूरवीरों को भी याद कर रहे हैं जिनकी रगों में सिर्फ और सिर्फ इंकलाब दौड़ता है और जिन्होंने आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया. आज गुजरात के ग्रैंड ओल्ड मैन अब्बास तैयबजी की पुण्यतिथि है जिन्होंने गांधी जी के साथ दांडी मार्च का नेतृत्व किया. तो वहीं आज ही के दिन वीर क्रांतिकारी हरिकिशन सरहदी और दिनेश चंद्र मजूमदार ने अपनी महज छोटी सी उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया. सलाम है भारत के इन वीर सपूतों को जिनकी शहादत से आज हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं.
0: Very true, Jaya. You know what? These dates are not just etched in the calendars, but there is so much more that happened on these days in history if we look back. So today is the birthday of Aaron Benjamin Sorkin, who is an American screenwriter, director, producer, and playwright. His works include the Broadway plays A Few Good Men, The Farnsworth Invention, and To Kill a Mockingbird, the television series Sports Night, The West Wing, Studio 60, On the Sunset Strip, and The Newsroom, and the films A Few Good Men, The American President, Charlie Wilson's Bar, Moneyball, and Steve Jobs. And for writing The Social Network, he won the Academy Award for Best Adapted Screenplay, among other awards. And he made his feature directorial debut in 2017 with Molly's Game, which he also wrote. And these sequences consist of single tracking shots of long duration involving multiple characters engaging in conversation as they move through the set. Characters enter and exit the conversation as the shot continues without any cuts. So there is so much that, you know, Jaya, we can learn from these people who are real directors. Mm-hmm. So here Aaron Sorkin is talking about what is your idea of a TV show or a movie. So let's listen in to him over here.
4: My first series was Sports Night. I was thinking of that as a feature, that it would be broadcast news but set at ESPN. But all the stories that I was thinking of were short stories. They weren't long. And I said that to my agent, who said, well, it sounds like you're describing a television series. So that's how that happened. And so generally, if it's the place that you're attracted to, whether it's the White House or a newsroom or a cable sports show. If it's the place that you're attracted to, that's a TV series. If the characters, metaphorically speaking, die at the end of the story, if there's no more story after that, then it's a feature.
3: और जब आपने डायरेक्टर की बात की है तो हम भी श्रोताओं को मिलाना चाहेंगे हिंदी सिनेमा के उस जादूगर से जिसने सिल्वर स्क्रीन पर सस्पेंस और मेलोड्रामा की एक नई परिभाषा लिखी थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिग्गज फिल्म निर्देशक राज खोसला साहब की। आज उनकी भी पुण्यतिथि है। उन्हें देवानंद जैसे अभिनेताओं की सफलता के लिए श्रेय दिया जाता है। उन्हें बॉलीवुड में नियो नोयर यानी सस्पेंस क्राइम फिल्मों का उस्ताद भी माना जाता है। उन्होंने सीआईडी, मेरा गांव मेरा देश और दो रास्ते जैसी एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। इसके बाद वो कौन थी, मेरा साया, दोस्ताना जैसी कई हिट फिल्में आई और मुख्य फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की जो 1978 में आई थी, इनके लिए उन्हें फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ मूवी पुरस्कार दिलाया गया था।
0: वेरी ट्रू जया, यू सेड ही वाज नोन फॉर ब्रिंगिंग इन द नियो नोआर एंड द स्टाइल इन इंडियन सिनेमा एंड बिकॉज यू आर नेमिंग दीज मूवीज आई थिंक ही वाज आल्सो अ वुमेन्स डायरेक्टर बिकॉज ही शोकेस्ड एक्ट्रेसेस एट देयर बेस्ट।
3: बिल्कुल, जिस तरह से मुमताज, साधना और नूतन जैसी अभिनेत्रियों से उन्होंने उनका सर्वश्रेष्ठ अभिनय निकलवाया है। और खास बात यह थी ना कि राज साहब का म्यूजिक सेंस कमाल का था। उनकी फिल्मों के गाने आज भी हमारी प्लेलिस्ट का हिस्सा हैं। सुरों और सस्पेंस के इस बेताज बादशाह को याद करते हुए सुनते हैं उनकी एक मास्टरपीस फिल्म का यह शानदार गीत।

आज भारतीय सिनेमा के बेहद सम्मानित कालजयी और दिग्गज संगीतकार वसंत देसाई साहब की भी जयंती है। आज भले ही हम कितने भी आधुनिक गाने क्यों ना सुन लें, लेकिन सुबह उठकर जब स्कूलों में बच्चे गाते हैं हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, या फिर फिल्म दो आंखें बारह हाथ की वह अमर प्रार्थना ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, तो हमारा दिल अपने आप भर आता है। और इन कालजयी धुनों को तराशने वाले जादूगर वसंत देसाई जी ही थे।

वसंत जी ने वी शांताराम साहब की झनक झनक पायल बाजे और जया बच्चन की डेब्यू फिल्म गुड्डी में बोले रे पपिहरा जैसे एक से बढ़कर एक शास्त्रीय और मधुर गीत दिए। वे ज्यादा फिल्मों के पीछे नहीं भागे, उन्होंने काम कम किया लेकिन जो किया उसे हमेशा के लिए अमर कर दिया।

0: ऑफ माइकल फॉक्स और माइकल जे फॉक्स, जिनको हम मूवीज बैक टू द फ्यूचर के वजह से भी बहुत याद करते हैं. एंड टुडे इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ जैक लेरॉय विल्सन जूनियर और जैकी विल्सन, हुज सॉन्ग लोनली टियरडॉप्स वॉज सच अ लवली सॉन्ग. सो वाई डोंट वी जस्ट लिसन इन टू दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग लोनली टियरडॉप्स.
1: स्टीवन स्पीलबर्ग प्रेजेंट्स बैक टू द फ्यूचर.
2: हम याद कर रहे हैं सिनेमा के एक और ऐसे नायाब चिराग को जिन्होंने हमें हंसना भी सिखाया और अपनों के लिए रोना भी. आज मशहूर और दिग्गज फिल्म निर्देशक सत्येन बोस की भी पुण्यतिथि है.

कॉमेडी से लेकर संजीदा ड्रामा तक हर रंग में माहिर थे सत्येंद्र। आपको याद होगा दो दोस्तों के निस्वार्थ प्यार की वो दास्तान फिल्म दोस्ती, जिनके गानों ने पूरे देश को रुला दिया था।

0: श्रोताओं, और अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए जया और रेनू को आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। कल फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए आप सुनते रहें आकाशवाणी एफएम गोल्ड।
1: Stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15 a.m. Thank you for tuning in. Have a superb day.
0: Namaskar.

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मारीवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों की सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर फिर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अमरीका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये प्लेटफॉर्म व्यापार सुगमता, संपर्क, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप है। LPMS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भूमि बंदरगाहों के संचालन को एकीकृत प्रणाली में समाकलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रणाली कार्गो और यात्री प्रसंस्करण के लिए स्लॉट बुकिंग, भुगतान, ट्रैकिंग और सिंगल विंडो क्लीयरेंस सहित संपूर्ण डिजिटल कार्य प्रभावी प्रदान करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के दावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंडपोर्ट में नव विकसित हितधारक आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे सीमा प्रबंधन और कर्मियों के लिए बुनियादी ढांचागत सहायता मजबूत होगी। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। इनमें ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
5: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
3: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और खाद्य

0: सुरक्षा मजबूत करना है।
1: भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग लेंगे। 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत कृषि कार्य समूह की बैठकों से हो रही है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। 12 जून को कृषि मंत्रियों का विशेष संवाद आयोजित होगा, जिसका फोकस लघु किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर रहेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रूपये का स्मारक सिक्का और 5 रूपये का डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
3: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे 5 लाख रुपए मिलेंगे।
2: वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
4: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रह रहा हूँ।
2: सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवम्बर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अस्पतालों के विस्तार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष में भारत के कोयला और खनन क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। हैदराबाद में कल श्री रेड्डी ने बताया कि भारत ने 1 अरब टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड हासिल कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश बन गया है। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र से लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हो गए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है।
5: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतकों के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं इस्पात मंत्री HD कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की है। समाचार कक्ष से मैं चाहत सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में MT मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का आभार भी जताया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली। हादसे की जांच जारी है। अमरीका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए $1,00,000 के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। H-1B वीजा के जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ईरान और इसराइल के बीच एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित हो सकती है। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणी श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में अफगानिस्तान ए की टीम भी शामिल है। भारत ए का अगला मैच अफगानिस्तान ए से बृहस्पतिवार को होगा। फाइनल 21 जून को होगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। भारतीय फूलमाली ने नाबाद 56 रन और स्मृति मानधना ने 39 रन का योगदान दिया। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में आज लू चलने की आशंका व्यक्त की है। कोंकण और गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में दिनभर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे और उत्तरी तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में आज तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
6: धन्यवाद मुकेश। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों में बगावत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, TMC में टूट, 20 सांसदों का अलग गुट NDA के साथ। पत्र के अनुसार काकोली घोष की अगुवाई में अलग सेटिंग की भी मांग। दैनिक जागरण ने तृणमूल में एक और टूट शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जैसी आशंका थी तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों ने भी ममता बैनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी है। इससे पहले पार्टी के 80 में से 60 विधायक अलग गुट बनाकर नेता प्रतिपक्ष का चयन कर चुके हैं। पंजाब केसरी ने विपक्षीय एकता का अंतर विरोध शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, हाल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली शानदार सफलता बताती है कि इंडिया गठबंधन में इतनी भी कुव्वत नहीं है कि उसके सहयोगी दलों के नेता एक साझा मंच पर इकट्ठे होकर भाजपा को ललकार सके। हिंदुस्तान ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को का साक्षात्कार देते हुए लिखा है, चीन से सिर्फ उम्मीद के भरोसे शांति संभव नहीं, थिएटर कमान पर भी सहमत। जनसत्ता के अनुसार इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए 8 अप्रैल के बाद यह गंभीर झड़प, ट्रंप की अपील के बाद दोनों देशों ने किया संघर्ष विराम। पत्र के अनुसार भारत ने नागरिकों को सलाह

0: writes the Delhi Tribune. The Statesman on its editorial page writes, "For years, India's electric vehicle debate was driven largely by environmental concerns, yet the strongest argument for electrification may be India's enduring vulnerability to imported oils." And finally, consensual premarital relationships, no stain on character, SC orders man's appointment as cop, informs the Hindustan Times. And with that, it's back to you, Sarabjeet.
1: Thank you, Renu. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Union Home Minister Amit Shah to launch land port management system in New Delhi today. Five-day BRICS agriculture ministers meeting to begin today in Indore, Madhya Pradesh. Indian Embassy in Muscat confirms rescue of all 24 Indian seafarers aboard empty Merivex after fire incident south of Strait of Hormuz. Iran and Israel announce halt in attacks against each other but warn of retaliation if ceasefire breached again. U.S. federal court strikes down President Donald Trump's $1 lakh H-1B visa fee. And in men's cricket, India A to take on Sri Lanka A in opening match of Tri-Nation Series at Dambulla this morning. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। पहले इस वक्त की खास खबरें। मरकजी वजीर दाखला आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट बंदोबस्त के निजाम का आगाज करेंगे। ब्रिक्स मुल्कों के वुजराए ज़राअत की पांच रोजा मीटिंग आज मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में हो रही है। मस्कत में भारतीय सिफारतखाने ने आबनाए हुरमुज के जनूब में आग लगने के वाके के बाद बहरी जहाज एमटी मेरीवैक्स में सवार सभी 24 भारतीय मल्लाहों को बचाने की तस्दीक की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने का ऐलान किया है, लेकिन साथ ही जंगबंदी की खिलाफवर्जी की सूरत में जवाबी कार्रवाई करने की तंबीह भी की है। अमरीका की वफाकी अदालत ने H-1B वीजा के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नाफिज की गई $1 लाख की फीस को रद्द कर दिया है। और मर्दों के क्रिकेट में आज सुबह दाम्बुला में सह मुल्की सीरीज के पहले मैच में इंडिया ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट निजाम का आगाज करेंगे। इस पहल से स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट के तई सरकार के अहद की अक्कासी होती है। इसका मकसद तकनीक का इस्तेमाल करते हुए सरहदी तिजारत और मुसाफिरों की नकलो हरकत के शोबे में सलाहियत, शफाफियत और सिक्योरिटी को बढ़ाना है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: लैंड पोर्ट बंदोबस्त निजाम का आगाज जदीद तर्ज के तकनीक पर मबनी सरहदी बंदोबस्त निजाम की समत एक तारीखी कदम होगा। उमूर दाखिला की वजारत ने कहा है कि यह प्लेटफार्म तिजारत में सहूलत, कनेक्टिविटी, कौमी सिक्योरिटी और 2047 तक विकसित भारत के नजरिए के ऐन मुताबिक है। लैंड पोर्ट बंदोबस्त निजाम मुख्तलिफ लैंड पोर्ट्स में कामकाज को एक मुत्तहदा निजाम में मरबूत करने के लिए तैयार किया गया एक डिजिटल प्लेटफार्म है। इसके जरिए महफूज और लॉजिस्टिक्स के बरवक्त तबादले, नीज इंजिबाती जानकारी फराहम करने में सहूलत होगी। इस तरह हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर पहले से काम करने वाले डिजिटल निजाम के साथ लैंड पोर्ट्स को हम आहंग किया जा सकेगा। दिल्ली से शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
2: बैन अलावा ब्रिक्स जरई कॉन्फ्रेंस आज मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में हो रही है। इसमें 21 मुल्कों के वुजराए ज़राअत, आला अहदेदार और माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। इनमें ब्राजील, चीन, रूस और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
4: ये कॉन्फ्रेंस 13 जून तक जारी रहेगी। जरी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के साथ इसका आगाज होगा। अहम मौजूदात में खुराक की यकीनी फराहमी, जरी इख्तरा, आबो हवा के लिए साजगार खेती, जरी तिजारत और छोटे किसानों को बाख्तियार बनाना शामिल है। 12 जून को ज़राअत के वजीरों के माबेन खुसूसी मुज़ाकरात होंगे, जिसमें छोटे किसानों, ख़वातीन और नौजवानों के जरिए खुराक की यकीनी फराहमी पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। 13 जून को ब्रिक्स मुल्कों के वजीरों की मीटिंग होगी। जरी इश्तराक और इख्तरा के बारे में एक मुश्तरका दस्तावेज भी तैयार किए जाएंगे। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
2: स्टील महकमे के मरकजी वजीर एचडी कुमारस्वामी और शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने कल रात विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में उस जगह का दौरा किया जहां हादसा पेश आया था। जनाब कुमारस्वामी ने मरने वाले कारकुनों के कुनबों से ताजियत का इजहार किया है और मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 25-25 लाख रूपये की इमदाद का ऐलान किया है, जबकि जख्मियों को 10-10 लाख रूपये दिए जायेंगे। इसके अलावा मुतासिरा कुनबों को स्टील प्लांट क्वार्टर्स में ही रहने की इजाजत होगी, उनके बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम की जाएगी और हर कुनबे के एक फर्द को मुस्तकिल मुलाजमत दी जाएगी। जनाब कुमारस्वामी ने बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी मरने वालों के कुनबों के लिए 2-2 लाख रूपये की माली इमदाद का ऐलान किया है, जबकि जख्मियों को 50-50 हजार रूपये दिए जायेंगे। वजीर आजम के कौमी इमदादी फंड से यह इमदाद दी जाएगी। हादसे की वजूहात का पता लगाने के लिए स्टील महकमे की मरकजी वजारत ने एक खसूसी कमेटी बनाई है जो दीगर स्टील प्लांट्स के माहरीन पर मुश्तमिल है। कल विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आग लगने के हादसे में 8 अफराद की मौत हो गई थी जबकि 6 अफराद जख्मी हो गए, इनमें 2 की हालत नाजुक बताई गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आग लगने के इस वाकये में लोगों की मौत होने पर रंजोगम का इजहार किया है और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की नजरिया साज क्यादत के तहत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के उसूलों के तहत गुज़श्ता 12 वर्षों में भारत में अहम तब्दीली आई है। इस मुद्दत में मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, खवातीन और नौजवानों के लिए अपनी जेर सरपरस्ती कई इकदाम किए हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोबा गुज़श्ता 12 वर्षों के दौरान कई कलीदी शोबों में सरकार की काविशों पर मबनी एक खसूसी फीचर पेश कर रहा है, जिसके तहत आज हम सेहत खिदमात पर सरकार की जानिब से किए गए इकदाम का एक जायजा पेश कर रहे हैं।
5: गुज़िश्ता 12 बरस में हुकूमत ने भारत के सेहत निज़ाम को नुमाया इस्तेहकाम बख्शा है जो कि अब ज्यादा काबिल रसाई, किफायती और मेयारी है। 2018 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े सेहत इंश्योरेंस प्रोग्राम आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की थी। इस स्कीम के तहत समाजी और इकतसादी तौर पर पसमादा कुंभों के लिए हर साल हर एक कुंभे को 5 लाख रूपये की मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस फराहम कराई गई। इस स्कीम के तहत 44 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनवाए गए और 1,80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इलाज फराहम कराया गया।
6: मेरा नाम रोहित सिंह है और आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या था मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे और कार्ड से क्या था मेरा परिवार भी स्वस्थ रहेगा और अच्छा इलाज हो सकेगा।
5: सरकार ने 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी कायम किए ताकि करीबी इलाकों में बुनियादी सेहत खिदमात फराहम कराई जाएं। ये सेहत मराकज वसीतर खिदमात फराहम कर रहे हैं, जिनमें जच्चा और बच्चा की सेहत खिदमात, टीकाकारी, जांच की सहूलियत और मुफ्त लाजमी अद्वियात शामिल हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना भी मेयारी जेनेरिक अद्वियात फराहम कर रही हैं। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए कलीम अहमद।
2: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में पीएमएसएमए के 10 बरस निगहदाश्त की एक दहाई मुकम्मल होने पर मुल्क भर में होने वाली तकरीबात का आगाज करेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के कामयाब नफाज के 10 बरस मुकम्मल होने के सिलसिले में यह मुहिम चलाई जा रही है। सरकार की जेर क्यादत इस पहल पीएमएसएमए का मकसद महफूज जचगी और हामला खातून की सेहत का ख्याल रखना है। ओमान के शहर मस्कत में भारतीय सिफारतखाने ने आबनाई हुरमुज के जनूब में आग लगने के एक वाके के बाद बहरी जहाज एमटी मैरीवैक्स में सवार 24 भारतीय मल्लाहों को बचाने की तस्दीक की है। सिफारतखाने ने तेजी के साथ कार्रवाई करने के लिए ओमान के हुकाम का शुक्रिया भी अदा किया है। इससे पहले कल नई दिल्ली में बैन वजारती ब्रीफिंग के दौरान बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के वजारत के तर्जुमान उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि कल दिन में 1:30 बजे के आसपास आग लगने के वाके की इत्तला मिली थी। जनाब शर्मा ने कहा कि इब्तदाई जानकारी की बुनियाद पर सभी भारतीय मल्लाह महफूज हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस बात की तस्दीक की जा रही है कि आया ये बहरी जहाज किसी प्रोजेक्टाइल की इज्जत में आया था या नहीं। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने का ऐलान किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि दोनों फरीक फौरी जंगबंदी के ख्वाहिशमंद हैं और कयाम अमन के बारे में हतमी मुजाकरात आगे बढ़ रहे हैं। अलबत्ता उन्होंने यह भी कहा कि किसी तरह की लाइलमी या हिमाकत की वजह से यह अमल मुतासिर हो सकता है। सदर ट्रंप ने यह वाजे कर दिया कि जब तक कोई हतमी समझौता नहीं हो जाता नाकाबंदी पूरी तरह नाफिज रहेगी। इधर इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने भी एक बयान में कहा है कि उनकी दिफाई फोर्सेज ईरान के खिलाफ हमले रोक रही हैं। उन्होंने ये वार्निंग भी दी कि अगर ईरान ने फिर से हमले करने की गलती की तो इसराइल पूरी ताकत के साथ इसका जवाब देगा। अमरीका की वफाकी अदालत ने H-1B वीजा के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नाफिज की गई $1,00,000 की फीस को रद्द कर दिया है। वफाकी जज ने यह फैसला सुनाया कि H-1B दरखास्तों के लिए $1,00,000 की फीस गैर कानूनी है। बोस्टन में अमरीकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने कहा कि कांग्रेस से मतलूबा मंजूरी के बगैर इस तरह की दरखास्तों पर टैक्स नाफिज किया गया है। अमरीका में आबाद भारत नजाद लोगों के ग्रुपों ने वफाकी अदालत के फैसले का खैर मकदम किया है। H-1B प्रोग्राम की काफी मांग रहती है। इसके तहत अमरीकी कंपनियों को दीगर मुल्कों से हुनरमंद अफराद को काम पर रखने की इजाजत मिल जाती है। सदर ट्रंप ने हर H-1B कारकुन के लिए $1,00,000 सालाना की फीस का जो हुक्म दिया था उससे वीजा इस्लाहात और नई जरूरियात के बारे में गैर यकीनी की कैफियत पैदा हो गई थी। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि आसाम की मशहूर GI टैग वाली तेजपुर लीची बैन अलाक्वामी मार्केट में पहुंच रही है। उन्होंने बताया कि जरई और डिब्बाबंद गजाई अशिया की बरामद के फरोख से मुतालिक अथॉरिटी APEDA की मदद से तेजपुर लीची की पहली बरामदी खेप दुबई के लिए रवाना हुई। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब गोयल ने कहा कि इस पहल से खत्ते की लीची को आलमी सतह पर पहचान मिलेगी, किसानों को बेहतर कीमत हासिल होने में सहूलत होगी और शिमाल मशरकी भारत की जरिए अशिया के लिए नए मौके पैदा होंगे। मर्दों के क्रिकेट में आज श्रीलंका में सहमुल्की ए सीरीज के पहले मैच में इंडिया ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे शुरू होगा। तिलक वर्मा भारतीय टीम के कप्तान हैं। इंडिया ए का अगला मुकाबला जुमेरात को अफगानिस्तान ए से होगा। इस सीरीज के सभी मैच दाम्बुला में खेले जाएंगे। फाइनल मैच इस महीने की 21 तारीख को होगा। इंडिया ए टीम में भारतीय क्रिकेट के कुछ उभरते हुए खिलाड़ी शामिल हैं जिनमें वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्य, ऋतुराज गायकवाड़, अनुकूल रॉय, आयुष बदोनी, अरशद खान और अंशुल कंबोज शामिल हैं। खवातीन क्रिकेट में बर्तानिया में कार्डिफ के मकाम पर खवातीन के ICC T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत ने अपने पहले तैयारी मैच में वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। वेस्टइंडीज की टीम ने टॉस जीतकर भारत से बल्लेबाजी करने को कहा और हरमनप्रीत कौर की जेर कमान भारतीय खवातीन टीम ने 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। वेस्टइंडीज की टीम 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। अब भारत अपने अगले तैयारी मैच में कल मेजबान इंग्लैंड का सामना करेगा। T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में भारतीय खवातीन टीम का मुकाबला इतवार को एजबेस्टन में रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। जनूबी फिलीपींस में 7.8 शिद्दत का जलजला आने से कम 35 अफराद की मौत हो गई जबकि 200 से ज्यादा जख्मी हुए। इस जलजले के तनाजुर में शुरू में फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया में सुनामी वार्निंग जारी की गई। अलबत्ता बाद में इसे या तो मनसूख कर दिया गया या इसकी सतह कम कर दी गई। फिलीपींस के हुक्काम के मुताबिक इस कुदरती आफत की वजह से तकरीबन 10,000 कुनबे बेघर हो गए हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं कलीम अहमद।
5: شکریہ شگفتہ. روزنامہ انقلاب نے مغربی ایشیا میں جاری کشیدگی سے متعلق خبر کو نمایاں کیا ہے. اخبار کی سرخی ہے، بھارت نے اپنے شہریوں سے ایران چھوڑنے کے لیے ایڈوائزری جاری کی. روزنامہ پرتاپ نے وزیراعظم نریندر مودی کی جانب سے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیے گئے پیغام کو نمایاں کیا ہے، جس میں وزیراعظم نے لکھا ہے کہ ملک نے گزشتہ 12 برس میں بہت سی مثبت تبدیلیاں دیکھی ہیں جن کی جڑیں غریبوں کے فلاح و بہبود میں پیوست ہیں. وزیراعظم نے ڈی بی ٹی، سوچھ بھارت، پی ایم آواس یوجنا اور آیوشمان بھارت جیسے اقدامات کا خاص طور سے ذکر کیا. اخبار کی ایک اور سرخی ہے، سرکار قبائلی علاقوں کی ترقی پر خاص دھیان دے رہی ہے، مرکزی

0: वजीर किरण रिजिजू का बयान। अखबार की बैन अलाक्वामी सुर्खियां इस तरह हैं, फिलिपाइन में 7.8 शिद्दत का जलजला, 32 अफराद की मौत, एशिया के मुख्तलिफ हिस्सों में सुनामी की वार्निंग।
1: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। मरकजी वजीर दाखिला आज नई दिल्ली में लैंड बोर्ड बंदोबस्त के निजाम का आगाज करेंगे। ब्रिक्स मुल्कों के वज़राए ज़राअत की 5 रोजा मीटिंग आज मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में शुरू हो रही है। मस्कत में भारतीय सिफारतखाने ने आबनाई हुरमुज के जनूब में आग लगने के वाके के बाद बहरी जहाज एमटी मेरीवैक्स में सवार सभी 24 भारतीय मल्लाहों को बचाने की तस्दीक की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने का ऐलान किया है, लेकिन साथ ही जंगबंदी के खिलाफ वर्जी की सूरत में जवाबी कार्रवाई करने की तंबीह भी की है। अमरीका की वफाकी अदालत ने H-1B वीजा के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नाफिज की गई $1,00,000 की फीस को रद्द कर दिया है। और मर्दों के क्रिकेट में आज सुबह दाम्बुला में सह मुल्की सीरीज के पहले मैच में इंडिया ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

जुगनुओं ने फिर अंधेरों से लड़ाई जीत ली। जुगनुओं ने फिर अंधेरों से लड़ाई जीत ली। चांद सूरज घर के रोशन दान में रखे रह गए। जी हाँ, आत्मविश्वास हो और कोशिश अगर दिल से हो तो इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। म्यूजिकल दिल्लगी की ये यात्रा मुक्ता के साथ 8:46 और ठीक 23 सेकंड पर।

0: जी आपका धन्यवाद है जो आप 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ जुड़े हैं। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको हमसे जो उम्मीद है हम उस उम्मीद को पूरा करेंगे। आपको लग रहा होगा ना कि इतनी सकारात्मक बातें मैं क्यों कर रही हूं, इतना पॉजिटिव क्यों बोल रही हूं। अरे ये बहुत काम की बातें हैं जनाब, और इनके फायदे न्यूरो साइंस पे भी हैं। वो क्या फायदे हैं मैं आपको बताऊंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर।
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
1: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
3: Join Indian Navy. The Indian Navy invites online applications from unmarried male candidates for Agniveer Apprentice 01/2027 and 02/2027 batch. Last date for submission is 29th June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready. Cohesive. Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Vikasit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
0: आठ बजकर 53 मिनट और ठीक 34 सेकंड हो चले हैं जनाब। आपको पता है हमारा दिमाग, हमारे

सुने और हमारे कहे शब्दों का गुलाम होता है। सच में ये न्यूरो साइंस का जादू है। आप जानते हैं, जब कुछ पॉजिटिव शब्द बोले जाते हैं अपने लिए या किसी को कहे जाते हैं, तो वो हमारे दिमाग के फ्रंटल लॉब को एक्टिव कर देते हैं और इसके साथ ही हमारी सोचने की ताकत, हमारी मोटिवेशन रॉकेट की तरह बन जाती है। जी हाँ, पॉजिटिव बोलने और सुनने से कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। तभी तो हम कह रहे थे, धन्यवाद करने में कंजूसी मत किया कीजिए। किसी को थैंक यू बोलना है, किसी को वेरी गुड बोलना है या किसी को लव यू बोलना है, कंजूसी मत कीजिए। नहीं सुनने में आपको मिल रहा तो अपने आप से बोल लीजिए, और सामने वाले को बोलना है तो अपने आप को रोकिए मत, क्योंकि ये मोटिवेशन, ये सकारात्मक भाव जो है वो आपके जीवन में बहुत असर करेंगे, आपको सफल करने में, आपको हिम्मत बांधने में, आपका आत्मविश्वास बढ़ाने में। इसीलिए कहिए भी और सुनाइए भी थैंक यू, लव यू। टॉक्सिक लोग अगर आपके आसपास है तो उनको बिल्कुल भी भाव मत दीजिए, उनको अपने जीवन से म्यूट कर दीजिए। और अगर आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव लोग हैं तो उन्हें फुल वॉल्यूम पर चला दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
1: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुरक्षित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरूआत की थी। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का आभार भी जताया। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता ओपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली थी। हादसे की जांच जारी है। अमरीका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए $1,00,000 अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया है। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। अमरीका में भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। H-1B वीजा के जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा की है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित हो सकती है। दुबई में एक सड़क हादसे में कई भारतीय कामगारों की मौत हो गई। दुबई स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने इसकी जानकारी दी है। दूतावास ने बताया कि अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की और स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। वाणिज्य दूतावास ने इस कठिन समय में शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे शुरू होगा। श्रृंखला में अफगानिस्तान ए की टीम भी हिस्सा ले रही है। भारत ए का अगला मैच अफगानिस्तान ए से बृहस्पतिवार को होगा। फाइनल 21 जून को होगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्वकप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। भारत ने पहले

0: दोस्तों, शहर का ट्रैफिक देख के लगता है ना कि सब लेट हो रहे हैं, पर ये सच नहीं है। कोई लेट नहीं है, सब अपनी स्पीड से अपनी मंजिल पर बढ़ते जा रहे हैं। आप ये मंजिल की तरफ बढ़ते चलिए, हॉर्न मत बजाइए, जल्दी मत मचाइए, बस चलते रहिए, एक ना एक समय पहुंच ही जाएंगे आप। ये बात ट्रैफिक के लिए नहीं, आपकी जिंदगी के लिए भी है। किसी हॉर्न या जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, बस हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहो, बढ़ते रहो, मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रेखा, क्रिस्टल वॉइस। म्यूजिकल दिल्ली के सफर की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। 9:12 और 5 सेकंड हो चुके हैं।
1: बाजू

0: डाल दे, जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू

तो भाई अब आपके लिए गुड न्यूज है, खासकर उन लोगों के लिए जो रोज बस में सफर करते हैं। भारत सरकार ने अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना को मंजूरी दी थी और इस योजना के नाम की तरह ही काम भी एकदम शानदार है। दोस्तों अब आपके शहरों की सड़कों पर 10,000 नई एकदम चकाचक एसी इलेक्ट्रिक बसों का सपना पूरा हो रहा है, वो भी पूरे 116 शहरों में। मतलब न धुआं न शोर, बस आराम से ठंडी हवा में सफर। कितना बड़ा काम है ना ये। कुल बजट है 57,000 करोड़ से भी ज्यादा। इसमें से केंद्र सरकार 20,000 करोड़ रुपए अपनी तरफ से इस योजना में लगा रही है। बिल्कुल सिंपल मकसद है इसका, शहर का प्रदूषण कम करना और आपको आपके घर से बस स्टॉप से ऑफिस तक यानी आखिरी छोर तक कनेक्ट करना। इसे कहते हैं लास्ट माइल कनेक्टिविटी। आपके शहर में कब आएगी ये बस? अगर अभी तक नहीं पहुंची है तो बता दूं कि अगर आपके शहर की आबादी 3 लाख से 40 लाख के बीच है तो ये योजना आपके शहर पर भी लागू है। और नॉर्थ ईस्ट या केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी जो 3 लाख से कम आबादी पर भी यहाँ पर है, लोग रहते हैं, तो ये सुविधा यहाँ भी पहुंचेगी। दोस्तों ये बसें सिर्फ इलेक्ट्रिक नहीं है, स्मार्ट भी है। आपको पता चलेगा अगला स्टॉप कौन सा है। यात्री सूचना सिस्टम इसमें लगा है, इमरजेंसी के लिए पैनिक बटन भी है और हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए रैंप और हाइड्रोलिक लिफ्ट भी लगी है। मतलब सबका ख्याल। तो अगली बार जब ये हरी भरी साइलेंट बस आपके सामने से निकले तो घर से देखना, ये वर्तमान और भविष्य है हमारे शहर का, हमारे देश का। और अगर आप ज्यादा इसके बारे में जानना चाहते हैं कि अपने शहर में कब आएगी ये बस, रूट क्या होगा, तो फोन नहीं, सीधे जाइए पीएम ई बस सेवा पोर्टल पर, सारी डिटेल्स आपको वहां मिल जाएंगी। जी हां, पीएम ई बस सेवा पोर्टल, इस पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ये थी काम की बात। तो इलेक्ट्रिक बस में बैठो, प्रदूषण को बाय बाय बोलो और अपने सफर को खूबसूरत और यादगार बनाओ। फिलहाल ये गीत आपके लिए, क्योंकि ये सफर भी तो खूबसूरत होना चाहिए ना, और ये तब होता है जब प्यारे प्यारे गीतों का साथ रहता है। जुड़े हैं आप म्यूजिकल दिल लगी के सफर में 100.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड पर।

0: रहा हूँ।
1: भैया छोड़ो ना।
0: क्यों छोड़ू?
1: प्लीज समझो ना।
0: क्या समझू?
1: वो लोग देख रहे हैं।
2: अरे तो देखने दो और जलेंगे।
1: अच्छा तो ये बात है, तो मैं और पास आऊँ?
0: आओ ना, ना।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
1: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

आप सुन रहे हैं म्यूजिकल दिल्ली 100.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है। ये 9:26 और 31 सेकेंड हो चुके हैं और इस ब्रेक के बाद एक बार फिर से करती हूँ आपका स्वागत, ऐसे ही नहीं इस प्यारे से गीत के साथ लता जी और किशोरदा की आवाज में। ये रहा

मैं तुझे प्यार करूंगा तो तेरी याद आएगी, तेरी याद आएगी तो हम तुम मिलेंगे, हम तुम मिलेंगे तो, हम तुम मिलेंगे तो सब लोग देखेंगे, सब लोग देखेंगे तो, देखेंगे तो, देखेंगे तो।

दोस्तों आज है 9 जून और 9 जून का दिन भी कहीं ना कहीं इतिहास में दर्ज है। क्या है वो वजह है जिनकी वजह से 9 जून का दिन अपने आप में खास है और इसे हर दिन कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो इसके इतिहास में छुपा है। बिरसा मुंडा शहीदी दिवस के तौर पर हर साल 9 जून को मनाया जाता है और ये दिन महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और जननायक धरती आबा बिरसा मुंडा के बलिदान की स्मृति में मनाया जाता है, जिनका 9 जून 1900 को मात्र 25 वर्ष की उम्र में रांची जेल में निधन हो गया था। उन्होंने ब्रिटिश सरकार, स्थानीय जमींदारों और साहूकारों द्वारा आदिवासियों के शोषण के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और अपनी पारंपरिक भूमि अधिकारों की रक्षा की। गिरफ्तारी और शहादत की बात करें तो अंग्रेजों ने 3 फरवरी 1900 को उन्हें चाईबासा के जाम कोपाई जंगल से गिरफ्तार कर लिया था। रांची जेल में अमानवीय यातनाओं और रहस्यमय परिस्थितियों की वजह से 9 जून 1900 को उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने बिरसाइत धर्म की स्थापना की जो प्रकृति की पूजा एकेश्वरवाद पर आधारित था और आदिवासियों को अंधविश्वास से दूर रहने के लिए प्रेरित किया करता था। शहीद दिवस यानी आज 9 जून के अलावा बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को हर साल भारत सरकार द्वारा जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पूरे देश में बहुत सम्मान के साथ मनाई जाती है। तो ये तो हुई बात बिरसा मुंडा की, जिन्हें हम नमन करते हैं, जिनकी शहादत की वजह से भारत में न जाने कितने ही लोगों को आजादी का जो सपना था वो पूरा होते देखने का मौका मिला। फिलहाल इससे पहले कि कुछ और बताऊं, एक गीत आप तक पहुंचाती हूं और इस गीत के बाद फिर से बातें होंगी ढेर सारी।

0: Join Indian Navy. The Indian Navy invites online applications from unmarried male candidates for Agniveer Apprentice 01/2027 and 02/2027 batch. Last date for submission is 29th June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready. Cohesive. Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Vikasit Samrit Bharat. Join Indian Navy.
1: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस। और ऐसे ही नहीं, म्यूजिकल दिल लगी में म्यूजिक का साथ तो हमेशा रहता है, तो चलिए एक गीत सुनाती हूं और उसके बाद आगे कुछ और काम की बातें भी आपको जरूर बताऊंगी।

दोस्तों, अगर आपको हमेशा अपनी जिंदगी में स्वस्थ रहना है तो कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनका ख्याल हमें हमेशा रखना चाहिए। अपनी सेहत से जुड़ी हुई चीजों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, चाहे वो छोटा सा ब्रश करना ही क्यों ना हो। सुबह जब हम सुबह उठकर ब्रश करते हैं तो ये भी हमारे स्वास्थ्य में एक अहम भूमिका निभाता है, ये तुम सब जानते हैं, है ना। सुबह उठकर और रात सोने से पहले

हमें दो बार ब्रश जरूर करना चाहिए और दो मिनट का टाइमर लगाकर आपको अपने ब्रश को दो मिनट का समय जरूर देना चाहिए। दांतों के साथ मसूड़ों और जीभ पर भी ब्रश घुमाकर अच्छे से उसे क्लीन करना चाहिए। सही ब्रश और पेस्ट का इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी है। सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला ब्रश लीजिए और हार्ड ब्रिसल्स वाला एनामल जो है वो खराब करता है, इसलिए इस ब्रश से दूर रहिए। फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कैविटी से बचाता है ये और हर 3 महीने में ब्रश को बदल देना चाहिए। फ्लॉस करना भी बहुत जरूरी है। ब्रश जहां नहीं पहुंचता, फ्लॉस वहां की गंदगी को निकालता है और रात को सोने से पहले 1 मिनट फ्लॉस को जरूर करना चाहिए। मसूड़ों की बीमारी 80% कम हो जाती है। और अगर आप नहीं जानते हैं फ्लॉस करने का सही तरीका, तो फिर आप अपने डॉक्टर से इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। मुंह की बदबू का 90% वजह जो होती है जीभ पर जमी हुई परत, यानी एक लेयर जो आपकी जीभ पर हमेशा जम जाती है और उसी की वजह से हमारे मुंह से जो है वो स्मेल आने लगती है। टंग क्लीनर या ब्रश के पीछे वाले हिस्से से जीभ को हमेशा क्लीन करना चाहिए। कुछ मीठा या चिपचिपा या चाय कॉफी अगर आप पी रहे हैं तो उसके बाद सादे पानी से कुल्ला जरूर करना चाहिए। एसिड दांतों पर नहीं जमेगा और इससे आपके दांत हमेशा खूबसूरत दिखेंगे। दिन भर पानी पीते रहिए, मुंह सूखेगा नहीं और खाने के कण जो आपके दांतों में लग जाते हैं वो धुलते भी रहेंगे। लार ही दांतों का नेचुरल प्रोटेक्शन है और इसे इससे आपको परहेज नहीं करना चाहिए। आपके मुंह में अगर लार बनी हुई है, बनी रहती है, तो फिर ये भी आपके दांतों को एक नेचुरल प्रोटेक्शन देती है। मीठे से थोड़ा दूर रहना चाहिए। टॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स दांतों के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। खाना है तो खाने के साथ खा लें, बार बार थोड़ा थोड़ा मत खाएं। इससे दांतों में चिपकने के बाद ये छूटता नहीं है और अगर चिपक जाए तो फिर थोड़ी देर बाद आप इसे जरूर कुल्ला कर लीजिए ताकि दांतों से ये निकल जाए। और डेंटिस्ट से साल में 2 बार जरूर आपको मिलना चाहिए। दर्द होने का इंतजार मत कीजिए। हर 6 महीने में चेकअप या स्केलिंग करवाना बहुत जरूरी है। 500 रूपये की स्केलिंग से 50,000 रूपये तक का रूट कनाल बचता है और जब इतने पैसे आपकी सिर्फ और सिर्फ दांतों की ख्याल रखने से, केयर करने से बच जाते हैं, तो फिर आपको जरूर इसका ख्याल रखना चाहिए। तुरंत डेंटिस्ट के पास चले जाना चाहिए। अगर आपके मसूड़ों से खून आए, ब्रश करते वक्त खून आए, तो इन्फेक्शन शुरू हो चुका है और इसलिए आपको बहुत जरूरी है ध्यान देना और अपने डॉक्टर को सही समय पर मिलना। ठंडा गरम अगर आपके दांतों में लग रहा है, एनामल जा रहा है या कैविटी आ चुकी है, ये भी एक वजह हो सकती है, तो इसलिए भी आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। लगातार बदबू फ्लॉस ब्रश के बाद भी रहे तो अंदर सड़न है और इसलिए भी आपको अपने डॉक्टर को एक बार जरूर मिलना चाहिए। रात का ब्रश सबसे जरूरी है। दिन भर की गंदगी मुंह से जो लग जाती है उसे हटाने के लिए और रात को अगर आप शांति से सोना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपकी बैक्टीरिया आपके मुंह में पार्टी ना करें, तो फिर जरूरी है कि आप अपने दांतों को क्लीन करके सोएं। और सुबह भले ही आप सिर्फ कुल्ला करके नाश्ता कर सकते हैं और उसके बाद आप ब्रश कर सकते हैं, क्योंकि जब आपने रात को अपने दांतों को क्लीन कर लिया तो सुबह आप एकदम फ्रेश उठते हैं और दांत जो है ना वो बहुत लंबे समय तक हमारा साथ देते हैं। अगर दांत नहीं है तो भाई हम खाएंगे कैसे, और अगर मुंह में इन्फेक्शन है तो यही इन्फेक्शन पेट में जाकर हमें बीमार कर देगा। इसलिए बहुत जरूरी है अपने दांतों का ख्याल रखना। अगर आप अभी तक लापरवाही करते हैं या आपके घर में छोटे बच्चे हैं जो लापरवाही करते हैं, तो उन्हें जरूर सुनाइए ये बात, उन्हें जरूर बताइए ताकि वो अपने दांतों का ख्याल रख सके। और ऐसे ही आप दुरुस्त रहिए, खुश रहिए, हम तो यही चाहते हैं। फिलहाल ये गीत आप तक पहुंचा रही हूँ। 9:48 हो चुके हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर म्यूजिकल दिल लगी सुन रहे हैं आप, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है 9:55 और 42 सेकंड। तो इस समय क्या करना होता है, मुझे लेनी होती है आपसे इजाजत इस सफर से। तो आज के लिए फिलहाल म्यूजिकल दिल लगी में इतना ही। मैं आपकी दोस्त आर्जे रेखा क्रिस्टल वॉइस फिर से मिलूंगी 10:30 बजे लेकर दिल का मेल बॉक्स। तो तब जुड़िएगा मेरे साथ और बताइएगा हमें आपकी पसंद का गीत और हम कोशिश करेंगे उसे आप तक पहुंचाने की। तो मिलेंगे फिर से 10:30 बजे, लेकिन उससे पहले ऐसे ही नहीं एक प्यारे से गीत के साथ आपको छोड़े जा रही हूं। जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, क्योंकि इस गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार, विश्व दर्पण, वर्ल्ड न्यूज, बहुत कुछ है। तो जुड़े रहिएगा, 10:30 बजे मिलते हैं फिर से।

अज समझे।

0: मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। यह पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
1: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरूआत की थी। पुदुचेरी में मंत्रिमंडल विस्तार के तहत राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री की सलाह पर 3 नए मंत्रियों की नियुक्ति की है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के विधायक पी राजवेलु और वीपी शिवा कोलुंधु तथा भाजपा विधायक जीएनएस राजशेखरन को पुदुचेरी सरकार में मंत्री नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति शपथ ग्रहण के बाद प्रभावी होगी। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुई आग की दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मेरीवैक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का भी आभार व्यक्त किया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता ओपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली थी। हादसे की जांच जारी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। यह शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। अमेरिका में भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। H-1B वीजा के जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर में कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित भी हो सकती है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने उलगुलान आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता का स्वर बुलंद किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में लू चलने की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में दिनभर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। और खेलों में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को 26 रन से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मारिवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर फिर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अमरीका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और दांबुला में 3 देशों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में श्रीलंका ए के साथ पहले मैच में भारत ए ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का निर्णय लिया। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
1: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: इंदौर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और खाद्य सुरक्षा मजबूत करना है।
2: भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग लेंगे। 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत कृषि कार्य समूह की बैठकों से हो रही है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। 12 जून को कृषि मंत्रियों का विशेष संवाद आयोजित होगा, जिसका फोकस लघु किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर रहेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाती है। अधिक ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता।
3: गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये प्लेटफॉर्म व्यापार सुगमता, संपर्क, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप है। LPMS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भूमि बंदरगाहों के संचालन को एकीकृत प्रणाली में समाकलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रणाली कार्गो और यात्री प्रसंस्करण के लिए स्लॉट बुकिंग, भुगतान, ट्रैकिंग और सिंगल विंडो क्लीयरेंस सहित संपूर्ण डिजिटल कार्य प्रभावी प्रदान करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के दावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंडपोर्ट में नव विकसित हितधारक आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे सीमा प्रबंधन और कर्मियों के लिए बुनियादी ढांचागत सहायता मजबूत होगी। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मैरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का आभार जताया। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली थी और हादसे की जांच जारी है। अमरीका की संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए $1,00,000 के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। H-1B वीजा के जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान और इसराइल ने एक

0: दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा की है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित हो सकती है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि इसराइली सेना ने ईरान पर हमले रोक दिए हैं, लेकिन अगर ईरान दोबारा हमला करता है तो इसराइल कड़ी कार्रवाई करेगा। ईरान के सशस्त्र बलों ने कहा कि उन्होंने इसराइल पर जवाबी कार्रवाई के बाद अपने हमले रोक दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेसस युगांडा के दौरे पर हैं। वे कांगो में जारी इबोला प्रकोप से निपटने की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने युगांडा में संयुक्त राष्ट्र टीम के साथ बैठक कर समन्वय और आपातकालीन तैयारियों को मजबूत करने पर चर्चा की। साथ ही युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी से भी मुलाकात की। दुबई में एक सड़क हादसे में कई भारतीय कामगारों की मौत हो गई है। दुबई में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने बताया कि स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। वाणिज्य दूतावास ने इस कठिन समय में शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मैक्सिको की खाड़ी में सोमवार देर रात 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। इसका केंद्र क्यूबा के पश्चिमी तट के पास था। भूकंप के झटके क्यूबा, मैक्सिको और अमरीका में फ्लोरिडा के कई इलाकों में महसूस किए गए। फिलीपींस के दक्षिण मिंडानाओ द्वीप के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में करीब 35 लोगों की मौत हो गई और 200 से अधिक लोग घायल हुए हैं। राहत और बचाव अभियान जारी है। अधिकारियों ने बताया कि इस आपदा से लगभग 10,000 परिवार विस्थापित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलीपींस के मिंडानाओ में आए भूकंप से हुए जानमाल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि उनकी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने कहा कि भारत का फिलीपींस के लोगों और सरकार के साथ पूरा समर्थन है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं जया भारती।
1: डांबोला में तीन देशों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में श्रीलंका ए के साथ पहले मैच में भारत ए टॉस जीतकर बल्लेबाजी कर रहा है। श्रृंखला में अफगानिस्तान ए की टीम भी हिस्सा ले रही है। भारत ए का अगला मैच अफगानिस्तान ए से बृहस्पतिवार को होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। इस बीच आईसीसी महिला क्रिकेट टी20 विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को 26 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ करेगी। उधर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने इंग्लैंड और वेल्स में होने वाले आगामी महिला टी20 विश्व कप के लिए कमेंटेटर्स की सूची जारी कर दी है। इस बार कमेंट्री टीम में कई दिग्गज महिला खिलाड़ियों के नाम भी शामिल हैं, जिनमें भारत की पूर्व कप्तान मिताली राज, अंजुम चोपड़ा और वेदा कृष्णमूर्ति के नाम प्रमुख हैं। इनके साथ दिनेश कार्तिक और जतिन सप्रू भी कमेंट्री पैनल का हिस्सा होंगे। उधर ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन आज से सिडनी में खेला जा रहा है। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु 24 सदस्य भारतीय दल की अगुवाई कर रही हैं। महिला सिंगल्स में युवा मालविका बंसोड़, अनमोल खरब, तन्वी शर्मा, ईशा रानी बरुआ, आकर्षी कश्यप और तान्या हेमनाथ भारत की चुनौती पेश करेंगी। वहीं पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी, एचएस प्रणॉय और किरण जॉर्ज से भारत को उम्मीदें होंगी। तीरंदाजी विश्व कप का तीसरा चरण भी आज से तुर्की के आंताल्या में शुरू होने जा रहा है। इस चरण में भारत के उन सभी 12 तीरंदाजों पर नजर रहेंगी जो 2026 एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और खेल जगत से एक और खबर कि भारत ने उलान बटोर ओपन सीनियर रैंकिंग सीरीज कुश्ती प्रतियोगिता में अपने अभियान का शानदार अंत किया। भारत ने फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन और महिला कुश्ती में कुल मिलाकर 17 पदक जीते और टीम तालिका में शीर्ष 3 में शामिल रहा।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एमटी मारीवैक्स जहाज में लगी आग के बाद सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर फिर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अमरीका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और डांबोला में तीन देशों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में श्रीलंका ए के साथ पहले मैच में भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी।

जी हाँ, ये है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर 10:31 और 13 सेकंड हो चुके हैं और ये वही सफर है जिसमें आप हमें अपने पसंद के गीत भेजते हैं और हमें कोशिश रहती है कि हम उन्हें आप तक पहुंचाएं। तो कहां पर भेजनी है अपनी फरमाइश हमें पहले ये बता दूं, 9868687533 ये वो जादुई व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप हमें लिख सकते हैं कि कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं अपने नाम और शहर के नाम के साथ। नंबर फिर से बता दूं, 9868686853। और अगर आप ईमेल करना चाहें तो ईमेल कर सकते हैं fmgoldair@gmail.com पर। जी हाँ, fmgoldair@gmail.com। सिर्फ एक ही काम कीजिए, वही काफी है, बार बार मैं आपसे कहती हूँ, या तो व्हाट्सएप कीजिए या ईमेल करिए, काफी है, क्योंकि दोनों जगह पर अगर सेम नाम सेम मैसेजेस दिखाई देंगे तो फिर मैं बार बार एक ही नाम में घूम कर रह जाऊंगी, खोकर रह जाऊंगी और बाकी सबके नामों को शामिल नहीं कर पाऊंगी। और आपका नाम ज्यादा स्मार्ट मत बनिए, मैं दोबारा नहीं लूंगी, चाहे आप 10 मैसेजेस भी कर दें, तो इसलिए बेटर है कि आप सिर्फ एक ही मैसेज करें, काफी है। और फिलहाल कुछ मैसेजेस हम तक पहुंच गए हैं तो इन्हें शामिल कर लेते हैं। हमें किस किस ने लिखा है चलिए देखते हैं। बिहार स्टेट बक्सर से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा नाज अंसारी ने हमें मैसेज भेजा है। इंदिरा विहार दिल्ली से डॉक्टर बीबी अंसारी और डब्ल्यू अंसारी ने हमें मैसेज किया। और हमारे पास विजय नारंग नन्हे पहलवान का बाजार सीताराम दिल्ली से, उग्रसेन यादव शकुंतला यादव गरिमा का नई दिल्ली से मैसेज, ये मैसेज हमें भेजा है। भट्टीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता ने, और सतवीर सिंह बिजानिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक योगेश, पूजा आरजू और नव्या बिजानिया ने, सिरसा हरियाणा से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे ने महाराष्ट्र नांदेड़ से हमें लिखा है। कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और ये लिखते हैं हमें मजनू का टीला से, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक का मैसेज, सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन, राजेंद्र जी ने नेपानगर मध्य प्रदेश से, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा सिटी दीवाना का मैसेज, और नबी हसन, अब्बासी, शाहनवाज, नवीद हसन, रसीद वारसी, सुहेल हसन, अनब और यशव का मैसेज हमें मारहरा दरवाजा एटा से, सिकंदरा राव से मुनीम मुबीन अब्बासी और इशरत परवीन का मैसेज, बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत और मयंक का झज्जर हरियाणा से, सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया आफिया, इब्राहिम, सद्दाम अदीब का हमें सहारनपुर से, गांव कुमार हेड़ा से मैसेज पहुंचा, मल्ली मारान से नवाब अहमद भारती, शबाना भारती, अरहान भारती का हमें मैसेज मिला सुफियान के साथ, और संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवियम जैन सरतना मेरठ से लिखते हैं, आदि जैन, अंश और भव्य के साथ, और उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल का मैसेज, बिहार दोबारा से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान, अरजान अबान और पूरे अब्बासी परिवार का मैसेज, अपर कोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से, अरविंद कुमार, गुड़िया, भाव्या, निवेश और नियति का मैसेज हमें मिला है, कहां से ये तो नहीं लिखा, चलिए कोई बात नहीं, पल्लीला अंसारी, अस्मनाज अंसारी और मोहम्मद सुल्तान का पुराना तालाब डुमराव से मैसेज हमें पहुंचा, और ये मैसेज हमें लिखा है लाल बाबू दीवाना, दिव्या भारती और उमा राज ने जेल रोड दिल्ली से, और अहम

बाद से हमें परवीन अंसारी, हेमा जाटव, प्रमिला और प्रवीण कुमार वर्मा का मैसेज मिला। और ये है मोहम्मद शफी अंसारी, सोनम अस्मा का मैसेज बिहार स्टेट डुमराव से, राजकोट से अजिता पॉल और प्रमिला पॉल का मैसेज। श्रोता रघुवीर नगर से लिख रहे हैं हमें दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू। ये मैसेज हमारे पास पहुंचा है धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, ईशान, पूजा का भोपालगढ़ राजस्थान से मैसेज, और डॉक्टर सोनम, सना और डॉक्टर अदीबा का चमन पार्क दिल्ली से मैसेज। रोशन जहां, मन्नत जहां, इशरत खंडवा से निशा और दुर्गा कुमारी, झांसी से शंकर देव शमोरिया का मैसेज हमें मिला है, और जेल रोड जालंधर से भी इनमें से कुछ लोग लिख रहे हैं। इसके अलावा हमें बेबी अंसारी, निशा परवीन, डब्लू और चंद्र इंदिरा विहार दिल्ली से लिख रहे हैं। चंद्रनगर से आशु खान और निशु आयशा खान का मैसेज। इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और निशा अजीम का मैसेज। फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीसा प्रवीण का मैसेज भी हमें पहुंचा, और हमें लिखा है राजेंद्र सिंह ओबराय पिंटू दीवाना ने पंखा रोड जनकपुरी से, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा लोखंडे, स्वप्निल लोखंडे और रक्षिता कल्पना ताई लोखंडे का हमें मैसेज पहुंचा महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे के साथ। और ये मैसेज दिग्दर्शन और कविता गौड़ का मेरठ से शोभापुर गांव से हमें लिखा। महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश, प्रगेश और प्रीतेश पूरे संघई परिवार का मैसेज। बिट्टू भाटिया, रीटा और रजत भाटिया मयंक के साथ हमें झज्जर हरियाणा से लिख रहे हैं। सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद मंदुरकर, कुमार गौरव मंदुरकर का डाबकी रोड अकोला से, और हमें मिला है ये मैसेज कस्बा गन्नौर यूपी से फारूख अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान और फारिया ताहिरा का मैसेज। साथ ही मुकेश बंसल, अंकित, भावना, अवनी मित्तल, सौरभ, वंदना, वंश और विहान गुप्ता का साहिबाबाद से, और सुरेश, सोनू, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, राजपाल, पंकज काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, बलवीर सिंह और मोहिनी ऋतिक का मैसेज हमें दुलापुर उत्तर प्रदेश से मिला है। अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल और जयराम खोरवाल का उत्तम नगर से मैसेज दीपांशु खोरवाल के साथ, और प्रवीण माली, मीना माली का बड़वाह कंवर कॉलोनी खरगोन एमपी से, और सचिन, सतीश, योगेश, युधव कनवासरा, विक्रम कनवासरा, गांव कलाना, तहसील भादरा, हनुमानगढ़ राजस्थान से लिख रहे हैं। सिद्धार्थ गुंडा ने, अर्चना गुंडा ने, प्रणय प्रसिद्धि, हिरमन, राहुल नगर अमरावती से लिख रहे हैं, और ओम प्रकाश दिगचंदानी ने ग्रेटर कैलाश दिल्ली से लिखा है। चिन्मय महतो, रेखा महतो, शिवांश मंडल का जमशेदपुर से मैसेज। गुरमीत सिंह मीता ने साउथ एक्सटेंशन से, दीपक ज्योति और सक्षम शाखे का जिला एटा उत्तर प्रदेश से, विकासपुरी से एसके खन्ना ने हमें लिखा, सलीम अख्तर, रेशमा बेगम ने अलीगढ़ से और प्रकाश गोगिया ने भी दिल्ली से। बाकी बहुत सारे मैसेजेस हमें पहुंच रहे हैं जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से, मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा, भाईजान, भाई राजकुमार बुड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित ऋतु, मुकेश अख्ताब का मैसेज। साथ ही मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति और भूमिका का मैसेज राजस्थान से श्रीगंगानगर से, और सपना बोकोलिया, रुद्राक्ष बोकोलिया और ज्वालापुरी नांगलोई से हमें लिख रहे हैं। पंकज मोहड़, अमरावती महाराष्ट्र से लिख रहे हैं, और साथ ही बहुत सारे मैसेजेस हमें पहुंचे हैं उग्रसेन यादव, शकुंतला यादव, गरिमा का दिल्ली से। क्या करें, बहुत सारे मैसेजेस हैं और मुझे समझ नहीं आता है कि मैं किसके मैसेज शामिल करूं और किसके नहीं करूं। वेल, अभी जो मैं गीत शामिल करने जा रही हूं उसकी फरमाइश हमें भेजी है बिहार स्टेट डुमराव से मोहम्मद शफी अंसारी, सोनम वली, अस्मा वली और राजकोट से अजिता पॉल और प्रमिला पॉल ने। और इसके अलावा हमारे पास इसी गीत के लिए फरमाइश भेजी है जेल रोड जालंधर से रोशन जहां, मन्नत जहां, इशरत जहां, खंडवा से निशा और दुर्गा कुमारी, झांसी से शंकर देव चमुरिया ने। तो ये रहा आपकी पसंद का गीत फकीरा फिल्म से, आवाज लता जी की।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में 2-2 फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: टैलेंट तो है, पर स्टेज कहाँ है?
7: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
6: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
7: बिल्कुल। डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
6: और विनर्स को क्या मिलेगा?
7: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
8: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
9: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी, पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
9: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप और ये सफर है दिल का मेल बॉक्स का, जिसमें आप हमें भेज रहे हैं अपनी फरमाइशें। 10:48:25 हो चुके हैं, जल्दी से नाम शामिल कर लूं किस किसने हमें लिखे हैं मैसेजेस। हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि और नोखेलाल वर्मा ने भाटापारा छत्तीसगढ़ से, और भिलाईगढ़ से हमें लिखा है रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिम्पल देवांगन ने, और इसके साथ साथ अनीता मुखी, सुदर्शन मुखी, सिमरन मुखी का शांतिनगर सोनीपत से मैसेज, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बबू डब्बू का मैसेज, और ये हमें लिखा है मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप का मैसेज, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बेटा बजाज का मैसेज, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत, संगीता कंवर, दातार सिंह शेखावत राजस्थान सीकर से हमें लिख रहे हैं, और भवानीगढ़ से हमें राजेंद्र कुमार सचदेवा ने मैसेज भेजा, तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष, चैतन्य मस्कीन, मेघा का मैसेज, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी से, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता और केशव रिधान का मैसेज, और इसके साथ साथ अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक का पहाड़गंज मुल्तानी ढाडा से, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताइडे और आशीष मोहिरकर, पीएस नाहवकर, निर्मला नाहवकर, वीएस नाहवकर ने हमें नलेश्वर नगर नरवील महाराष्ट्र से लिखा है, इंदिरा नगर भवपुर से राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, राजू नेहा, जगदीश देवांगन का मैसेज, और राजकुमार दूदी, प्रमोद कुमार दूदी और पुष्पेंद्र कुमार दूदी का गांव फ्रांसी हिसार से, और इसके साथ साथ हमें गांधी चौक बाड़मेर राज से लिखा है पपलेश पवार,

बेनी पवार, मनीष पवार ने, रामदेवरा से दिनेश चौहान ने, डागरी से बाबूराम जयपाल, खलीफो की बावड़ी से खुदाबख्श खलीफा, और साथ ही ये मैसेज हमें लिखा है विपिन नेहरा ने, कहां से नहीं पता। और ये साथ में हमारे पास प्रकाशचंद शर्मा बाजार सीताराम दिल्ली से हमें मैसेज भेज रहे हैं, रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान का मैसेज राजस्थान हनुमानगढ़ टाउन से, और ये है मैसेज किसका, मोहम्मद कैफ बाल और बांगड़ा सिवान बिहार से हमें लिख रहे हैं अकबर हुसैन के साथ, और ये मैसेज आसिफ सैफी का मेरठ से हमें लिखा है, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, सुधाकर राजे, कुमार संचित, प्रथमेश, सर्वत प्रणाली, सानवी और कल्पना ने जाफराबाद से, और साथ में भारत भूषण, अंजु श्रीवास्तव, देवेंदु भूषण, संस्कृति पुरुष का मैसेज वाइट फील्ड बेंगलुरु से, सतप्रकाश गोयल का गोयल के साथ रोहिणी दिल्ली से, रवि लता प्रिया वीनू का भिलाई छत्तीसगढ़ से, विवेक वर्धन ने डॉक्टर पारुल सिंह के साथ मेरठ से लिखा है, देहरादून से आलोक पवार और मिनी का मैसेज हमें मिला है, और श्रीपाल गोयल ने बहादुरगढ़ हरियाणा से लिखा है, अशोक कुमार विद्यार्थी ने मयूर विहार दिल्ली से लिखा है, और संदीप मक्कर, ज्योति मन्नत भारत का मैसेज हमें मिला है, कमल साहनी पिंगावाला चौक गोराया जालंधर से लिख रहे हैं ये, और साथ साथ हमारे पास और भी ढेर सारे मैसेजेस हैं, शमसुल कमर राही, शाहिन फातिमा नुखान, अदनान और फैजान खान का मैसेज गंज डुंडवाड़ा से हमारे पास पहुंचा है, और इसके साथ बहुत सारे रिपीट मैसेजेस तो हमें लगातार मिल ही रहे हैं, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज, शुभदीप का मैसेज जिला फिरोजपुर से हमें मिला, और हमें लिखा है उमेश कुमार, दिनेश कुमार, अनुज कुमार और सुनीत कुमार ने खयाला से, और साथ ही ये मैसेज फिर से रिपीट। तो चलिए कोई बात नहीं, अब हम उस गीत को शामिल करते हैं जिसकी फरमाइश हमें भेजी है किसने, देखें जरा, हाथ की सफाई फिल्म से ये गीत सुनना चाहा है फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीसा प्रवीण ने, ये रहा आपकी पसंद का गीत।

और अब वक्त बहुत कम बचा है दोस्तों, तो मैं चाहूंगी कि चलते चलते आपको एक और गीत सुना दूं। और इसकी पसंद हमें किसने भेजी है फरमाइश? जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो और विलिस डिकैस्ट्रो ने। ये रहा आपकी पसंद का गीत, और इस गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार। समाचारों के ठीक उस पार मैं फिर से मिलूंगी लेकर तस्वीर 11:10 पर।

0: इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
1: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरूआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जनकल्याण के लिए समर्पित है। प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े धनशोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना, जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि तलाशी अभियान में शामिल परिसरों में हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय और व्यावसायिक कार्यालय शामिल हैं। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र आग दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हुए हैं। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर गहरा शोक जताया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रूपये और घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। अमरीका में भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। H-1B वीजा के जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा की है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित भी हो सकती है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि धरती आबा का जीवन साहस, आत्मसम्मान और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक था। श्री शाह ने कहा कि आज भी बिरसा मुंडा का धर्मांतरण के विरुद्ध संघर्ष और आदिवासी गौरव के प्रति उनका समर्पण लाखों देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच वनडे त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मुकाबला श्रीलंका में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान तिलक वर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12वें ओवर में 2 विकेट पर 55 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Sarabjit Kaur. Prime Minister Narendra Modi today said that the government has spared no effort in empowering the country's youth, women and farmers over the past 12 years. In a social media post, Mr. Modi said, with the blessings of 1.4 billion citizens and the spirit of nation first, the government is dedicated to trust, development and public welfare. The Prime Minister noted that as a result of these tireless efforts, today the country

तो कहिए हमारे घुमक्कड़ दोस्त तैयार हैं आज के सफर पे हमारे साथ चलने को? मुझे पता है कि बिल्कुल तैयार हैं। और जैसे ही तस्वीर का वक्त होता है, जैसे ही ये सफर का वक्त होता है, आप सब अपने अपने कानों को करीब ले आते हैं एफएम गोल्ड के, क्योंकि घर बैठे आपको खूबसूरत जगहों की सैर करने का मौका मिलता है तो सिर्फ एफएम गोल्ड के जरिए। तो चलिए आज आपको इससे पहले कि ये बताऊं कि हम कहाँ चल रहे हैं, क्या कुछ देखने वाले हैं, बता दूं कि 11:38 हो चुके हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस। फिलहाल तस्वीर के सफर में आज हम आपको कहां ले चल रहे हैं जल्दी से बता दूं, हिमालय में कुछ ऐसी जगह हैं जो आपकी आत्मा पर अमिट छाप छोड़ देती हैं, और हिमाचल प्रदेश में शिमला के ठीक ऊपर स्थित कुफरी उन्हीं में से एक है। शिमला कभी कभी थोड़ा ज्यादा भीड़ भाड़ वाला हो जाता है जब सीजन होता है या ऐसे गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, स्वाभाविक रूप से काफी भरा हुआ लगता है। वहीं कुफरी की बात करें तो ये बिल्कुल अलग महसूस होता है। शिमला का अपना अलग आकर्षण है, लेकिन कुफरी जो शिमला से लगभग आधे घंटे की दूरी पर है, ताजगी और सुकून का एहसास कराता है। खुले नजारे, शांति और प्रकृति के करीब होने का एहसास कुफरी की यही खासियत है। यहाँ अक्सर होटल से ही, यानी जहाँ आप रुकते हैं उसकी खिड़कियों से ही आपको मनमोहक नजारे देखने का आसान मौका मिल सकता है। शिमला में घनी आबादी वाले निर्माण की वजह से ये नजारे अब थोड़े से दुर्लभ हो गए हैं, लेकिन अगर कुफरी की बात करें तो कुफरी में काफी खूबसूरत नजारे आपको आसानी से मिल जाते हैं। कुफरी शांत, खुला और हिमालय के उस स्पर्श के करीब लगता है जिसे शहरों की भीड़भाड़ से परेशान लोग असल में अनुभव करना चाहते हैं या शहरों में अनुभव नहीं कर पाते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के पास स्थित एक बेहद खूबसूरत और प्रसिद्ध हिल स्टेशन है जो अपनी बर्फबारी और एडवेंचर के लिए जाना जाता है। स्थानीय भाषा पहाड़ी में कुफरी शब्द कुफर से बना है जिसका अर्थ है झील। जी हाँ, तो चलिए आज कुफरी की सैर पर आपको ले चलेंगे। जुड़े रहिएगा मेरे साथ इस सफर में क्योंकि आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस तस्वीर उकेरेगी आज आपकी आंखों में घर बैठे कुफरी की। तो इससे पहले कि इस सफर में आगे बढ़े एक गीत सुनते हैं, इंजॉय करते हैं इस खूबसूरत गीत को और फिर सफर में आगे बढ़ेंगे झूमते गाते।

तो भाई कुफरी की सैर पर निकले हैं आज आप और हम। कुफरी जो है वो शिमला के बहुत करीब है, मतलब शिमला तो हर कोई घूमने जाता है, लेकिन वहां क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि भीड़ भाड़ ज्यादा है, बहुत ज्यादा फेमस हिल स्टेशन है वो, और ज्यादातर हर वक्त वहां पर लोगों का आना जाना तांता लगा रहता है। कुफरी शिमला से 15-20 किलोमीटर की दूरी पर है, फिर भी वहां का माहौल बिल्कुल अलग है। कुफरी शिमला और चैल के बीच एक बहुत ही संतुलित जगह है, एक आदर्श संतुलन है यहाँ का। ना तो बहुत भीड़ भाड़ है और ना ही ये जगह बहुत शांत है। घुमावदार पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी चलाना, हवा में चीड़ की ताजी खुशबू और दूर बर्फ से ढकी चोटियों की वो पहली झलक जो बहुत ही रोमांचक लगती है। चाहे आप अनुभवी यात्री हो या पहली बार पहाड़ों की सैर कर रहे हो, कुफरी आपको लुभावने नजारे, रोमांच और हिमालय के अद्भुत जादू से भर देगा। और समुद्र तल से लगभग 2322 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने की वजह से यहाँ साल भर मौसम सुहाना रहता है। कुफरी में हिमालयी दृश्य, नजारे, बर्फ से जुड़ी गतिविधियां और परिवार के साथ मौज मस्ती करना, सचमुच ही सभी कुछ बहुत ही खास है। और अगर मैं बात करूं तो सर्दियों में बर्फ के खेल और स्कीइंग, गर्मी के मौसम में शांत हरी भरी घाटियां, कुफरी फन वर्ल्ड जैसे पारिवारिक मनोरंजन क्षेत्र, कुफरी चिड़ियाघर में तेंदुआ और भालू सहित कई वन्य जीवों को देखने का मौका, और नेचर पार्क में पाए जाने वाले जंगली हिमालयी वनस्पति और जीव जंतु, केदारनाथ और बद्रीनाथ सहित हिमालय पर्वतमाला के मनोरम नजारे, बहुत कुछ है जो कुफरी में आपको देखने को मिल सकता है। कई यात्रियों के लिए कुफरी शिमला के पास बर्फ की राजधानी है, जो सर्दियों में हल्के फुल्के मनोरंजन से लेकर रोमांचक पहाड़ी ट्रैकिंग तक सब कुछ देती है। तो अगर आप यहाँ जाने का अब तक प्लान नहीं बना पाए हैं तो जरूर एक बार यहाँ जाकर देखिए, कुफरी आपको किसी भी तरह से निराश नहीं करेगा। कुफरी घूमने का सबसे अच्छा समय कौन सा है ये भी बता दूं, अगर आप गर्मियों में जाते हैं जो कि अप्रैल से जून का महीना है, तो मैदानी इलाकों की भीषण गर्मी से बचने के लिए ग्रीष्म ऋतु सबसे बेस्ट है। यहाँ पर आप इस मौसम में भी जा सकते हैं। कुफरी में इन महीनों के दौरान मौसम सुहाना आरामदायक रहता है, जो इसे देखने लायक स्थलों की सैर, प्रकृति की सैर और बाहरी गतिविधियों के लिए एकदम बेस्ट बनाता है। यहाँ के नजारे बर्फ से फ्री रहते हैं इस दौर में, इस टाइम पर, और आसमान आमतौर पर साफ रहता है। फोटोग्राफी के अगर आप शौकीन हैं, परिवार के साथ जा रहे हैं, तो फिर आपके लिए ये वक्त सबसे बेस्ट है। और अगर मैं कहूं कि यहां पर आपको क्योंकि ये वसंत ऋतु है और सेब के बागों सहित सभी बागानों में फूल खिलने लगते हैं जो काफी दिलचस्प और रंगीन होता है, तो आपको ये जो मौसम है इसमें जरूर यहां पर घूमना चाहिए। घूमने का सबसे अच्छा मौसम अगर मैं कहूं तो फोटोग्राफर्स के लिए अप्रैल है। और अगर मैं बात करूं जुलाई से सितंबर जो कि मानसून का वक्त रहता है, तो कुफरी में एक अलग ही रूप सामने आता है। पहाड़ हरे भरे हो जाते हैं, घाटियां ताजगी से भरी नजर आती हैं और हवा बहुत ही साफ और स्वच्छ महसूस होती है। हालांकि लगातार बारिश, कोहरे और फिसलन भरी सड़कें यात्रा और योजनाओं को थोड़ा सा प्रभावित कर देती हैं। कभी कभी लैंडस्लाइड्स और पहाड़ों में रास्ते बंद होने की समस्या जरूर आ सकती है, तो आप अगर इन चीजों से परहेज करना चाहते हैं तो ये मौसम आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं और ऐसी चीजों से आपको डर नहीं लगता, तो फिर आप ऐसे मौसम में यहां जा सकते हैं, क्योंकि इस मौसम में शांति और भीड़भाड़ कम आपको नजर आएगी और नजारे

खूबसूरत आपको मिलेंगे, खास तौर से बर्फ या फिर पहाड़ों के खूबसूरत नजारे अगर आप देखना चाहते हैं। सर्दियों की बात करूं शरद ऋतु की, तो अक्टूबर और नवंबर ये जो समय है, इस वक्त आप जा सकते हैं मानसून की तरह। कुफरी के लिए अक्टूबर और नवंबर के महीनों को भी अक्सर लोग नजरअंदाज करते हैं, लेकिन खास तौर से अगर मैं कहूं तो यहां पर इस टाइम पर एक अलग ही आकर्षण होता है। कुफरी में शरद ऋतु बदलते रंगों की वजह से देखने लायक है। कुफरी के आसपास के जंगल शरद ऋतु की प्राकृतिक रंगों से सराबोर हो जाते हैं, हवा बहुत ही ताजी महसूस होती है। और सर्दियों की बात करें जो दिसंबर से फरवरी में होती है, तो फिर सर्दियों के मौसम में कुफरी सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। ये बर्फबारी का मौसम है और यहाँ स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, स्लीजिंग और ताजी बर्फ में खेलने जैसे पारंपरिक बर्फीले अनुभव आप ले सकते हैं। पूरा शहर एक सफेद जादुई दुनिया में बदल जाता है, जिससे ये पहली बार बर्फ का आनंद लेने वाले पर्यटकों के लिए खास तौर से एक आकर्षण बन जाता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे सचमुच ऐसी जगहों पर जाना बहुत ही ज्यादा मजेदार लगता है, खास लगता है, क्योंकि सर्दियों में कुफरी जो है वो बहुत जादुई सा हो जाता है। कुरकुरी बर्फ पर चलना, आरामदायक कैफे में गर्माहट का आनंद लेना और बर्फ से ढके पहाड़ों के नजारों में खो जाना, जिसे आप कभी भी मिस नहीं करना चाहेंगे और इन्हें देखते हुए आप कभी थकेंगे भी नहीं। तो कोशिश करिए कि जो आपका बेस्ट मौसम हो, जिसमें आपको अच्छा लगता हो, उस मौसम में यहाँ पर जाएं। सुहाने मौसम और नजारों के लिए गर्मियों में कुफरी की यात्रा अगर आप कर रहे हैं तो ये तो आपके लिए बेस्ट है ही, क्योंकि अगर आप दिल्ली की गर्मी से थोड़ा सा अपने आप को निजात पाना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो पहुंच जाइए कुफरी, क्योंकि ये आपको सचमुच एक बहुत ही खूबसूरत और ठंडा ठंडा यादगार अनुभव देगा। वेल, अभी तो गीत सुनाती हूँ और उसके बाद आपको और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगी कुफरी के बारे में। जुड़े रहिएगा इस सफर में मेरे साथ।

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: Join Indian Navy. The Indian Navy invites online applications from unmarried male candidates for Agniveer Apprentice 01/2027 and 02/2027 batch. Last date for submission is 29th June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready. Cohesive. Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Vikasit Samrit Bharat. Join Indian Navy.
3: कुफरी के सैर पर निकले हैं आज आप और हम। 11:29 और 49 सेकेंड हो चुके हैं और इससे पहले कि सफर का वक्त खत्म हो कुफरी की सैर पूरी तरह से आपको कराना जरूर चाहती हूं मैं। तो भाई पहुंचना कैसे है, सबसे पहले आप ये जान लें कुफरी शिमला शहर के केंद्र से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी लगभग आधे घंटे की ड्राइव पर। यहां बस और टैक्सी उपलब्ध है। शिमला सड़क मार्ग से दिल्ली, चंडीगढ़ और बाकी शहरों से, भारतीय शहरों से अच्छी तरह से कनेक्टेड है। बस सेवा की बात करें तो दिल्ली या चंडीगढ़ से कुफरी के लिए कोई सीधी बस नहीं है, हालांकि आप रामपुर या रिकोंगपेओ के लिए जो कि किन्नौर में है, इसके लिए आप बस ढूंढ सकते हैं और रास्ते में कुफरी में उतर सकते हैं। ऑप्शन के तौर पर कहूं तो शिमला के लिए बस ले लीजिए और फिर वहां से स्थानीय परिवहन का इंतजाम करके आप कुफरी जा सकते हैं। ट्रेन से अगर आप जाना चाहें तो सबसे करीबी रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ है और जहां से आप पहुंचने के बाद टैक्सी ले सकते हैं या बस ले सकते हैं। इसके अलावा कालका शिमला टॉय ट्रेन का भी आनंद आप ले सकते हैं, जो कालका से शुरू होने वाला एक दर्शनीय यूनेस्को

सूचीबद्ध मार्ग है और आप इसके जरिए भी आनंद लेते हुए यहां पहुंच सकते हैं। बाय एयर अगर आप जाना चाहें तो सबसे नजदीकी हवाई अड्डा चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर वहां से शिमला जाने के लिए टैक्सी या बस ले सकते हैं और वहां से कुफरी के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। तो भाई ये तो हुआ यहां पहुंचने का तरीका। अब आपको और भी बहुत सारी चीजें बता दूं कि शिमला के पास स्थित कुफरी सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है, जो परिवारों, जोड़ों, एकल यात्रियों के लिए रोमांच और शौकीनों के लिए कई तरह की गतिविधियां प्रदान करता है। सर्दियों में बर्फ के रोमांच से लेकर गर्मियों में शांत वन घूमने तक कुफरी पर्यटन में साल भर सभी के लिए कुछ ना कुछ जरूर है। अगर आप बात करें सर्दियों के मौसम में कुफरी की, सबसे बड़ी खासियत बर्फ से जुड़ी गतिविधियां हैं। दिसंबर से फरवरी के बीच कुफरी बर्फ का स्वर्ग बन जाता है, जो पहली बार बर्फ का अनुभव करने वाले पर्यटक हैं उनके लिए आकर्षण है। स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, स्लेजिंग और बर्फ में खेलना, बहुत सारी चीजें हैं जो आप यहां जाकर कर सकते हैं ऐसे मौसम में। अगर मैं बात करूं कुफरी में घुड़सवारी और याक की सवारी सबसे पारंपरिक और लोकप्रिय अनुभवों में से एक है और ये सवारी आमतौर पर आपको सुरम्य वन मार्गों और महासू शिखर की ओर ले जाने वाले पहाड़ी रास्तों से होकर ले जाती है। हालांकि ये पर्यटक जो यहां पर पहुंचते हैं उनके बीच एक लोकप्रिय गतिविधि है, लेकिन ज्यादा शुल्क से बचने के लिए आप लाइसेंस प्राप्त यहां जो संचालक हैं उनसे आप बात कर सकते हैं, यहां उनका चुनाव कर सकते हैं और कीमतों की पहले से आप जानकारी लेकर यहां जा सकते हैं। इसके बावजूद चीड़ के जंगलों में घोड़े पर सवार होकर कुफरी की सैर का अनुभव हिमालय की एक अनूठी झलक पेश करता है, तो आपको जरूर इसका अनुभव करना ही चाहिए। अगर मैं बात करूं कुफरी में ट्रैकिंग की, तो भाई ट्रैकिंग और प्रकृति की सैर के लिए बेहतरीन जगह है ये, जो धीमी गति से यात्रा और प्रकृति की खोज का आनंद लेना चाहते हैं उन यात्रियों के लिए जो धीरे धीरे देवदार के जंगलों से घिरा हुआ महासू पीक, ग्रीन वैली और आसपास के इलाकों का पैदल चलकर मजा लेना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं, उनको जरूर यहां पर एक बार ट्रैकिंग का अनुभव करना चाहिए। और ये रास्ते ताजी पहाड़ी हवा, शांत वातावरण, प्राकृतिक नजारों जो कि फोटोग्राफी के लिए बहुत ही खास है और अलग अलग तरह के पक्षियों को देखने के लिए बहुत ही शानदार है, तो आपको ये अनुभव जरूर करना चाहिए। और यहां पर देखने के लिए क्या क्या है जरूर बताऊंगी, लेकिन इस गीत के बाद।

0: बोलो क्या, बोलो ना।
1: मो इटक दाना बीटक दाना दाने ऊपर दाना इटक दाना।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
7: तो भाई मैं आपको बता रही थी कि कुफरी में घूमना कहाँ कहाँ है और क्या क्या है यहाँ पर करने के लिए। कुफरी फन वर्ल्ड कुफरी के सबसे लोकप्रिय आकर्षणों में से एक है, खासकर बच्चों के साथ यात्रा करने वाले परिवारों के लिए। ऊंचाई पर स्थित ये पार्क दुनिया के सबसे ऊंचे गो कार्टिंग ट्रैक में से एक है और इसके लिए जाना जाता है। गो कार्टिंग के अलावा ये मनोरंजन पार्क, जोरबिंग और एडवेंचर राइड और बाकी ऐसी बहुत सी मनोरंजक गतिविधियों के लिए भी खास फेमस है, जो कुफरी पर्यटन में एक मजेदार और बहुत ही खास है बच्चों के लिए। इसके अलावा अगर आप चाहें तो महासू पीक पर जा सकते हैं, जो कि कुफरी का सबसे ऊंचा स्थान है और यहां इस क्षेत्र के सबसे सुंदर स्थानों में से एक माना जाता है। यहां से बर्फ से ढकी हिमालयी पर्वतमाला, जंगलों और दूर स्थित घाटियों का मनोरम नजारा आप ले सकते हैं। और इस चोटी पर एक छोटा नाग देवता का मंदिर भी है, जो इस स्थल को सांस्कृतिक महत्व देता है और इस वजह से यहां पर भी पर्यटक ज्यादा तादाद में पहुंचते हैं। कई बार देवदार के जंगलों से होते हुए पैदल चढ़ाई कर सकते हैं आप, या फिर टट्टू की सवारी कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं तो यहां पर सूर्योदय देखना सबसे बेहतरीन अनुभवों में से एक है, फोटोग्राफर्स के बीच ही काफी लोकप्रिय है। ग्रीन वैली एक जगह है जहां पर आप जा सकते हैं, सर्दियों में इसे व्हाइट वैली के तौर पर भी जाना जाता है। शिमला कुफरी मार्ग पर स्थित ग्रीन वैली कुफरी के सबसे अधिक फोटो खींचे जाने वाले स्थानों में से एक है। गर्मियों में घाटी चीड़ के पेड़ों और खुली ढलानों से हरी भरी हरियाली से ढकी रहती है, जबकि सर्दियों में बर्फबारी इसे एक और ही सफेद घाटी का रूप देकर बहुत ही खूबसूरत बना देती है। और अगर मैं बात करूं तो खास तौर से परिवारों या ग्रुप्स में जाने वाले लोगों को शिमला से कुफरी की जो छोटी सी यात्रा है वो बहुत ज्यादा पसंद आती है। तो अगर आप भी अपने किसी फ्रेंड्स के ग्रुप्स के साथ या फिर ऐसे किसी अपने परिवार के साथ जा रहे हैं तो फिर आपको यहां की यात्रा का अनुभव जरूर करना चाहिए। अगर मैं बात करूं हिमालयन नेचर पार्क या कुफरी चिड़ियाघर की, तो ये भी अपने आप में एक खास आकर्षण है यहां का। यहां भी आपको जरूर जाना चाहिए, पैदल पथ यात्रा आप यहां कर सकते हैं और कुफरी आरामदेह और ज्ञानवर्धन यात्रा के लिए सबसे खास है। और अगर मैं बात करूं बच्चों या बुजुर्गों के साथ अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो फिर ये पार्क आपके लिए बहुत ही खूबसूरत अनुभव होगा। यहां पर आपको कस्तूरी मृग, हिमालयी मोनाल, भालू और अलग अलग तरह के पक्षी जो कि हिमालय प्रजातियां हैं वो देखने के लिए मिल सकती हैं, तो आपको ये भी जरूर एक बार अनुभव लेना ही चाहिए। शांत जगह है ये और शिमला के पास पर्यावरण पर्यटन में रुचि रखने वाले परिवारों, फोटोग्राफर्स या यात्रियों के लिए बहुत ही बेस्ट है। कुफरी में मिले इस कस्बे को भी आप देख सकते हैं, जहां पर कह सकते हैं कि अपने आप में ब्रिटिश भारत की 150 साल से पुरानी इमारतें आपको मिल जाएंगी, तो ये भी अपने आप में एक खास जगह है। और ये अगर मैं कहूं तो भूतिया कस्बे के नाम से जाना जा सकता है, जाना जाता है। और इसके अलावा भागू की यात्रा आप कर सकते हैं। कुफरी से लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। ये शांत पहाड़ी गांव है जो अपने विशाल खुले मैदानों, सेब के बागों और पहाड़ों के खूबसूरत नजारों के लिए जाना जाता है। कुफरी की तुलना में भागू में भी भीड़ काफी होती है और ये शिमला के पास शांति, प्रकृति और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कुफरी का मेन बाजार आप घूम सकते हैं, जहां पर आप कुछ यादगार खरीदारी करना चाहते हैं जो आप अपने साथ लेकर आना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छी जगह है। अगर आप चाहें तो यहां से ऊनी कपड़े, दस्ताने, टोपियां, हाथ से बनी हुई बहुत सारी चीजें, लकड़ी से बना हुआ सामान भी खरीद सकते हैं। स्नैक्स यहां से ले सकते हैं अगर आपको थोड़ा थोड़ा मंचिंग का शौक है तो उसके लिए, और गर्मा गर्म चाय, स्ट्रीट फूड का स्वाद भी आप यहां पर ले सकते हैं। अगर मैं कहूं इंदिरा पर्यटक पार्क है यहां पर, टूरिस्ट पार्क जिसे कहते हैं, तो ये भी एक पिकनिक स्पॉट है, आप यहां भी जा सकते हैं और ये परिवारों के लिए घूमने के लिए कुछ बेस्ट प्लेस में से एक है। पार्क में बैठने की खुली जगह है, छोटे छोटे कैफेज हैं, घोड़े और याक की सवारी की सुविधा भी है और आप अगर चाहें तो यहां पर कुछ एडवेंचरस एक्टिविटीज का भी मजा ले सकते हैं। हाँ, अब आपको ठहरना कहाँ है कुफरी में ये जरूर बताऊंगी, लेकिन इस गीत के बाद।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
2: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
3: तो भाई मैं बता रही थी कि आप यहाँ पर ठहर कहाँ सकते हैं, तो अगर आप कुफरी जाते हैं तो यहाँ पर आपको हर बजट के होटल्स और स्टेज मिल जाएंगे, जहाँ से आपको पहाड़ों का नजारा लगभग हर होटल से, हर स्टेज से मिलता है। और आप जहाँ ठहरे हैं वहां से कुफरी के खूबसूरत पहाड़ों के नजारे तो ले ही सकते हैं, फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं यहाँ की संस्कृति की, तो लोक कला और संगीत की अगर बात पर आए तो कुफरी और आसपास के क्षेत्रों में लोग अपने पारंपरिक लोक गीतों और नृत्यों जैसे नाटी के माध्यम से अपनी संस्कृति को संजोए हुए हैं। त्योहारों और मेलों के दौरान पारंपरिक वाद्य यंत्रों जैसे ढोल, करनाल और शहनाई की थाप पर लोक नृत्य किए जाते हैं। यहाँ के स्थानीय निवासियों की पारंपरिक पोशाक बहुत ही आकर्षक होती है। सर्दियों में ठंड से बचाव के लिए बुने हुए ऊनी वस्त्र, रंग बिरंगे स्कार्फ और खास तौर से हिमाचली टोपी, जो कि कुल्लू कैप के नाम पर भी जानी जाती है, पहनी जाती है, जो यहाँ की पहचान का खास हिस्सा है। खान पान की बात करें तो हिमाचली संस्कृति यहाँ के पारंपरिक भोजन में झलकती है। कुफरी आने वाले पर्यटकों को स्थानीय धम यानी पारंपरिक भोज, सिडू जैसे कई व्यंजन यहाँ पर चखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप कुफरी में घूमने के दौरान आपको पहाड़ी सिद्धू, जो कि दाल या आलू भरी पारंपरिक स्टीम्ड रोटी है, ये आप चख सकते हैं। गर्मा गर्म पहाड़ी नूडल्स आप टेस्ट कर सकते हैं और स्थानीय मसालों वाले पहाड़ी मोमोज का जायका भी आप ले सकते हैं। ठंडे मौसम में इनका स्वाद सबसे बेहतरीन लगता है। कुफरी और इसके आसपास आपको कई शानदार, स्वादिष्ट और बहुत ही जायकेदार व्यंजन मिलेंगे। सिद्धू, जैसा कि मैंने कहा कि पारंपरिक व्यंजन है, खमीर से बनी रोटी होती है जिसे भाप में पकाया जाता है और इसके अंदर दाल या अखरोट का मिश्रण भरा जाता है। इसे घी और चटनी के साथ खाया जाता है। और अगर मैं बात करूं धम, जिसकी मैंने बात की थी, तो ये भी एक पारंपरिक हिमाचली दावत जैसा लगता है। इसमें चावल, ड्रिंक, राजमा और खट्टा शामिल होता है, जो कि आपको यहां आसानी से मिल जाएगा। चाय पकौड़े का स्वाद लेना मत भूलिएगा। कहीं भी ठंडे में मौसम में आप बैठकर जब मेन बाजार में अदरक वाली चाय और गर्मा गर्म पकौड़ों का मजा लेते हैं, तो कुफरी की यात्रा आपके लिए सचमुच एक यादगार अनुभव हो जाती है। अगर मैं बात करूं देव संस्कृति की यहां पर, तो कुफरी की सबसे ऊंची चोटी महासू पीक को स्थानीय लोगों द्वारा महासू देवता का निवास माना जाता है और यहां के निवासियों की अपनी देवी देवताओं में अटूट आस्था है। महासू मंदिर या बाकी स्थानीय मंदिरों में पूरे रीति रिवाज के साथ पूजा अर्चना की जाती है। साहसिक पर्यटन यहाँ की आधुनिक संस्कृति का अहम हिस्सा है। हिमाचल पर्यटन विभाग द्वारा कुफरी में हर साल फरवरी के महीने में वार्षिक शीतकालीन खेल महोत्सव यानी विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल आयोजित किया जाता है और इस दौरान स्कीइंग जैसी रोमांचक प्रतियोगिताओं में स्थानीय और विदेशी संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिलता है। कुफरी शिमला हिमाचल प्रदेश अपने आप में कोई अलग त्योहार का केंद्र नहीं है, लेकिन ये शिमला जिले का प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ खास तौर से फरवरी में होने वाले विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में आप हिस्सा ले सकते हैं। स्थानीय मेलों की बात करें तो यहाँ पर ये भी बहुत ही खास तौर पर मनाए जाते हैं, हिमाचल के पारंपरिक त्योहार मनाए जाते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल होता है यहाँ। इसके अलावा आइस स्केटिंग और स्कीइंग जैसे रोमांचक गतिविधियों का आनंद भी आप इस फेस्टिवल में ले सकते हैं। महासू जातार मई के महीने में ये मेला महासू गांव में 2 दिनों के लिए मनाया जाता है, जिसे महासू जातार कहते हैं। कुफरी के करीब यहां पारंपरिक नाटी नृत्य और लोक नृत्य, लोकगीतों का, तीरंदाजी, खेल प्रदर्शन का भी आनंद लिया जा सकता है। एक सिप्पी मेला लगता है यहां, सिप्पी फेयर जिसे कहते हैं। मई में मसा शोभरा के निकट कुफरी से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर सिपू देवता के सम्मान में यह बहुत ही प्रसिद्ध मेला है जिसे मनाया जाता है। बफलो फेयर भी यहां पर लगता है। सितंबर के महीने में कुफरी के पास मसा शोभरा में यह अनोखा मेला आयोजित किया जाता है। राज्य स्तरीय शिमला समर फेस्टिवल भी आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। मई से जून के महीने में शिमला में आयोजित होता है, जिसमें कुफरी और आसपास के लोग शामिल होते हैं। और कुफरी में अगर मैं बात करूं तो बहुत से त्योहार और उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे लोहड़ी, माघी, जनवरी में मनाया जाने वाला पर्व फुलैच, जो सितंबर से अक्टूबर में फूलों का त्योहार होता है और खास तौर से ऊपरी क्षेत्रों और किन्नौर शिमला बेल्ट में मनाया जाता है। दशहरा कुल्लू और हिमाचल के अन्य हिस्सों की तरह यहां भी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है, धूमधाम से मनाया जाता है। अतिथि सत्कार, कुफरी के लोग बहुत ही मिलनसार होते हैं और ये बहुत अच्छे से जानते हैं, मेहमान नवाज होते हैं यहाँ लोग। और इसके अलावा काफी पर्यटक यहां पहुंचते हैं, उनका भी दिल से स्वागत करते हैं, तो आपको यहां पर जरूर एक ना एक बार तो जाना ही चाहिए। फिलहाल एक गीत आप तक पहुंचाती हूं, उसके बाद समय रहा तो कुछ और बातें भी होंगी।

तो भाई अगर आप प्लान कर चुके हैं यहाँ जाने का तो पहुंच जाइए, और यहाँ से आपको अगर कुछ खरीद कर लाना है तो कुल्लवी पश्मीना शॉल आप यहाँ से ला सकते हैं, पहाड़ी टोपियां, लकड़ी के बने हुए सामान आप यहाँ अपने घर के लिए ला सकते हैं, ऑर्गेनिक फल और उत्पाद जैसे कि सेब और खुबानी, यहाँ पर शुद्ध सेब के जैम आपको मिल जाएंगे, जूस, अचार, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आसानी से आप यहाँ खरीद कर अपने घर ला सकते हैं, हाथ से बने स्वेटर। और अगर आप खरीदारी की बात करें तो कुफरी का मेन बाजार, जहां पर आपको बहुत सारा निर्मित सामान मिल जाएगा, हाथों से बना हुआ सामान मिल जाएगा, या फिर लक्कड़ बाजार कुफरी के पास स्थित ये बाजार खास तौर से लकड़ी के बेहतरीन सामान और हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है, यहाँ आप जा सकते हैं।

0: फिर हिमाचल एम्पोरियम सरकारी दुकानों से आप प्रमाणिक और उच्च गुणवत्ता वाली ऊनी उत्पाद अच्छे दामों पर खरीद सकते हैं। तो भाई आपके लिए ये जगह किसी भी तरह से निराश करने वाली नहीं है, आप जाएं और इस जगह का अनुभव लें। अगर आप इन छुट्टियों में सोच रहे थे अभी तक कि कहाँ जाएं, क्या प्लान करें, तो फिर कुफरी जो कि बहुत ही खूबसूरत अनुभव आपको दे सकता है, यहाँ जाना ना भूलें। फिलहाल तो क्योंकि वक्त अब ज्यादा नहीं बचा है, मैं आपकी दोस्त रेखा आज रेखा क्रिस्टल वॉइस लेती हूँ आज के लिए आपसे विदा। लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन ऐसे नहीं, एक प्यारे से गीत के साथ आपको छोड़े जाऊंगी। 11:56:27 हो चुके हैं, पर ये वादा रहा कि फिर किसी रोज किसी और सफर में आपसे मुलाकात जरूर होगी। तब तक के लिए मैं लेती हूँ आपसे इजाजत। आप यूं ही खुश रहिए, खुशहाल रहिए, ऐसे ही अपना ख्याल रखते रहिए। ये प्यारा सा गीत आपके लिए, चलती हूँ, नमस्कार, बाय बाय।
1: प्यार किसी से हो ही गया।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमिपत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें

0: इस योजना की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जनकल्याण के लिए समर्पित है। प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय ने उनके और उनकी कंपनियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर धन शोधन और 100 करोड़ रुपए से अधिक के कथित जीएसटी धोखाधड़ी तथा फर्जी मोबाइल फोन बिक्री का पर्दाफाश किया है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने आगामी श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तूती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। अमरीका में भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। H-1B वीजा के जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि धरती आबा का जीवन साहस, आत्मसम्मान और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक था। श्री शाह ने कहा कि आज भी बिरसा मुंडा का धर्मांतरण के विरूद्व संघर्ष और आदिवासी गौरव के प्रति उनका समर्पण लाखों देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मुकाबला श्रीलंका में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 26वें ओवर में 3 विकेट पर 112 रन बना लिए हैं। कप्तान तिलक वर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली बढ़त देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 114 अंक बढ़कर 73,668 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi today said the government has spared no effort in empowering the country's youth, women and farmers over the past 12 years. In a social media post, Mr. Modi said, with the blessings of 1.4 billion citizens and the spirit of nation first, the government is dedicated to trust, development and public welfare. The Prime Minister noted that as a result of these tireless efforts, today the country has gained a new identity on the global stage from infrastructure to digital revolution. Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadda will launch nationwide celebrations to commemorate 10 years of Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan in New Delhi today. The BRICS Agriculture Conference has commenced in Indore, Madhya Pradesh. Delegates from Brazil, Indonesia, China, Iran, South Africa, the UAE and other member countries are participating in the summit. Agriculture ministers, senior officials and experts from 21 countries are taking part in the summit. Union Home Minister Amit Shah will launch the Land Port Management System in New Delhi today. This

आप प्यार भरा नमस्कार। आप सभी ने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और हमारे इंद्रप्रस्थ चैनल के लिसनर्स हमें सुन रहे हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। दोस्तों, हर दिन अपने साथ लेकर आता है एक नई ऊर्जा और साथ ही लेकर आता है नए अनुभव, नई जानकारियां और बहुत सारी संभावनाएं भी। तो इन्हीं बातों को आज आपसे साझा करने के लिए लेकर आई हूं आज का घर आंगन कार्यक्रम। तो जुड़े रहिए कार्यक्रम घर आंगन में मेरे साथ यानी कि प्रतिभा के साथ। और हाँ श्रोताओं, हमें इंतजार रहता है आपकी प्रतिक्रियाओं का, क्योंकि आपकी एक सकारात्मक प्रतिक्रिया हमारा मनोबल बढ़ाती है और हमें प्रेरित करती है कि हम कार्यक्रम को आपके लिए और भी बेहतरीन बनाएं। और साथ साथ आज हम उन सभी श्रोताओं का दिल से शुक्रिया अदा करेंगे जो रोज हमारे साथ इस कार्यक्रम के जरिए जुड़ते हैं। तो अपने सुझावों और प्रतिक्रियाओं के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। आप हमारा ईमेल आईडी जानते हैं, लेकिन एक बार फिर से बता देती हूं कि हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी प्रेम पर्वत। श्रोताओं, आज महान जन नायक और आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत बिरसा मुंडा जी की पुण्यतिथि है। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को वर्तमान झारखंड में हुआ था। उन्होंने अंग्रेजी शासन और शोषण के विरुद्ध आदिवासी समाज को संगठित किया और उल गुलान यानी महाविद्रोह का नेतृत्व किया। बिरसा मुंडा जी ने आदिवासियों को उनके अधिकारों, संस्कृति और स्वाभिमान के प्रति जागरूक किया। उनके संघर्ष से ब्रिटिश सरकार को आदिवासी भूमि और अधिकारों से जुड़े कानूनों में बदलाव करने पड़े। 9 जून 1900 को रांची जेल में मात्र 25 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनका जीवन साहस, नेतृत्व और जनसेवा का प्रेरणादायक उदाहरण है। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं।

मन्ना डे और साथियों की आवाज में अभी आपने गीत सुना, फिल्म थी सफर। श्रोताओं, एक कड़ी लगन, मेहनत और सपनों को पा लेने की कोशिश इंसान को आकाश की बुलंदियों पर पहुंचा देती है। आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। उन्होंने साबित कर दिया है कि जोश, जज्बा और जुनून में वो किसी से भी कम नहीं हैं। बात करेंगे ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख की, जिन्होंने महिला विश्व चैंपियन में जू वेंजुन को मई 2026 में नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता में हराकर जीत अपने नाम दर्ज की है। दिव्या ने क्लासिकल गेम ड्रॉ रहने के बाद आर्मगेडन टाई ब्रेकर मुकाबले में जू वेंजुन को हराया। श्रोताओं, दिव्या देशमुख का जन्म नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ। उन्होंने कम उम्र में ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई उपलब्धियां हासिल की हैं। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि जब उन्होंने कोनेरू हम्पी को हराकर फिडे वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता, और इसके साथ ही वो महिला शतरंज विश्व कप विजेता बनी और उन्हें ग्रैंड मास्टर का खिताब प्राप्त हुआ। आज दिव्या देशमुख की प्रतिभा और धैर्य के दम पर शीर्ष महिला शतरंज खिलाड़ियों में उनका नाम शामिल है और दिव्या देश की कई महिलाओं के लिए आज एक नई प्रेरणा बन चुकी हैं।

प्रोफेसर, ये था इस फिल्म का नाम जिसका आपने गीत सुना। आवाज थी मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। और अब बात करेंगे लखनऊ नगर निगम की उस पहल की जो कि है RRR यानी रिड्यूस रीयूज रिसाइकल सेंटर। इस सेंटर की शुरुआत मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान के तहत की गई, जिसके माध्यम से अब शहर के नागरिक अपने जो पुराने सामान है, जो उनके घरों का पुराना सामान है, उसको यहां दे रहे हैं और एक नया जीवन उसको देने के लिए ये सेंटर खोले गए हैं। जो चीजें आपके घरों में उपयोग में नहीं आ रही हैं, जैसे कि कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक, किताबें और भी बहुत कुछ, उन्हें पुनः उपयोग करने के लिए यहां पर एकत्रित किया जाता है। इस पहल का उद्देश्य कचरा कम करना, संसाधनों को बेहतर इस्तेमाल करना और पर्यावरण की रक्षा है। इस सेंटर में जो सामान आपकी जरूरत का नहीं है, यानी जिसका उपयोग आप काफी समय से नहीं कर रहे हैं, आप यहां पर छोड़कर जा सकते हैं। और अगर आपको यहां कुछ अपनी जरूरत का सामान दिखता है तो वो आप अपने साथ लेकर भी जा सकते हैं। श्रोताओं, इस सेंटर पर कपड़ा बैंक, इलेक्ट्रॉनिक बैंक, खिलौना बैंक, किताब बैंक, बर्तन बैंक और जूता चप्पल बैंक आदि बनाए गए हैं और इन बैंकों के जरिए नगर निगम जरूरतमंद जो लोग हैं उन तक इन चीजों को पहुंचा रहा है और बचे हुए सामान को रिसाइकिल करके उन्हें एक नया रूप भी दे रहा है। आपको ये भी बता दें कि अभी तक ऐसे 26 सेंटर खोले जा चुके हैं। श्रोताओं, एक सकारात्मक पहल जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल सकती है, तो इस तरह के प्रयास हम सभी के लिए प्रेरणा है और आज के समय की जरूरत भी, तो क्यों ना एक पहल हम सब भी करें।

किशोर कुमार, आशा भोंसले और साथियों की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी पराया धन। श्रोताओं, प्राकृतिक संपदा हम सभी

के लिए जीवन है, या यूं कहें कि ये प्रकृति का वरदान है। भूमि, जल, वायु मिलकर एक ऐसे पर्यावरण का निर्माण करते हैं जिसमें जीवन का पोषण होता है, और एक ही भी जो संसाधन है उसकी अगर कमी हो जाए तो इस पर्यावरण का संतुलन बिगड़ सकता है और बिगड़ भी जाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये संसाधन सीमित है, ऐसे में जरूरत हो जाती है उनके संचयन की, खास करके जल संचयन की, क्योंकि पानी के बिना जीवन की कल्पना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। श्रोताओं, धरती का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 3% पानी मीठा है, यानी कि सिर्फ 3% पानी है जो पीने के लायक है, और इसमें से अधिकतर पानी भी जो है ग्लेशियरों और बर्फ की चोटियों में जमा हुआ है। हमें सजग होना होगा, पानी को बचाकर हम अपने भविष्य को सुरक्षित रख पाएंगे, जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग बेहद खास है। वर्षा जल संचयन एक ऐसी तकनीक है जिसमें बारिश के पानी को बहकर बर्बाद होने से बचाने के लिए इकट्ठा किया जाता है, और इस पानी को साफ करके या सीधे जमीन के अंदर पहुंचाकर भविष्य के उपयोग के लिए सहेजा जाता है। आमतौर पर इसके दो प्रमुख तरीके अपनाए जाते हैं, एक है रूफ टॉप हार्वेस्टिंग, यानी छतों पर जल संचयन। इसमें घर या इमारत की छत पर गिरने वाले बारिश के पानी को पाइपों के जरिए इकट्ठा किया जाता है, और दूसरा है भूजल पुनर्भरण, यानी कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज। इस विधि में छत या खुले मैदान के पानी को पाइप या नालियों के माध्यम से सीधे जमीन में बने सोखता गड्ढे यानी रिचार्ज पिट

नया दौर। इस फिल्म से अभी आपने गीत सुना, आवाज थी मोहम्मद रफी, आशा भोंसले और साथियों की। श्रोताओं, भारतीय रेल देश की जीवन रेखा है। ये भारत के सुदूर कोनों को आपस में जोड़कर करोड़ों लोगों के दैनिक जीवन यात्रा और अर्थव्यवस्था को एक गति देती है। भारतीय रेल पर्यटन को बढ़ाने में भी अहम भूमिका रखती है। आज रेलवे का विस्तार हुआ है, दुर्गम पहाड़ियां, जंगलों, यहां तक कि सागर

महासागर तक रेलवे पटरियों का जाल बिछा है। कई रेल सेवाएं तो ऐसी हैं जिनका सफर जीवन को एक बेहतर अनुभव देता है, जिसमें है केके लाइन यानी कोटा वलसा किरिंदुल रेलवे लाइन। ये मुख्य रूप से खनिज ढोने वाली एक प्रमुख माल भाड़ा लाइन है, लेकिन यहां यात्री गाड़ियां भी चलाई जाती हैं जो पूर्वी घाट के खूबसूरत नजारों से होकर गुजरती है। ये लगभग 445 किलोमीटर लंबी एक प्रमुख ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों से होकर गुजरती है। ये लाइन छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित किरिंदुल को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से जोड़ती है। श्रोताओं, इस मार्ग में अरकू, कोरापुट जंक्शन, जयपुर और जगदलपुर जैसे महत्वपूर्ण स्टेशन आते हैं और ये विशाखापट्टनम से किरिंदुल जाती है और आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ स्थित आनंदगिरी पहाड़ियों से गुजरती हुई ये ट्रेन प्राकृतिक नजारों का भरपूर आनंद भी देती है। और सबसे खास बात यह है कि इस रूट पर चलने वाली कुछ ट्रेनों में आधुनिक विस्टाडोम कोच भी लगाए गए हैं। और आपको ये भी बता दें कि विस्टाडोम कोच भारतीय रेलवे के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए विशेष पारदर्शी कोच हैं। इनमें पारदर्शी कांच की छतें होती हैं जिसमें यात्री ट्रेन के अंदर बैठे बैठे ही आसमान, पहाड़ों और सुंदर घाटियों का पूरा नजारा ले सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि सामान्य कोचों के मुकाबले इनमें चौड़ी और बड़ी खिड़कियां होती हैं जो देती हैं एक अनोखा अनुभव। और साथ ही साथ कोचों की कुर्सियां 180 डिग्री तक घूमती है जिससे आप खिड़की की ओर मुंह करके नजारा ले सकते हैं। श्रोताओं, भरपूर आधुनिक सेवाओं से जो लैस ये ट्रेन है, ये अरकू घाटी के बेहद खूबसूरत और दुर्गम इलाकों से गुजरती है और आपको देती है प्राकृतिक नजारों, झरनों और 58 सुरंगों और 84 बड़े पुलों और 1187 छोटे पुलों का पूरा आनंद। तो वास्तव में कोटा वलसा किरिंदुल लाइन का सफर अपने आप में एक रोमांच भरा और अविस्मरणीय सफर है। तो अगर आप भी कहीं घूमने जाने की योजना बना रहे हैं तो आप इस रेल यात्रा को अपनी आइटनरी में जगह दे सकते हैं।

अजनबी। इस फिल्म से आप ये गीत सुन रहे हैं, आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। और श्रोताओं, घड़ी ने मुझे इशारा कर दिया है कि मैं अब आपसे लूं इजाजत, तो इस वादे के साथ फिर मुलाकात होगी आपसे किसी और दिन इसी वक्त। तो दीजिए मुझे यानी प्रतिभा को अनुमति। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्री स्तरीय बैठक 13 जून को होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है।

0: में पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। यह मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीमसेन तूती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिका की नाकाबंदी बमबारी से कहीं अधिक प्रभावी साबित हुई है। श्री ट्रंप ने कहा कि सीमा पार हालिया मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता आगे बढ़ रही है। आज झारखंड सहित पूरा देश महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मुकाबला श्रीलंका में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 42वें ओवर में 3 विकेट पर 202 रन बना लिए हैं। मौसम विभाग ने आज उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान तथा विदर्भ में लू की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi says the government has spared no effort in empowering the country's youth, women and farmers over the past 12 years. In a social media post, Mr. Modi said, with the blessings of 1.4 billion citizens and the spirit of nation first, the government is dedicated to trust, development and public welfare. The Prime Minister noted that as a result of these tireless efforts, the country has gained a new identity today on the global stage, from infrastructure to the digital revolution. Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadda will launch nationwide celebrations to commemorate 10 years of Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan in New Delhi today. The core aim of the scheme is to reduce maternal and neonatal mortality by facilitating early detection and prompt management of high-risk pregnancies. The BRICS Agriculture Conference has commenced in Indore, Madhya Pradesh. Delegates from Brazil, Indonesia, China, Iran, South Africa, the UAE and other member countries are participating in the summit. Agriculture ministers, senior officials and experts from 21 countries are taking part in the summit. Union Home Minister Amit Shah will launch the Land Port Management System in New Delhi today. This initiative reflects the government's commitment to smart border management, aiming to enhance efficiency, transparency and security in cross-border trade and passenger movement through technology-driven solutions. India has strongly criticized Pakistan at the United Nations for running an organized factory of hate that exploits religious terminology to cultivate permanent hostility towards India among its citizens. India also slammed Islamabad for propagating state-sponsored disinformation by labeling

जी हाँ, सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज। और फिलहाल वक्त हो चला है कलाकार बेमिसाल का। आज कलाकार बेमिसाल के जरिए हम बात करेंगे संगीतकार वसंत देसाई जी की। वसंत देसाई जी ने कई सुपरहिट हिंदी फिल्मों के गीतों को अपने संगीत से सजाया, जिनमें दो आंखें बारह हाथ, झनक झनक पायल बाजे, तूफान और दिया, गूंज उठी शहनाई और गुड्डी जैसी हिट फिल्में शामिल हैं। आज संगीतकार वसंत देसाई जी की जयंती हम मना रहे हैं। उनका जन्म आज ही के दिन गोवा में हुआ था। उनके संगीतबद्ध गीतों की रोशनी फिल्म जगत को हमेशा रोशन करती रही है और हमेशा करती रहेगी। आपको याद है फिल्म दो आंखें बारह हाथ का प्रसिद्ध गीत ए मालिक तेरे बंदे हम वसंत देसाई द्वारा ही संगीतबद्ध किया गया था। इस गीत को कई स्कूलों ने उस वक्त अपनी प्रार्थना सभा में शामिल कर लिया था और आज भी ये गीत स्कूलों में प्रार्थना के रूप में गाया जाता है और सुना जाता है।

तो चलिए देर किस बात की, कलाकार बेमिसाल की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं रुचिका आपके साथ।

जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 MHz के साथ आप बने हुए हैं। और आपको बता दें कि आज कलाकार बेमिसाल के जरिए हम बात कर रहे हैं संगीतकार वसंत देसाई जी की। आज उनकी जयंती हम मना रहे हैं। देसाई जी का जन्म 9 जून 1912 को गोवा में हुआ था। उनको बचपन के दिनों से ही संगीत के प्रति बेहद लगाव था। 1930 में उन्हें प्रभात फिल्म्स की मूक फिल्म खूनी खंजर में अभिनय करने का मौका मिला, तो वहीं 1932 में वसंत को संगीतकार गोविंद राव टेंडे के सहायक के तौर पर काम करने का अवसर मिला। इन सब के साथ ही उन्हें फिल्म में एक गाना गाने का भी अवसर मिला। और इस बीच वसंत फिल्मी जगत में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष करते रहे और साल 1934 की फिल्म अमृत मंथन में गाया उनका एक गीत श्रोताओं के बीच बेहद लोकप्रिय भी हुआ। और आपको बता दें कि इसी बीच बस उन्हें ये महसूस हुआ कि गायकी के बजाय उन्हें संगीतकार के रूप में अपना करियर ज्यादा बेहतर उन्हें महसूस हुआ और बस उन्होंने इसी ओर रुख किया कि उन्हें एक गायक नहीं बल्कि एक संगीतकार के तौर पर अपना भविष्य बनाना है। और उसके बाद उन्होंने उस्ताद आलम खान और उस्ताद इनायत खान से संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी। लगभग 4 साल तक वसंत मराठी नाटकों में भी संगीत देते रहे और साल 1942 में फिल्म शोभा के जरिए बतौर संगीतकार वसंत देसाई ने अपने सिने करियर की शुरुआत की। लेकिन वे बतौर संगीतकार अपनी पहचान उस वक्त नहीं बना सके और उसके बाद ठीक 1 साल के बाद आई वी शांताराम अपनी फिल्म शकुंतला के लिए एक संगीतकार की तलाश कर रहे थे। और फिर क्या था, वी शांताराम ने फिल्म के संगीत के लिए वसंत को चुना। इसके बाद वसंत संगीतकार के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल हो गए। तो उनका जो संघर्ष था वो पूरा हुआ और उसके बाद उन्हें सफलता का स्वाद चखने का आखिरकार मौका मिल ही गया। तो चलिए फिलहाल सुनते हैं एक गीत, फिल्म है गूंज उठी शहनाई। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 MHz। आपको बता दें कि आज कलाकार बेमिसाल के जरिए हम बात कर रहे हैं संगीतकार वसंत देसाई जी की।

0: बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल। डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी।
5: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
4: और लाइट बिल के?
5: अब 0 रुपए कैसे दूं?
4: ओहो, भूल ही गई थी। अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
5: पक्का।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

जी हाँ, एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ हम बने हुए हैं। और आपको बता दें कि आज कलाकार बेमिसाल के जरिए हम बात कर रहे हैं संगीतकार वसंत देसाई जी की।

जी हाँ, ये गीत आपने सुना फिल्म गुड्डी से वाणी जी की खूबसूरत आवाज में। आपको बता दें कि आज कलाकार बेमिसाल के जरिए हम बात कर रहे हैं संगीतकार वसंत देसाई जी की। और आपको याद होगा कि 1964 में एक फिल्म आई थी यादें। जी हाँ, 1964 में प्रदर्शित फिल्म यादें वसंत देसाई के करियर की एक अहम फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म में वसंत को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि फिल्म के पात्र के निजी जिंदगी के संस्मरणों को बैकग्राउंड स्कोर के माध्यम से पेश करना है, और उन्होंने इस बात को एक चुनौती के रूप में लिया और सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड संगीत देकर फिल्म को अमर बना दिया था। और इसी तरह से 1974 में फिल्म निर्माता गुलजार बिना किसी गानों के फिल्म अचानक का निर्माण कर रहे थे, और उनका कहना यह था कि ये फिल्म मुझे बिना किसी गीत के, बिना किसी गानों के चाहिए, और वसंत देसाई से बैकग्राउंड म्यूजिक देने की पेशकश की। और इस बार भी वसंत देसाई कसौटी पर खरे उतरे और उन्होंने ऐसा म्यूजिक दिया कि सभी को पसंद आया। हिंदी फिल्मों के अलावा आपको बता दें कि वसंत देसाई जी ने लगभग 20 मराठी फिल्मों के लिए भी संगीत दिया था, जिनमें लगभग सभी फिल्में सुपरहिट हुई थी। तो चलिए, उनकी बातें हम जारी रखेंगे और आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड। और फिलहाल आप तक पहुंचाते हैं फिल्म संपूर्ण रामायण से ये गीत।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

जी हाँ, FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ आप बने हुए हैं। और आपको बता दें कि आज कलाकार बेमिसाल के जरिए हम बात कर रहे हैं संगीतकार वसंत देसाई जी की। उनके बारे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि वे वी शांताराम के प्रिय चहेते संगीतकार थे। वी शांताराम की फिल्में दमदार निर्देशन, नृत्य और कलाकारों के साथ अपने मधुर गीतों के लिए जानी जाती थी। उनकी लगभग सभी फिल्मों में वसंत देसाई ने संगीत दिया। आपको बता दें कि फिल्म झनक झनक पायल बाजे के गीत नैन सो नैन नाही मिलाओ को वसंत देसाई ने राग मालगुंजी में ढाला था। और इस फिल्म में लता मंगेशकर ने लगभग सभी गीत गाए थे। और फिल्म का संगीत के विषय में बनी है ये फिल्म, तो इसमें संगीत तो जाहिर सी बात है लाजवाब होना ही था। और साथ ही फिल्म का विशेष आकर्षण थे सुप्रसिद्ध नृत्यकार गोपी कृष्ण, जिन्होंने एक नायक के रूप में इस फिल्म में अभिनय किया था और इस फिल्म में जान डाल दी थी। और साथ साथ गीत और संगीत तो थे ही जो इस फिल्म का मुख्य आकर्षण थे। तो चलिए, फिलहाल हमने बात की है फिल्म झनक झनक पायल बाजे की, तो इस फिल्म से ये सुपरहिट गीत हम आप तक पहुंचाते हैं। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़।

सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और फिलहाल हम बात कर रहे हैं संगीतकार वसंत देसाई जी की। वसंत देसाई जी एक ऐसे संगीतकार रहे जिन्हें खास तौर से वी शांताराम की फिल्में झनक झनक पायल बाजे, दो आंखें बारह हाथ के लिए जाना जाता है, और वहीं विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई, संपूर्ण रामायण, आशीर्वाद और ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म गुड्डी जैसी फिल्मों के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता है और याद किया जाता रहेगा। तो फिलहाल एक और गीत पहुंचाते हैं हम आप सभी तक। फिल्म है गूंज उठी शहनाई। सुनते रहिए FM गोल्ड।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वजीरे आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत ने पिछले 12 साल में नौजवानों, खवातीन और किसानों को बाइख्तियार बनाने में कोई कोशिश बाकी नहीं रखी है। मरकजी वजीरे दाखला अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट बंदोबस्त निजाम का आगाज करेंगे। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान की सरजनिश की है और उसे नफरत की एक फैक्ट्री करार दिया है। ब्रिक्स के वज़राए ज़राअत की 5 रोज़ा मीटिंग इंदौर में शुरू हो गई है, जिसका मकसद ज़राअत के शोबे में आलमी मामलात पर मुज़ाकरात करना है। दिफाई एतबार से अहम प्रोजेक्ट ज़ोजीला टनल में पेशरफ्त हुई है और वादी कश्मीर नीम लद्दाख के दरमियान फासला कम हो गया है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे होने के मौके पर आज नई दिल्ली में मुल्की सतह पर प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। और मर्दों के क्रिकेट में श्रीलंका के शहर दम्बोला में 3 मुल्कों की ए सीरीज का पहला मैच भारत ए और श्रीलंका ए के दरमियान जारी है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 साल में मुल्क के नौजवानों, खवातीन और किसानों को बाइख्तियार बनाने की कोई कोशिश नहीं छोड़ी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि 140 करोड़ शहरियों के आशीर्वाद और मुल्क मुकद्दम के जज्बे के साथ सरकार एतमाद, तरक्की और अवाम के बहबूद के तहत अहदबस्ता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इन अनथक कोशिशों के नतीजे में आज मुल्क ने बुनियादी ढांचे से लेकर डिजिटल इनकलाब तक आलमी मंजरनामे पर एक नई पहचान बनाई है। जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि तरक्की याफ्ता भारत के अज़्म को हकीकत की शक्ल देने के लिए सरकार खिदमत, अच्छी हुक्मरानी और खुशहाली के इस रास्ते पर लगातार आगे बढ़ती रहेगी। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट निजाम का आगाज करेंगे। इस पहल से स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट के तहत सरकार के अहद की अक्कासी होती है। इसका मकसद तकनीक का इस्तेमाल करते हुए सरहदी तिजारत और मुसाफिरों की नकलो हरकत के शोबे में सलाहियत, शफाफियत और सिक्योरिटी को बढ़ाना है। लैंड पोर्ट बंदोबस्त निजाम का आगाज एक जदीद तर्ज के तकनीक पर मबनी सरहदी बंदोबस्त निजाम की सम्त एक तारीखी कदम होगा। उमूर दाखला की वजारत ने कहा है कि ये प्लेटफॉर्म तिजारत में सहूलत, कनेक्टिविटी, कौमी सिक्योरिटी और 2047 तक विकसित भारत के नजरिए के ऐन मुताबिक है। लैंड पोर्ट बंदोबस्त निजाम मुख्तलिफ लैंड पोर्ट्स में काम काज को एक मुत्तहिदा निजाम में मरबूत करने के लिए तैयार किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसके जरिए महफूज और लॉजिस्टिक के बरवक्त तबादले, नीज इंजिबाती जानकारी फराहम करने में सहूलत होगी। इस तरह हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर पहले से काम करने वाले डिजिटल निजाम के साथ लैंड पोर्ट्स को हम आहंग किया जा सकेगा। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान पर इस बात के लिए नुक्ताचीनी की है कि वो नफरत का एक मुनज्जम निजाम चला रहा है, जिसके जरिए वो अपने शहरियों में भारत के तहत मुस्तकिल दुश्मनी पैदा करने की खातिर मजहबी इस्तलाहात का बेजा इस्तेमाल करता है। भारत ने पाकिस्तान की जानिब से अपने इलाके में सरगम मिलिटेंट ग्रुप को फितनउल हिन्दुस्तान का नाम देकर सरकार की शह पर गलत बातें फैलाने की बिना पर भी पाकिस्तान को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। अक्वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे परवेज नैनी हरीश ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान इस तरह सिर्फ अपनी नाकामियों को नई दिल्ली पर डालने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने पाकिस्तान की सियासी निजाम और सरकार चलाने में उसके फौजी बढ़ते हुए सरकर्दा रोल पर अफसोस का इजहार करते हुए हालिया आईनी तरामीम का जिक्र किया और कहा कि इससे साफ जाहिर हो जाता है कि सिविलियन हुक्काम पर पाकिस्तान की फौज की बालादस्ती बढ़ती जा रही है। भारत ने पाकिस्तान की सरहद पार की फौजी सरगर्मी की मजम्मत की और कहा कि अफगानिस्तान में हवाई हमलों से होने वाली कसीर गैर फौजी अमवात के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है।
बैनुल अक्वामी ब्रिक्स ज़रई कॉन्फ्रेंस मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में शुरू हो गई है। इसमें 21 मुल्कों के वज़राए ज़राअत, आला ओहदेदार और माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। इनमें ब्राजील, चीन, रूस और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। ये कॉन्फ्रेंस 13 जून तक जारी रहेगी। आज मुख्तलिफ मौजूआत पर कई इजलास हो रहे हैं। अहम मौजूआत में खुराक की यकीनी फराहमी, ज़रई इख्तिरा, आबो हवा के लिए साजगार खेती, ज़रई तिजारत और छोटे किसानों को बाइख्तियार बनाना शामिल है। जुमे को ज़राअत के वज़ीरों के माबैन खुसूसी मुज़ाकरात होंगे, जिसमें छोटे किसानों, ख़वातीन और नौजवानों के ज़रिए खुराक की यकीनी फराहमी पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। हफ्ते के दिन ब्रिक्स मुल्कों के वज़ीरों की मीटिंग होगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हवाई एतबार से अहम प्रोजेक्ट ज़ोजिला टनल में आज एक अहम पेशरफ्त हुई है, जिसकी वजह से वादी कश्मीर और लद्दाख के दरमियान सभी मौसमों में आमदोरफ्त वाली इस सड़क से फासला काफी कम हो गया है। इस तरह 10 साल से जारी ये ख्वाब पूरा हो गया है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने रिमोट बटन दबाकर इस पेशरफ्त का आगाज किया। ये तकरीब लद्दाख में मिनीमर्ग में टनल के मशरकी पोर्टल के करीब मुनाकिद की गई। ज़ोजिला टनल मुल्क की दिफाई एतबार से सबसे अहम सड़कों में से एक है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट दिल्ली एनसीआर उत्तर प्रदेश और पंजाब में छह जगहों पर काले धन को जायज बनाने के मामले में तलाश की कार्रवाइयां अंजाम दे रहा है। इस मामले में हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड मुलव्वस है, जो पंजाब में लुधियाना, जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली और दिल्ली नोएडा खित्ते में ये तलाशियां की ली जा रही हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के हुक्काम के मुताबिक हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से वाबस्ता अफराद की कारोबारी दफातर और घरों पर ये छापे मारे जा रहे हैं। इस मामले का ताल्लुक आम आदमी पार्टी के रहनुमा और पंजाब के वजीर संजीव अरोड़ा से है। डायरेक्टोरेट के मुताबिक 1 अरब रुपए से ज्यादा मालियत के मोबाइल फोन पर फर्जी जीएसटी दिखाई गई। बाद में इस माल को बरामदी माल दिखाकर मुबैना तौर पर नाजायज रकम को दुबई से भारत मुंतकिल किया गया।

वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि मुल्क की खारजा पॉलिसी में पिछले 12 साल के दौरान काफी ज्यादा तब्दीली आई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस दौरान हुकूमत ने आम शहरियों के लिए पासपोर्ट जारी करने और दस्तावेजात की तस्दीक करने की बिला रुकावट सहूलियात फराहम की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने शिकायतों को दूर करने और शहरियों की राय हासिल करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का आगाज किया है और किसी तरह की परेशानी की सूरत में मौसर कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने आलमी सतह पर काम की जगहों के लिए भारतीय शहरियों को रसाई फराहम की है और भारतीय ताजिरों को बैरून मुल्क मार्केट तक रसाई हासिल करने में मदद दी है। उन्होंने ये भी कहा कि इन इकदामात से बरामदात में इजाफा करने में मदद मिली है और भारतीय मसनूआत नीज खिदमात को नई मार्केट तक पहुंचाने में सहूलत फराहम हुई है। बाकी मुल्क की तरह झारखंड में भी आज अजीम मुजाहिद आजादी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। गवर्नर, वजीर आला, वुजरा और कई दीगर शख्सियात ने रांची में कोकर समाधि स्थल जाकर उनकी गुलहाय अकीदत नजर किए। नायब सदर जमहूरी और वजीर आजम समेत बहुत से रहनुमाओं ने भगवान बिरसा मुंडा को खिराज अकीदत पेश किया है। उनकी शहादत के दिन के मौके पर खिराज अकीदत पेश करते हुए नायब सदर जमहूरी सीपी राधा कृष्णन ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा जुरश, शुजात और खुददारी की अलामत थे और वो इंसाफ में गैर मुतजलजल यकीन रखते थे। मर्दों के क्रिकेट में श्रीलंका के रंगगिरी दम्बोला इंटरनेशनल स्टेडियम में ट्राई नेशन सीरीज के इब्तदाई मैच में भारतीय टीम ए श्रीलंका टीम ए के साथ जीत के लिए 278 रन का निशाना रखा है। भारतीय टीम की टीम 6 विकेट पर 277 रन बनाकर आउट हो गई। इससे पहले भारतीय टीम ए के स्किपर तिलक वर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत ने पिछले 12 साल में नौजवानों, खवातीन और किसानों को बाइख्तियार बनाने में कोई कोशिश बाकी नहीं रखी है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट बंदोबस्त निजाम का आगाज करेंगे। भारत ने अक्वामे मुत्तहदा में पाकिस्तान की सरजनिश की है और उसे नफरत की एक फैक्ट्री करार दिया है। ब्रिक्स के वज़राए ज़राअत की 5 रोजा मीटिंग इंदौर में शुरू हो गई है, जिसका मकसद ज़राअत के शोबे में आलमी मामलात पर मुज़ाकरात करना है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: Pradesh, Vidarbha and West Rajasthan. In men's cricket, India A has set a target of 278 runs against Sri Lanka A in the opening match of the Tri-Nation A series at the Rangiri Tambula International Stadium in Sri Lanka. The men in blue scored 277 runs for the loss of 6 wickets in 50 overs for India. Ruthuraj Gaikwad's century, coupled with a 150-run partnership with Tilak Varma, helped India gain control of the innings. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.4% up in afternoon trade today. The Sensex rose 267 points to 73,791, while the Nifty added 86 points to 23,209 when reports last came in. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index was trading 0.9% higher, while the small-cap 100 index jumped over 1% a short while ago. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says government empowered youth, women and farmers in the last 12 years. India hits out at Pakistan in the United Nations, calls it factory of hate. 5-day BRICS agriculture ministers meeting begins in Indore to focus on food security and empowerment of farmers. Strategic road project Zojila Tunnel achieves final breakthrough, bringing all-weather connectivity between Kashmir Valley and Ladakh closer to reality. Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan completes 10 years. Nationwide celebrations to begin from today. IMD issues red alert for heavy rainfall over Karnataka, Kerala and Mahe. Also predicts heatwave conditions over Delhi, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Uttar Pradesh, Vidarbha and West Rajasthan. And in men's cricket, India A set target of 278 runs against Sri Lanka A in Tri-Nation A series at Tambula, Sri Lanka. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। कर्नाटक, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में लू का अनुमान। और पुरुष क्रिकेट में तांबुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने पिछले 12 वर्षों में सेवा भावना के माध्यम से शासन को नया रूप दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने आम नागरिकों के लिए पासपोर्ट जारी करने और दस्तावेजों के सत्यापन को सुगम बनाया है और नागरिकों को पूरा सहयोग प्रदान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण

0: रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमिपत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के सीमा पार सैन्य अभियानों की निंदा की और अफगानिस्तान में हवाई हमलों के कारण हुई मौतों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक 13 जून को होगी। सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इससे कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट बटन दबाकर लद्दाख के मिनिमर्ग में जोजिला सुरंग के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास विस्फोट किया और इसे कश्मीर तथा लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक क्षण बताया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि ये सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर निर्मित जोजिला सुरंग पूर्ण होने पर एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त, सुरक्षित और बेहतर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, जोखिमों की समय पर पहचान और आवश्यक इलाज की सुविधा दी जाती है, ताकि माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। इस योजना के तहत अब तक 7,50,00,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं। सरकार के लगातार प्रयासों के कारण भारत में मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आई है। 2014-16 में जहां हर 1,00,000 प्रसव पर 130 महिलाओं की मृत्यु होती थी, वह 2022-24 में घटकर 87 रह गई है। इस योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ₹75 का एक स्मारक सिक्का और ₹5 का एक विशेष डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा

0: व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। सरकारी ई मार्केटप्लेस जिम ने सार्वजनिक खरीद को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में जिम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी, समावेशन और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण के बल पर भारत ने ये उल्लेखनीय वृद्धि की है। श्री कुमार ने कहा कि जिम पर भाग लेने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों की संख्या 2016-17 में लगभग 2300 से बढ़कर आज लगभग 12 लाख हो गई है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तुती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पश्चिम एशिया में ईरान और इसराइल के बीच तनाव कम हुआ है, प्रत्यक्ष झड़पों में भी कमी आई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: पश्चिम एशिया में पिछले कुछ दिनों से जारी ईरान इसराइल सैन्य तनाव के बाद फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील लेकिन अपेक्षाकृत शांत बनी हुई है। तनाव की शुरुआत बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसराइल की कार्रवाई से हुई। इसके बाद ईरान की ओर से उत्तरी इसराइल की दिशा में मिसाइलें दागी गयी। जवाब में इसराइल ने ईरान समर्थित ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं और गहरा गयी। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान से जुड़ा मोर्चा फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरान का कहना है कि क्षेत्र में स्थायी शांति और तनाव में कमी तभी संभव है जब गाजा और लेबनान में इसराइली सैन्य अभियान समाप्त किए जाएंगे। इस बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि स्थिति को स्थिर रखने और व्यापक समझौते की दिशा में चल रही वार्ताएं निर्णायक दौर में पहुंच रही हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि हालिया सीमा पार मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता अभी भी आगे बढ़ रही है।
2: हम एक मजबूत और प्रभावी समझौते के बेहद करीब हैं। यदि बमबारी की जाती है तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है और ऐसा कौन चाहेगा। हमारा प्रयास है कि एक ऐसा औपचारिक समझौता हो जो सैन्य कार्रवाई से भी अधिक प्रभावी साबित हो। अब तक यह देखा गया है कि नाकाबंदी का असर बमबारी की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली रहा है, इसलिए हम शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दे रहे हैं।
0: कोलंबो उच्च न्यायालय ने श्रीलंका के पूर्व उपमंत्री सरना गुणवर्धना को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराया है। ये आरोप 2006 में विकास लॉटरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान किराए पर वाहन खरीदने से संबंधित हैं। ये फैसला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद मिहाइल ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाले आयोग द्वारा दायर एक मामले में सुनाया है। फिलीपींस में कल दक्षिणी क्षेत्र के तट के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या 37 हो गई है। भूकंप में 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं जबकि 4 लोग लापता हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। भूकंप के कारण 20,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.4% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 267 अंक बढ़कर 73,791 और निफ्टी 86 अंक बढ़कर 23,209 पर था। पूरा देश आज महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसा नाम जिसने जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। हम बात कर रहे हैं धरती आबा यानी भगवान बिरसा मुंडा की। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों का पुरजोर विरोध किया बल्कि समाज में फैल रहे धर्मांतरण और लाल फीताशाही के खिलाफ भी बिगुल फूंका। आज सुबह से ही रांची के कोकर समाधि स्थल और बिरसा चौक पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के तमाम मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने यहां पहुंचकर भगवान बिरसा के चरणों में माल्यार्पण किया है। रांची के अलावा उनके जन्म स्थान खूंटी के उलिहातू सहित राज्य

0: के जनजातीय बहुल इलाकों में विशेष सांस्कृतिक और जागरूकता सभाएं आयोजित की जा रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ स्थानों पर भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने की आशंका है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए की टीम ने 278 रनों का लक्ष्य दिया है। ये मैच श्रीलंका के रंगिरी दाम्बूला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए हैं। भारत के लिए ऋतुराज गायकवाड़ के शतक और तिलक वर्मा के 150 रनों की साझेदारी ने भारत को महत्वपूर्ण भूमिका दिलाने की मदद की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है 2:23 और 15 सेकेंड। आइए सुनते हैं कार्यक्रम किसान की बात।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: नमस्कार सभी किसान भाई बहनों को। कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपकी दोस्त प्रतिमा शर्मा और मेरे साथ हैं
2: अरविंद, और स्वागत है आप सभी का। और आप सभी को नमस्कार
1: जी अरविंद। और देखिए, कृषि आज केवल खेती तक ही सीमित नहीं रह गई, बल्कि आधुनिक तकनीकी, डिजिटल माध्यम, कृषि स्टार्टअप, अनुसंधान, शोध कार्य, प्रशिक्षण और किसानों तक नई नई जानकारी पहुंचाने की व्यवस्था ने कृषि क्षेत्र में रोजगार के अरविंद बहुत सारे जो है अवसर बना दिए हैं। लेकिन एक बात यह भी आती है, जब इतने सारे अवसर बन जाते हैं तो उन्हें हमारे युवाओं तक, किसानों तक, महिलाओं तक, इवन कि ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने का माध्यम जो है वो बहुत ही आजकल उन्नति की ओर है।
2: जी हाँ, कृषि प्रसार शिक्षा और कृषि विज्ञान की अगर हम बात करें तो ये किसानों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य है नई तकनीकों, वैज्ञानिक जानकारी तथा सरकारी योजनाओं को किसानों तक पहुंचाना है। भारत में कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण और ग्रामीण विकास पर बढ़ते जोर के कारण इस क्षेत्र में प्रतिमा बहुत सारे रोजगार के अवसर आ रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, और इन अवसरों को किसानों तक, युवाओं तक पहुंचाने में कृषि प्रसार शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। और हमारा आज का जो विषय है वो इसी विषय से जुड़ा है। विषय है कृषि प्रसार शिक्षा में रोजगार की संभावनाएं। हमारे साथ आमंत्रित विशेषज्ञ स्टूडियो में है डॉक्टर विपिन कुमार, वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद मैडम, आपने अवसर जो दिया।
1: जी डॉक्टर साहब, अवसर तो आज हम बहुत सारी बात

0: बातें करेंगे, अफसरों की ही बात करने वाले हैं और आप हमें बताने वाले हैं। सबसे पहले तो यही पूछूंगी कि कृषि प्रसार शिक्षा क्या है और इसका उद्देश्य क्या है।
1: यस, तो अगर कृषि प्रसार शिक्षा की हम बहुत ही सिंपल तरीके से हम बात करें तो ये एक फॉर्मल एजुकेशन जो हमारे कृषि में मास्टर बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद लड़का जब वो जाता है तो मास्टर करने के लिए उसको एक एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एक प्रसार सब्जेक्ट होता है। और ये एक ऐसा कह सकते हैं सब्जेक्ट है जो कि एक ब्रिज, एक गैप जो है, जब हमारे रिसर्च होते हैं और फार्मर जो प्रैक्टिस करता है उनमें साइंटिफिक जो कहते हैं नॉलेज और फार्मर प्रैक्टिस में क्या गैप है, उसको किस माध्यम से जो इनोवेशन तकनीक है जैसे डिमॉन्स्ट्रेशन है या जो भी तरीके हैं उसके माध्यम से कृषि प्रसार कोशिश करता है कि जो रिसर्च हो रहा है, जो टेक्नोलॉजी है, वो फार्मर्स के बीच में लाने का प्रयास करता है। तो इस तरह के जो स्टडी होती है, जो भी पढ़ना होता है, इस तरह का एजुकेशन हमारा कृषि प्रसार जो है प्रोवाइड करता है।
0: जी, तो डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अपने सभी सुनने वालों को, किसान भाई बहनों को, युवाओं को बता दें कि इस विषय से संबंधित कृषि प्रसार शिक्षा में रोजगार की संभावनाएं, अरविंद आप हमारे सभी सुनने वालों को बता दें कि इसके लिए नंबर क्या है जिससे कि वो हमें कॉल करें, हमारे एक्सपर्ट आपको जवाब दे सके।
2: जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमें कृषि प्रसार शिक्षा में रोजगार की संभावना से जुड़ा कोई भी प्रश्न या जानकारी चाहते हैं तो आप हमें सीधे स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर है 2342108 और 2342108। दिल्ली के बाहर के श्रोता 011 लगाना ना भूलें। तो आपके प्रश्नों का हमें इंतजार रहेगा, जो आप जानकारी लेना चाहते हैं। डॉक्टर विपिन कुमार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं
0: और एक छोटी सी गुजारिश और कर लेते हैं कि आप विषय से संबंधित अगर सवाल पूछेंगे तो हमारा समय भी बचेगा और हमारे एक्सपर्ट भी आपको जवाब दे पाएंगे। और डॉक्टर साहब, कृषि प्रसार शिक्षा का जो महत्व है पहले की तुलना में आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो क्या अंतर है, पहले क्या था और आजकल क्या चल रहा है?
1: देखिए, जो पहले हमारे कृषि प्रसार के जो माध्यम थे वो हमारे एक ट्रेडिशनल तकनीक होती थी, जैसे हम कहते थे मेला, ठीक है, कहीं मेला डिमॉन्स्ट्रेशन प्लॉट लग जाते थे, इस तरह की प्रक्रियाएं, जहां पर क्या होता एक्सटेंशन वर्कर खुद किसानों के बीच में जाकर वो चीजें दिखाता था। लेकिन आज के दौर देखेंगे आप तो पूरा तरीके से चेंज हो चुका है, डिजिटल का जमाना है, आज हर किसी के हाथ पर एक प्लेटफॉर्म है, या इस चाहे वो फेसबुक के रूप में है, चाहे ट्विटर के रूप में है, चाहे यूट्यूब के रूप में है, ये प्लेटफॉर्म है और ये प्लेटफॉर्म इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है किसी के लिए। तो अगर आप प्रसार की शिक्षा में हैं तो डेफिनेटली आप उस पर स्टडी कर रहे हैं, उस पर इनोवेशन करेंगे, तरीके करेंगे, आपका जो चीजों को प्रस्तुत करने का जो तरीका होगा और लोगों से भिन्न होगा। तो अगर आप देखें तो इन माध्यमों का आजकल इस्तेमाल बहुत बड़े लेवल पर होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो मैं यही मानूंगा कि जो डोमिनेंसी है, जिसका कहते हैं कि ज्यादा आज महत्व बढ़ रहा है, वो है डिजिटल का, एक्सटेंशन का जो रूप देखने को मिलेगा आपको, आप डिजिटल की तरफ ज्यादा लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। नो डाउट आज भी हम किसान मेला लगाते हैं, हम गोष्ठियां लगाते हैं, किसानों के बीच में जाते हैं ऑथेंटिसिटी को बढ़ाने के लिए, लेकिन अगर देखा जाए कितना जल्दी हमको रीच को पाना है तो उन जगहों पर हमारा डिजिटल जो है आज एक्सटेंशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और निभाएगा। तो ये जो वेरिएशन आया है, जो डिफरेंस आया है, अब हम कह सकते हैं कि उसमें ये महत्व है।
0: मतलब डॉक्टर साहब, अगर आपने परंपरागत बातें की हैं तो उसमें हमारा रेडियो बहुत बड़ा योगदान,
1: रेडियो तो देखिए रेडियो था, टेलीविजन जो कृषि दर्शन आया करता था और आपका रेडियो का भी एक प्रोग्राम हुआ करता था, तो ये वो जमाने की बात है जब लोग एक पार्टिकुलर टाइम पे एक प्रोग्राम होता था उसका इंतजार करते थे, ठीक है,
0: होता है
1: और आज भी लोग करते होंगे, मैं इस चीज को नहीं मान, लेकिन आज जो एक्सटेंशन का रूप बदला है कि जैसे अगर एक विशेषज्ञ है वो कुछ बात करना चाहता है, अपनी बातों को दिमाग में रखना चाहता है या कहीं पर वो उपस्थित है और उसको ये लग रहा है कि ये चीज किसी अपने ऑडियंस को दिखाने लायक है, जो बहुत ऑथेंटिकेट है, वो अपने माध्यम से दिखा रहा है और लोगों तक पहुंच रहा है और लोग उसका भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं।
0: जी बिल्कुल, और सही कहा कि आज कल के दौर में रेडियो में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। देखिए, आप अपने घर बैठ के हमें सीधे फोन कर सकते हैं और एक्सपर्ट से सीधा जवाब भी पा सकते हैं। एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, हेलो।
3: नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। आप अपना नाम बताएं, कहां से बोल रहे हैं और सवाल पूछें।
3: मैं राजेंद्र जाटव मोदी नगर से बोल रहा हूँ।
0: राजेंद्र जाटव जी मोदी नगर से बोल रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है जी, सवाल पूछें अपना।
3: सवाल ये है, जो आप बातें कर रहे हैं बड़ी अच्छी लग रही है, इसमें रोजगार के भी अवसर हैं
0: जी।
3: तो जी। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि किसानों को रोजगार भी मिलेगा और कामयाबी की तरफ भी बढ़ेंगे
0: जी। बहुत अच्छी बात है आपकी जो हमारे साथ ही आप साझा कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए आप राजेंद्र जी।
3: सवाल ये है, मैं किसानों से कहना चाहता हूँ जो ये यूरिया या डीएपी डालते हैं, देसी खाद डालें तो और पैदावार अच्छी होगी।
0: जी
1: जी जी
2: जी हाँ, तो डॉक्टर
0: ठीक है राजेंद्र जी।
2: जी हाँ, ये
0: तो ये एक सुझाव दे रहे थे और बड़ा अच्छा सा सुझाव था इनका।
1: एकदम एकदम जी। और ऐसा नहीं है कि जैसे ये कह रहे हैं फायदे की बात, कल किसान भी जो बहुत प्रोग्रेसिव हैं, अपना खुद का प्रसार का माध्यम यूज करके लोग ज्ञान बांट रहे हैं और आमदनी कमा रहे हैं, पैसे
2: ये भी प्रसार का ही एक,
1: ये भी एक प्रसार का रूप ही है।
2: बिल्कुल। और हम प्रसार के रूप की हम बात कर रहे थे, हमने कृषि दर्शन की बात की, कई दशकों का एक दौर है। जहाँ कृषि दर्शन आया करता, जहाँ कुछ घंटों के सप्ताह में कार्यक्रम
1: हुआ करते थे
2: और बहुत सीमित जानकारी होती थी। आज के दौर में हर घर में मोबाइल फोन है, किसी के हाथ फोन में, और हम लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग तक पहुंच गए हैं, कंसल्टेंसी तक पहुंच गए हैं। उससे पहले कि हम उस डिजिटल एज पर आए, एक सवाल और जहन में आता है कि जो परंपरागत हमारे कृषि के जो हमारे विषय हैं, जो कृषि विश्वविद्यालय हैं जहां पर लोग स्नातक होते हैं, स्नातकोत्तर करते हैं, वैज्ञानिक भी बनते हैं वहां पर, उसमें और कृषि प्रसार की जो हम बात करें, दोनों में मुख्य अंतर क्या है? कन्वेंशनल जो एजुकेशन है कृषि की, क्या हम उससे इतर हम बात कर रहे हैं आज के विषय में? एक जो एक थिन लाइन है बीच में, मैं चाहता हूं उसके बारे में आप जानकारी दें।
1: देखिए क्या है कि जो आप जो पहले विश्वविद्यालयों में जो कृषि के प्रसार के जो हमें जब हम एक स्टूडेंट हुआ करते थे और हम जब कृषि प्रसार का पढ़ाई कर रहे थे बीएससी एग्रीकल्चर में, तो मुझे याद है कि उस टाइम पे इसकी बातें नहीं हुआ करती थी जो आज लोग उस टाइम पे हमें कैसे पंपलेट बनाना है, क्या अट्रैक्टिव फॉन्ट साइज होने चाहिए, ठीक है ना, कैसे पोस्टर बनाने हैं, इस तरह की बातों पर ज्यादा, और क्या कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग, इस तरह की बातें जैसे कि खेतों के किसानों के बीच में जाकर कैसे हमें इंटरेक्ट करना है, और हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस ही किया जाता किसी के सेंटिमेंट को ना हर्ट किया जाए, किस सोसाइटी में जाके किस तरह के बिजनेस की आप बात करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल दें, हमारे एक उस टाइम पे जो हमारे एक्सटेंशन के टीचर हुआ करते थे, बोले कि अगर सुअर पालन की बात कर रहे हो आप और तिवारी जी के मोहल्ले में घुस गए तो डंडा मार खा के ही आओगे ना। तो इस तरह की हमें बहुत सी चीजें जानकारी थी, लेकिन वो सब चीजें ट्रेडिशनल थी। आज ऐसा नहीं है कि वो प्रसार की शिक्षा में अब परिवर्तन नहीं हुआ। आज अगर अभी जाएं हमारे पूसा ही इंस्टीट्यूट में तो वहां डिजिटल लैब, इस तरह की अब लैब डेवलप हो गई और शिक्षा भी चेंज हो गई है। अभी क्या है, उसी तरह की पढ़ाई कराई जा रही है, बताई जा रही है कि उनको कैसे एक तरह से अपने कंटेंट को, वही कंटेंट को कैसे डिजिटल रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, बच्चों को उस बारे में भी अब चीजें शिफ्ट हो रही हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि हर चीजों का एक अपना चेक एंड बैलेंस है, बैलेंस दोनों का करना है।
0: बिल्कुल।
1: अगर आप बात करें जो किसानों के सीधा अंदर, अगर आप चाहते हैं इम्पैक्ट डालना कि किसान हमारी बातों को एकदम मान ले, तो उसका आज भी सबसे जो मुख्य एक्सटेंशन का जो कह सकते हैं प्रभावी रूप है, वो है डिमॉन्स्ट्रेशन। हम सीधा किसान के खेत पे जाते हैं और वो टेक्नोलॉजी हम कहते हैं भाई तुम हम जैसे जैसे कह रहे हैं तुम इसको कर लो, और अगर होता है तब तुम उसको अडॉप्ट करना। तो कहते हैं सीइंग बिलीविंग बाय सीइंग, मतलब देखकर वो विश्वास करता है। तो आज भी ट्रेडिशनल तरीकों का और इन जो डिजिटल तरीका जो आज मॉडर्न तरीका है, इन दोनों को हमको बैलेंस करके लेके चलना है। नो डाउट इन्फॉर्मेशन का फ्लो का रेट देखेंगे, स्पीड देखेंगे, तो आज को जो डिजिटल माध्यम है उनमें तेजी आ गई है।
0: वही डॉक्टर साहब की नई नई तकनीकों के आने से समय की जहां बचत हो रही है, वहीं बहुत सारी जानकारियां जो घंटों में पहुंचा करती थी वो मिनटों में
1: नहीं, मैं तो कहता हूं सेकंडों में। जैसे अपडेट होता है उसके फॉलोअर्स जो होते हैं, जो इन्फ्लुएंसर अगर है कोई उस तरह का, तो खटाक से उसके पास आ जाता है नोटिफिकेशन।
0: डॉक्टर साहब, क्या युवाओं के लिए रोजगार की इसमें क्या क्या संभावनाएं हो सकती है?
1: अगर हम रोजगार को दो भागों में बांटें, एक जो हमारे सिस्टम है, सिस्टम मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट, और एक हम खुद स्टार्टअप की बात करें, दो तरह से बात हम करते हैं। तो सरकारी अगर देखें जाए, जो हमारी सरकारी प्रक्रियाएं हैं, इवन हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की भी, नॉन गवर्नमेंट जो है उनकी भी प्रक्रियाएं हैं, उनका एक बहुत ही ट्रेडिशनल रूप होता है। कहीं भी आप जाएंगे केवीके होगा, और केवीके का मुख्य रोल क्या है, वो प्रसार किसी चीज का, जो टेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर की, उसको प्रसार करना। तो एज ए एक्सटेंशन वर्कर के रूप में वो केबीके में, एज ए मास्टर करने के बाद हो जा सकता है। दूसरा, बहुत से एनजीओज हैं जो आजकल देखते होंगे कि फंड लेके किसी टेक्नोलॉजी को वो चाहते हैं ट्रांसमिट करना, पहुंचाना किसानों तक, वहां भी वो एनजीओ

0: भी ऐसे ही लड़कियों का जो प्रसार में अपनी क्वालिफिकेशन कर रखे हैं एग्रीकल्चर प्रसार में, उनको प्रिफरेंस देते हैं। इवन नाबार्ड जैसी जो संस्थाएं हैं, बैंकिंग संस्थाएं हैं, वहां भी आपके स्कोप हैं। हम जैसे साइंटिस्ट बनते हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये खुद उसमें एसआरबी भी एआरएस एक्सटेंशन जो एजुकेशन साइंस है उसमें एआरएस निकलता है, उसमें भी लड़का अगर वो मास्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में कर रखा है तो वो अप्लाई कर सकता है और वो बन सकता है। तो ये और स्टेट डिपार्टमेंट, देखिए एग्रीकल्चर क्या है कि स्टेट डिपार्टमेंट है, आप अगर किसी भी स्टेट में जाएंगे तो वहां की स्टेट की भी अपनी एक मशीनरी होती है, तो वहां पर एक्सटेंशन ऑफिसर, एक्सटेंशन स्पेशलिस्ट, इस तरह के भी वैकेंसीज होती हैं जहां पर एक्सटेंशन का ये जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का जो क्वालिफाइड लड़का है ये वहां एज ए गवर्नमेंट एब्जॉर्ब हो सकता है। अब रही बात प्राइवेट की, बात करें तो प्राइवेट देखेंगे कि जो भी है वो मार्केट ओरिएंटेड लोगों को हायर करते हैं मार्केटिंग में स्पेशली, तो वैसी जगहों पर मार्केटिंग वाले प्लेस पे एक्सटेंशन का जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का लड़का रहेगा डेफिनेटली जो दूसरे लड़के हैं उनसे काफी अच्छा, क्योंकि उसकी कहते हैं ना कि प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने की, इंसान को कन्विंस करने की वही कला दो साल में वो सीख के आएगा, तो ऐसी चीजों में वो डेफिनेटली वो बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करेगा।
1: डॉक्टर साहब बहुत सारे सवाल और हैं और बड़ा ही इंटरेस्टिंग आज का हमारा विषय है, मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
2: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का
3: पुतला बोल रहे,
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा,
3: परम तो सभी डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए
2: कोई डर नहीं,
3: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
4: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
5: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
6: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
5: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
6: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
5: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
7: और आज का हमारा विषय है साथियों, कृषि प्रसार शिक्षा में रोजगार की संभावनाएं। हमारे साथ हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर विपिन कुमार। और
8: जी हाँ,
7: क्या पूछना चाह रहे थे आपने? हाँ, बहुत सारे सवाल संजोए हुए, पूछिए।
8: हाँ, ब्रेक के दौरान हमारे जैसे बात भी हुई थी डॉक्टर साहब से। हाँ, हम लोग हरित क्रांति से डिजिटल क्रांति तक पहुंच गए हैं, और आज के दौर में कुछ शब्द बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं जिसमें एक है स्टार्टअप, और कृषि भी हमारे एक ऐसा है जो एग्री स्टार्टअप्स का दौर है। बहुत सारे एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो एक्सटेंशन एजुकेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं कृषि प्रसार शिक्षा की, उसमें स्टार्टअप्स का क्या योगदान हो सकता है, और जो हमारे युवा हैं वो किस तरह के स्टार्टअप्स में आके इस शिक्षा का प्रसार बढ़ा सकते हैं?
9: जैसे मैं शुरू में ही बोला था, कृषि प्रसार क्या है, एक ब्रिज है जो लिंक का काम करेगा नॉलेज के बीच में और जो रिसीवर है, जो हमारे फार्मर्स हैं उनके बीच में। अब आपको देखना है कि आपकी रुचि कहाँ पे है। आज के दौर में देखेंगे कि मैक्सिमम, जो एक वर्ड बोल रहा हूँ, इन्फ्लुएंसर, आज के ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर आ चुके हैं, मतलब एग्रीकल्चर में भी हैं और नॉन एग्रीकल्चर में भी हैं, ठीक है। तो उनकी बहुत ही अच्छा खासा वो आमदनी भी कमा रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, और अपनी अपनी ब्रांडिंग करके वो प्रोडक्ट को और चीजों को एक तरह के स्टार्टअप का रूप दे रहे हैं। तो इसी तरह से अगर हम कहें जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लड़के हैं, वो स्पेशली अगर एग्रीकल्चर को ही टारगेट कर रहे हैं अपने, तो अपनी कला का, अपना जो नॉलेज है उसको यूज कर सकते हैं इस तरह के

0: डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट करके यूट्यूब पे, लिंक्डइन से, इंस्टाग्राम पे, ये बहुत से जो प्लेटफॉर्म को बनाएं, और जो स्किल उन्होंने सीखा है किस तरह से अपने क्या कहते हैं कि नॉलेज को किस रूप में कन्वर्ट करके किसानों तक पहुंचें और पहुंचाने की कोशिश करें। तो जैसे आपका देखेंगे कि चीजें आप बढ़ने लगते हैं, तो आपको लग रहा है कि ये चीजें और स्केल अप हो रही है, तो आप इसको एक एज ए स्टार्टअप प्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप तुरंत स्टार्ट करेंगे और आपको कोई ग्रांट मिल जाएगा, ऐसा नहीं, आपको एक तरह से सक्सेस स्टोरी दिखानी पड़ेगी और आपको लगना पड़ेगा कि हाँ आपको लोग फॉलो करते हैं और आप चीज जो कर रहे हैं उसमें कोई दम है, तो आप उसके बाद आप जा सकते हैं अपने ग्रांट के लिए और एक एज ए स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा, जैसे अभी हमारा पहले जो क्या था कि ट्रेडिशनल तरीका था किसानों के बीच में पहुंचने का, अभी हमारा पूसा खुद, पूसा समाचार एक मतलब हर सैटरडे को वो पब्लिश करता है यूट्यूब चैनल पे, तो इसी तरह से अब आपको अपने पूरे एग्रीकल्चर के डोमेन के एक्सपर्ट्स को आप ढूंढ कर, आप वो तो आपके ऊपर है, आप उसको किस तरह से स्टार्टअप कर दे रहे हैं, देना चाह रहे हैं। तो आजकल अगर देखेंगे जो बहुत इंडिविजुअल लेवल पर भी बहुत से ऐसे जो इनोवेटिव किसान हैं, इवन मैं युवा को देखता हूं एज ए इन्फ्लुएंसर, वो अपनी कैरियर को बना रहे हैं। तो मेरा मानना है कि आज के दौर में जो वही बंदा सक्सेसफुल है जो नॉलेज को, जो ज्ञान को अपने अनुसार लोगों को पहुंचा दे अपने ऑडियंस के बीच में, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है और अच्छा खासा आमदनी कमा सकता है। इसके अनेकों उदाहरण है, आप सभी लोग रोजाना सुबह उठते होंगे और जब अपना इंस्टाग्राम खोलते होंगे या यूट्यूब खोलते होंगे तो आप जरूर किसी न किसी एक ऐसे के वीडियो को देखते होंगे, या चाहे वो कृषि से संबंधित होता होगा या किसी से संबंधित होता होगा, उसको आप फॉलो करते होंगे और वो बंदा एक तरह से आपसे बिजनेस भी कर रहा है और अपने पैशन को भी फॉलो कर रहा है। तो मेरा जो भी युवा है, मैं जो प्रसार में अपनी कैरियर बनाना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगा, आप अपनी जो एजुकेशन आपका कृषि प्रसार है उसके अकॉर्डिंग आप अपने जो नेचर है आपका उसके प्रवृत्ति में अपना चेंज लाइए। और आज का जो दौर है जो डिजिटल है और मैगजीन, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर में दूं, बहुत ऐसे आप देखेंगे कि लोग मैगजीन भी पब्लिश करते हैं और वो मैगजीन का सब्सक्रिप्शन 200 रुपये 100 रुपये रख देते हैं और बहुत से जो प्रोग्रेसिव किसान हैं जो कंपाइल करके उनको पढ़ते हैं। तो इस तरह की आप क्या कह सकते हैं, रोजगार के अवसर ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि आप किसानों के बीच में छोटे मोटे गोष्ठियां या इस तरह के करा के जो सरकार की जो स्कीम्स हैं या कहीं जो आपको लगता है कि इस क्षेत्र में टेक्नोलॉजी की गैप है, एग्जांपल के तौर पे हम बात करें, आज जब अभी धान की खेती होने जा रही है और DSR एक बहुत ही मुख्य टेक्नोलॉजी है, सरकार भी चाहती है कि DSR ज्यादा से ज्यादा फैले, लेकिन आपको लग रहा है कि आप कुछ ऐसा करके कुछ किसानों को कन्विंस कर सकते हैं, तो एज ए लोग NGO भी देखते होंगे, लोगों ने रजिस्टर करके इस तरह के प्रयास कर रहे हैं और अच्छे खासे ग्रांट सरकार से और भी जो प्राइवेट की आजकल CSR फंडिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है, तो इस तरह के फंड लेकर आप किसानों के बीच में पहुंचकर अपना एक स्टार्टअप खुद कर सकते हैं, अपनी खुद की ब्रांडिंग कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा अवसर है प्रसार के लोगों के लिए।
1: आपका जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली है, इस दिशा में क्या हमारे युवाओं के लिए, कुछ महिलाओं के लिए कुछ कर रहा है?
0: हमारे वहां जोनल टेक्नोलॉजी एक असेसमेंट ZTM है, ये हर आपको लगभग में यूनिवर्सिटीज में मिलेगी, जो कि लोकल युवा जो हैं जो स्टार्टअप के साथ आते हैं उनको वो हेल्प करते हैं और वो ये बताते हैं कि आपका जो ये इनोवेशन है, क्रिएटिविटी है, जो आपका ये आइडिया को सुनेंगे समझेंगे, फिर उस तरह के जो एजेंसीज हैं फंड देती हैं उनमें आपको सपोर्ट करते हैं। अच्छा। तो उनसे जाके जो भी ZTM है, जैसे हमारे पूसा में ZTM है, वहां पर जाकर अपनी जो भी इनोवेशंस हैं उनका आपको डिस्प्ले करना होगा, वो आपको असेस करेंगे कि आपका पोटेंशियल कितना है, फिर वो ग्रांट के लिए आपको असिस्ट करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो सरकारी तंत्र ने और सरकार का जो प्रयास है कि युवाओं के जो रियल में इनोवेटिव हैं, क्रिएटिव हैं, जिनके पास कुछ आइडिया है, तो उनको असिस्ट करने में कोई कसर छोड़ नहीं रही है और इस तरह के प्रयास हर संस्थान कर रहे हैं। तो मेरा आग्रह होगा कि जो भी इस तरह के युवा हैं उनके पास कोई भी आइडिया है और करके थोड़ा एक उदाहरण के तौर पे वो अपने आप को प्रस्तुत कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी करके लेके जाएंगे तो नहीं आपको इंटरटेन किया जाएगा। लेकिन
1: हमारे बहुत से युवा साथी अभी इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे जो पढ़ाई कर रहे हैं इस समय कृषि के पाठ्यक्रम को लेकर, तो अगर इस क्षेत्र में आना है उनको तो कौन कौन सा पाठ्यक्रम उनके लिए सही रहेगा, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में जाए या निजी क्षेत्र में जाए, पाठ्यक्रम तो एक अलग ही होता है इसका।
0: देखिए क्या है कि कृषि प्रसार वर्ड, जिसे कृषि प्रसार की अगर हम बात करें तो कृषि से संबंधित जो एलाइड सब्जेक्ट हैं, हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, फिशरीज है,

0: इस तरह के जो बैचलर्स डिग्री कर रहे हैं, होम साइंस है, ठीक है, ये जो आते हैं इनके एग्रीकल्चर के एलाइड, अगर वो बैचलर की डिग्री कर रखे हैं और वो ये चाहते हैं कि अब हमें मास्टर कृषि प्रसार में करना है, तो उसके लिए वो स्टेट का जो आपका जो इंट्रेंस एग्जाम होता है स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज कराती हैं, हमारा ऑल इंडिया जो इंट्रेंस टेस्ट जो अभी एनटीए कराता है जो आईसीआर पीजी के नाम से, तो इनके फॉर्म के भरने के बाद वो अपना जैसे ऑल इंडिया एंट्रेंस की अगर हम बात करें तो जैसे जेआरएफ के थ्रू जूनियर रिसर्च फेलोशिप देता है हमारा आईसीआर हर लड़के को, आज के टाइम पे करीबन 12,500 रुपए का पर मंथ ग्रांट देता है आईसीआर। तो इस तरह के ग्रांट को लेके भी वो चाहे तो अच्छे से संस्थान आईआरआई जैसे संस्थान, एनडीआरआई जैसे संस्थान जो आईसीआर के हैं वहां पर भी अच्छी अच्छी संस्थानों में जा सकते हैं, या तो जिस स्टेट में है उस स्टेट के जो स्टेट की वो होती है इंट्रेंस एग्जाम होती है यूनिवर्सिटीज कराती हैं, जैसे यूपी कैटेट हमारे यहाँ होता है, उत्तर प्रदेश का मैं हूँ तो वहां पर यूपी कैटेट होता है, इसी तरह राजस्थान में पैट जैट होता है, तो इस तरह के डिफरेंट स्टेट्स अपने खुद के भी कराते हैं, उनके तरह वो अपनी एलिजिबिलिटी को जाके चेक कर लें कि उनके कृषि प्रसार में क्या क्या एलिजिबल सब्जेक्ट हैं। जो मैंने बताए वो मुझे पता था इसलिए बता दिया, लेकिन जो लड़का अगर चाहता है उसको चेक भी करना है तो सबसे अच्छा साधन यही है कि आप बुलेटिन ब्राउचर्स हैं उनमें जाके कृषि प्रसार की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप जाके चेक करें, वहां पर आपको पता चल जाएगा। और वैसे एलाइड जो एग्रीकल्चर एलाइड में बीएससी कर रहे हैं वो तो एलिजिबल ही होते हैं। इसके अलावा आज के टाइम पे कम्युनिटी साइंस के नाम पे भी एक सब्जेक्ट लॉन्च किया गया है हमारे यहाँ पर आईआरआई में चल रहा है, इसको बाहर होम साइंस भी कहा जाता है, तो वो लोग भी इसमें एलिजिबल
1: आगे बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी
2: जी हाँ डॉक्टर साहब। एक दो चीजें और मैं जानना चाहूंगा, अभी समय बहुत कम बचा है कार्यक्रम में, कि हमने बात की स्टार्टअप्स की, हमने सोशल मीडिया की बात की, इसके अलावा और कौन से प्रमुख अवसर हो सकते हैं जिनको हमारे युवाओं को जिनका लाभ उठाना चाहिए और उन्हें एक्सप्लोर करना चाहिए, साथ ही आपके हिसाब से इस क्षेत्र में चुनौतियां कौन सी हैं जो हमारे युवा फेस कर सकते हैं और उनसे उन्हें कैसे जो है पार पाना होगा।
0: देखिए जैसे ये जो भी हमने अभी बहुत सी बातें की क्या कहते हैं डिजिटल की बातें की, अब इसके अलावा भी देखेंगे, जैसे मैंने थोड़ी सी हिंट दी थी कि अभी आज के टाइम पे सीएसआर की फंडिंग स्टार्ट हुई है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर कॉर्पोरेट को दी गई है, और हर कॉर्पोरेट ये चाहता है कि वो किसी न किसी ऐसी एरिया को टारगेट किया जाए जहां पर उसका फंड जो वो देना चाहता है, जैसे लिस्ट डेवलप्ड एरिया है। तो अगर आपको लगता है कि हम किसानों के बीच में जाके भी काम कर सकते हैं, वहां भी आपको एक्सटेंशन सब्जेक्ट बहुत ही हेल्प करने वाला है, क्योंकि यही सब चीजें पढ़ाई जाती है कि कैसे आप किसान के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करेंगे, उस बिहेवियर के अकॉर्डिंग अपने नॉलेज को कैसे आप उनके बीच में लाके डिमॉन्स्ट्रेट कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही सुनहरा चांस है उन छात्रों को जो मास्टर और पीएचडी प्रसार में करके इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर सकते हैं और ग्रांट ले सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है, डायरेक्टली सोशल मीडिया को छोड़ के भी ऐसे भी वो कर सकते हैं। लेकिन मैं अगेन यही कहना चाहूंगा कि आज का दौर है डिस्प्ले, जो भी आप कर रहे हो उसको दिखाना जरूर सीखो
1: जी।
0: आज आप देख रहे होंगे चाहे वो भी कोई भी हो, देश का बड़ा से बड़ा, चाहे वो यूएस का प्रेसिडेंट हो या चाहे कहीं का कोई कुछ, वो हर कोई दिखाना चाह रहा है कि वो कर क्या रहा है, क्योंकि ऑथेंटिसिटी आपको बढ़ानी है, ठीक है। तो आप इस तरह से भी घुस के, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि आप डिजिटल से दूर मत रहिए, क्योंकि अगर आप 100 किसानों के बीच में जाके 100 लोगों को कन्विंस कर रहे हैं और आप उसको वहीं पर सीमित कर रहे हैं तो एक अच्छा नहीं मैं मानूंगा, उसको आप डिजिटल रूप में भी लाइए, ठीक है, जिससे क्या कि आपकी ऑथेंटिसिटी है लोगों तक पहुंचने की, हो सकता है कोई फंडर ही जो है, बहुत से लोग चाहते हैं कि एक ऑथेंटिसिटी कोई हमको बंदा मिले जिसको हम फंडिंग कर पाए,
1: बिल्कुल
0: देख रहे हैं ना, तो वो विश्वास करने के लिए दूर बैठे इंसान के लिए वो दिखाना बहुत ही जरूरी है।
1: इस दिशा में हमारे जो बैंकिंग है वो भी बैंकिंग
0: सहयोग करती
1: है इस दिशा में। तो डॉक्टर साहब चूंकि समय बहुत कम रह गया, तो चलते चलते आपसे ये कहेंगे कि जो आज हमारा आज का विषय है कृषि प्रसार शिक्षा में रोजगार की संभावनाएं, इस विषय पर हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, हमारी वो महिलाएं जो कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए मेरा यही संदेश है कि आप लोग सबसे अगर कृषि प्रसार में हैं तो याद रखिएगा एक क्वालिटी अपने अंदर अवश्य डेवलप कीजिए कि क्या आपके दिमाग में है और उसको कैसे आप प्रेजेंट करें, कितने ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंट करें, इस कला को दिन रात सोचिए, इसमें सुधार करने की कोशिश कीजिए, तभी जाके आप एक एक्सटेंशन के अच्छे वर्कर साइंटिस्ट या

0: कुछ भी बन सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कभी कभी हमारे पास डिग्री क्लास वन की होती है, फर्स्ट क्लास की होती है, लेकिन हमारा डिस्प्ले बहुत ही पुअर होता है। तो मेरा मानना होगा कि अगर आप सब्जेक्ट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से कर रहे हैं तो अपनी वाणी, अपनी लिखावट और अपनी क्रिएटिविटी, इन तीनों पर बहुत ही फोकस कीजिए, जो कि आपका अट्रैक्टिव हो और आपको एक वोकल पॉइंट से अट्रैक्ट आए आपकी ऑडियंस को। अगर ये कला है तो आप
1: लिखना,
0: दुनिया के,
1: पढ़ना और
0: हाँ,
1: बोलना,
0: बोलना,
1: तीनों ही चीज अच्छी
0: तीनों
1: होनी
0: बहुत ही,
1: चाहिए और अनुसंधान भी होना चाहिए
0: तो
1: साथ।
0: अनुसंधान आप उसी के तरीके करेंगे
1: बिल्कुल
0: ना।
1: बिल्कुल,
0: तो ये जो कला अगर है तो आप बहुत अच्छे एक्सटेंशन वर्कर, चाहे सरकारी सिस्टम में, चाहे प्राइवेट सिस्टम में, चाहे आज स्टार्टअप के सिस्टम में, आप लीड कर पाओगे। तो यही है मेरा संदेश सभी को।
1: और इस दिशा में जहां हमारी सरकार बहुत प्रयास कर रही है, वहीं हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं, हमारे कुछ किसान भाई भी बहुत आगे बढ़
0: एकदम
1: चढ़कर
0: एकदम एकदम,
1: काम कर रहे हैं। कई बार उनकी जो सफलता की कहानियां होती हैं, उनकी जुबानी सुनने को मिल जाती
0: आजकल तो
1: है।
0: पॉडकास्ट जो यही तो है,
1: जी जी जी
0: पॉडकास्ट
1: बिल्कुल,
0: जिसने रूप लिया है, एक सफल व्यक्ति को लेके पॉडकास्ट, बहुत से लोगों ने पॉडकास्ट करके भी अपना एक स्टार्टअप
1: एक
0: स्टार्ट कर रखा
1: स्टार्टअप
0: है।
1: किया है। सही बात है ये, और वाकई में हम सारी दुनिया देख रही है इन
0: दोनों
1: चीजों
0: दुनिया
1: को,
0: रहे,
1: सोशल मीडिया से
0: सोशल
1: जुड़े
0: मीडिया
1: हुए
0: से
1: हैं
0: भी।
1: हम लोग। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर विशेषज्ञ हमारे डॉक्टर विपिन कुमार, वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से आज हमारे साथ थे, उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। डॉक्टर साहब, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद
0: ये
1: करते
0: मेरा
1: हैं।
0: सौभाग्य था, धन्यवाद मैडम।
1: जी धन्यवाद। और अरविंद, अब हम भी अपने सभी सुनने वालों से विदा लेते हैं। इस कार्यक्रम के संयोजक थे शिवनंदन लाल, प्रस्तुतकर्ता तुषार बाराशेर, और आपकी सेवा में प्रस्तुत किया प्रतिमा शर्मा और
2: अरविंद भारद्वाज ने। दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
1: नमस्कार।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जनकल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त, सुरक्षित और बेहतर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 75 रूपये का स्मारक सिक्का और 5 रूपये का एक विशेष डाक टिकट जारी किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। मंत्री स्तरीय बैठक 13 जून को होगी। सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इससे कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट बटन दबाकर लद्दाख के मिनमर्ग में जोजिला सुरंग के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास विस्फोट किया और इसे कश्मीर तथा लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक क्षण बताया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी उपस्थित थे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि यह सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। समुद्र

कैसे करें हम खुद को तेरे प्यार के काबिल, कैसे करें हम खुद को तेरे प्यार के काबिल, जब हम आदतें बदलते हैं तुम शर्तें बदल देते हो। नमस्कार, स्वागत करती हूं मैं अपराजिता आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां ये समय है मनभावन प्रोग्राम का। मनभावन वही प्रोग्राम है जिसमें हम आपकी पसंद के गीत आपको सुनवाते हैं अब से लेकर 4 बजे तक, और इन गीतों की फरमाइश या रिक्वेस्ट आप हमें लिखकर भेजते हैं हमारे ईमेल आईडी पर, जो कि है fmgoldaiadelhi@gmail.com। तो पहला गाना मैं आपको सुनवा रही हूं बहुत ही खूबसूरत, 3 देवियां फिल्म से किशोरदा की आवाज में।

जी हम तो बिल्कुल हकीकत हैं और इसीलिए आपके मैसेजेस यहाँ शामिल कर रहे हैं और आज आप ही के पसंद के गाने आपको सुनवाने वाले हैं। पहला मैसेज हमें मिलता है संतोष खटसे का। आप गैंगस्टर फिल्म से एक गाना सुनना चाहते हैं। महाराष्ट्र से आप प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं विनोद खटसे के साथ। अगला मैसेज है तुलसी मस्कीन का और आपके साथ है वीना, आशीष, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता, केशु रिधान खुराना भी आपके साथ हैं। प्रोग्राम आपको ये वाला पसंद आता है ऐसा आप कहते हैं। अंकित कांगड़ा हरियाणा से हमें मैसेज भेजते हैं, राम राम जी लिखकर कहते हैं कि दो बदन फिल्म से एक गाना आपको सुनवा दिया जाए। मोनी कांगड़ा, अंकित, प्रिंस बोट, सीताराम और साहिल कांगड़ा आपके साथ हैं। स्वरूप आनंद सरजल प्रोग्राम को सुन रहे हैं और बहुत सारे इमोजीज के साथ आपने हमारा स्वागत किया है, जिसके लिए मैं आपको शुक्रिया कहती हूं। छत्तीसगढ़ से आप हमारे साथ हैं और जिंदगी और तूफान फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं मुकेश साहब की आवाज में। और स्वरूप आनंद सरजल आपके साथ जी, आपने ही हमें संदेश भेजा है। और मेहर अरोड़ा का भी मैसेज हमें मिलता है। मेहर अरोड़ा क्या कहते हैं जान लेते हैं। आप श्री गंगानगर राजस्थान से प्रोग्राम को सुन रहे हैं। ममता अरोड़ा, कीर्ति, भूमिका अरोड़ा के साथ और चरस फिल्म

आपने गाने की रिक्वेस्ट हमें लिख भेजी है। विजय सुरलकर का भी मैसेज हमें मिलता है, झुक गया आसमान से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। रतन माला और गौरी सुरलकर आपके साथ हैं। अगला मैसेज हमें जगन्नाथ पटेल का मिला है और आप खंडवा से हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं। कमला, अंतिम, जगन्नाथ पटेल, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, मनमानस और कनिका पटेल आपके साथ हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो अगला गाना है वो कौन सी फिल्म का है, वो कौन सी फिल्म है ये? जी हाँ, वो कौन थी, ये फिल्म है और आप चंडीगढ़ से इस गाने को सुनना चाहते हैं, बिमला और सतीश अनेजा। तो चलिए सुनते हैं आशा जी की आवाज में ये गाना।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: Join Indian Navy. The Indian Navy invites online applications from unmarried male candidates for Agniveer Apprentice 01/2027 and 02/2027 batch. Last date for submission is 29th June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready. Cohesive. Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Vikasit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.

स्वागत एक बार फिर आप सभी का मनभावन में। एक बार फिर से सभी लिसनर्स को बताना चाहती हूं, अगर आपने अभी ट्यून इन किया है तो ये एक रिक्वेस्ट बेस्ड शो है जिसमें आप अपनी रिक्वेस्ट हमें लिखकर भेज सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पर, जो कि है fmgoldairdelhi@gmail.com। आपकी पसंद के गाने हम आपको सुनवा रहे हैं, और अगला जो गाना है वो किसकी पसंद का होगा उसके लिए हमें थोड़ी सी ईमेल्स, थोड़े से नाम शामिल करने होंगे। तो अगला मैसेज हमें मिला है रवि कुमार राहुल का, और आप हीरा फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं हरियाणा से। रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल आपके साथ हैं। और अगला मैसेज आता है मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज फरदीन, सुहान अरजान, अबान और आपके परिवार के सदस्य हैं और आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपको लगता है कि आपका मैसेज गायब हो गया है। हालांकि अब्बासी साहब, आपने इतनी सारी ईमेल भेजी हैं, मैसेज गायब हो के भी गायब नहीं होता है ना। जो जानते हैं हमने कितनी बार भेजी हैं वो ताल्लुक रख पा रहे होंगे मेरी बात से। तो खैर, हरजिंदर सिंह भाटिया ने हमें ईमेल लिख भेजी है, आपके साथ हैं एंजल, सोनू, पप्पी भाटिया, और आप जमशेदपुर से प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। दो आंखें बारह हाथ से आप एक गाना सुनना चाहते हैं आज। अनिल मोहन का मैसेज हमें मिलता है तीसरी कसम से, आप मुल्तानी डांडा से अपनी रिक्वेस्ट लिखकर भेजते हैं। उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक आपके साथ हैं। अगला मैसेज अनंता वाढे का हमें मिला है, और गैम्बलर फिल्म से एक बहुत ही सुंदर गाना आप सुनना चाहते हैं। आपके साथ है रामेश्वर वाढे, शुभम, साक्षी, खुशी, समस्त वाढे परिवार, आप सब इस गाने की रिक्वेस्ट हमें लिख भेजते हैं। और अगला मैसेज हम देखते हैं किसका है। फैज अहमद कतरी भी प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, और आप कहते हैं कि हम अपनी पसंद का गाना आपको सुनवा सकते हैं। आपके साथ शाकिर, मुलाजी, साबिर और रफीक भी हैं, और आप हुबली से प्रोग्राम को सुन रहे हैं। क्या बात है, देश के कोने कोने से जब मैसेजेस आते हैं ना तो लगता है कि बस सभी की पसंद के गाने सुनवा दिए जाएं। तो चलिए ऐसे देखते हैं कि अगला गाना किसकी पसंद का है जो हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। आपसे बस कुछ ही सेकंड्स दूर है वो गाना। वक्त फिल्म से एक गाने की रिक्वेस्ट हमारे पास आई है, और धर्मेंद्र, कपिल, ईशान, पूजा परिहार भोपालगढ़ राजस्थान से इस गाने को सुनना चाहते हैं। तो आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज में ये गाना आप सबके लिए, आप ही के अपने, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: जी, तो अगले मैसेजेस जो पहुंच रहे हैं हमारे पास, वो पूनम गगनेजा का अगला मैसेज आया है। आपके साथ हैं सुरेश, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित भी, और आप जलालाबाद वेस्ट से हमारे साथ हैं। अगला ईमेल हमारे पास अल्तमश खत्री का आया है और आप सुनना चाहते हैं दर्द फिल्म से एक गाना। आपके साथ अक्रम फरजाना और शबनम है। किशन वंजनी भी प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और आपके साथ हैं नीलम, स्वाति, कीशु। आप रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और कहते हैं कि हम अपनी पसंद का कोई भी गाना आपको सुनवा दें तो आपको अच्छा लगेगा। उत्तम सिंह जंगेल का मैसेज हमें मिलता है, साजन फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। और आपके साथ हैं मॉरिस जंगेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जंगेल और नंदनी जंगेल। और इसी के साथ सुखरी कला से अमित, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंगेल और अंजलि जंगेल का भी नाम आपने शामिल किए हैं। और राजा और रंग फिल्म से गाने की रिक्वेस्ट हमारे पास पहुंचती है जुम्मा नगर खंडवा से, और आपके साथ है अल्तमश, सबीना, मुदस्सिर, फिरदौस और हसन लाला। संदीप मक्कड़ का भी मैसेज हमें मिलता है और संदीप फिल्म नील कमल से गाना सुनना चाहते हैं, ज्योति मन्नत, भरत और कमल मक्कड़ के साथ। साहनी, आप पिंगा वाला चौक गोरैया जालंधर से प्रोग्राम को सुन रहे हैं। अमोल मानकर भी प्रोग्राम सुन रहे हैं, रास्ते का पत्थर फिल्म से आप उसका टाइटल ट्रैक सुनना चाहते हैं। आपके साथ हैं शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार। और बुल्डाना इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर और सुमित कुमार का भी मैसेज हमें मिला है। दुर्गा सैनी प्रोग्राम सुन रहे हैं। आपके साथ खंडवा से हैं अनीता सैनी, गौरव, ईशान, कार्तिक सैनी। इंतकाम फिल्म से आपने गाने की रिक्वेस्ट हमें लिख भेजी है। ताज मोहम्मद का मैसेज हमें मिलता है, गुलाम साबिर राही मेराज जहां के साथ आप हरिद्वार से प्रोग्राम को सुन रहे हैं। शमशूल कमर राही गंज डुंडवारा से खानदान फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं। आपके साथ है शाहीन, फातिमा, अनु खान, अदनान खान और फैजान खान। भूषण खेड़ा भी हैं मैसेज भेजने वालों में। आप भी राजा और रंग से गाना सुनना चाहते हैं, फजिलका पंजाब से। आपके साथ है विशु खेड़ा, विशाल, लाडी और फिरकी वाली तू कल फिर आना, यह है गाने के बोल। वैसे मैं आपको बता दूं कि पुकार फिल्म से गाने की रिक्वेस्ट हमारे पास आई है मेरठ से दिग्दर्शन गौर और कविता जी की। तो चलिए आपकी रिक्वेस्ट आज पूरी कर देते हैं और ये गाना आपकी पसंद का सुनवाते हैं सभी सुनने वालों को आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर।
1: देखो हाँ, मैके नहीं, तू मत मैके मत जाइयो। ए जॉय फर्नांडिस बेबी

अगला मैसेज हमें मनभावन में मिला है शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफताब रियाज मोहम्मद कैफ अंसारी अनवर मास्टर लुबना अंसारी और आलिया अंसारी का और बोधराज खोरवाल भी प्रोग्राम को सुन रहे हैं। कमला रानी गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश के साथ धनवान फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। ढेर सारी ईमेल्स आपने हमें भेज दी हैं और ऐसा लगता है कि एक पूरा पेज आप ही की ईमेल से जो है ना वो आप मुझे भरा हुआ लग रहा है। एचआर पांड्या का भी मैसेज हमें मिलता है जाने अनजाने फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। असम से आप हमें सुन रहे हैं हरेन पांड्या नरेन पांड्या और वीरेन पांड्या क्या बात है। और अमोल मानकर का मैसेज मिलता है रास्ते का पत्थर फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। शोभाताई मानकर दीपाली और श्लोक कुमार आपके साथ हैं और सहदेव दामोदर शशिकला और सुमित कुमार भी आपके साथ ही हैं। मोहम्मद यूनिस खत्री प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं सच्चा और झूठा फिल्म से एक गाना सुनना चाहते हैं आपके साथ हैं। अयूब यूसुफ और मोहम्मद सादिक खत्री भी आप खंडवा से प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। और किशन वंजनी का भी संदेश हमें मिलता है आप दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म से अजीब दास्तां है ये बहुत ही फेमस गाना है इसे सुनना चाहते हैं। और आपके साथ है सुमन महाजन आप इन्हें डेडिकेट करना चाहते हैं गाना क्या बात है। और इसके बाद सुनील पाठक भी प्रोग्राम को सुन रहे हैं आपके साथ है कमल पाठक दीपिका मल्होत्रा गव्या मल्होत्रा भाई सुचा सिंह पाठक दोस्ती फिल्म से आपने गाने की रिक्वेस्ट हमें लिख भेजी है। आफताब अंसारी का भी मैसेज हमें मिला है और मैसेज भेजने वालों में सुनील पाठक का नाम है। गणेश सुतर का भी मैसेज आया है आनंद फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। चेतन सुतार सारिका सुतार आपके साथ हैं कोल्हापुर से आप प्रोग्राम को सुन रहे हैं। राफिक भाई पवार का भी मैसेज आया है एक सपेरा एक लुटेरा फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं आपके साथ है बेनजीर कौसर मोहम्मद साकिब पवार अलमाज बानो पवार बेबी आयत फातिमा और मोहम्मद हसनैन पवार। अगला मैसेज हमें मिलता है किसका ये मैं आपको बताती हूं। जय का मैसेज आता है हमें जय राम खोरवाल सचिन अमन खोरवाल दीपांशु खोरवाल 1942 और लव स्टोरी से आपने गाने की रिक्वेस्ट हमें लिख भेजी है लेकिन मैं कौन सा गाना सुनवा रही हूं ये आपको बता देती हूं। इज्जत फिल्म से इस गाने की रिक्वेस्ट हमारे पास दिल्ली से आई है और उग्रसेन शकुंतला यादव और गरिमा इस गाने को सुनना चाहते हैं। लता जी और रफी साहब की आवाज में ये गाना आप सबके लिए मन भावन में।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
3: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
5: ढेर सारे मैसेजेस आपके मिल रहे हैं हमें मनभावन में, जिसे आप सुन रहे हैं आप ही के अपने आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अरविंद कुमार का मैसेज हमें मिलता है, आप प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। आलिम पटेल सुन रहे हैं प्रोग्राम और पर्वत फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। आपके साथ हैं मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल भी। कल्पना झा का मैसेज हमें मिलता है, फिर वही शाम वही गम, ये गीत आप सुनना चाहते हैं तलत साहब की आवाज में। आपके साथ है मानव, मयंक और आप गुजरात से प्रोग्राम को सुन रहे हैं। सुशांत प्रिया झा का मैसेज आया है, छाया फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। मास्टर निवेश कुमार, लड्डू कुमारी आपके साथ हैं, कीर्ति नगर से आप प्रोग्राम को सुन रहे हैं। सुरेंद्र संधु का भी मैसेज हमें मिला है और आपके साथ है अनीता संधु, रोहित, रितेश, शिखा संधु, प्रीतिश और मैक्स। और आप कहते हैं कि आप हमारी ही पसंद का गाना सुन लेंगे, उसी में बहुत खुशी हो जाती है, क्या बात है। उग्रसेन यादव प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आपकी पसंद का गाना तो हम आपको सुनवा चुके हैं। और अगला मैसेज शीशपाल वर्धन का हमें मिलता है, दिल के टुकड़े दो ये गाना आप सुनना चाहते हैं। और अगला मैसेज अनूप कौर का आता है, आप प्रोग्राम को सुन रहे हैं सरोज बंसल के साथ गुरुग्राम से। इशाक मोहम्मद भी हैं सुनने वालों में और आपके साथ है खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन बेगम, मोहम्मद अल्ताफ, निलोफर फातिमा और आपके परिवार के सभी सदस्य हैं। छत्तीसगढ़ से आप प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। भव्या मैथिली हैं, तीसरी कसम से गाना सुनना चाहती हैं। आपके साथ है लड्डू कुमारी और टुक टुक भी। नजफगढ़ से आप प्रोग्राम सुन रही हैं, इसे पसंद कर रही हैं। मल्होत्रा टीडी आपका मैसेज आता है, आपके साथ है ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप सिंह। आप ही की पसंद का गीत है अगला, जिसकी रिक्वेस्ट आपने हमें लिख भेजी है। मैंने प्यार किया से ये गाना आप तक पहुंचा रहे हैं। और एक और रिक्वेस्ट हमारे पास आई थी इसी फिल्म से गाने की, भारत भूषण साहब हैं, आप भी इसी फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं। अंजू श्रीवास्तव, दिव्यांशु भूषण, संस्कृति और पौरुष के साथ बेंगलुरु से। तो आपकी पसंद का गाना पहुंचा रहे हैं आप तक।

0: राजेश खोबड़खेड़े, सुरेश नारंग, नीटू मल्होत्रा, संजय साहू पोटिया कला से मैसेज भेजते हैं, ताज मोहम्मद, नवी हसन अब्बासी, सुरेंद्र संधू, बबलेश पवार, पूनम गगनेजा, उत्तम सिंह जंघेल, शेख मूसा भाईजान, जॉन डिकोस्ट्रो, पर्ल विलिस, संदीप मक्कड़ और मन्नत भरत मक्कड़, आप सब प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। आपके साथ ज्योति मक्कड़ भी हैं और रामकुमार रेवार, अत्तर सिंह करदम, शीशपाल वर्धन, मास्टर खिल्लू परवेज, सुरेश नारंग, इशाक मोहम्मद, उदय भानपाल, मोहम्मद वकार, अभिजीत ग्वांकर, पंडू चंदन, सुरेश राठौड़, अशोक डाले, रिजवान, आप सबके लिए ये गाना जाने से पहले।
1: हाँ,
2: क्या चुप रहूं
1: ना,
2: दिल में मेरे आज क्या है,
1: क्या है,

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते हुए देखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज दोपहर कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की भारत की ओर से कड़ी निंदा दोहराई। उन्होंने शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली और तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर स्थित रक्षा भूमि पर पहली बड़े पैमाने की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन सुविधा का विकास शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि यह 250 मेगावाट की सौर परियोजना उत्तर प्रदेश में रक्षा प्रतिष्ठानों की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी और साथ ही बिजली खर्च में महत्वपूर्ण दीर्घकालिक बचत भी करेगी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज कहा कि प्रत्येक शिशु को गर्भावस्था के प्रत्येक चरण में सुरक्षित, स्वस्थ और सम्मानजनक देखभाल का अधिकार है। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने लाखों गर्भवती महिलाओं को समय पर स्वास्थ्य जांच, विशेषज्ञ परामर्श और बेहतर मातृ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करके सुरक्षित मातृत्व को एक जन आंदोलन बना दिया है। पिछले 12 वर्षों में भारत की विदेश नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इसमें ब्रांड इंडिया और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत संकट के समय सबसे पहले मदद करने वाले देश के रूप में ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन और वैश्विक स्तर पर यूपीआई जैसे डिजिटल उपायों के जरिए हमेशा राष्ट्रीय हित को विश्व के साथ जोड़ा है। सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इससे कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट बटन दबाकर लद्दाख के मिनिकबर्ग में जोजिला सुरंग के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास विस्फोट किया और इसे कश्मीर और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करने

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ अपराजिता। आइए सुनते हैं किशोरदा की आवाज में ये गाना, और साथ में लता जी भी हैं।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: for experienced IT professionals capable of providing strategic guidance and technical expertise in information technology initiatives. Interested candidates may download the application form, eligibility criteria and terms of engagement from the FCI website. Applications must be submitted within 30 days from the date of publication of the vacancy notice in the Employment News. For details, refer to www.fci.gov.in. The Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti, has extended the last date for submission of applications for the post of a Commissioner, Command Area Development. The post is in Group A gazetted non-ministerial post in pay level 14 as per the 7th CPC and is to be filled on deputation, including short-term contract basis in New Delhi. The position involves overseeing programs related to command area development, irrigation management, water use efficiency, and allied water resources initiatives. Eligible officers serving in central or state governments, organizations who meet the prescribed service and experience requirements may apply through proper channel. Applications must be accompanied by RPARs, vigilance clearance, CADA clearance, and integrity certificate and penalty statements. Candidates who have already applied against the earlier notification need not apply again. For details, do refer to the website, that is at www.jalshakti-dover.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: Namaskar. रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। निरस्तीकरण संबंधी सूचना 25 अप्रैल 2026 को रोजगार समाचार में प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में ये सूचित किया जाता है कि संविदात्मक आधार पर टीजीटी सामाजिक विज्ञान की रिक्ति को प्रशासनिक कारणों से निरस्त कर दिया गया है। ये रिक्ति सैनिक स्कूल कोरुकोंडा के लिए प्रकाशित हुई थी। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का उपक्रम ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। डीजीएम उत्पादन विकास, डीजीएम अनुसंधान एवं विकास, वरिष्ठ प्रबंधक गुणवत्ता नियंत्रक, वरिष्ठ प्रबंधक सूचना प्रौद्योगिकी, वरिष्ठ प्रबंधक विपणन और कंपनी सचिव। आवेदन प्रक्रिया, पात्रता मानदंड और नियम और शर्तों के लिए देखिए ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.glidersindia.in। दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड जयसिंह रोड नई दिल्ली 1 आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। कनिष्ठ अभियंता कुल पदों की संख्या 6, कनिष्ठ अभियंता 1 पद, कनिष्ठ अभियंता QS एवं C 1 पद, कनिष्ठ अभियंता योजना 2 पद और कनिष्ठ अभियंता बिलिंग तथा अनुबंध 2 पद। गैर तकनीकी पद कर्मचारियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं जिनका विवरण इस प्रकार है: सहायक प्रबंधक प्रशासन 1 पद, लेखाधिकारी 1 पद, सहायक 1 पद, कंप्यूटर प्रोग्रामर 1 पद, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी 1 पद, कनिष्ठ सहायक 2 पद और कंप्यूटर ऑपरेटर 2 पद। विस्तृत नियम शर्तों और आवेदन तथा आरक्षण संबंधी जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.dphcl.com और www.delhipolice.gov.in। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का उद्यम इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड आमंत्रित कर रहा है एक पद के लिए आवेदन। पद का नाम है सलाहकार फील्ड ट्रायल कोऑर्डिनेशन। थल सेना के सेवानिवृत्त मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अधिकारी जो कि इन्फेंट्री डिवीजन से संबंधित हों, केवल वही आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम आयु सीमा है 62 वर्ष। विज्ञापन का विस्तृत विवरण देखा जा सकता है इंडिया ऑप्टल लिमिटेड की इस वेबसाइट पर, जिसका पता है www.indiaoptal.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में बज गए हैं शाम के 4:30, यानी वक्त है आपकी अपनी प्यारी न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। दोस्तों, आधा घंटे की हमारी इस मुलाकात में होंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, फिर चलेंगे हम अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास, जानेंगे क्या कुछ है खास उनके पास हमारे लिए, और इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रोज की तरह रहेगी हमारी नजर। दोस्तों, हम याद करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को है जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। दोस्तों, परिक्रमा के इस अंक के साथ आज मैं हूं मुनीश शर्मा और हमारे साथ हैं तन्वी खुराना। नमस्कार तन्वी।
2: नमस्कार मनीष। हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल आर लिसनर्स राइट नाउ। यस, दिस इज आवर न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा। यू ट्यून टू 100.1 मेगाहर्ट्ज गोल्ड एंड लेट्स बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस एट दिस आवर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया।
2: इंडिया हिट्स आउट एट पाकिस्तान इन द यूनाइटेड नेशंस, कॉल्स इट द फैक्ट्री ऑफ हेट।
1: खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू।
2: स्ट्रेटेजिक रोड प्रोजेक्ट जोजिला टनल अचीव्स फाइनल ब्रेक थ्रू, ब्रिंगिंग ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन कश्मीर वैली एंड लद्दाख क्लोजर टू रियलिटी।
1: प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल हुए पूरे, राष्ट्रव्यापी समारोह आज से हो जाएंगे शुरू।
2: आईएमडी इश्यूज रेड अलर्ट फॉर हैवी रेनफॉल ओवर कर्नाटका, केरला एंड माहे, ऑल्सो प्रेडिक्ट्स हीट वेव कंडीशंस ओवर दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ एंड वेस्ट राजस्थान।
1: और पुरुष क्रिकेट में दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया।
2: And now it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we are going to talk about the 10 years of Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan. Have you ever wondered what it truly takes to bring a new life safely into the world? A healthy baby. Yes, it's often the moment everyone celebrates. But behind that moment lies a journey filled with hope, anticipation, care, and sometimes unexpected risks.
1: एक छोटे से गांव में रहने वाली उस युवा महिला के बारे में सोचिए, जिसे हाल ही में पता लगता है कि वो माँ बनने वाली है। उसका परिवार उत्साहित है, पड़ोसी सलाह दे रहे हैं, भविष्य के सपने आकार लेने लगते हैं। लेकिन क्या होगा अगर उसे गंभीर एनीमिया हो जाए और उसे पता ही ना चले? क्या होगा अगर कोई समस्या तब तक छिपी रहे जब तक कि वो इमरजेंसी न बन जाए? इन जोखिमों को जानलेवा बनने से पहले कैसे पहचाना जा सकता है?
2: Sometimes the difference between a complication and a safe delivery comes down to one thing, and that is timely medical care. And over the last decade, India has taken a remarkable step to ensure that millions of mothers receive exactly that. And today, as the nation celebrates 10 years of Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan, we look at a program that has quietly transformed maternal health care across the country and touched the lives of crores of families.
1: Darasal, प्रेगनेंसी के बारे में हमेशा पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता। जो महिलाएं स्वस्थ दिखती हैं उन्हें भी दिक्कतें हो सकती हैं, गंभीर एनीमिया, जेस्टेशनल डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, इन्फेक्शन या एक से ज्यादा बच्चों की प्रेगनेंसी जैसी स्थितियों से मां और बच्चे दोनों को खतरा हो सकता है। ऐसे में समय रहते समस्या का पता लगाना बहुत जरूरी हो जाता है।
2: राइट। And that is precisely the challenge Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan set out to address. Launched on this particular day, that is 9th of June in 2016, this initiative gave a powerful promise to nation's mothers. On this day, every month, pregnant women across India can visit designated government health facilities and receive free, quality antenatal care. The program focuses especially on women in their second and third trimesters, the period when many pregnancy-related complications begin to emerge.
1: इस विजिट के दौरान माताओं की पूरी हेल्थ जांच, खून और पेशाब की जांच, अल्ट्रासाउंड दवाएं, पोषण संबंधी सलाह, काउंसलिंग और एक्सपर्ट मेडिकल सलाह दी जाती है. डॉक्टर गर्भवती महिलाओं में 25 अलग अलग तरह की हाई रिस्क स्थितियों की जांच करते हैं. जरा सोचिए, अगर डिलीवरी से हफ्तों या महीनों पहले ही किसी समस्या का पता चल जाए तो कितनी जानें आखिर बचाई जा सकती हैं.
2: The answer is reflected in the numbers. More than 7.5 crore pregnant women have received antenatal services under the Abhiyan over the past decade, complementing routine antenatal care.
1: दरअसल हर आंकड़ा एक ऐसी मां को दिखाता है जिसकी सेहत पर नजर रखी गई, एक ऐसे परिवार को जिसे मन की शांति मिली और एक ऐसे बच्चे को जिसकी जिंदगी की शुरुआत बेहतर हेल्थ केयर सपोर्ट के साथ हुई. एक जानी पहचानी स्थिति पर विचार करें. दूर दराज इलाके में रहने वाली महिला को गर्भावस्था के दौरान सब कुछ ठीक लग सकता है. वो घर के काम करती रहती है, परिवार का ध्यान रखती है और ये मान लेती है कि सब कुछ सामान्य है.
2: बट ड्यूरिंग अ प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान चेकअप, डॉक्टर्स डिस्कवर दैट हर हीमोग्लोबिन लेवल्स आर डेंजरसली लो एंड ट्रीटमेंट बिगिन्स इमीडिएटली. फॉलो अप केयर इज अरेंज्ड, अ पोटेंशियल इमरजेंसी इज प्रिवेंटेड बिफोर द डिलीवरी. स्टोरीज लाइक दीज आर अनफोल्डिंग एवरी मंथ अक्रॉस इंडिया.
1: और जब हाई रिस्क प्रेगनेंसी का पता चलता है तो मदद वहीं नहीं रुक जाती. ये समझते हुए कि पहचान करना सिर्फ पहला कदम है, सरकार ने 2022 में एक्सटेंडेड प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान रणनीति शुरू की. क्यों? क्योंकि जोखिम का पता लगाना जरूरी है लेकिन उस पर लगातार नजर रखना और भी जरूरी है.
2: Under the extended program, every high-risk pregnancy is individually tracked until safe delivery. Additional antenatal visits are encouraged. Mothers receive reminders. Asha workers stay connected. Medical support remains available throughout the pregnancy journey. And this ensures that no woman feels alone during one of the most important phases of their lives.
1: इस पहल की एक और खास बात यह है कि इसने डॉक्टर्स की भूमिका को किने सिरे से परिभाषित किया. क्या उनका योगदान रोजमर्रा के क्लिनिकल कामों से आगे भी हो सकता था? एक अनोखे वॉलंटियर मूवमेंट ने दिया इसका जवाब. इस प्रोग्राम में प्राइवेट सेक्टर के ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट और फिजिशियंस को अपनी विशेषज्ञता का योगदान देने के लिए आमंत्रित किया गया.
2: The Prime Minister himself appealed to the doctors through Mann Ki Baat, requesting them to dedicate only one day every month, 12 days a year, to support pregnant women. Across the country, medical professionals responded. Thousands stepped forward, and together, they transformed healthcare into a nationwide mission of service. And the impact has been extraordinary.
1: दरअसल मातृ स्वास्थ्य के सबसे अहम संकेतकों में से एक है मातृ मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, यानी प्रति एक लाख जीवित बच्चों के जन्म पर गर्भावस्था से जुड़ी वजहों से जान गंवाने वाली माताओं की संख्या. एक दशक पहले भारत में मातृ मृत्यु दर थी 130, आज ये घटकर 87 हो गई है. हर आंकड़े के पीछे एक ऐसी मां है जो सुरक्षित घर लौटी, एक ऐसा बच्चा जो मां के प्यार के साथ पड़ा हुआ और एक ऐसा परिवार

0: जो किसी दुखद घटना से बच गया।
1: And this significant decline reflects years of dedication, stronger healthcare systems and also better awareness. And Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan is not working alone. It forms the part of a larger network of maternal healthcare programs that strengthen support at each and every stage. If we talk about other government initiatives working in this direction, it includes the Janani Suraksha Yojana, which encourages institutional deliveries. The Janani Shishu Suraksha Karyakram ensures free healthcare services for mothers and also newborns. Suman scheme strengthens quality maternal healthcare across thousands of facilities.
0: Poshan Abhiyan माताओं के पोषण को बढ़ावा देता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मातृत्व लाभ देती है। लक्ष्य लेबर रूम में देखभाल की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है और ये सभी मिलकर एक सुरक्षा घेरा बनाते हैं जो गर्भावस्था से लेकर बच्चे के जन्म और उसके बाद भी माताओं की मदद करती है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे होने पर पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है। लगभग 1.8 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में अच्छी गुणवत्ता वाली प्रसव पूर्व देखभाल सेवाएं दी जा रही हैं।
1: Community awareness programs are bringing people together. Special Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan sessions are also being organized in hospitals and healthcare facilities. But perhaps the biggest celebration is not an event. It is the reassurance of a family that knows quality healthcare is within the reach.
0: और ये इस बात का भी भरोसा है कि जिंदगी के सबसे अहम सफर में हेल्थ केयर सेवाएं उनके साथ खड़ी रहेंगी। जैसे जैसे भारत विकसित भारत 2047 की राह पर आगे बढ़ रहा है, ऐसे कार्यक्रम हमें एक बड़ी सच्चाई की याद दिलाते हैं। तरक्की को सिर्फ इमारतों, सड़कों या टेक्नोलॉजी से नहीं मापा जाता, इसे इस बात से भी मापा जाता है कि हम अपनी माताओं का कितना ख्याल रखते हैं।
1: Indeed, because when a nation protects its mothers, it protects its future. 10 years ago, a promise was made, and today, crores of mothers stand as the living proof that India kept that promise. And this journey is only and only getting stronger.
0: और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से ये जानने का कि क्या कुछ है खास उनके पास। त्रिपुरा के कृषि क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर कैलाश शहर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र ने राज्य में पहली बार मीठे अंगूरों की सफल खेती की है। पारंपरिक रूप से पश्चिमी और दक्षिण भारत की फसल माने जाने वाले अंगूरों ने त्रिपुरा के मौसम में अच्छे नतीजे दिखाए हैं, जिससे किसानों और कृषि शोधकर्ताओं के लिए नई संभावनाएं खुली हैं। तो त्रिपुरा से सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: The project was launched with financial assistance from NABARD. Grafted grape saplings were planted on a 15 decimal plot of land within the KVK campus, Koilashahar. Within a few months, the plants started bearing fruits, producing both black and green varieties of sweet grapes. The achievement is being viewed as a major breakthrough because grape cultivation has long been considered a challenge in the humid climate of the Northeast. Through scientific methods, proper crop management and continuous monitoring, the researchers were able to achieve encouraging results. The success has already attracted national attention. Scientists and officials from the National Research Center for Grapes in Pune, Maharashtra, recently visited KVK Koilashahar of Unakoti district to assess the cultivation process and evaluate its future prospects. Agriculture experts believe this success could create a new avenue for diversification in Tripura's farming sector. Farmers are often encouraged to adopt high-value crops that can generate better returns, and grapes may emerge as one such option in the coming years. The sweet grapes growing in Koilashahar stand as a symbol of innovation, determination, and scientific progress. More importantly, they offer a glimpse into a future where Tripura's farmers may be able to cultivate a wider range of high-value crops and strengthen their livelihoods. The successful cultivation of grapes is therefore more than an agricultural experiment. It is a message of new possibilities for Tripura's farming community. For Purikrama, with Anupam Bhattacharji from Unakoti district, this is Shuman Bhattacharji, Akashvani, Agartala.
1: From Agartala, let's move to Panj.

0: Oliver Twist, A Tale of Two Cities that came in 1859, set in London and Paris. These are the ones regarded as the best known work of historical fiction by nobody else but Charles Dickens.
1: और दोस्तों आज हम याद कर रहे हैं फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजे गए मशहूर गीतकार असद भोपाली साहब को और उन्हें ऐसे गीतकारों में शुमार किया जाता है जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में 40 साल तक अपने शब्दों का जादू बखेरा. आज ही के दिन साल 1990 में हिंदी सिनेमा के अजीम शायर हमसे रुखसत हो गए हमेशा के लिए, लेकिन उनकी कलम से निकले गाने आज भी हमारी धड़कनों में बजते हैं बराबर और हम उन्हें याद करते हैं और उनके लिखे कुछ ऐसे ही गीतों की एक झलक आइए आज हम सुनते हैं.

और दोस्तों आज दिग्गज फिल्म निर्देशक राज खोसला साहब की भी पुण्यतिथि है, जिन्होंने देव आनंद जैसे अभिनेताओं को मौका दिया और बहुत सी सफल फिल्में उन्होंने बनाई। उन्हें बॉलीवुड में नियो नॉयर यानी सस्पेंस क्राइम फिल्मों का उस्ताद माना गया और उन्होंने सीआईडी, मेरा गांव मेरा देश, दो रास्ते जैसी एक से बढ़कर एक यादगार फिल्में हमें दी और वो कौन थी, मेरा साया, दोस्ताना और मैं तुलसी तेरे आंगन की ये जो फिल्में थी इनके लिए भी हम उन्हें याद करते हैं और सुनते हैं उनका एक बड़ा ही यादगार गीत और उसके बाद सुनेंगे फिल्म दोस्ताना से, लेकिन सबसे पहले मैं तुलसी तेरे आंगन की।

0: Today is the birthday of Anushka Shankar, a British-American sitar player and musician of Indian origin. She performs across multiple genres and styles, classical and contemporary, acoustic and electronic. She has received 14 Grammy Awards nominations and was the first musician of Indian origin to perform live and to serve as a presenter at the ceremony. The music that you're listening to in the background is one of her performances on Indian classical rag.
1: और दोस्तों, वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, तो आज्ञा दीजिए मुझे यानी मुनीश शर्मा को, और मेरे साथ हैं तन्वी खुराना। कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं।
0: नमस्कार।
2: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। श्री मोदी ने कुवैत में रहने वाले भारतीय समुदाय की सुरक्षा प्रति ध्यान देने के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जैसे विशाल भू सीमा वाले देश में सीमा प्रबंधन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।
3: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर स्थित रक्षा भूमि पर बड़े पैमाने की पहली सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन सुविधा शामिल है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये 250 मेगावाट की सौर परियोजना उत्तर प्रदेश में रक्षा प्रतिष्ठानों की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी और बिजली खर्च में दीर्घकालिक बचत भी करेगी। सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि यह सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे। समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर निर्मित जोजिला सुरंग पूर्ण होने पर एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। श्री प्रधान ने कहा कि सरकार राज्यों के साथ भी सक्रिय रूप से समन्वय कर रही है।
4: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्ष में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ देश को मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। भारत की विदेश नीति में पिछले 12 वर्षों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इसमें ब्रांड इंडिया और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि

न जी भर के देखा न कुछ बात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। इसी मुलाकात के लिए मैं आ गई हूं अपराजिता, लेकर गाते गुनगुनाते आपके अपने आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और आप तो जानते हैं ये मुलाकात होती है बहुत खास और दिलचस्प, क्योंकि मैं लेकर आती हूं आपके लिए बहुत सारे सवाल जिनके जवाब आप मुझे लिख भेजते हैं हमारे ईमेल आईडी पर। तो इससे पहले हम ये सिलसिला शुरू करें, आइए सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा गीत फिल्म 1942 अ लव स्टोरी से।

तो तैयार हैं आप अपना पहला सवाल सुनने के लिए? 90s में एक फिल्म आई जिसे डायरेक्ट किया अब्बास मस्तान ने। इस क्राइम थ्रिलर फिल्म की कहानी एक इंग्लिश फिल्म से प्रेरित है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। वैसे तो फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन में इस फिल्म को बहुत सारे नॉमिनेशंस मिले, लेकिन अगर अवार्ड्स जीतने की बात करें तो चार कैटेगरीज में इस फिल्म ने फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते भी, जिनमें बेस्ट एक्टर मेल, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, बेस्ट स्क्रीन प्ले भी शामिल हैं। फिल्म के हिंदी रिलीज के बाद इसे तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और बंगाली में भी बनाया गया। तो आप देख सकते हैं कितना पसंद किया गया इस फिल्म को, या यूं कहे इस फिल्म की स्टोरी को। और अगर आप इस पसंदीदा फिल्म को पहचान चुके हैं, इस 90s की ब्लॉकबस्टर फिल्म को पहचान चुके हैं, तो अपना जवाब जल्दी से fmgoldairdelhi@gmail.com पर टाइप करके भेज दीजिए। तब तक मैं आपको सुनवा रही हूं रोजा फिल्म का एक बहुत ही प्यारा सा गाना, जिसे मुझे लगता है कि हम जितनी बार भी सुनते हैं ना, उतना ही नया और रिफ्रेशिंग लगता है।

आपके बहुत सारे मैसेजेस हमारी ईमेल में मुझे नजर आ रहे हैं, तो पहले देखते हैं कि सही जवाब सबसे पहले हमें किसने लिखकर भेजा है। तो पहला सही जवाब जो हमारे पास आया है वो है नवीन रोहित ठाकुर का, गुरुग्राम से। उसके बाद दूसरे नंबर पर सही जवाब लिखकर भेजा है नवीन भाटिया ने, और उसके बाद उग्रसेन यादव। यानी कि पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आप सबके सही जवाब आए हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उसके बाद सही जवाब देने वालों में नाम है सुदर्शन, अनीता, सिमरन मुखी का सोनीपत से, और पंकज मोहड लिखकर भेजते हैं सही जवाब अमरावती से, ललित कुमार नोएडा से सही जवाब लिखकर भेजते हैं, और डीबी राणा साहब ने नेहरू विहार से सही सही लिखा है, उमेश कुमार, दिनेश कुमार, अनीत और सुनीत कुमार ने खयाला से सही जवाब लिखकर भेजा है। और आप सबने सही जवाब लिखकर भेजे हैं जिनके नाम मैंने शामिल किए हैं, कुछ और जवाब भी आए जिनके जवाब जो है वो सही नहीं है। तो आप की पसंद का गाना, यानी कि जो गाना, जो फिल्म का नाम आपने पहचाना है, बाजीगर है, और यही सही जवाब है। 93 में ये फिल्म रिलीज हुई, इसमें शाहरुख खान की एक्टिंग की अगर हम बात करें तो वो एक अलग ही रूप उनकी एक्टिंग का इसमें देखने को मिला, एक नेगेटिव साइड का रोल उन्होंने प्ले किया। शिल्पा शेट्टी की ये डेब्यू फिल्म रही, फिल्म में काजोल ने प्रिया का रोल निभाया जो शिल्पा की बहन बनी थी। अब मैं अगले सवाल की ओर चलती हूं और आपको फिर से बता देती हूं कि अगर आपने अभी ट्यून इन किया है तो आप अपने जवाब, यानी कि जो रिडल, जो पहेली मैं आपसे पूछने वाली हूं, उसे सुनने के बाद आप फिल्म का नाम लिखकर भेज सकते हैं fmgoldaiardelhi@gmail.com पर। और ये जवाब जब आप लिखते हैं तो इस पहले क्वेश्चन में मुझे ये दिक्कत आई तो मैं एक बार दोहराना चाहूंगी, जो मैं अक्सर अपने शो में दोहराती हूं कि जब आप जवाब लिखें तो अपनी ईमेल के सब्जेक्ट कॉलम में आप फिल्म का नाम लिखकर इसे भेज दें, सेंडर नेम हमारे पास पहुंच जाता है। तो इससे क्या होता है, थोड़ा टाइम सेव होता है, आपके साथ बातें करने को मिलता है और फिल्म से जुड़ी बातें करने को भी मिलता है। फिलहाल हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये भी 90s की ही एक फिल्म है। इस एक्शन कॉमेडी फिल्म में जो है लोगों को बहुत हंसी आई और साथ में हीरो के एक्शन सीन्स देखकर दर्शकों ने मानो अपने दिल थाम लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, हीरो के डांस ने भी देखने वालों को बहुत एंटरटेन किया, यानी फिल्म पूरा एंटरटेनमेंट का होलसम पैकेज रही। वैसे आपके लिए एक हिंट और है और वो ये है कि इस फिल्म में, यानी कि ये जो दूसरी फिल्म जिसकी मैं बात कर रही हूं, इसमें भी शिल्पा शेट्टी ने एक्टिंग की। शक्ति कपूर, गोगा कपूर, जॉनी लीवर ने भी इस फिल्म में अपनी एक्टिंग से सबका मन लुभाया। अगर आप फिल्म पहचान चुके हैं तो आपको करना है क्या, फिल्म का नाम टाइप करके जल्दी से भेज देना है fmgoldaiardelhi@gmail.com पर। तब तक मैं आपको सुनवा रही हूं बाजीगर फिल्म से ये गाना।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
4: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

तो सही जवाब है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। और पहला सही जवाब हमारे पास पहुंचा है नवीन भाटिया साहब का मोतीनगर दिल्ली से, और दूसरा सही जवाब है मुक्ता बरगोटा का, लेकिन इन्होंने नाम क्या लिखा, मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी। चलिए मैं आपको कह देती हूं कि आप दूसरे नंबर पर आई, दे देते हैं आपको दूसरा स्थान, क्योंकि मैं ये सोचती हूं कि आपने जल्दबाजी में टाइप करते समय ऐसा टाइप किया होगा, आप फिल्म पहचानती हैं। और तीसरे नंबर पर आते हैं रोहित ठाकुर गुरुग्राम से, तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। और इसके बाद ललित कुमार ने भी बिल्कुल सही पहचाना है, राजेश माणकलाल शाह ने बिल्कुल सही जवाब लिखकर भेजा परिमल झा के साथ, और बीच बीच में कुछ अलग अलग आंसर्स भी आए हैं, वो भी बता दूं, किसी ने लिखा अंदाज अपना अपना, किसी ने लिखा हथकड़ी, और कुछ अलग अलग नाम भी बहुतों ने लिखे। तो सही जवाब वाला नाम अब जो है वो है प्रफुल्ल साहब का, आपने भी बिल्कुल सही पहचाना है फिल्म का नाम। और

और डीबी राणा साहब ने नेहरू विहार दिल्ली से बिल्कुल सही पहचान कर जवाब लिखकर भेजा, और मोहम्मद सईद अब्बासी ने आंसर सुनने के बाद आंसर भेजा है ना, और उमेश कुमार साहब ने भी क्योंकि मैंने 1739 टाइम देख के जो है जवाब अनाउंस किया और 1740 पे आप लोगों का जवाब आता है, तो बताइए अब आपका नाम कैसे शामिल करें। वैसे नाम तो शामिल हो गया है लेकिन आंसर जब एक बार अनाउंस हो जाए ना तो उसके बाद के जवाब हम नहीं मानते। तो मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, ये बहुत ही मजेदार फिल्म रही। अक्षय कुमार, सैफ अली खान, शिल्पा शेट्टी, राजेश्वरी, इन सब ने इस फिल्म में एक्टिंग की। अगर अक्षय के किरदार की बात करें तो उन्होंने इंस्पेक्टर करण का रोल निभाया और सैफ अली खान दीपक के रोल में नजर आए। शिल्पा जो हैं उन्होंने दो रोल इसमें निभाए, मोना का और बसंती का, और राजेश्वरी शिवांगी के रोल में नजर आई। तो इस फिल्म से आपको गाना जरूर सुनवाएंगे, इस फिल्म में गाने सभी एक से बढ़कर एक हैं, तो एक गाना मैं आपको अच्छा सा जरूर सुनवाऊंगी। उससे पहले आपसे अगला क्वेश्चन जरूर पूछती हूं। 90s में ही एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म आई जिसे डायरेक्ट किया मणिरत्नम ने, और इस फिल्म का स्क्रीन प्ले और कहानी भी उन्हीं की रही। एआर रहमान के संगीत ने मानो इस फिल्म को एक अलग ही लेवल तक पहुंचा दिया। अगर स्टोरी की बात करें तो फिल्म का हीरो रेडियो में काम करता है जिसे एक असाइनमेंट पर असम भेजा जाता है, और रास्ते में हीरो की मुलाकात फिल्म की हीरोइन से होती है, और वो भी रेलवे स्टेशन पर। जब हीरो इस लड़की को देखता है तो अपना दिल मानो पहली मुलाकात में ही उसे दे बैठता है, और फिर जब अलग अलग जगहों पर उनका फिर से मिलना होता है तो मानो उसे लगता है कि ये कुछ संकेत है, और ऐसे ही फिल्म आगे बढ़ती रहती है। अब मैं एक और हिंट आपको देना चाहूंगी और वो सपोर्टिंग एक्ट्रेस के बारे में है। इस फिल्म में सपोर्टिंग एक्ट्रेस का जो रोल है वो पहले काजोल को दिया गया, वो किरदार काजोल को निभाने के लिए कहा गया, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई, उन्हें अप्रोच नहीं कर पाए, डेट्स नहीं मिल पाई, तो उसके चलते जिस अदाकारा ने इस रोल को निभाया वो कौन थी, अगर आप वो भी पहचानते हैं तो आप फिल्म के नाम तक पहुंच जाएंगे। तो आपको पहचानना है फिलहाल फिल्म का नाम, और ये आपके लिए हिंट्स हैं। अगर आप इन कड़ियों को एक साथ जोड़ पाते हैं, फिल्म के नाम तक पहुंच पाते हैं, जिसमें मैं जानती हूं कि आप बहुत माहिर हैं, है ना, माहिर हैं आप, और आप अगर फिल्म तक पहुंच पाते हैं तो फिल्म का जवाब मुझे लिखकर भेजिए जल्दी से सब्जेक्ट कॉलम में, fmgoldairdelhi@gmail.com इस ईमेल एड्रेस पर आपको सेंड करनी है अपनी ईमेल। अगर आपने अभी ट्यून इन किया है इसीलिए मैंने दोबारा दोहराया कि सब्जेक्ट में आप फिल्म का नाम लिखकर भेजें। तब तक मैं आपको सुनवा रही हूं मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी से ये गाना।

0: टैलेंट तो है, पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

भाई इस बार तो आप लोगों ने कमाल कर दिया। शायद ही कोई एक दो जवाब ऐसे होंगे जो गलत होंगे, नहीं तो सभी ने बिल्कुल सही फिल्म का नाम लिखकर भेजा है। तो मुझे कई बार लगता है कि जब मैं आखिरी सवाल तक पहुंच जाती हूं ना, तो मैं थोड़े हिंट्स ज्यादा देने लग जाती हूं। मैं आप लोगों के लिए थोड़ी लिबरल हो जाती हूं, मुझे लगता है कि चलिए एक और हिंट दे देती हूं इनको। तो वही मुझे ऐसा एहसास हुआ था पिछले प्रोग्राम में, वही आज हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत खुशी होती है जब आप लोगों के जवाब सही होते हैं। तो पहला सही जवाब जो है वो हमारे पास पहुंचता है रोहित ठाकुर का, गुरुग्राम से। दूसरे नंबर पर मिलिंद खड़से ने बिल्कुल सही जवाब लिखकर भेजा। कुशाग्र अग्रवाल और आदित्य अग्रवाल तीसरे नंबर पर सही जवाब लिखकर भेजते हैं, आप सभी को बधाई। उसके बाद नवीन भाटिया साहब ने लिखा मोतीनगर से, पंकज कुमार और प्रणव शिंदे हैं मुंबई से, प्रफुल्ल साहब ने भी बिल्कुल सही बताया, और जगदीश बजाज ने विकासपुरी से सही आंसर लिखा है, अक्षय वत्स, ललित कुमार, उग्रसेन यादव, सुदर्शन, अनीता, सिमरन मुखी सोनीपत से सही बताते हैं, गिरीश बम और अंजलि बम भी बिल्कुल सही जवाब लिखकर भेजते हैं। इनके साथ अथर्व और निवकर भी हैं वडोदरा से, मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, रजान, आपने भी बिल्कुल सही पहचाना है। डीबी राणा साहब ने फिल्म का नाम भी लिखा और सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नाम लिखकर भेजा, प्रीति जिंटा, बिल्कुल सही पहचाना आपने। राजेश मानकलाल शाह ने सही बताया, और सही जवाब देने वालों में नाम आता है खुशी कपूर का, फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फाहिरा ताहिरा, अश्वनी कुमार सही जवाब लिखकर भेजते हैं सपोर्टिंग एक्ट्रेस के नाम के साथ, निधि चापड़ा ने भी ऐसा ही किया, और उसके बाद जयंत टी नाशिकर, उमेश कुमार, आप सबने बिल्कुल सही सही बताया है कि फिल्म का नाम है दिल से। जी हां, यही है वो फिल्म जिसकी मैंने बात की, जिससे जुड़े मैंने आपको बहुत सारे हिंट्स बताए। आपने बिल्कुल सही सही बताया कि ये फिल्म है जिसमें शाहरुख खान, अमरकांत, अमर वर्मा के रोल में नजर आए, मनीषा कोइराला रही मोयना और मेघना के किरदार में, और जो प्रीति जिंटा हैं उन्होंने सपोर्टिंग रोल जो है वो इसमें निभाया, प्रीति नायर के किरदार में वो नजर आई इस फिल्म में। और अब बारी आ जाती है आपको गाना सुनवाने की। तो इस फिल्म से, इस फिल्म का टाइटल ट्रैक मैं आप तक पहुंचा रही हूं, और यही उम्मीद करती हूं कि आपको ये गेम क्विज फॉर्म में खेलने में बहुत मजा आया होगा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और

0: लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इसे भूमि पत्तनों के बीच एकीकृत प्रणाली कायम करने के लिए बनाया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह प्रणाली आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
0: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। नई दिल्ली स्थित एनटीए मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए खुफिया ब्यूरो और केंद्रीय जांच ब्यूरो सहित सभी साइबर सुरक्षा संसाधनों को लगाया गया है। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। अमरीका के एक संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा प्रस्तावित $1,00,000 के H-1B वीजा शुल्क को रद्द करते हुए इसे गैर कानूनी करार दिया है। इससे कई कुशल भारतीय पेशेवरों को फायदा होगा। पिछले साल सितंबर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा आवेदन शुल्क को लगभग 2,000 से बढ़ाकर $1,00,000 करने की घोषणा की थी। श्रीलंका के दामोला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में श्रीलंका ए ने ताजा समाचार मिलने तक 48 ओवर में 7 विकेट पर 268 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने ऋतुराज गायकवाड के 101 रन की बदौलत निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Anuj.

स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है 6:11 और 19 सेकंड। आप हैं रूपा के साथ सदाबहार गीत में। तो चलिए शामिल करते हैं आज का पहला शानदार और सदाबहार गीत, जिसे हमने लिया है कन्यादान फिल्म से मोहम्मद रफी साहब के स्वर में।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका सुषमा कुमारी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दूरभाष द्वारा कुवैत आमीर इत्यनेन सह पश्चिमेशियायाः विकसितां सुरक्षा स्थितिं चर्चितवान्। भारतं संयुक्त राष्ट्र संघे पाकिस्तानं निन्दयन् तं द्वेष उद्योगीति अवोचत्। खाद्य सुरक्षा

0: program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: नमस्कार. कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है. श्रोताओं, आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार की हलचल पर भी नजर डालेंगे, साथ ही चर्चा भी करेंगे. आज चर्चा करने के लिए हमारे समक्ष स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विश्लेषक सुषमा रामचंद्रन. सुषमा जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन.
0: वार्म वेलकम सुषमा.
2: थैंक यू प्राची, थैंक यू राजेश.
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां.
0: Benchmark domestic indices rise, Sensex gains nearly 400 points, Nifty settles above 23,200. Most Asian stock markets end in positive territory and global crude oil prices drop.
1: घरेलू शेयर बाजार में बढ़त, सेंसेक्स लगभग 400 अंक बढ़ा, वहीं निफ्टी 23,200 के ऊपर बंद हुआ. अधिकांश एशियाई शेयर बाजारों में तेजी और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट.
0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not that of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और श्रोताओं, अब आइए जान लेते हैं कि आज दिन के अंतराल में हमारे दोनों ही प्रमुख शेयर सूचकांकों ने कैसा प्रदर्शन किया. देश के प्रमुख शेयर सूचकांक लगातार दो दिन की गिरावट के बाद आज आधे प्रतिशत से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 395 अंक बढ़कर 73,919 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 119 अंक की बढ़त के साथ 23,242 पर आ गया. विस्तृत शेयर बाजार में मिडकैप 100 में 1.3% से अधिक और स्मॉल कैप 100 में 1.7% की बढ़त दर्ज की गई. इससे पहले सकारात्मक वैश्विक और घरेलू संकेतों के कारण बाजार मुनाफे के साथ खुले. सत्र के अधिकांश समय सूचकांक सकारात्मक रुझानों के साथ सीमित दायरों में कारोबार कर रहे थे.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडेक्स एंडेड ओवर 0.5% अप टुडे, स्नैपिंग टुडे लूजिंग स्ट्रीक. The Sensex rose 395 points to close at 73,919, while the Nifty jumped 119 points to settle at 23,242. In the broader market on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index gained over 1.3% and the Small-Cap 100 Index settled 1.7% higher. Earlier today, the markets opened on a positive note, supported by a mix of favorable global and domestic cues. The indices remained range-bound while maintaining a positive bias for most of the session.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 18 कंपनियों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई. शीर्ष प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में इंडिगो 4%, एसबीआई में लगभग 2% से अधिक और आईसीआईसीआई बैंक में 2% की बढ़त देखी गई. वहीं खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों की अगर बात करें तो टाइटन 2% से अधिक, एनटीपीसी लगभग 2% और पावर ग्रिड के शेयरों में 1.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई.
0: In the sectoral indices of the BSE, 22 out of 25 sectors ended in positive territory. Among the top gainers, PSU banks rose over 3.8%, mid-small private banks quality tilt index climbed over 3%, and services advanced by 2%. Among the top laggards, utilities shed more than 0.6%, focused IT fell 0.5%, and IT dropped by 0.25%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,782 companies advanced, 1,423 declined and 193 remained unchanged.
1: और अब जान लेते हैं रुपए का हाल. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 36 पैसे मजबूत होकर 95 रुपए और 35 पैसे पर बंद हुआ. अन्य छह प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 99.73 पर कारोबार कर रहा था. सुषमा, आज हमने देखा कि हरे दायरे में यानी कि ग्रीन टेरिटरी में बाजार परफॉर्म कर रहा है.
2: बड़ी खुशी की बात है.
1: इस समय में

0: तो खास दिनों के बाद हाँ।
1: बिल्कुल बैंकिंग सेक्टर में हमने देखा कि लगभग 2% और कई सेक्टर्स में भी अच्छा प्रदर्शन हुआ है, लेकिन बैंकिंग जो है आज का एक हाईलाइट है,
0: स्टार है इस वक्त। हाँ, लेकिन अगर आप ओवरऑल स्टॉक मार्केट को देखें, वो ग्रीन में क्यों आया है? वो इसलिए आया है कि जो आपने कहा ही है, ग्लोबल क्यूज भी है और डोमेस्टिक क्यूज भी है। तो ग्लोबल में ये आता है कि इसराइल और ईरान ने कहा है कि अपने ऊपर वो अटैक्स बंद कर देंगे। खैर, ये कमिटमेंट तो पहले भी किया है, लेकिन फिर भी मार्केट्स इससे काफी संतोष मतलब खुश लग रही हैं। और दूसरी बात ये है कि खैर, क्रूड ऑयल प्राइसेस भी कम हुए हैं, रुपया भी मजबूत हुआ है, लेकिन अगर हम बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में बात करें खासकर, वो इसलिए हुआ है क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में इतने मेजर्स बताए हैं जिससे फॉरेन करेंसी की जो रिजर्व्स हैं और फॉरेन करेंसी इनफ्लोज को बढ़ावा मिलेगा, और इन फॉरेन करेंसी इनफ्लोज की जो सारी ऑपरेशंस हैं ये सारे बैंक्स के जरिए होंगे और बैंक्स को मुनाफा होगा। और आज ही उन्होंने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक स्कीम जाहिर की है, अनाउंस की है, जो उन्होंने 2013 में भी अनाउंस की थी और उसका बहुत फायदा हुआ था तब, और काफी सारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, डॉलर रिजर्व्स तब भी आ गए थे, शायद $26 बिलियन इस स्कीम से आए थे उस वक्त। और अब भी ये एक स्कीम है जिससे जो आपके जो फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स हैं, NRI फॉरेन डिपॉजिट्स हैं, उसकी जो स्वॉप होगी उसका पूरा जो भार है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेगा। और इसका फायदा ये है कि NRI जो डिपॉजिट्स हैं वो इस बैंक्स में, कोई भी फॉरेन करेंसी में बैंक्स में रख सकते हैं। और इसमें हमारे देश में रखने का फायदा ये है कि हमारे जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो थोड़े ज्यादा हैं, तो उनको ये फायदा होगा जो डिपॉजिट करेगा। तो ये ऐसी ही स्कीम 2013 में की गई थी और उसकी बहुत अच्छे परिणाम आए थे, और अभी भी अंदाजा यही है कि इसका भी बहुत अच्छा असर होगा।
2: Continuing with what you just said, India has reported a current account surplus of $7.1 billion or 0.7% of GDP in the January to March quarter of 2025-26. In light of what you said and to what I just read out, how do you view it?
0: Yes, that's of course very positive data, because it was not expected. The third quarter, of course, we must remember that the Iran war began at the end of February. So March was when the conflict began. March was when India, the oil prices shot up and India had to spend a great deal of foreign exchange on buying crude oil. It was also the time the rupee had been depreciating earlier, but it began to plummet even further. So there was, and of course, we had a very sharp rise in gold imports during March also. So there was a feeling, there was an expectation that perhaps there would be an increase in the current account deficit in the last quarter, but that has not happened. This is good news. Of course, moving forward now, given the fact that in April and May we have had crude oil, of course, purchases, prices have gone up to between $90 and $100, which were last year about $65 to $70, which is a huge gap, plus the rupee depreciation, which has impacted that. Added to that, of course, is the increase in gold imports. So given all that, the government has just announced these measures to ensure that foreign exchange inflows increase, foreign currency inflows increase. One set of measures was announced a day or two ago, and one, of course, today. And as I said, this particular scheme which was announced, it had very good results in 2013, and it is likely to have the same impact now.
1: सुषमा, एक तरफ और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, विदेशी निवेशक हैं, उन्होंने जो निवेश किया और वो सारा निवेश इवेपोरेट होता जा रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अभी जो ये, हालांकि ये एक तिमाही के नतीजे हैं जो भी सरप्लस का जो आया है, ये क्या ये इशारा करता है, क्या ये इंगित करेगा किसी भी तरीके से कि उनका कॉन्फिडेंस दोबारा से बूस्ट हो और वो फिर से, क्योंकि हमारे जो बाहरी क्षेत्र हैं जैसे कि एक्सपोर्ट्स हो गया, इम्पोर्ट्स हो गया, रेमिटेंसेस हो गए, तो क्या

0: ये आप कहीं से भी एक सकारात्मक संभावनाएं देख रही हैं उनकी वापसी का?
1: देखिए, अभी लेटेस्ट जो डेटा आया है, आपके बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेटेस्ट डेटा जो आया है मेरे ख्याल अप्रैल का जो डेटा है कि जो इन्फ्लोज हैं, अभी हम बात कर रहे हैं नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो बहुत कम है, लेकिन जो ग्रॉस जो पूरा आया था वो तो 80-90 बिलियन डॉलर्स के करीब रहा, लेकिन वो बाहर गया, कई वजह थे उसकी, बहुत वो लंबी बात है। लेकिन अब जो फिर से अप्रैल में जो आया है वो काफी ज्यादा तादाद में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है, तो इसका मतलब ये है कि जो एपेटाइट है इन्वेस्टर्स का टू इन्वेस्ट इन इंडिया वो अभी है, ये बात नहीं है। और ये जो उन्होंने आरबीआई ने जो मेजर्स अभी अनाउंस किए हैं, इनका असर, ये इनका इम्पैक्ट यही लॉन्ग टर्म में, इसका एक्सपेक्टेशन ये है कि इन्हीं मेजर्स की वजह से ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ग्रॉस अंदर आया है वो बाहर नहीं जाएगा उसके बाद, कि वो इन्वेस्टर्स ये पैसा को अंदर हमारे देश में ही रखेंगे क्योंकि उनको फायदा होगा। आफ्टरऑल अगर आपको फायदा होगा तभी आप रखेंगे, क्योंकि वो जो टैक्सेस थे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के ऊपर वो भी हटा दिए हैं, और जैसे मैंने कहा आज की स्कीम के बारे में, तो मतलब एक्सपेक्टेशन तो ये है कि आगे वाले दिनों में ये जो नेट एफडीआई है वो इम्प्रूव होगा।
2: सुषमा, टुडेज रिकवरी इज बीइंग लेड बाय ऑटो, रियल्टी एंड द पीएसयू बैंक्स, द सेम रेट सेंसिटिव सेक्टर्स दैट हैव बीन बैटर्ड अ फ्यू डेज बैक। गिवन दैट द आरबीआई हैज हेल्ड रेट्स एंड केप्ट न्यूट्रल स्टैंस, इज दिस सेक्टरल रोटेशन लॉजिकल और इज इट जस्ट शॉर्ट कवरिंग दैट कुड रिवर्स टुमारो मॉर्निंग?
1: No, as far as a bank certainly is concerned, this is not short covering. This is certainly in response to the measures that the RBI has taken, and these are measures which some of them had been taken earlier, some of them have been asked for by investors for quite some time, that these taxes are troubling us, and we don't want to invest in this country, we need to take our money out. So this is not something that is just short covering thing. When on the other areas, of course, I think a lot depends on the general trend of the market. Auto, for instance, of course, is a sector which has seen a lot of volatility. But if you see the data on auto, passenger vehicle sales have been rising very rapidly despite all the problems that we have faced, of course, due to the impact of the war, like any other country. But consumption in terms of sales has been buoyant for the auto sector. So that's again a very, a sector with very solid fundamentals. But realty, of course, is something where you do tend to see volatility.
2: Okay, let's go back tomorrow. Oh, yesterday, yes. Monday's sell-off in which metal, oil and gas and PSU banks showed quite a lot of resilience.
1: Yes.
2: Okay, oil and gas benefiting from high crude prices, we can understand that.
1: Yes.
2: But what does PSU bank resilience tell us about the market's expectation for the credit cycle and the bank sector's near-term health?
1: No, I think that, again, we come back to the RBI's announcements over the last few days and the plans of the Reserve Bank of India, which are obviously going to benefit if foreign exchange comes in. It is going to be parked in the public sector banks or the private sector banks, but largely public sector banks. So therefore, there is not, I will not say largely, of course, HDFC, ICICI are there, we have very good banks, but the largest chunk of our banking sector is in the public sector, are state-owned. And therefore, the measures that have been taken by the RBI will benefit the big chunk of the banking sector, and they benefit, these measures were taken earlier. So therefore, you would see the resilience for the banking sector. And there, of course, you see it today also.
2: So IT stocks have also fallen sharply from their February 3 to 2026 peak.
1: Yes.
2: How much of hand does AI have in this?
1: It has a huge hand, and I know that I have friends in the IT sector who have been very annoyed about the fact that there is a link being made, for instance, between AI and the IT companies, because they say we are service providers, we're not really linked to AI. And And if you see the actual performance of IT companies, for instance, TCS, and if you see that in rupee terms, there has been a tremendous improvement in performance because the rupee depreciation has actually helped IT companies. You know, there's very little talk about that, that the rupee depreciation helps exports, and these are services exports. And therefore, IT companies have really had a huge benefit as a result of rupee depreciation. So, but coming back to your point about AI, yes, there is the perception that India does not have these large language models, and we are not at the cutting edge of innovation, and that is what has affected the IT sector.
0: श्रोताओं, ये तो हमने घरेलू शेयर बाजार की बात की. अब आइए रुख करते हैं एशिया और यूरोप के बाजार की तरफ. आज अधिकांश एशियाई शेयर बाजारों में तेजी देखी गई. दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 8.2%, जापान का निकेई लगभग 2.2%, चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स 1.3% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 1.2% बढ़ा. वहीं हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक लगभग 0.4% नीचे आया. इस बीच मजबूत निर्यात और घरेलू मांग के समर्थन से दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था ने 2026 की पहली तिमाही में पिछले 5 वर्षों में सबसे तेज गति से विकास किया है. बैंक ऑफ कोरिया के आंकड़ों के अनुसार जनवरी से मार्च तिमाही में अर्थव्यवस्था में पिछली तिमाही की तुलना में 1.8% की वृद्धि हुई, जो पहले अनुमानित 1.7% की वृद्धि से अधिक है. सकल घरेलू उत्पाद में वार्षिक आधार पर 3.8% की वृद्धि हुई, जो अनुमानित लक्ष्य से 0.2% अधिक है. आज प्रमुख यूरोपीय सूचकांकों की बात करें श्रोताओं, तो यहां मिलाजुला रुख रहा. फ्रांस का कैक लगभग 1% ऊपर और जर्मनी का डैक्स 0.3% से अधिक था. वहीं लंदन का फुटसी अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक 0.1% नीचे कारोबार करता नजर आया. सुषमा, कल हमने देखा कि कॉस्पी में ऐसी गिरावट आई थी कि 20 मिनट के लिए हमें बंद करना पड़ा, कारोबार बंद रहा. आज हम देख रहे हैं एक तरीके से फुल स्केल रिकवरी, तो इसे आप कैसे देखते हैं? किस तरीके से कल उतने की गिरावट और आज उतने का ही उछाल?
1: ये वॉलेटिलिटी के बारे में, खैर अगर आप हम डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट्स की बात करें
0: जी.
1: हमने कई बार इसके कई आप लोगों ने एक बार पूछा शायद कि वॉलेटिलिटी हमारी मार्केट्स में क्यों है, बाकियों में नहीं है. तो अभी आपने बताया कि भाई वहां भी वॉलेटिलिटी है और यही वजह है जो क्योंकि हम जो हमारी मार्केट्स को अफेक्ट करते
0: हैं वो है. मिरर इमेज बना दिया कि 8 डिप हुआ और 8 ही हाँ
1: तो ये जो उनकी जो पोलिटिकल इश्यूज भी है साउथ कोरिया में, पर ज्यादातर जो ग्लोबल जियो पोलिटिकल जो डेवलपमेंट हैं वो भी साउथ कोरिया को भी अफेक्ट करते हैं. कोरिया भी बहुत बड़ा क्रूड ऑयल इम्पोर्टर है और उसको भी ये सारी जो प्राइसेस का असर साउथ कोरिया के ऊपर भी, हालांकि वो ज्यादा इंडिया से बहुत आगे है डेवलपमेंट में, लेकिन यही इम्पैक्ट है जियोपॉलिटिकल टेंशन्स का कि वॉलेटिलिटी है. क्योंकि एक दिन वो यूएस कह रहा है कि ये जो है जंग खत्म हो जाएगा और अगले दिन वो फिर अटैक्स शुरू हो जाते हैं, और तीसरे दिन वो कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज अभी कल खुलने वाला है, और चौथे दिन एक अटैक आ जाता है एक वेसल के ऊपर. तो ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से वॉलेटिलिटी डेफिनेटली का असर, इसका असर है.
0: पिछले कुछ दिनों हमने देखा कि कॉस्पी में एक लगातार अपवर्ड ट्रेंड हम देख पा रहे थे. क्या इसमें एआई का भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन आप देख पा रही हैं कि एआई को लेकर के भी वो काफी जागरूक और उत्सुक?
1: हाँ, वो बिल्कुल, क्योंकि कोरिया एक डेवलप्ड इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में, सेमीकंडक्टर्स क्षेत्र में, और ये एआई के क्षेत्र में कोरिया जो है वो काफी एडवांस्ड है, तो इसका असर जरूर है. जैसे कि अमेरिका में है इसका जो इतना एंथुजियाज्म इन्वेस्टर्स का, तो वो कोरिया में भी है.
2: मूविंग ऑन, मोस्ट यूएस इक्विटीज एंडेड हायर यस्टरडे एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स बाउंस्ड बैक फ्रॉम फ्राइडेज शार्प सेल ऑफ. The Nasdaq Composite Index rose nearly 0.9% and the S&P 500 added 0.3%. However, the Dow Jones Industrial Average dipped almost 0.2%. The only impetus, Sushma, is in the resolution of the Iran-US-Israel war. If that happens, the, yes, everything is going to be fine.
1: Yeah.

0: वहां पर एक्सचेंज पे, जैसे आपने कहा ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट वैल्यू, सब साफ साफ दिखाई देगा कि इस कोयले का दाम ये है, इस कोयले का कोयला जो इस कंपनी से आता है, हमारी ज्यादातर
1: जो इस कंपनी से आता है और इस क्वालिटी का
0: और इस क्वालिटी का है, वो वहां पर मतलब बताया जाएगा, दर्शाया जाएगा। और जो जिसने इन्वेस्ट, ये इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा है, मार्केटिंग के लिए भी अच्छा है, जिन्होंने इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना है वो देख सकते हैं कि वो कितना कोयला उत्पादन करते हैं और कहां किस तरह का कोयला उत्पादन करते हैं, और जिन्होंने खरीदना है वो भी आसानी से खरीद सकते हैं।
2: The government of Assam and the European Union today jointly launched the Blue Valley Cluster in Guwahati, focusing on flavors, fragrance and Ayush sectors. The initiative aims to strengthen cooperation between Europe, Assam and the wider Northeast region in developing sustainable value chains, innovation ecosystems and industrial partnerships. Speaking on the occasion, Chief Minister Dr. Himanta Biswas Sarma said, Assam sees significant opportunities for collaboration with Europe in multiple sectors. He said the initiative will help connect farmers, self-help groups, startups and industries with international markets.
3: The Blue Valley initiative aligned perfectly with our vision of building a modern, innovation-driven and sustainable economy. It seeks to connect Assam's natural strength with global value chains and international markets while promoting responsible growth and environmental stewardship. We see immense opportunities for collaboration with our European partners. In
2: global crude oil prices fell today after Iran and Israel said they had halted attacks on each other, though both sides warned they would resume hostilities if provoked. Brent crude was trading 1.8% down at $92.58 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 2% down at $89.44 per barrel when reports last came in. And in the Indian bullion market, 24-carat gold was trading almost flat at 1,54,980 rupees per 10 grams, while silver was trading around 0.3% up at 2,48,100 rupees per kilogram a short while ago.
1: Multi-commodity exchange mein agast anubandh wala sona lagbhag sapat hokar 1,54,832 rupees prati 10 gram par karobar kar raha tha, aur july anubandh wali chandi 0.3% badhkar 2,47,137 rupees prati kilogram par karobar kar rahi thi. सुषमा कार्यक्रम में आने के लिए और मेरे और राजेश के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
2: थैंक यू सुषमा फॉर बीइंग विद अस. एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन. बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस राइज, सेंसेक्स गेन्स नियरली 400 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स अबव 23,200. मोस्ट एशियन स्टॉक मार्केट्स एंड इन पॉजिटिव टेरिटरी एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस ड्रॉप. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमें उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और

0: दुर्व्यवहार के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इसे भूमि पत्तनों के बीच एकीकृत प्रणाली कायम करने के लिए बनाया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह प्रणाली आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबिर अल सबा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की जरूरत पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिनों के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है। ये कमी सोने पर आयात शुल्क में बढ़ोतरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कम से कम एक वर्ष तक सोना न खरीदने की अपील का परिणाम है। रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी, जिससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए थे। श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। The Ministry of External Affairs today acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. Addressing the media in New Delhi, External Affairs Minister Randhir Jaiswal said that New Delhi continues to see a

0: हमारे साथ मौजूद हैं रेलवे इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार
0: सर। 12 वर्षों में आर्थिक जो परिस्थितियां रही, कई चुनौतियां भी थी, कई कठिनाइयां भी थी, लेकिन 7% या उससे ज्यादा की विकास दर को हम हासिल कर पाए। किस तरह से नीतियों ने इसमें मदद की?
1: इन 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ही एक मैच्योर तरीके से हैंडल किया है। हम अगर आज से 12 वर्ष पहले 2014 में जाएं, 2014 में हमारा पूरा फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर ऐसी अजब परिस्थिति में था कि सारी दुनिया में चिंता थी कि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 में गिनी जाने लगी थी। बैंक्स के NPS बहुत हाई थे, बैंकों की बैलेंस शीट्स एकदम प्रैक्टिकली फिनिश होने के कगार पे थी, कौन सा बैंक कब इम्प्लोड हो जाएगा, ऐसी परिस्थितियां थी। आते ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले बैंक्स को बहुत सिस्टमेटिक वे में उनके NPS कम करने का प्रोसेस चालू किया, कम से कम करीब 2,50,000 करोड़ के आसपास रिकैपिटलाइज किया बैंक्स की बैलेंस शीट्स को। बैंक्स को प्रॉपर एक हेल्दी कंडीशन में लेके आए, जो आज आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्रॉफिट हाईएस्ट लेवल पे है, NPS लोएस्ट लेवल पे है। उसके बाद में एक इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस चालू किया, फिर आया कोविड। कोविड का शॉक था, बहुत बड़ा शॉक था, सारी दुनिया ने झेला, भारत ने उस शॉक के दौरान भी प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण एक इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल स्टार्ट किया। उस इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल के कारण जो पहले करीब करीब $30 बिलियन के आसपास इन्वेस्टमेंट होता था, आज $130 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है देश में। इन्वेस्टमेंट जाता है फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रा में, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा दिखाई देता है। आज हम देखें, चाहे कोई भी सेक्टर हम लें, एयरपोर्ट्स, नंबर ऑफ द एयरपोर्ट्स डबल हो गए, हाईवेज 58,000 किलोमीटर्स बने, नई रेलवे ट्रैक्स 36,000 किलोमीटर्स बनी, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 99% कंप्लीट हुआ। कंपेयर करें UK से तो मेरे ख्याल से less than 50% है। कई दूसरे देशों के कंपैरिजन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई, उसका देश में एक प्रभाव पड़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, लोगों की सुविधाएं बढ़ी, इंडस्ट्रीज को और ज्यादा ग्रो करने में मदद मिली। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक फोकस दिया इंक्लूसिव ग्रोथ। भारतीय जनता पार्टी का मूल विचारों में से एक विचार है अंत्योदय का विचार। इसमें प्रधानमंत्री जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से इस पे ध्यान दिया, और जब भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली तो जनधन अकाउंट हो, महिलाओं को सम्मान देने के अधिकार के साथ जो टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन हो, पक्के घरों का निर्माण हो, हर घर नल से जल पहुंचाने का भागीरथी संकल्प हो, ये ऐसे बड़े बड़े काम हाथ में लिए और उनको डिलीवर सक्सेसफुली किया कि सबसे बड़ा इंक्लूसिव ग्रोथ का पूरे विश्व में उदाहरण है अपने पास। मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया और इनोवेशन पे फोकस किया और बहुत बड़ा सिंप्लीफिकेशन किया। तो इस तरह की वेल थॉट थ्रू स्ट्रेटजी के कारण आज भारत 6-8% के ग्रोथ ब्रैकेट में कंसिस्टेंटली रहेगा।
0: और अब जो हम कहते थे कि फ्रेजाइल 5 में है, अब वो कहीं पीछे रह गया है। क्योंकि आप रेलवे का कार्यभार काफी समय से संभाल रहे हैं और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में करीब 56 परियोजनाओं की मंजूरी दी गई, जिसमें लगभग 2,38,000 करोड़ रूपये का निवेश है। हम कहते हैं कि जब कभी भी किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, यानी कि आप 1 रूपया खर्च करते हैं तो 3 या 4 रूपये तक उसका फायदा देखने को मिलता है। रेलवे की परियोजनाओं से जो बदलाव हुआ है उसे आप किस तरीके से परिभाषित करते हैं?
1: बड़ा फंडामेंटल चेंज आया है। अगर आप 2014 से पहले देखें तो एक साल में 700-800 हजार किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन होता था, आज 6,000-7,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन साल का करके करीब करीब पूरे देश के रेलवे नेटवर्क को 99.4% इलेक्ट्रिफाई कर चुके हैं। 70,000 किलोमीटर के आसपास ट्रैक्स को अपग्रेड किया, जो पुरानी पटरियां थी, हालत बहुत खराब थी, स्लीपर्स टूटे हुए रहते थे, उन सबको रिप्लेस करके करीब 70,000 किलोमीटर को रेलवे ट्रैक्स को अपग्रेड किया। 36,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बने, 1,300 स्टेशन का पुनर्निर्माण, नव निर्माण हो रहा है। 1,300 स्टेशन में से करीब करीब 250 स्टेशन कम्प्लीट हो चुके हैं, इस साल के अंत तक 500 स्टेशन कम्प्लीट हो जाएंगे। 5,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण एक वर्ष में करना, मैंने स्विट्जरलैंड का रेलवे नेटवर्क है 5,000 किलोमीटर का, पूरा स्विट्जरलैंड के रेलवे नेटवर्क के बराबर का रेलवे नेटवर्क एक साल में ऐड करना, कई वर्षों पुराने जो प्रोजेक्ट्स पड़े थे जिनको माने प्रधानमंत्री जी का जो प्रगति का मैकेनिज्म है, जिसमें हर महीने वो जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए होते हैं देश भर में वो उन पे ध्यान देते हैं, उनका रिव्यू करते हैं चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट उन सबके साथ मिलके, तो प्रगति मैकेनिज्म के कारण बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आगे आए। ओवरऑल बहुत बड़ा चेंज आया। कई प्रोजेक्ट जैसे चेनाब का ब्रिज अगर आप देखते हैं, तो चेनाब के ब्रिज को तो लोगों ने एक तरीके से राइट ऑफ ही कर दिया था कि ये बन ही नहीं सकता, और बारामूला से श्रीनगर तक ही रेलवे लाइन का और जम्मू से कटरा तक ही रेलवे लाइन को करके एक तरीके से अबैंडन सा ही कर दिया था इस प्रोजेक्ट को। प्रधानमंत्री जी ने इसको कम्प्लीट किया।
0: सर, हम लोग जब प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो दुनिया

0: में एक नीति अपनाई जाती है, उसको हम लोग ट्रिपल पी कहते हैं, पीपल प्लैनेट एंड प्रॉफिट। हमने आपके कैबिनेट ब्रीफिंग में देखा कि जब भी आप किसी परियोजना का ऐलान करते हैं तो आप प्लैनेट और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काफी जोर देते हैं, तो क्या ये समझा जाए कि अब गवर्नमेंट ने भी जो है ट्रिपल पी को पीपल प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी के फॉर्मूले में बदल दिया है?
1: ये आपने बहुत अच्छा नाम दिया, जरा वापस बताएं क्या कहा आपने?
0: पीपल प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी।
1: प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा नाम दिया। जनरली पीपीपी माने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं, आपने इसे अच्छा नाम दिया है। डेफिनेटली यस, देखिए रेलवे सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस 95% लेस है कंपेयर टू दी हाईवे सेक्टर। इसीलिए बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट बहुत सारा हाईवे से शिफ्ट करके रेलवे की तरफ किया है, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोरिया हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, चाहे जर्मनी हो, बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट का फोकस जो आपने कहा प्लैनेट फ्रेंडली कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स में किया है। और भारत में भी इसका बेनिफिट भी साफ दिखाई देता है। माने प्रधानमंत्री जी ने आते ही जो रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन का एक बहुत बड़ा संकल्प लिया, उसका रिजल्ट आज दिखाई देता है। आज वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण जो बहुत सारा मिटिगेशन उसका रेलवे के कारण हो पाया, क्योंकि इलेक्ट्रिफाइड है रेलवे पूरी, और इलेक्ट्रिसिटी पूरी भारत में हम स्वयं प्रोड्यूस करते ही है, आत्मनिर्भर है उसमें पूरी तरह से। तो चाहे गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो या पीपल ट्रांसपोर्टेशन हो, वी आर एबल टू डू इफेक्टिवली विद इलेक्ट्रिफाइड रेलवे।
0: सर, चूंकि आपके पास एक मंत्रालय है इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, और इसमें अगर मैं एक, वैसे तो हर उपलब्धि अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन सेमीकंडक्टर एक ऐसा है, सेमीकंडक्टर मिशन के जरिए जो उपलब्धि हासिल हुई है उससे किस तरह का बदलाव आप, चूंकि कहते हैं कि वो भी एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हम बात करें, चाहे एविएशन इंडस्ट्री की बात करें, हर इंडस्ट्री के लिए उसमें सपोर्ट जरूरी होता है, वहां पर प्रगति को आप किस तरीके से मापते हैं?
1: सेमीकंडक्टर फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, और 1960 से भारत में प्रयास चल रहा था, 1962 से भारत में प्रयास चल रहा था सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लाने का। प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सबने प्रयास किए, आखिर सफलता मिली मोदी जी को। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में प्रेजेंटेशन लेने चालू किए थे, उनका बहुत स्पष्ट था कि हमें इकोसिस्टम पूरा बनाना है, और प्रधानमंत्री जी का यह भी बहुत स्पष्ट था कि हमें 20 साल का सोचना है, हमें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नहीं सोचना है। तीसरा उन्होंने कहा था कि बहुत ध्यान रखना कि इसमें टैलेंट डेवलपमेंट पे पूरा फोकस रहे। ये तीन चीजें उन्होंने मूल रूप से हमको गाइडेंस दी थी। इसीलिए सेमीकंडक्टर मिशन जब चालू किया, इकोसिस्टम पे फोकस दिया, केमिकल्स, गैसेस, इक्विपमेंट, ये सब के सब इसमें इंडस्ट्री के जितने इकोसिस्टम प्लेयर्स है वो ध्यान से आए। सेकेंड, टैलेंट पे बहुत फोकस किया। टैलेंट में 324 यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर मोस्ट मॉडर्न डिजाइन टूल्स में, सेमीकंडक्टर के डिजाइन टूल्स में स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। ये इसका उदाहरण है आपके सामने। देखो, सिलचर, चेंबूर, इंदौर, ग्वालियर, शिवपुर, जम्मू, जालंधर, रोपड़, धनबाद, राउरकेला, मेघालय, जम्मू, कैलिकट, पूरे देश भर के स्टूडेंट्स के डिजाइन की हुई है चिप्स। ये चिप्स स्टूडेंट के डिजाइन की हुई, स्टूडेंट्स के द्वारा डिजाइन की हुई चिप्स को सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर किया, और स्टूडेंट्स ने उनको वापस बोर्ड में टेस्ट करके, सर्किट में टेस्ट करके उसका यूज भी किया। हाल ही में डेवोस में मैंने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सारे लीडर्स जब बैठे थे, उनको पूछा दुनिया भर में कितनी यूनिवर्सिटीज होगी जहां पे कैडेंस, सिनॉप्सिस जैसे टूल्स को यूज, स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि हमने चिप डिजाइन की और मैन्युफैक्चर की, 20 से ज्यादा नहीं गिन पाए।
0: तो अब अगले, अगर मैं 2 वर्ष में कहूं तो सेमीकंडक्टर में भारत की स्थिति आप कहां देखते हैं?
1: बहुत सिग्निफिकेंट जंप आया है विद इन 4 इयर्स। जो कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड चिप्स हमारी, ये माइक्रोन के प्लांट से प्रोड्यूस की हुई, ये केन्स के प्लांट से, 28 फरवरी और ये 31 मार्च, ये माने प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किए थे ये दोनों प्लांट्स। तो मात्र 4 वर्षों में 12 प्लांट प्रोडक्शन स्टार्ट कर देना, डिजाइन का इकोसिस्टम बनना, टैलेंट का पूरा पाइपलाइन रेडी होना, और अगला जो सेमीकंडक्टर मिशन होगा इसमें हमारा फोकस रहेगा डिजाइन को नंबर 1 प्रायोरिटी देना, मशीन मैन्युफैक्चरर्स को बुलाना, केमिकल और गैस मैन्युफैक्चरर्स को बुलाना, और फैब और एटीएमपी यूनिट्स और आएंगे। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह का एफर्ट अभी लगा है और जो सक्सेस अभी तक मिली है, उससे लगता है कि सारी दुनिया भारत को एक ट्रस्टेड पार्टनर की तरह देखती है।
0: सर, एक चीज हमने और भी देखा कि जो पीएलआई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक के लिए आपने किया, और उसका एक सबसे ज्यादा बड़ा फायदा हमें मोबाइल हेडसेट के मामले में देखने को मिला। एक ऐसा भी दौर था कि जब भारत में हर मोबाइल फोन बड़ी तादाद जो है वो इम्पोर्टेड होता था या मेड इन कहीं और होता था। अब हम मेड इन इंडिया और असेंबल्ड इन इंडिया की बात करें, तो ये जो पीएलआई स्कीम है, ये मोबाइल हैंडसेट और इलेक्ट्रॉनिक के मामले में किस तरीके से योगदान किया, और वहां पर हम आगे का सफर कैसे देख रहे हैं?
1: बहुत फायदा हुआ। सबसे पहले तो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स थे उसकी मैन्युफैक्चरिंग चालू की, फिर कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग चालू हुई और कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्रिसीजन

0: का काम होता है। ये एक क्लासिक एग्जांपल है, आप इसको देखें अगर
1: जी,
0: तो आपको ये एक फुल स्टील का ब्लॉक दिखेगा, राइट, तो कोई कहीं कट या कुछ नहीं दिखेगा। ये एक्चुअली इतना प्रिसीजन का मैन्युफैक्चरिंग है, ये एक्चुअल में इतने ज्यादा इसमें कट्स लगे हुए थे इसमें, राइट, इतना प्रिसीजन का काम था। जो सिंगल सॉलिड ब्लॉक दिखता था वो सिंगल सॉलिड ब्लॉक नहीं है। तो इस प्रिसीजन का काम जो स्टूडेंट सीख पाते हैं वही मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं आके, इस तरह का काम है। तो अब कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में आफ्टर दी सक्सेस ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड मॉड्यूल्स, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में 75 फैक्ट्रीज ऑलरेडी अप्रूव हो गई है जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, करीब 250 फैक्ट्री होंगी, और कंपोनेंट का एक्सपोर्ट करना भी भारत ने चालू कर दिया है। प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग के मैं कई एक एग्जांपल आपको दूंगा। रेलवे का जो प्रपल्शन होता है, ट्रेन का जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है वो प्रपल्शन है, रेलवे की इलेक्ट्रॉनिक्स। लास्ट ईयर वी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग रेलवे प्रपल्शन टेक्नोलॉजी टू जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड यूएस। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। प्रधानमंत्री जी का जो मेक इन इंडिया का थ्रस्ट है, जो फोकस है, वो फोकस अब रिजल्ट दिखाने लगा है, जब ऐसी कॉम्प्लेक्स चीजें भारत से एक्सपोर्ट होने लगी।
1: तो अगले, अगर मैं पीएलआई के अगले चरण की बात करूं तो उसमें हम क्या कुछ देख सकते हैं, क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं?
0: बहुत फोकस आएगा कंपोनेंट्स को यूज करके भारत में एक्स्ट्रा डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करना, डिजाइन की कैपेबिलिटीज बढ़ना, और क्वालिटी में जो भारत ने एक पहचान बनाई है उसको एक नए लेवल पे लेके जाना, सिक्स सिग्मा लेवल पे लेके जाना।
1: सर, अगर मैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिस्कशन की बात करूं तो दो ऐसे बिल हैं जो एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन के तौर पे कहे जा सकते हैं। एक जैसे आपका डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन है और दूसरा जो है रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। ये दोनों कानून को लेकर के प्रतिक्रिया जैसी भी रही हो, आप इसके काफी मुखर तरीके से, आपने खासतौर पर ऑनलाइन गेमिंग की मैं बात करूं कि उस पर रियल मनी वाले ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के आपने काफी उस पर अपनी बात बहुत ही मजबूती के साथ रखा था, इन दोनों लेजिस्लेशन को आप किस तरीके से देखते हो और इनके जरिए पूरी इंडस्ट्री में किस तरह का बदलाव हुआ है वो अगर बता सकते?
0: ऑनलाइन मनी गेमिंग सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा एक अभिशाप बन के उभरा था। हजारों सुइसाइड्स, परिवार की सारी इनकम एक गेम में नष्ट हो जाना। ऑनलाइन बेटिंग, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग वॉज अ बिग बिग बिग प्रॉब्लम फॉर दिस सोसाइटी। इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कठोर निर्णय लिया और ऑनलाइन मनी गेमिंग को बैन किया। इसका बहुत बेनिफिट मिला है। अभी हाल ही में टाइटन इंडस्ट्रीज के सीईओ का इंटरव्यू था कि ऑनलाइन मनी गेमिंग के बैन के कारण बहुत सारा जो लोग पैसा वेस्ट कर देते थे मनी गेमिंग में, वो पैसा आज अपने परिवार के लिए अच्छे सामान खरीदने के लिए लगा रहे हैं, घर में बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, हेल्थ केयर के लिए, घर बनाने के लिए, उस सब में लग रहा है। इसी तरह से कई एग्जांपल्स है। एक इंडस्ट्री है जिसमें 30,000 लोग काम करते हैं, उनके सीईओ मुझे बता रहे थे कि महीने का पहला हफ्ता करीब करीब ऐसा होता था जिसमें व्यक्ति ने जितनी सैलरी ली वो सारी सैलरी ऑनलाइन मनी गेमिंग में लूज कर देता था, और उसके बाद में एचआर डिपार्टमेंट को फोन करके किसी तरीके से परिवार कैसे चलाए उसकी व्यवस्था में चिंता रहती थी। मतलब उनका कहना था कि उनके जान पहचान के लोगों में महीने में एक सुइसाइड होता था गेमिंग के कारण। वो सारी चीजें फिनिश हो गई। अभी हाल ही में एक जगह से प्रवास से लौटने के टाइम में इंडिगो का कर्मचारी मुझे मिला, उसने कहा कि मोदी जी को धन्यवाद देना कि ऑनलाइन मनी गेमिंग आपने बंद कर दी, कि मुझे 35,000 रुपए मिलती थी सैलरी, पूरे के पूरे 35,000 रुपए मैं गेमिंग में गंवा देता था, और अब मेरा परिवार, मेरा छोटा सा बच्चा है, उसने कहा मेरा शायद 3 या 4 साल का बच्चा है, अब परिवार हमारा खुश है।
1: लेकिन
0: इस तरह के कई एग्जांपल्स।
1: लेकिन कई बार ये भी बात कही जाती है कि वीपीएन के जरिए और उन सब के जरिए,
0: ये बात ठीक है आपकी,
1: तो आप कैसे उस पर रोक लगा?
0: ये बात ठीक है। देखो, जब भी इस तरह के कड़े कठोर कानून आते हैं तो 90% प्रॉब्लम सॉल्व होती है, लेकिन कुछ हद तक लोग गैर कानूनी तरीकों से करने का प्रयास करते हैं, चाहे किसी भी सेक्टर में ले लो, चाहे ड्रग्स का ले लो, चाहे किसी भी तरह के सेक्टर को ले लो। तो इसमें प्रयास हमारा लगातार रहता है कि इस तरह की जो इलीगल साइट्स हैं उनको बैन करने का। अब तक करीब करीब 10,000 के आसपास इलीगल साइट्स को बैन किया जा चुका है।
1: और सर, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के किस तरीके की?
0: बहुत ही वेल थॉट थ्रू बिल है ये, जिसमें 7 प्रिंसिपल्स के बेसिस पे सिटीजन्स के डिजिटल डेटा को, डिजिटल पर्सनल डेटा को प्रोटेक्शन करने का मेथड है। इंडस्ट्री के साथ बातचीत करके उसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और दुनिया भर में इस बिल के कारण भारत की एक नई पहचान भी बनी, क्योंकि जो प्रिस्क्रिप्टिव मेथड यूरोप ने लगाया उसके कारण उनका इनोवेशन फिनिश हुआ। भारत के इस बिल में इस तरह से बैलेंस आया इनोवेशन और रेगुलेशन में, जिससे कि इनोवेशन भी फ्लरिश कर सके और रेगुलेशन भी प्रॉपर लेवल पे हो सके।
1: अगर मैं आखिरी में आपसे पूछूं कि हमने शुरुआत करी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से, अगर मैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो अगले 3 से 5 सालों में हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कुछ और बदलाव देखेंगे और डिजिटल इंडिया किस तरीके से आगे बढ़ेगा, अगर उसकी रूपरेखा पेश कर सकें आप तो।

0: टेलीकॉम सेक्टर में बड़े बदलाव आने वाले हैं। टेलीकॉम सेक्टर में जो सबसे बड़ा चेंज आएगा वो चेंज आएगा रेजिडेंट एआई। एक टेलीकॉम टावर करीब 2000 पैरामीटर्स लेता है जिसपे वो काम करता है एक साथ। उन पैरामीटर्स को अभी जो एल्गोरिदम्स होती है वो एल्गोरिदम्स बड़ी प्रिस्क्रिप्टिव टाइप की एल्गोरिदम्स होती है, किस सिचुएशन में क्या करना है उस पर डिफाइंड होती है। अगर उसमें एआई लगता है हर टावर के अंदर तो सिग्निफिकेंट लेस पावर कंजम्पशन हो पाएगा, सिग्निफिकेंटली बेटर कॉल क्वालिटी हो पाएगी। और डिजिटल इंडिया के नेक्स्ट फेज में टेलीकॉम का जो रोल है वो रोल और टेलीकॉम में एआई का रोल वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा।
1: लेकिन ये भी कहा जाता है कि एआई बहुत सारी नौकरियां ले सकता है, तो जब हम डिजिटल इंडिया के एक्सपेंशन की बात करेंगे, एआई की इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, हमारे लिए एक बड़ी चुनौती नौकरियां नहीं रहेंगी?
0: जितनी आईटी सेक्टर की इंडस्ट्रीज है उनके साथ हम लगातार एंगेज्ड हैं, किस तरह से नए प्रकार के स्किल्स क्रिएट किए जाए, नए प्रकार की ट्रेनिंग क्रिएट की जाए। अभी हाल ही में नैसकॉम के माध्यम से आईटी इंडस्ट्री ने अपना नया कोर्स का पूरा करिकुलम बना के दिया है जिसको एआईसीटी के माध्यम से लागू करेंगे, जिससे कि टेक्नोलॉजिकल चेंज के कारण जब भी डिसरप्शन आता है, जब भी परिवर्तन आता है, तो उस समय में अगर इंडस्ट्री और एकेडेमिया दोनों आपस में मिल जाए तो उस चेंज को बहुत स्मूथली कर सकते हैं। तो वही प्रयास है आईटी इंडस्ट्री के साथ मिलकर नए तरह के जो जॉब्स क्रिएट होंगे उन जॉब्स के लिए हमारे युवाओं को तैयार करने का प्रयास है।
1: अश्विनी वैष्णव साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सूचना और प्रसारण, रेलवे तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे पत्रकार शिशिर सिन्हा। ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत। अब सुनिए संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पराशर।
3: नमस्कार। 26 मई 2014 वो दिन था जब सिर्फ सरकार नहीं बदली थी बल्कि करोड़ों भारतवासियों की जो आकांक्षा थी, जो सपने थे, वो भी ऐसा लगा था पूरे होने की कगार पर अब आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए अब जब 12 साल पूरे हो रहे हैं तो फिर ये तो एक सवाल बनता है ना कि भाई 12 साल में इस देश में ऐसा क्या बदलाव आया कि लोग मोदी मोदी मोदी मोदी कर रहे हैं? ऐसी क्या बात हो गई कि नरेंद्र मोदी हर राज्य में विजय पताका फहराते जा रहे हैं, लहराते जा रहे हैं, और भारत जो है वो विश्व स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब अपना एक अलग मुकाम रखकर लाया है। चलिए इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज बेहद ही खास मेहमान है, और वो खास मेहमान जो कि जब नॉर्थ ईस्ट में बात होती थी ना कि कौन चेहरा है तो एक चेहरा सबसे पहले सामने आता था, किरण रिजिजू जी का। और वो अब अल्पसंख्यक मामलों के भी मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, इससे पहले कानून मंत्री रह चुके, तो एक तरीके से 2014 से लेकर अब तक का सफर इन्होंने लंबा तय किया है। बहुत बहुत स्वागत है रिजिजू जी आपका।
4: धन्यवाद।
3: और 12 साल की ये जर्नी, आप इस जर्नी को कैसे देखते हो?
4: ये जर्नी भारत का इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट किए गए थे, मंत्रिमंडल का शपथ लेने से पहले उन्होंने हम 44 लोगों को बुला करके पहला संदेश जो दिया था वो मुझे आज भी याद है। मोदी जी ने कहा था कि हम लोग सिर्फ सत्ता में कुर्सी ऑक्यूपाई करने के लिए नहीं आया है, हम देश का दशा दिशा और जनता गरीब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लेने के लिए हम आए हैं। तो तब से लेकर एक एक नीति आप देखेंगे तो भारत को एक नई मोड़ पर लेकर के 2014 के बाद हमने काम शुरू किया है, और गवर्नेंस शासन करने का प्रक्रिया है उसमें बदलाव किया है। और अब तो एक आम सा बात हो गया है कि भारत सरकार कोई भी कदम उठाते हैं उसका लाभ तुरंत जनता तक मिल जाता है, नहीं तो पुराने दिनों में कांग्रेस के शासन के समय तो बातें बहुत होती थी, कई घोषणाएं भी होती थी, बजट में घोषणाएं, रेलवे बजट में नई प्रोजेक्ट का घोषणाएं, और हर समय चुनावों में तो घोषणा ही घोषणा होते थे, गरीबी हटाओ नारा लगाना, ये एक फैशन सा बन गया था उस जमाने में। लेकिन इन 12 सालों में सचमुच में जो काम हुआ है, मैं मानता हूं कि मोदी जी का कार्यकाल है ये सचमुच में भारत को फिर से एक महान

0: महान देश और जो पुराने में भारत का एक नाम था उसको फिर से पुनर्जीवित और फिर से पुनर्स्थापित करने में कामयाब हुआ है।
1: आपने क्योंकि रिजिजू जी गरीबों वाली बात की ना, पहले का वो स्लोगन एक याद आता है कि जब 1 रुपया भेजते थे 10 पैसे पहुंचते थे, आज 1 रुपया भेजते हैं तो कितने पैसे पहुंचते हैं?
0: आज तो जितना भेजता है उतना ही पहुंचते हैं, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री खुद ही सरेंडर हो गए थे। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और खुद ही सरेंडर करके बोल दिया कि 100 रुपया बेचता तो 15 रुपया पहुंचते हैं, 1 रुपया में 15 पैसे पहुंचते हैं। आज तो एक बटन दबाया केंद्र सरकार की ओर से, कोई भी स्कीम घोषणा करके उसको सिर्फ बटन दबाना है, DBT के माध्यम से लोगों के खाता में पहुंच जाते हैं और सारा स्कीम जो है समयबद्ध क्रियान्वित हो जाते हैं। इसलिए जो बदलाव आज देखने को मिला है, ऐसे ही सोचने से आपको पता नहीं चलेगा। 12 साल पहले देश का हालत क्या था, जब कांग्रेस UPA सरकार थे तब हम भ्रष्टाचार से ग्रस्त होकर के, पॉलिसी पैरालिसिस होकर के, और गरीबों को सरकार का कोई भी कार्यक्रम तुरंत कुछ भी नहीं मिलते थे। तो इतना बदलाव जो आया है इसको चंद शब्दों में कहना तो मुश्किल है, मगर इतना तो कह सकता हूँ कि जो हमारा सरकार का थीम है सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, तो गरीबों का कल्याण तो हुआ ही है, सेवा तो हम कर ही रहे हैं और सुशासन देश को भला हो रहा है, तो हर दृष्टि से हम कामयाब हैं।
1: तो आप कह रहे हो पॉलिसी पैरालिसिस, ये जो नारा और स्लोगन चला था उस वक्त मनमोहन सिंह सरकार के समय में, आज राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज PM का नारा चला रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई आपने ऐसा किया तो अब कॉम्प्रोमाइज PM वो बोल रहे हैं।
0: कांग्रेस के समय में जो हालत था वो हमको बताने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। देश के जिस आदमी का भी आप पूछो कांग्रेस जमाने में क्या हालत था, और कांग्रेस के खुद नेताओं से पूछो, कांग्रेस के नेता खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में तो अमेरिका उसका मास्टर थे। चिदंबरम साहब खुद होम मिनिस्टर थे तो खुद ही बताया कि पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला किया और भारत कुछ नहीं कर पाया क्योंकि अमेरिका ने वार्निंग दिया कि कुछ नहीं करना है। फिर चिदंबरम जी ने खुद भाषण दिया था पार्लियामेंट में जब हमारा सत्ता में आए, कहा कि आप डिजिटल इंडिया का बात करते हैं, गांव में गरीब लोगों को डिजिटल से क्या लेना देना है, और जो हमारा पेमेंट होता है UPI के बारे में मजाक उड़ाया था कि गरीब जो सब्जी बेचते हैं, सामान बेचते हैं, उनका डिजिटल पेमेंट कैसे होगा,
1: वो बैंक के खाते का क्या करेंगे।
0: तो ये सारा चीज जो है वो तो कांग्रेस खुद ही कहते हैं। राजनीतिक दृष्टि पर कुछ भी आप कह लो लेकिन मालिक तो जनता है, तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज तो पूरी तरीके से कांग्रेस के जमाने में, कांग्रेस पार्टी ने देश को ही कॉम्प्रोमाइज करके रख दिया था। आज तो मोदी जी अपना निर्णय लेते हैं देश हित में, और देश हित में किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। तो राजनीतिक दृष्टि से कोई अगर कह देगा तो उसके ऊपर भारी पड़ेगा, स्पेशली कांग्रेस पार्टी तो कुछ कह नहीं सकते। उन्होंने लगभग 60 वर्ष इस देश को शासन किया और देश को बहुत गरीब राष्ट्र बना दिया था। सबको मालूम है हमारा इकोनॉमी, हमारा पर कैपिटा इनकम कांग्रेस के जमाने में कितने नीचे थे। अब हम इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं तो सपना देखता था उस जमाने में कि चाइना 8% 10% से ग्रोथ करते हैं, हम कब चाइना की तरह ग्रोथ करेंगे, और मोदी जी ने हमको चाइना से भी ज्यादा स्पीड में अपने इकोनॉमी का ग्रोथ पाथ को आगे लेके खड़ा कर दिया। तो ये सब देखिए, इसमें तो कोई भी भारतीय फख्र होगा कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हमको मिले हैं जो भारत को एक विकसित भारत की ओर ले जा रहे हैं।
1: आपने क्योंकि चाइना की बात कही ना, तो नॉर्थ ईस्ट जहां से आप आते हैं वो समय और वो दौर भी हम लोग देखते थे कि जब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अपनी पहचान का संकट था, पहचान बताने में भी उनको घबराहट होती थी, दिल्ली तक आने में तो उनको बहुत समय लग जाता था, वो बदलाव भी देखा है क्या हमने?
0: बदलाव तो क्या कहेंगे, मैं ये कहूंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा परिवर्तन हो गया है। बदलाव सिर्फ इंक्रीमेंटल बदलाव नहीं है ना, ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव आया है, क्रांतिकारी बदलाव आया है। क्योंकि जो दूर दराज के इलाके हैं वो तो दिल्ली से बहुत दूर महसूस करते थे। जैसे मैं अरुणाचल प्रदेश से आता हूँ, अरुणाचल के लोग दिल्ली जाने के लिए भी सोचना पड़ता था, और दिल्ली वाले भी नहीं आते थे, अगर आते तो भी मेहमान की तरह आते हैं। आजकल तो चाहे लद्दाख हो, चाहे मिजोरम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, सब जगह ट्रेन से कनेक्ट हो गए हैं, एयरपोर्ट से सबको कनेक्ट किया गया है, और टनल बन रहे हैं, नए नए परियोजनाएं, हाईवे कितना बन गया है, जो 1 इंच हाईवे नहीं बने थे 12 साल पहले आज वहां चकाचक हाईवे बन गए हैं, लोग आराम से गाड़ी लेकर के आना जाना हो रहा है, गांव मोबाइल टेलीफोन पहुंच गए हैं, वो भी इतना सस्ता है डेटा कि आप आराम से एक बार आपने अपना डेटा लोड कर लिया फिर आराम से बात करो, आप इंटरनेट में काम करो। उस जमाने में तो फोन करने के लिए भी कितना चिंता करता था कि उसका जो बिल आते थे। तो आजकल तो डेटा भी दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ता भारत में है मोबाइल।
1: लेकिन इसका फायदा या नुकसान, हर गांव में बच्चा कंटेंट क्रिएटर बना हुआ है।
0: वो तो विषय अलग है, उसको एक व्यवहारिक तरीके से क्या करना चाहिए वो विषय अलग है, लेकिन सुविधा सबको मिला है ये बड़ी बात है।
1: जेन जी के बारे में क्या सोच रहे हो आप, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर हम बात कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर और जेन जी खतरा लग रहा है क्या अभी?
0: देखो जेन जी का तो ये शब्द पश्चिमी देशों से उन्होंने क्रिएट किया है, हम तो अपना पारंपरिक जो मानक है हम उसी से चलते हैं। फिर भी एक टाइटल दिया गया है नए युवाओं को, जो एक पर्टिकुलर वर्ग को जेन जी जो कहते हैं, वो आज 18 साल 20 साल 25 साल के लगभग उसमें ज्यादातर लोग हैं,
1: क्योंकि सबकी निगाह उन्हीं पर लगी। राहुल गांधी जेन जी से मिल रहे हैं, अखिलेश यादव जेन जी से मिल रहे हैं, सब जेन जी से।
0: राहुल गांधी जी हो या अखिलेश यादव जी हो, वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। लोकतंत्र में कुछ लोग तो विरोध रहेंगे ही, एक पक्ष होते हैं एक विपक्ष होते हैं, लेकिन आप दिल से अगर नहीं जुड़ेंगे तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर आपको कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में, लगभग 50% वर्ष एक साल में वो विदेश में रहते हैं, वहाँ वो छुट्टियां मनाते हैं, रिजोर्ट में छुप के कहीं कहीं जाते हैं, कभी कभी बताते भी नहीं है, और फिर जब एक बार आएंगे देश में और फिर एक स्टेटमेंट देंगे, मोदी जी को गाली देते हैं, फिर विदेश गायब हो जाते हैं, फिर वापस आएंगे मोदी जी को फिर दूसरा गाली देंगे, फिर विदेश चले जाते हैं। तो ये जो पार्ट टाइम वाला राजनीति है उससे आप लोगों का दिल नहीं जीत सकते हैं और लोगों के अंदर आप नहीं घुस सकते हैं। हमारा तो नेता और हमारा पार्टी 24 घंटे हम तो देश के लिए और देश के जनता के बीच में हम रहते हैं।
1: ये विदेश वाला जो है, विदेश जाने में क्या बुराई है?
0: वो तो अच्छा है, अगर वो विदेश जाते रहे तो कांग्रेस का नैया जो है डूबते रहेंगे। राजनीतिक तौर पर हमको कुछ नहीं कहना है, अगर राहुल गांधी को राजनीति में कोई रुचि नहीं है और विदेश में ही उसका दिल है और अपने विदेशी दोस्तों के साथ ही अगर वहाँ दिल बहलाने के लिए विदेश में रहता है, हमारा क्या आपत्ति है? हम तो इसलिए कह रहे हैं कि वो कभी कभी वापस आते हैं भारत में, अपने देश में आ करके फिर गाली देते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, चुनाव के बीच में भी वो विदेश चले जाते हैं, तो नुकसान तो कांग्रेस का है, हमारा क्या नुकसान है?
1: अब वो कांग्रेस पार्टी कहती है भाई सरकार आपकी, आप पता करो विदेश में वो क्या करते हैं क्या नहीं करते।
0: देखो किसी का जिंदगी में कौन क्या खाता है पीता है, कहाँ रहते हैं, किसके साथ में वो घूम रहे हैं, इतना हमारा रुचि नहीं है। हमारा सिर्फ इतना तक सीमित ध्यान जाता है कि वो देश के विरोधी ताकतों के साथ में मिलना जुलना होते रहते हैं विदेश में, इससे हम आपत्ति है, हम उसको आपत्ति करते हैं।
1: आपको लगता है कि ये जो विदेश वाला राहुल गांधी का है, उसके बाद वो आते हैं पार्लियामेंट में फिर वो एक एजेंडा बोलते हैं, कहीं ना कहीं वही एजेंडा वो लेकर के आते हैं क्या?
0: जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो झलकते ही है, क्योंकि देश को कोसते हैं, देश के प्रधानमंत्री को कोसते हैं, तो उससे पता चलता है कि वो देश के विरुद्ध जो लोग काम करते हैं उनसे काफी इन्फ्लुएंस हुए हैं। उदाहरण के तौर पर जो राहुल गांधी जी कहते हैं पार्लियामेंट में वो सेम चीज पाकिस्तान कहते हैं, और जो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल और इन जैसे लोग जो भी नैरेटिव चलाते हैं उसके तालियां पाकिस्तान में बजता है, तो ये तो कहीं ना कहीं एक तरीके से तो जुड़े हुए हैं। अब मैं इसको किस तरीके से समझाऊं देशवासियों को कि जो विपक्ष है वो भी तो देश के लिए सोचना चाहिए ना। विपक्ष का काम ये नहीं है कि देश के खिलाफ काम करे, वो सरकार को गाली दे सकते हैं, सरकार के खिलाफ उनका बोलने का अधिकार है, और लोकतंत्र में सरकार के खिलाफ मजबूती से अगर विपक्ष खड़ा रह करके निगरानी रखेंगे, कोई करप्शन हुआ है क्या, कहीं कोई नीति में भूल चूक हुआ है क्या, अगर उसमें विपक्ष हमला करते हैं तो ये तो स्वागत है, लेकिन कोविड का समय, ये इमरजेंसी समय है, तब भी प्रधानमंत्री को गाली देंगे, देश के खिलाफ काम करेंगे। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, देश गर्व है हमारा सेनाओं के, जो देश के प्रति उन्होंने जो बल दिखाया है उसको भी विरोध करते हैं, सवाल उठाते हैं, और अभी ईरान अमेरिका इसराइल का लड़ाई के चलते तेल गैस आने में कष्ट हो रहे हैं, ये तो एक तरीके से एक आपातकालीन टाइप का सिचुएशन हरमूज में पैदा हो गया है मिडिल ईस्ट में, तो उससे हमको दिक्कत हो रहा है, तो ऐसा में तो देश के साथ खड़ा होना चाहिए, ऐसा में भी देश का खिलाफ बोलते रहते हैं और मोदी जी का खिलाफ बोलते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आम तौर पर विरोध जो है सरकार के खिलाफ आप जितना कर सकता है कर सकते हैं, उसमें लोकतंत्र में कोई रुकावट नहीं है। लेकिन जब इमरजेंसी सिचुएशन होता है, जब एक विशेष परिस्थिति होता है, ऐसे समय में सबको एक साथ खड़ा होना होता है। जैसे जब 1962 में लड़ाई हुआ चीन के साथ, तो पूरा देश एकजुट खड़ा हुआ है। कम्युनिस्ट पार्टी में टूट हुआ एक ग्रुप जो है चीन का समर्थन में आया, वो कम्युनिस्ट भाग हो गया। 1965 हो, 71 हो या कारगिल के समय में भी हो, हर समय इस

0: तरीके के जब विशेष परिस्थिति आते हैं, जब देश किसी से लड़ रहे हैं, दुश्मनों के साथ में देश मुकाबला कर रहे हैं, ऐसा समय में पूरा देश एकजुट खड़ा रहना चाहिए। ये तो सब मानते हैं, लेकिन पहली बार मैंने देखा है ऐसा विपक्ष आज का दिन में पैदा हो गया है कि देश किसी विपत्ति से जूझने के लिए, कोई आपातकाल स्थिति को नियंत्रण करने के लिए जब काम कर रहे हैं, ऐसे समय में सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। इससे मैं बहुत दुखी हूँ।
1: संसद में आपको लगता है ये जो बर्ताव है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है इतने समय में?
0: देखिए, राहुल गांधी जी को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, मुझे लगता है। मैं इतने सालों से उसको देख रहा हूँ। पहले तो मैंने सोचा था कि वो हल्के फुल्के से इधर उधर घूमते रहते हैं, अनाप शनाप बात करते रहते हैं, लेकिन जब वो नेता प्रतिपक्ष बने तो मैंने सोचा कि वो नियंत्रित होंगे, लेकिन और बिगड़ गया। नेता प्रतिपक्ष होने के बाद तो और भी उसका भाषा पूरा बिगड़ गया है। अब तो पार्लियामेंट में जब बोलते हैं तो नियम के बाहर बोलते हैं और गाला गाली पे उतर जाते हैं, दिन भर नारा लगाते रहते हैं अपना एमपीओ को, जो पार्लियामेंट हाउस के बाहर गेट में खड़ा करके वही दिन भर वहाँ तमाशा कराते रहते हैं। तो एमपी इसके लिए नहीं आया, एक नॉर्मलिटी कर दिया। अब कांग्रेस के एमपी लोग भी ये सोचने लग गया कि वो तो पार्लियामेंट में इसलिए चुन के आए कि वो इस तरह का हरकतें करना है, उसी को अपना दायित्व तो मान लिया है। संसद के अंदर में बोलना, अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बोलना और सरकार का नीति में खामियां है तो उसको उजागर करना, और फिर जहां जरूरत है सुझाव भी दे सकते हैं या आप उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन वो संसद में बोलना, वहां प्रदर्शन करना, ये सारा चीज जो है लोग देख रहे हैं ना, लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस का हरकत कैसे है।
1: मोदी जी ने जो कोई एक बात आपसे इन 12 सालों में कही हो जो आपको हमेशा याद रहेगी?
0: मुझे तो इतना बातें प्रधानमंत्री जी की ओर से सुझाव, निर्देश या हमको गाइडेंस देते रहते हैं, तो एक बोलना मुश्किल है, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ कि देश हित में जो भी आपको दायित्व मिला है उसको पूरी तरह से निभाना है, इसलिए हम अपना ड्यूटी से प्रतिबद्ध हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी, आपने इतनी बेबाकी से ये सब बात कही। और जाहिर तौर पर देखिए 2014 से अभी तक की ये जो जर्नी है, इसीलिए हमने इसको भारत रीलोडेड का नाम दिया है, क्योंकि इस वक्त नए भारत की बात हो रही है और नए भारत का जो सपना भारतवासियों ने देखा था वो कितना पूरा हुआ, इस पर हमसे खास बातचीत की। नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के साथ विशेष साक्षात्कार कर रही थीं रीमा पराशर।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राजधानी की जोन ओ में बसी कॉलोनियों पर उच्च स्तरीय बैठक की। कहा, इन कॉलोनियों में पुराने निर्माण गिराए नहीं जाएंगे। राजधानी में सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करने के लिए परिवहन मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने दिल्ली परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मॉनसून पूर्व तैयारियों के अंतर्गत अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले बरसाती जल निकासी नालों की गाद निकालने का काम लगभग 70% पूरा कर लिया है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने बताया, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर एक दिन में लगभग 1.25 लाख यात्रियों ने नमो भारत सेवाओं का उपयोग किया। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राजधानी के जोन ओ में बसी कॉलोनियों को लेकर दिल्ली सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जानकारी दी गई कि इन कॉलोनियों में पुराने निर्माण को गिराए जाने की कार्रवाई नहीं होगी। बैठक में शामिल जनप्रतिनिधियों ने जोन ओ क्षेत्र में बसी कॉलोनियों में शासन द्वारा लगाए गए नोटिस बोर्ड का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बोर्ड संदेश में लोगों में भ्रम पैदा हो रहा है। जनप्रतिनिधियों ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश और सरकारी रिकॉर्ड के अध्ययन से पाया गया है कि इन कॉलोनियों के पुराने निर्माण पर किसी तरह का खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि जो आदेश है वो नए चल रहे निर्माण को ध्वस्त करने को लेकर है। नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज ने आज करौल बाग मंडल भाजपा के पदाधिकारियों के साथ क्षेत्र से जुड़े विभिन्न जनहित विषयों और स्थानीय समस्याओं के समाधान को लेकर विस्तृत चर्चा की। बैठक के दौरान नागरिक सुविधाओं, आधारभूत ढांचे और अन्य क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श हुआ। श्रीमती स्वराज ने पदाधिकारियों से प्राप्त सुझावों और शिकायतों को संबंधित विभागों के सामने प्रभावी रूप से उठाने और उनके समयबद्ध समाधान के लिए निर्देश दिए। दिल्ली नगर निगम के आयुक्त संजीव खिरवार ने आज सिविल लाइंस क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया और स्वच्छता और प्रदूषण की रोकथाम के लिए निगम द्वारा किए जा रहे कामों की समीक्षा की। इसके अलावा श्री खिरवार ने जहांगीरपुरी स्थित 2000 टीपीडी क्षमता वाले सीएनडी वेस्ट प्लांट का निरीक्षण किया। आयुक्त ने धूल की रोकथाम के लिए सीएनडी वेस्ट प्लांट के चारों तरफ शीट्स लगाने और वाटर स्प्रिंकलर लगाने के भी निर्देश दिए। साथ ही प्लांट के मुख्य मार्ग पर झाड़ियां लगाने और संयंत्र का सौंदर्यकरण करने के भी निर्देश दिए। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज कहा कि सजग समाज और दूरदर्शी विधानमंडल ही विकसित भारत 2047 के दो सशक्त स्तंभ हैं। ये बात श्री गुप्ता ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन के दूसरे दिन आयोजित द्वितीय पूर्ण अधिवेशन को संबोधित करते हुए कही गई। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का अर्थ केवल आर्थिक समृद्धि नहीं है, बल्कि मजबूत संस्थाओं, नागरिकों और राष्ट्रीय उत्तरदायित्व की साझा संस्कृति से है। संबोधन के दौरान श्री गुप्ता ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और जनसेवा वितरण के क्षेत्रों में देश की उपलब्धियों का उल्लेख किया। साथ ही उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक संस्थानों की गरिमा, पवित्रता और मजबूती पर बल दिया। दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा की जा रही है। एक रिपोर्ट।
3: अदालत में सीबीआई ने कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार मनीषा वाघमारे ने पैसे के बदले छात्रों को परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक किए। जांच एजेंसी ने उम्मीदवारों के बयानों का हवाला दिया है। इसमें उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्रों के लिए पैसे दिए गए थे। इस मामले में सीबीआई ने शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर 12 मई को प्राथमिकी दर्ज की थी। सीबीआई के अनुसार मनीषा छात्रों को जुटाने में लगे बिचौलियों में शामिल थी। आरोप है कि इन छात्रों ने विशेष कोचिंग सत्रों में शामिल होने के लिए लाखों रुपए का भुगतान किया था। यहां परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को बताया गया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए 21 जून को पुनर्परीक्षा आयोजित करेगी। एडमिट कार्ड 14 जून तक जारी होने की उम्मीद है। प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
2: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। नई दिल्ली स्थित एनटीए मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
4: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य

0: की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहां ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए खुफिया ब्यूरो और केंद्रीय जांच ब्यूरो सहित सभी साइबर सुरक्षा संसाधनों को लगाया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने आज दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान राजधानी में बसों के रोजाना के संचालन और यात्री सेवाओं की गुणवत्ता को और अधिक बेहतर बनाने पर विशेष बल दिया गया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान परिवहन मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने निर्देश दिए कि सभी बसें अपने निर्धारित बस स्टॉप पर अनिवार्य रूप से रुकें और यात्रियों के लिए सुरक्षित और सुगम तरीके से बसों में चढ़ने और उतरने की सुविधा सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यात्रियों, विशेषकर महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार और लापरवाही का कोई भी मामला सामने आने पर बेहद सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्री सिंह ने डीटीसी के सभी अधिकारियों को बसों की समय सारणी, रूट ऑपरेशन और सर्विस के समय के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इसे भूमि पत्तनों के बीच एकीकृत प्रणाली कायम करने के लिए बनाया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह प्रणाली आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
3: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि मॉनसून की तैयारियों के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले तूफानी जल निकासी नालों की गाद निकालने का लगभग 70% काम पूरा कर लिया गया है। प्राधिकरण के अनुसार गाद हटाने का काम काफी पहले ही शुरू कर दिया गया था, जिसका उद्देश्य वर्षा जल की सुचारू निकासी सुनिश्चित करना, सड़कों पर बाढ़ को रोकना, यातायात जाम को कम करना और राष्ट्रीय राजधानी में मॉनसून के मौसम के दौरान सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के समग्र रखरखाव में सुधार करना था। प्राधिकरण ने कहा कि समय पर काम पूरा होने और गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए डीडीए अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण और निगरानी की जा रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने शेष कार्य मॉनसून शुरू होने से पहले इस महीने की 15 तारीख तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सरकार ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और दो डॉक्टरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उसकी जीरो टॉलरेंस नीति से समझौता नहीं किया जाएगा। सरकार के अनुसार मामले की जांच जारी है और अनियमितताओं में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम एनसीआरटीसी ने बताया है कि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर अब तक सबसे अधिक दैनिक राइडरशिप रिकॉर्ड की गई है। एनसीआरटीसी ने बताया कि एक दिन में लगभग 1.25 लाख से अधिक यात्रियों ने नमो भारत सेवाओं का उपयोग किया। एनसीआरटीसी ने कहा कि उपलब्धि एनसीआर में लोगों के यात्रा करने के तरीके में आ रहे बड़े बदलाव को दिखाती है। निगम

0: ने बताया कि दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी के बीच नमो भारत ट्रेनें यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित यात्रा का अनुभव प्रदान कर रही हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि सरकार ने पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के माध्यम से देशभर में मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया है। श्री नड्डा ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरा होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने बताया कि मातृ मृत्यु दर में 86% की कमी आई है।
1: समय रहते हुए इलाज हो सके इसकी व्यवस्था हमने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत किया है। इसके नतीजे भी बहुत अच्छे आए हैं। जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 आया है उसमें ये ध्यान में आया और यूनाइटेड नेशंस के जो हमारी रिपोर्ट है उसमें हमारे को ध्यान में आया कि MMR मैटरनल मोर्टैलिटी रेशियो मातृ मृत्यु अनुपात यह भारत का 86% डिक्लाइन आया है।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि जनजातीय अस्मिता तथा जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध भगवान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ ऐतिहासिक उलगुलान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अमर अध्याय है। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का अदम्य साहस संघर्ष और सर्वोच्च बलिदान कृतज्ञ राष्ट्र सदैव स्मरण रखेगा। वहीं दिल्ली के समाज और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश शासन सामाजिक अन्याय और शोषण के विरुद्ध संघर्ष करते हुए जनजातीय समाज को स्वाभिमान संगठन और अधिकारों की शक्ति का परिचय कराया। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा केवल एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं बल्कि सामाजिक चेतना सांस्कृतिक अस्मिता और जनजातीय स्वाभिमान के प्रतीक हैं। राजधानी में दोपहर में गर्मी का कहर जारी है। वहीं शाम के समय कई इलाकों में तेज हवा के साथ हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि न्यूनतम तापमान रहा 29 डिग्री सेल्सियस। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राजधानी की जोन ओ में बसी कॉलोनियों पर उच्च स्तरीय बैठक की। कहा इन कॉलोनियों में पुराने निर्माण गिराए नहीं जाएंगे। राजधानी में सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करने के लिए परिवहन मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने दिल्ली परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने बताया कि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर एक दिन में लगभग 1.25 लाख यात्रियों ने नमो भारत सेवाओं का उपयोग किया। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से ज्यादा लोग मारे गए और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रहे फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक

0: सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों के आवाजाही को आधुनिक, सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इसे भूमि पत्तनों के बीच एकीकृत प्रणाली कायम करने के लिए बनाया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह प्रणाली आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद्य और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिन के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है। यह कमी सोने पर आयात शुल्क में बढ़ोतरी और प्रधानमंत्री मोदी की कम से कम एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने की अपील का परिणाम है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि सरकार ने पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के माध्यम से देशभर में मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया है। श्री नड्डा ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उत्तर प्रदेश सरकार 3 तलाक और एसिड हमलों से पीड़ित महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ प्रदान करेगी। इन सभी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद महिलाओं तक पहुंचाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। श्रीलंका के दाम्बोला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। भारत की ओर से ऋतुराज गायकवाड़ ने सर्वाधिक 101 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। The Ministry of External Affairs today acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. Addressing the media in New Delhi, External Affairs spokesperson Randhir Jaiswal said that New Delhi continues to see a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. Mr. Jaiswal described them as a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses.
4: A pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are several reports of police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several people have been killed. There are several more who have been injured. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and its abuses.
3: Over 30

जी साहब, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये वक्त दस्तक दे रहा है। इस वक्त यानी 8:10:37 ये वक्त है आपके साथ मधुरिमा का। जी हाँ, और आपके लिए, आपकी सेवा में मधुरिमा लेकर हाजिर हूँ मैं, आप ही की दोस्त रूपा धवन। नमस्कार। तो दोस्तों, आज मधुरिमा में हम बात करेंगे राग यमन और यमन कल्याण पर आधारित गीतों की, और साथ ही साथ सुनेंगे इन गीतों को भी। तो पहला गीत हम शामिल कर रहे हैं अनुरोध फिल्म से, किशोर साहब के स्वर में आनंद बख्शी द्वारा रचा गया ये गीत, जिसे संगीत से सजाया संवारा लक्ष्मीकांत प्यारेदाल ने

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.

0: DelhiTalentHunt.com कला संस्कृति एवं भाषा विभाग दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
1: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। वक्त हुआ है 8:18:34। आप है मधुरिमा के साथ, जिसे लेकर हाजिर है आप ही की दोस्त रूपा धवन। तो बातें हो रही हैं राग यमन की और राग कल्याण पर आधारित गीतों की। तो अगला गीत जो हम शामिल कर रहे हैं वो है आपकी परछाइयां फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी साहब के स्वर में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और राजेंद्र किशन जी के लिखे बोल।

राग यमन कल्याण भी संपूर्ण यमन का ही रूप होता है, लेकिन जब उसमें शुद्ध मध्यम का प्रयोग किया जाता है तब वो यमन कल्याण हो जाता है। दोनों मध्यम का प्रयोग यानी राग यमन की खूबसूरती में चार चांद लगे होना। आपकी परछाइयां फिल्म से ये गीत आप सभी के लिए मोहम्मद रफी साहब की आवाज में, मदन मोहन का संगीत और गीतकार मेहंदी अली खान।

वैसे साथियों, राग यमन के लिए संगीत घरानों में ये मुहावरा बेहद प्रचलित रहा, इमन बजा की मन बजा। फिल्म संगीत में राग यमन कल्याण पर बने गीतों ने फिल्मी संगीत की शोभा बढ़ा दी। इस राग के लिए कहा जा सकता है कि जो भले ही शाम के समय गाया बजाया जाता है, पर इसकी जो जादू भरी मिठास है, कोई भी उससे इसकी जादूगरी से बच नहीं सकता। राग यमन और राग कल्याण, इसके गीतों में प्यार की चंचलता, मोहब्बत के पैगाम सभी से लेकर गंभीर प्रकृति की चादर को अपने आप में ओढ़े हुए है ये राग।

कमाल अमरोही के शब्द और संगीत, नौशाद साहब का राग कल्याण पर आधारित ये गीत हमने शामिल किया पागीसा फिल्म से, ताल कहरवा।

मधुरिमा से अनुमति लेती है रूपा, फिर मिलेंगे किसी मोड़ पर। उम्मीद है, आशा है कि आपको आज का मधुरिमा कार्यक्रम पसंद आया होगा। नमस्कार।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और हम एक बार फिर मौजूद हैं नए क्लेवर, नए रंग और नए अंदाज के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का ताजा अपडेट और हर मैदान की पूरी खबर, और वो सब कुछ अधिक विस्तार के साथ। तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन के साथ खेल की हर बात। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। भारत ए ने एक दिवसीय क्रिकेट त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन ओपन 2026 आज से सिडनी में शुरू हुआ और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अंडर 18 एशिया कप में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम को सम्मानित किया।

0: तो सबसे पहले कार्यक्रम को शुरू करते हैं खेल के मैदान की खबरों के साथ, जहां श्रीलंका के दांबुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में आज भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। सुनते हैं इस मैच पर हमारी ये रिपोर्ट।
1: भारत ए टीम ने श्रीलंका ए पर जीत के साथ त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला की शुरुआत की है। पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 277 रन बनाए थे। ऋतुराज गायकवाड़ ने 114 गेंद पर 101 रन की पारी खेली। कप्तान तिलक वर्मा ने 60 रन की पारी खेली। जवाब में श्रीलंका को निरोशन डिकवेला और अविष्का फर्नांडो ने एक मजबूत शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए

0: उन्होंने 93 रन जोड़े। अविष्का 45 रन और निरोशन 99 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद मेजबान टीम का विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। कप्तान अरागिचे ने बेहतरीन अर्धशतक लगाया, उन्होंने 74 रन की पारी खेली। कप्तान का विकेट गिरते ही श्रीलंकाई टीम 269 रन पर सिमट गई। आयुष बडोनी, अनुकूल रॉय, अरशद खान और विपराज निगम ने दो दो विकेट लिए। ऋतुराज गायकवाड़ को शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो जहां एक तरफ युवा खिलाड़ियों ने पहले मैच में शानदार जीत दर्ज की, और आज कार्यक्रम में बात होगी ऐसे एक और युवा खिलाड़ी मानव सुथार की, जिन्होंने अफगानिस्तान के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना डेब्यू करते हुए एकमात्र टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन किया और 7 विकेट लेकर न सिर्फ प्लेयर ऑफ द मैच बने बल्कि कई रिकॉर्ड्स को भी ध्वस्त किया। सुनिए 23 वर्षीय युवा मानव सुथार पर हमारी एक खास रिपोर्ट।
2: Top edge, and it's taken. A wicket in the first over. You can't ask for anything better. Fourth ball is all he needs.
3: अपने इंटरनेशनल करियर के पहले ही ओवर में अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाज अब्दुल मलिक का विकेट लेकर भारत के इस डेब्यूटेंट मानव सुथार ने अपने मैच को हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना दिया। इस विकेट के बाद मानव ने मानो विकेट की झड़ी ही लगा दी और मुल्लापुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच की पहली पारी में 22 ओवर में 33 रन देकर 6 विकेट झटके। सुथार की फिरकी के आगे अफगानिस्तानी बल्लेबाज बेबस नजर आए। उनके इस प्रदर्शन की बदौलत भारत के 564 रन के जवाब में मेहमान टीम अपनी पहली पारी में 152 रन पर सिमट गई और भारत ने अफगानिस्तान को फॉलो ऑन दिया। मेहमान टीम की दूसरी पारी में भी सुथार ने एक विकेट झटका। मानव सुथार पिछले 35 सालों में भारत के लिए डेब्यू टेस्ट की एक पारी में 6 विकेट हॉल लेने वाले मात्र दूसरे गेंदबाज हैं। उनसे पहले ये कारनामा पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने किया था।
4: फर्स्ट ऑफ मेनी मानव सुथार 6 for 33 इन 22 ओवर्स, सेकेंड बेस्ट फिगर्स बाय एन इंडियन ऑन डेब्यू।
3: मानव सुथार डेब्यू टेस्ट में भारत के लिए 5 विकेट हॉल लेने वाले 10वें खिलाड़ी बन गए हैं। प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने पर मानव सुथार ने स्वीकार किया कि टेस्ट क्रिकेट आसान नहीं है। भारत के लिए टेस्ट डेब्यू करने पर मानव ने कहा कि ये उनके लिए बेहद खास एहसास था। मानव की गेंदबाजी परफॉर्मेंस पर भारतीय स्पिन बॉलिंग कोच साईराज बहुतुले ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
5: वेरी वेल बोल्ड मानव, आई थिंक फैबुलस एफर्ट ऑन डेब्यू, पिकिंग अप 5 विकेट्स इज ऑलवेज समथिंग स्पेशल। वेरी वेल डन, आई थिंक द एफर्ट्स यू पुट इन विद ऑल योर हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिस।
3: सिर्फ गेंदबाजी ही नहीं, मानव ने बल्लेबाजी में बखूबी हाथ आजमाया और अपने डेब्यू टेस्ट की पहली पारी में 41 गेंद का सामना करते हुए 2 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 28 रन बनाए। मानव सुथार ने इस मैच से मिली सीख के बारे में कहा कि सबसे बड़ा सबक ये है कि निरंतरता ही सब कुछ है। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो मानव ने भी माना कि टेस्ट मैच की निरंतरता ही सब कुछ है, और निरंतरता से इतर इस तरफ चलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, जहां बैडमिंटन ओपन 2026 आज से सिडनी में शुरू हो चुका है। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु 24 सदस्यीय भारतीय टीम की अगुवाई कर रही हैं। आइए सुनते हैं किन किन खिलाड़ियों ने आज खेले गए मुकाबलों में बाजी मारी और किन अहम खिलाड़ियों पर कल नजर रहेगी।
6: आज खेले गए मुकाबलों की बात की जाए तो पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमस्करुनन की जोड़ी ने पहले दौर में जीत दर्ज कर प्री क्वार्टर्स फाइनल में प्रवेश किया, जबकि अच्युता दत्त राव और अर्जुन रेड्डी पोषणा की जोड़ी को पहले ही दौर में हार का सामना करना पड़ा। पुरुष सिंगल्स के क्वालिफायर मुकाबलों में संगीत दयानंद ने पहले स्थानीय खिलाड़ी कारोनो को 21-17, 21-15 से आसानी से हराया और फिर मलेशिया के मिंग होंग लिम 21-9, 21-16 से हराकर मुख्य ड्रॉ में जगह पक्की की। वहीं मनराज सिंह मुख्य ड्रॉ में जगह बनाने में असफल रहे। प्रतियोगिता में सिंगल्स वर्ग के मुख्य मुकाबले कल से शुरू होंगे, जिसमें भारत को अपने स्टार खिलाड़ियों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। महिला सिंगल्स में अनुभवी पीवी सिंधु, युवा मालविका बंसोड, अनमोल खरब, तन्वी शर्मा, ईशरानी बरुआ, आकर्षी कश्यप और तान्या हिमनाथ के साथ भारत की चुनौती रखेंगी। वहीं पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और एचएस प्रणय, किरण जॉर्ज से भारत को उम्मीदें होंगी। वहीं मिक्स डबल्स में ध्रुव कपला और तनिषा क्रेस्टो को भारत से सबसे अधिक उम्मीदें होंगी। उनके साथ ही ध्रुव रावत और मनीषा कीर तथा मोहित जागलान और लक्षिता जागलान की जोड़ी भी भारत की चुनौती रखेगी। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।

0: और अब बात हॉकी की, जहां अंडर 18 एशिया कप में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय पुरुष और महिला टीमों को आज खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सम्मानित किया। श्री मांडविया ने पुरुष टीम को 61,50,000 रुपये और महिला टीम को 21,00,000 रुपये की पुरस्कार राशि सौंपी।
1: कका मिगाहरा में शुक्रवार को खेले गए फाइनल में कप्तान केतन कुशवाहा की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने मेजबान जापान को 4-1 से मात देकर खिताब अपने नाम किया। दूसरी तरफ कप्तान स्वीटी कुजूर के नेतृत्व वाली भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक के लिए खेले गए मुकाबले में कोरिया पर 3-0 से शानदार जीत दर्ज की थी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पुरुष और महिला दोनों टीमों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि देश का नाम रोशन करने के लिए दोनों टीमों ने कड़ी मेहनत की है। उन्होंने कहा कि परिश्रम का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। श्री मांडविया ने बताया कि भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित भारत को एक खेल महाशक्ति में बदलने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इससे पहले स्वदेश पहुंचने पर अंडर 18 पुरुष कप्तान केतन कुशवाहा ने टीम के प्रदर्शन पर प्रसन्नता व्यक्त की।
2: यही कहना चाहूंगा अपनी टीम को कि अपने कोचेस को थैंक यू, कितना सपोर्ट, इतनी ट्रेनिंग हम लोग को मिली गई है और हम लोग वहाँ से आए जीत कर, तो बहुत खुशी हो रही है अंदर से कि इतना एशिया कप जीतना और एक दूसरे को सपोर्ट करना।
1: टीम के कोच और पूर्व दिग्गज हॉकी खिलाड़ी सरदार सिंह ने कहा कि इस प्रकार के अवसर भारतीय हॉकी टीम को और मजबूत बनाएंगे।
3: 18 जो ग्रास रूट लेवल पे और उसके बाद सब जूनियर बच्चों के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम इस तरीके के कैंप्स अगर कंटिन्यू करेंगे सारी स्पोर्ट्स में, तो मैं कहूंगा कि सभी जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनका भविष्य उज्ज्वल है, क्योंकि अगर हमारे बेसिक स्ट्रांग है तो ऊपर लेवल की जो इंटरनेशनल हॉकी है उसको मैनेज करना इजी है।
1: श्री मांडविया ने पुरुष और महिला टीम के सर्वश्रेष्ठ स्कोरर आशीष तानीपूर्ति और नौशीन नाज तथा सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर आयुष राजक को भी सम्मानित किया। प्राची प्रिया, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब बात विश्व योगासन चैंपियनशिप की, जिसका कल गुजरात के अहमदाबाद में समापन हो गया। सुनिए इस आयोजन पर हमारी ये खास रिपोर्ट।
4: भारतीय खिलाड़ियों ने गुजरात के अहमदाबाद में अपने प्रदर्शन से ये साबित कर दिया है कि क्यों भारत को योग की महाशक्ति कहा जाता है। भारतीय खिलाड़ियों ने योगा मैट पर अपने लचीलेपन और शारीरिक दक्षता का ऐसा प्रदर्शन प्रस्तुत किया कि पदकों की कतार सी लग गई। भारत ने 102 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य समेत कुल 114 पदक हासिल किए। जापान 3 स्वर्ण और 3 रजत पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा। पहली बार आयोजित इस विश्व योगासन चैंपियनशिप में कुल 79 देशों के 522 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली हिना ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत योग के क्षेत्र में बड़े कीर्तिमान स्थापित करने के लिए तैयार है।
5: बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये जो सारे एथलीट्स हैं बहुत ही अच्छी खासी तैयारी करके आए हैं और बहुत सारे मेडल्स उनको भी गए हैं, तो मुझे लग रहा है कि अगले आने वाले 5-10 साल में हमें बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन देने वाले हैं। बट वैसे अगर योग की लैंग्वेज में बोलूँ तो वसुदेव कुटुंबकम और जो इंडिया है, जो भारत है, वो एक विश्वगुरु बनकर सामने आ रहा है।
4: विश्व और भारत योगासन के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य ने कहा कि योगासन ने बहुराष्ट्रीय स्तर के आयोजन में अपना शंखनाद कर दिया है और अब ये खेल ओलंपिक और राष्ट्रमंडल जैसे आयोजनों का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह तैयार है।
6: आने वाला 2036 के लिए जो हमने बिड की है ओलंपिक में, और 2032 के लिए हमने कॉमनवेल्थ गेम के लिए बिड की है, वो भी गुजरात में होने जा रहा है, तो मुझे लगता है कि मल्टी स्पोर्टिंग इवेंट में पहली बार विश्व पटल पर योगासन ने अपना शंखनाद अहमदाबाद से कर दिया है।
4: इस आयोजन से पहले खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भी योगासन को राष्ट्रमंडल खेल का हिस्सा बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई थी।
7: भारत में कॉमनवेल्थ का जब आयोजन करा जाएगा तब उसमें स्वदेशी गेम्स या तो भारतीय स्पोर्ट्स के रूप में योगासना को भी स्थान दिया जाएगा।
4: तो ये कहा जा सकता है कि योगासन अब खेल मैदान और पार्कों की योग मैट से निकलकर विश्व के खेल पटल पर अपनी दावेदारी मजबूत कर रहा है। आनंद पाठक, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब अंत में बात करते हैं महिला T20 क्रिकेट विश्व कप की, जिसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।
8: 2025 में एक दिवसीय क्रिकेट का विश्व विजेता बनने के बाद अब हरमनप्रीत कौर की विमेंस इन ब्लू है तैयार। इंग्लैंड और वेल्स में अपने पहले T20 विश्व कप खिताब के लिए जोश, जज्बे और अनुभव के साथ भारतीय महिला क्रिकेट टीम है तैयार।

0: खत्म करने को 17 साल का इंतजार, तो अब दुनिया देखेगी दम, हर मैदान जीतने को तैयार है हम।
1: और आज बात करते हैं इस कड़ी में उन 5 खिलाड़ियों की जिन पर इस टीम की पूरी नजरें रहने वाली हैं।
2: इस सूची में सबसे पहला नाम आता है भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना का, जिनका बल्ला इस विश्व कप में काफी मायने रखेगा। मंधाना अगर टीम को अच्छी शुरुआत देने और बड़ी पारी खेलने में सफल रहती है तो भारत का काम काफी हद तक आसान हो सकता है। और अगर रिकॉर्ड की भी बात की जाए तो मंधाना को इंग्लैंड में खेलना बेहद रास आता है। इंग्लैंड में उन्होंने अब तक खेली 19 पारियों में 139 के स्ट्राइक रेट से 650 रन बनाए हैं। क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में मंधाना इंग्लैंड में 1 शतक और 5 अर्धशतक लगा चुकी हैं। तो रिकॉर्ड बखूबी बताते हैं कि इस स्टार बल्लेबाज के लिए इंग्लैंड की स्थितियां कितनी बेहतर होती है। रिकॉर्ड्स की बात हो और हरमनप्रीत कौर का नाम ना आए, ये संभव नहीं है। भारत के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों की सूची में भारतीय मिडिल ऑर्डर की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाली कप्तान हरमनप्रीत कौर भी हैं। हरमनप्रीत का ये आखिरी विश्व कप भी माना जा रहा है, ऐसे में वे अपने प्रदर्शन से छाप जरूर छोड़ना चाहेंगी। हरमनप्रीत ने इंग्लैंड में खेली 24 पारियों में अब तक 526 रन बनाए हैं। वहीं अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से किसी भी मैच का रुख पलटने का दमखम रखने वाली शेफाली वर्मा इस T20 विश्व कप में भारतीय टीम के लिए ट्रंप कार्ड साबित हो सकती हैं। शेफाली को इंग्लैंड में बल्लेबाजी करने में आनंद आता है, जिसकी कहानी खुद उनके रिकॉर्ड्स बयां करते हैं। उन्होंने यहां पर खेले 19 मुकाबलों में 139 के स्ट्राइक रेट से 431 रन बनाए हैं। सूची में चौथा नाम दीप्ति शर्मा का है। टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा लंबे समय से अहम रोल अदा कर रही है। टीम को दीप्ति से एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के प्रदर्शन को दोहराने की उम्मीद होगी। अगर मुख्य रूप से गेंदबाजी की बात की जाए तो रेणुका सिंह टीम के लिए बड़ी भूमिका निभाती हुई नजर आ सकती हैं। स्टार तेज गेंदबाज का क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में इंग्लैंड की धरती पर दमदार प्रदर्शन रहा है। इंग्लैंड में रेणुका ने अब तक कुल 8 मुकाबले खेले हैं और इस दौरान 12 विकेट चटकाए हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि इस दौरान उनका इकोनॉमी सिर्फ 6.12 का रहा है, यानी किफायती के साथ साथ विकेट निकाल कर देने वाली खिलाड़ी। तो इन मजबूत खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस विश्व कप में भारत के लिए बड़ा रोल निभाते हुए नजर आएंगी और इंग्लैंड की धरती पर युवा और अनुभव भी खिलाड़ियों का तालमेल लेकर उतर रही है, टीम की खिताब जीतने की उम्मीदों को और मजबूत करेगी। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो अब समय हो रहा है श्रोताओं आपसे अनुमति लेने का। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप हमारे ईमेल sportscan@air.gmail पर हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। और रक्षा मंत्रालय दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और

0: नैतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: अफगानिस्तान की जनता के कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दवा सहायता से संबंधित उपायों के माध्यम से अफगानिस्तान की सहायता जारी रखे हुए है। श्री जायसवाल ने बताया कि एमटी मैरीमैक्स जहाज के चालक दल के सभी 24 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
1: जब ये हादसा हुआ उस समय तुरंत ही हमारे भारतीय दूतावास जो कि ओमान में है तुरंत एक्शन में आए और वहां ओमानी अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया। तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और 2400 भारतीय नागरिक को सुरक्षित वहां से निकाला गया। ये सभी नागरिक हमारे नागरिक सुरक्षित हैं।
0: विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉ जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने विदेश नीति और कूटनीति, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई हैं।
2: The amount of time we have spent
3: हमने उन देशों के साथ लगातार बातचीत जारी रखी जो तेल, गैस, एलएनजी, एलपीजी तथा उर्वरकों के उत्पादक हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित का विषय है। इसलिए विदेश नीति पूरी तरह से उस समय के प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप संचालित होती है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, दुनिया भर को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच प्रमुख क्षेत्रों में भारत की संतुलित भागीदारी पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिन के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर कोई दबाव नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों के आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़

0: गढ़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
1: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी अधिनियम जी रामजी को सुचारू रूप से लागू करने को लेकर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
2: विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है। कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया। 95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी दे रहे हैं।
3: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। सरकार ने अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
4: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे 5 लाख रुपए मिलेंगे।
3: सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
5: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रहता हूँ।
3: सरकार ने मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12

0: वर्षों में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित 3 विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों का आज स्वीकृति पत्र जारी किए। ये संस्थान ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, यॉर्क विश्वविद्यालय और न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय हैं। ये विश्वविद्यालय महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये विश्वविद्यालय व्यवसाय, कम्प्यूटर विज्ञान और साइबर सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में कार्यक्रम उपलब्ध कराएंगे। श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने कल पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में बिहार, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कल लू चलने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. India expresses grave concern over killings of 30 civilians in deadly crackdown on protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Accuses Islamabad of using fake news to mask severe human rights violations. External Affairs Minister S. Jayashankar says foreign policy under Modi-led government during past 12 years is in sync with its core national goals. Prime Minister Narendra Modi holds telephone conversation with Emir of Kuwait on evolving security situation in West Asia. Government gives financial support of 1.23 lakh crore rupees to oil marketing companies to ease burden of rising crude oil prices. Home Minister Amit Shah inaugurates land port management system to digitize and streamline cargo processing and passenger movement across land borders, and Defence Ministry to establish 250 megawatt solar power project with battery energy storage system in Uttar Pradesh for strengthening long-term energy security. And now the news in detail. The Ministry of External Affairs today acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added, India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. Addressing the media in New Delhi, spokesperson at the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said that New Delhi continues to see a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan.

0: मंथन।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्षों पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक आराधना पटनायक के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
2: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर एक राष्ट्रव्यापी अभियान की आज से शुरुआत हुई है। आज हम कार्यक्रम में इस राष्ट्रव्यापी अभियान और देश भर में जो आज से जागरूकता और अन्य गतिविधियां इस अभियान के तहत चल रही हैं, उन पर हम आज कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं और साथ ही किस तरह से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ने देश में जन स्वास्थ्य में अपनी एक बड़ी भूमिका निभाई है, इस बारे में भी आज हम कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ी है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन डायरेक्टर आराधना पटनायक। बहुत बहुत स्वागत है मैम आकाशवाणी में आपका।
3: नमस्कार।
2: तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत जो आज से एक देश भर में विशेष आउटरीच अभियान शुरू किया गया है, इसका मुख्य मकसद क्या है?
3: आज से जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की 10वीं वर्षगांठ को आज हम मुख्य रूप से उसको एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं। आपको जानकारी होगी कि ये प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ये 9 जून 2016 से प्रारंभ किया गया और इस अभियान में प्रत्येक माह के 9 तारीख को जो भी गर्भवती माताएं हमारी हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको विशेषज्ञ की सेवाएं दी जाती है। जो हमारे स्पेशलिस्ट कंसल्टेशंस वो इस दौरान होती है और साथ ही साथ जो उनका प्रसव पूर्व जांच किया जाता है वो निःशुल्क किया जाता है। साथ ही साथ विशेषज्ञ संपूर्ण रूप से उनकी जाँच करते हैं ताकि स्वस्थ माँ एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके, ताकि गर्भावस्था के दौरान उनको कोई भी दिक्कत नहीं हो।
2: जी, तो जैसा कि आपने बताया कि 10 वर्ष पूरे होने पर ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान है, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी वो गतिविधियां या जागरूकता के कार्यक्रम हैं जो अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस अभियान के तहत

0: जो संचालित किए जाएंगे उस बारे में भी हमें बताएं।
1: सभी हमारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है वहां पर आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजन किया जा रहा है। तो लगभग 1,80,000 हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर है जहां पर डॉक्टर्स और हमारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स वो प्रसव पूर्व जांच करते हैं और उसके साथ साथ जितने हमारे जिला अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल और हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, फर्स्ट रेफरल यूनिट्स हैं, वहां पर गायनेकोलॉजिस्ट की प्रेजेंस में उनका प्रसव पूर्व जांच होता है। इसके साथ साथ इसी दौरान हम लोग हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन को आइडेंटिफाई करते हैं। वैसे महिलाएं जिनको शारीरिक कोई ना कोई कठिनाई है जिसके कारण उनको हम एक हाई रिस्क कैटेगरी में लेते हैं, तो वो जो हाई रिस्क प्रेग्नेंसीज है उनका स्पेशल फोकस रहता है इस 9 तारीख को, और उनका स्क्रीनिंग और उनका फॉलोअप, और इसको लेकर एक हम लोग अभियान भी चालू किए हैं जिसमें हम अवेयरनेस ला रहे हैं। तो हमारी जो आशा बहनें हैं वो गांव गांव घर घर जाके महिलाओं को जागरूक कर रही हैं कि आप अपना प्रसव पूर्व जांच के लिए नियमित रूप से प्रत्येक माह के 9 तारीख को जरूर अपना जांच कराने के लिए जाएं। उसके अलावा हमारी जन आरोग्य समिति है, जितने हमारे VHSND विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन न्यूट्रिशन कमिटीज हैं वहां पर हम लोग फिर माताओं की हम लोग बैठकें आयोजित करते हैं। तो उन सभी में जितनी पंचायती राज हमारी संस्थाएं हैं इन सभी को, जितने भी सामुदायिक ऐसे हमारे प्लेटफॉर्म्स है कम्युनिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म्स, वहां पर हम अवेयरनेस की एक्टिविटीज करते हैं।
0: बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का जो ये एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम है, इसमें एक और विशेष पहलू है कि 9 ऐसी निःशुल्क सेवाएं गर्भवती महिलाओं तक पहुंचाई जाएंगी। कौन सी वो 9 सेवाएं हैं और किस तरह से जो गर्भवती महिलाएं हैं या परिवार हैं इन निःशुल्क सेवाओं का फायदा ले सकते हैं?
1: स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन, तो एक विशेषज्ञ वहां पर रहेंगे जो गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन जो इनकी जांच करेंगे। दूसरा है अल्ट्रासाउंड की सुविधा रहेगी तो सोनोग्राफी उनकी हो सकती है। तीसरा हमारा है हाई रिस्क प्रेगनेंसी का डिटेक्शन और मैनेजमेंट, तो उनको चिन्हित करना। चौथा है हर एक इंडिविजुअल को ट्रैक करना और उसको फॉलोअप करना। पांचवा है ट्रांसपोर्टेशन इंसेंटिव, तो उनको आने जाने के लिए जो PMSMS सेशन के लिए वो आते हैं उसके लिए जो उनको सुविधा चाहिए ट्रांसपोर्टेशन की वो हम उसमें देंगे। छठा है उनको हम नियरेस्ट हमारे जो फर्स्ट रेफरल यूनिट है जहां पर डिलीवरी हो सकती है उससे हम टैग कर देंगे। तो सातवां है जो उनकी मुख्य जांचें होती है जैसे खून की जांच, यूरिन की जांच, वो सारा है। फिर आठवां है आयरन फॉलिक एसिड, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन और TD वैक्सीनेशन जो उनका होता है वो कराना। और नौवां है काउंसलिंग करना उनको, न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट, फिर उसके बाद फैमिली प्लानिंग। तो पूरे प्रसव के दौरान उनको, क्योंकि अपने खाने पीने पर बहुत ध्यान देना है, क्या क्या उनको खाना है, कैसे पौष्टिक आहार लेना है, और फिर साथ ही साथ परिवार नियोजन कि अगला बच्चा फिर कैसे प्लान कर सकते हैं उस पर। तो ये 9 प्रकार की सेवाएं हम मुफ्त में सभी गर्भवती माताओं को देते हैं।
0: बिल्कुल, तो इस अभियान के 10 वर्ष पूरे हुए हैं। हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि 2016 में शुरू हुआ प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, अब किस तरह से इन 10 सालों में इस अभियान से जो देश भर की करोड़ों गर्भवती महिलाएं उनको लाभ हुआ है, क्या कुछ महत्वपूर्ण नतीजे और इस अभियान का फायदा हमें इन 10 सालों में देखने को मिला है?
1: इन 10 सालों में मैंने बहुत खुशी के साथ बताना चाहूंगी 7.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को ये जो प्रत्येक माह के 9 तारीख में आती हैं उनको प्रसव पूर्व उनका जांच किया गया है, तो उनको एंटीनेटल केयर चेकअप मिला है। और हम लोगों ने लगभग 1.2 करोड़ हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन को आइडेंटिफाई किया, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को आइडेंटिफाई किया और उनका मैनेजमेंट करके उनका इंश्योर कराया कि सेफ डिलीवरी हो। तो ये एक काफी बड़ी उपलब्धि है। और इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूंगी 9 तारीख तो एक फिक्स्ड डे है जहां पर हम सर्विसेज देते हैं। वैसे हमारे सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं और ANM बहने हैं और आशा बहने प्रेग्नेंट वुमेन को लाती है, वो प्रतिदिन उनको ये सेवा मिल सकती है कि वो ANC चेकअप के लिए आ सकते हैं जब भी उनको आवश्यकता हो।
0: बिल्कुल,
1: और 9 तारीख को स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन, वो एक मेजर एड ऑन हम लोगों ने किया है।
0: बिल्कुल, एक जो विशेष इस अभियान ने भूमिका निभाई है कि जो प्रसव से पूर्व की जांच होती है जो प्रेगनेंसी के दौरान, तो उस जांच की पूरी एक व्यवस्था इस अभियान के तहत स्थापित हुई है। तो हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जो भारत का एक पूरा स्वास्थ्य ढांचा है वो कैसे अब बदला है, कैसे लोगों में, महिलाओं में खासतौर पर प्रसव पूर्व जांच को लेकर इस खास अभियान से एक जागरूकता आई है, तो कैसे इस मामले में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है?
1: पहले हम लोग जो ये कार्यक्रम चलता रहा है हमारे सभी स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव पूर्व जांच के लिए 4 ANCs, मतलब 4 बार महिला को, गर्भवती माता को अपने 9 महीने के दौरान कम से कम 4 बार

0: उनको आके अपना जांच कराना था। ये मैं 2016 के पहले की बात कर रही हूँ। 2016 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान आया, इसमें हम लोग सभी गर्भवती माताओं के लिए सुविधा रखी कि प्रत्येक माह के 9 तारीख को आप एक अतिरिक्त मतलब फिफ्थ ANC पांचवा अपना चेकअप कराने के लिए आप एक विशेषज्ञ की सेवा ले सकते हैं, वो उनकी सेवा मुफ्त में आपको उपलब्ध है। और उसके बाद जब इसमें हम लोग को सफलता हासिल हुई तो हम लोगों ने 2022 में यही प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को एक्सटेंडेड PMSMA करके लॉन्च किया, जिसमें जो ये गर्भवती माताएं जो हाई रिस्क कैटेगरी में आती तो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के लिए 3 अतिरिक्त चेकअप्स, तो मतलब टोटल 8 हो गया। तो एक नॉर्मल महिला के लिए जो हाई रिस्क नहीं है, नॉर्मल उसका डिलीवरी होना है, 4 ANC प्लस एक विशेषज्ञ की सेवा, तो 5 हुआ। और हाई रिस्क प्रेगनेंसी के लिए ये 5 प्लस 3 और मतलब 8 टोटल ANC चेकअप होगा। तो ये एक मेन बदलाव हुआ। तो इसमें जो हमें सबसे बड़ी उपलब्धि जो मुझे लगती है कि क्योंकि अब हम हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन चिन्हित कर पा रहे हैं और चिन्हित करके उनका फॉलो अप कर पा रहे हैं, उनका हम लाइनअप करें कहाँ डिलीवरी होना है और उनको आने जाने के लिए, उनको बाकी सारे जांच के लिए मुफ्त सारा हाई रिस्क फैक्टर्स, करीब हमारे 25 कैटेगरीज हैं, जैसे सीवियरली वो एनीमिक डायबिटिक है, तो इस तरह कई प्रकार के हैं हमारे हाई रिस्क फैक्टर्स और हम समय पर उनको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमन को, तो उनको वो विशेष सेवाएं जो उनको विशेषज्ञ की आवश्यकता है, उनको बेहतर सेवा देने की आवश्यकता है, वो हम पहले से कर पा रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: इससे हमारे मातृत्व मृत्यु दर में भी कमी आई है और शिशु मृत्यु दर में भी कमी आई है।
1: ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे श्रोताओं को बताई, इस पर ही मैं अगला प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो अभी हमारे पास आंकड़े भी हैं कि हाल ही में पहले की तुलना में हमारे पास जो मातृ मृत्यु दर है उसमें बहुत बड़ी संख्या में कमी आई है, तो जिस तरह से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान एक सफल अभियान रहा है, कैसे प्रसव पूर्व जांच या जो पूरी सुविधाएं इस अभियान के तहत दी गई हैं उसने मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में एक बड़ी कमी लाने में मदद की है, इस बारे में भी आप थोड़ा सा और प्रकाश डालना चाहे तो।
0: अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो मातृत्व मृत्यु दर 2014-16 का अगर हम डाटा लें जो SRS का है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है
1: जी,
0: उसमें 130 था और आज वो 2022-24 का भी हाल ही में SRS डाटा आया है वो 87 हो गया है, तो 87 हो गया है। और अभी 2023 में जो यूनाइटेड नेशंस के मेटर्नल मोर्टालिटी एस्टिमेशन इंटर एजेंसी ग्रुप है UNMMEIG, उन्होंने हमें ये बताया कि हमारा इंडिया का डिक्लाइन करीब 86% हुआ है 1990 से लेकर अब तक, जबकि ग्लोबल एवरेज है पूरे विश्व में ये मात्र 48% डिक्लाइन हुआ है MMR में, और इंडिया में वो डिक्लाइन मैंने ऑलमोस्ट डबल आप कह सकते हैं 86% डिक्लाइन हुआ है पिछले 2 दशकों में। उसी तरह अगर नियोनेटल मोर्टालिटी रेट की जो नवजात शिशु में मृत्यु दर होता है वो हमारा 26 प्रति 1000 लाइफ बर्थ्स था 2014 में, वो घट के अभी 18 प्रति 1000 लाइफ बर्थ 2024 का जो लेटेस्ट SRS आया है उसमें आया है। उसमें भी जो UN इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टालिटी एस्टिमेशन 2025 का उनका रिपोर्ट है, UNIGME रिपोर्ट हम कहते हैं, उसमें इंडिया का डिक्लाइन 70% मतलब 70% डिक्लाइन हुआ है नवजात शिशु मृत्यु दर में, और ग्लोबल डिक्लाइन है 54%। तो इसमें भी हम लोग की उपलब्धि विश्व के सापेक्ष बहुत बेहतरीन हुआ
1: जी, निश्चित तौर पर। और क्योंकि ये ऐसी योजना रही है जिसने धरातल पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने में स्वास्थ्य में मदद की है, हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि जो धरातल पर दूर दराज गांवों में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, आशाएं हैं, ANM हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनकी किस तरह से भूमिका को सुनिश्चित किया गया है, कैसे वो इसमें अपना महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं?
0: आशा वर्कर्स हैं, ये सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है। आशा बहनों को पता है कि उनके गांव में कितनी गर्भवती माताएं हैं, तो वो एक एक के घर जाके उनसे संपर्क करके फिर उनको लेकर आती हैं हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर और स्वास्थ्य केंद्रों में, जहां पर उनकी जांच की जाती है, जांच के बाद उनका फॉलो अप करना, बार बार उनके से संपर्क में रहना, कि डिलीवरी को प्लान करना मतलब कहां पर वो प्रसव के लिए जाएंगी, जब जब वो चेकअप के लिए आती हैं, जब जब अपने प्रसव पूर्व जांच के लिए आती हैं, आशा बहन उनको साथ में लेकर आती है
1: जी।
0: प्रसव के दौरान भी वो उनके साथ में रहती है, तो आशा बहनों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। उसी के साथ साथ हमारे जो ANM दीदी हैं मुख्य रूप से उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है, और हमारा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है जिसमें हम ये पूरा ट्रैक करते हैं। हाल ही में एक जननी पोर्टल लॉन्च किया गया माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा 30 अप्रैल को, जिसमें हम एक एक गर्भ

0: माता का ट्रैकिंग करते हैं, और जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन होता है तो उनका जब नेक्स्ट उनका ड्यू रहता है, आशा बहन के साथ साथ यहाँ से एक मैसेज भी जाता है, डिजिटल से एक मैसेज उनको जाता है कि आज आपका ड्यू डेट है चेकअप के लिए, तो आप जरूर आए। उसी तरह 9 तारीख के लिए उनको फिर मैसेज जाता है कि आप 9 तारीख को अपने जांच के लिए स्वास्थ्य केंद्र में जरूर आए। तो ये सारा फॉलो अप करना और सभी सुविधाएं पहुंचे, जागरूकता लाना, कैसे वो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रह सकती है, खान पान में क्या उनको विशेष ध्यान देना, ये सभी हमारी आशा बहने और एएनएम दीदी वो करती है। उसके अलावा जो आंगनवाड़ी दीदियां हैं, आंगनवाड़ी में हम लोग का विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे मनता है
1: जी,
0: हर महीने मनाया जाता है, एक दिन होता है, वो एक आउटरीच कैंप के रूप में होता है। तो उसमें आंगनवाड़ी में भी यही सेवा जो हम स्वास्थ्य केंद्र में प्रतिदिन देते हैं, एएनसी चेकअप और उनका टीकाकरण, उनके खाना पीने के पर क्या ध्यान देना, ये सारी चीजें भी बीएचएनडी में जो आंगनवाड़ी केंद्र में महीने में एक दिन वो भी होता है। तो वहां पर आंगनवाड़ी सेविकाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका।
1: बिल्कुल, तो जिस तरह से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान पिछले 10 वर्षों में हमारे देश की जो मेटरनल हेल्थ है, मातृ स्वास्थ्य है, उसमें एक अपनी बड़ी भूमिका निभा रहा है और उसके बहुत सारे नतीजे हमें इन वर्षों में देखने को भी मिले हैं, जिस पर हमने विस्तार से चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप कार्यक्रम में जुड़ी और आपने विस्तार से हमारे श्रोताओं को जानकारी भी दी और महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्षों पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक आराधना पटनायक के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: मंथन

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए और लगभग 200 अन्य लोग घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉ जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। डॉ जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, दुनिया भारत को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। डॉ जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच प्रमुख क्षेत्रों में भारत की संतुलित भागीदारी पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के आमिर शेख मिशाल अल अहमद अल जोबर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पतन प्रबंधन प्रणाली विनियमन का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पतनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान

0: किया जा सकेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
1: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार ये सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिनों के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर कोई दबाव नहीं है। श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया। भारत ए के 278 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। भारत की ओर से ऋतुराज गायकवाड़ ने सर्वाधिक 101 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: The central government has given finance support of approximately 1.23 lakh crore rupees to the oil marketing companies to support the consumer from the burden of rising crude oil price. According to the government sources, the financial support has been provided to oil marketing companies is for the initial 78 days of the West Asia conflict. This financial support includes the excise duty cut. The sources said that the gold imports have seen a reduction. It added that the reduction is a result of higher import duty on gold and Prime Minister's appeal to the nation for not buying gold for at least 1 year. Union Home Minister Amit Shah today inaugurated the Land Port Management System Vinimay in New Delhi to digitize and streamline cargo processing and passenger movement across India's land borders. The system is a digital platform designed to integrate operations across land ports into a unified system. It will enable secure, real-time exchange of logistics and regulatory information, bringing land ports on a par with digital systems already in place at airports and seaports. In men's cricket, India A defeated host Sri Lanka A by 8 runs in the opening fixture of the Tri-Nation A series at the Rangiri Nambula International Stadium today. Ruturaj Gaikwad's superb century helped India A in posting a competitive 277 for 6 in stipulated 50 overs. Gaikwad posted a composed 101 from 114 deliveries. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि अगर अफगानिस्तान में 38 लाख लड़कियों के स्कूल से बाहर रहने के कारण देश में नई पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय हो सकता है। और सिडनी में ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन ओपन में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन की पुरुष डबल्स जोड़ी दूसरे दौर में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने उम्मीद जताई कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसकी कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
2: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
1: अफगानिस्तान की जनता के कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दवा सहायता से संबंधित उपायों के माध्यम से अफगानिस्तान की सहायता जारी रखे हुए है। उन्होंने कहा कि भारत ने छात्रवृत्ति और क्षमता निर्माण के अवसर भी प्रदान किए हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि एमटी मैरीवैक्स जहाज के चालक दल के सभी 24 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
2: जब ये हादसा हुआ उस समय तुरंत ही हमारे भारतीय दूतावास जो कि ओमान में है तुरंत एक्शन में आए और वहां ओमानी अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया। तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और 2400 भारतीय नागरिक को सुरक्षित वहां से निकाला गया। ये सभी नागरिक हमारे नागरिक सुरक्षित हैं।
1: विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉ जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है।
3: The amount of time we have spent

0: हमने उन देशों के साथ लगातार बातचीत जारी रखी जो तेल गैस एलएनजी एलपीजी तथा उर्वरकों के उत्पादक हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित का विषय है। इसलिए विदेश नीति पूरी तरह से उस समय के प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप संचालित होती है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, भारत दुनिया को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच प्रमुख क्षेत्रों में भारत की संतुलित भागीदारी पर भी जोर दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पतन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पतनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कुवैत के अमीर शेख मेशाल अल अहमद अल जाबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की भारत की ओर से कड़ी निंदा दोहराई। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने और तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों नेता संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का शुभारंभ भी करेंगे। इसमें भारत, फ्रांस और अन्य देशों के शीर्ष नवाचार स्टार्टअप हिस्सा लेंगे। दूसरे चरण में श्री मोदी 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया की यात्रा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान में लगभग 38 लाख लड़कियों के स्कूल से बाहर रहने के कारण देश में नई पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय हो सकता है। यह स्थिति तालिबान की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों के कारण हुई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन की कार्यवाहक प्रमुख जॉर्गेट गैगनर ने कहा कि 7 से 18 वर्ष की करीब 38 लाख लड़कियां स्कूल नहीं जा रही हैं। इनमें 26 लाख से अधिक किशोरियां शामिल हैं जिन्हें माध्यमिक शिक्षा में पढ़ने की अनुमति नहीं है। सुश्री गैगनर ने कहा कि महिलाओं और लड़कियों पर जारी प्रतिबंधों का अफगानिस्तान के सामाजिक और आर्थिक विकास पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। संयुक्त अरब की राजधानी रियाद स्थित भारतीय दूतावास के रॉयल कमीशन के सहयोग से रेगिस्तानी सामंजस्य सितार की धुने नामक एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। इसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्ध विरासत का उत्सव मनाया गया। संध्या का मुख्य आकर्षण सितार वादक उस्ताद शुजात हुसैन खान का प्रदर्शन था, जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत की गहराई को प्रतिबिंबित किया। संयुक्त अरब में भारत के राजदूत डॉ सुहेल एजाज खान ने भारत और सऊदी अरब के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों पर बल दिया। असम सरकार और यूरोपीय संघ ने आज गुवाहाटी में फ्लेवर, सुगंध और आयुष क्षेत्रों पर केंद्रित ब्लू वैली क्लस्टर का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य सतत मूल्यों, श्रृंखलाओं, नवाचार, पारिस्थितिकी तंत्रों और औद्योगिक साझेदारियों के विकास में यूरोप, असम और व्यापक उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बीच सहयोग को मजबूत करना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम में सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, चाय, जैविक खाद्य पदार्थ, प्राकृतिक सुगंध और आयुष उत्पादों जैसे क्षेत्रों में यूरोप के साथ सहयोग के महत्वपूर्ण अवसर मौजूद हैं।

0: इसराइल और ईरान के बीच आज प्रत्यक्ष संघर्ष में आई अस्थायी शांति कायम होती दिखी, जिससे पश्चिम एशिया में फैली बड़े पैमाने पर सीमा पार झड़पों की तत्काल वापसी की आशंकाएं कुछ हद तक कम हो गईं। हालांकि व्यापक और स्थायी युद्ध विराम की संभावनाएं अनिश्चित बनी रहीं, क्योंकि अन्य मोर्चों पर विशेष रूप से दक्षिण लेबनान में लड़ाई जारी है। सिडनी में ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन ओपन में भारत के एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन की जोड़ी पुरुष डबल्स जोड़ी दूसरे दौर में पहुंच गई है। इस जोड़ी ने पहले दौर में अमेरिका के ऑर्डन क्वान ली और स्टेनली जिंक को 21-13 से हराया। हालांकि भारत की दूसरी पुरुष डबल्स जोड़ी अच्युत्यादित्य राव और अर्जुन रेड्डी पोचाना पहले दौर में ही बाहर हो गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान में 38 लाख लड़कियों के स्कूल से बाहर रहने के कारण देश में नई पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय हो सकता है। और सिडनी में ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन ओपन में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन की जोड़ी पुरुष डबल्स जोड़ी दूसरे दौर में पहुंची। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम रेणुका विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. India expresses grave concern over killing of 30 civilians in deadly crackdown on protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, accuses Islamabad of using fake news to mask severe human rights violations. Prime Minister Narendra Modi holds telephonic conversation with Amir of Kuwait on evolving security situation in West Asia. UN warns Afghanistan risks creating a lost generation as 3.8 million girls remain out of school. And in Australian Badminton Open, India's M.R. Arjun and Hariharan Amsa Karunan storm into second round of men's doubles in Sydney. The Ministry of External Affairs today acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added, India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. Addressing the media in New Delhi, spokesperson at the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said that New Delhi continues to see a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. Mr. Jaiswal described them as a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses.
2: A pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are several reports of police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several people have been killed. There are several more who have been injured. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and its abuses.
1: Over 30 people have been killed and around 200 others have been injured in clashes between protesters and security forces in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Tensions in the region escalated after authorities banned the Joint Awami Action Committee, a prominent civil society alliance that has spearheaded protests over economic and political grievances in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. India has strongly criticized Pakistan at the United Nations for running an organized factory of hate that exploits religious terminology to cultivate permanent hostility towards India among its citizens. Speaking at a United Nations Security Council session, India's permanent representative to the United Nations, Parvat Neni Harish, slammed Islamabad for propagating state-sponsored disinformation by labeling militant outfits operating inside its own territory as Fitna al-Hindustan.
3: Blaming neighbors for its own failures is an old Pakistani habit. Coming up with official notifications directing Pakistan's government agencies to start referring

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम हर सिंगार में आपका स्वागत है। अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में बातें होंगी दिल की, एहसासों की और उन रिश्तों की जिनमें प्यार भी होता है और कभी कभी छोटी छोटी नाराजगियां भी। तो चलिए इस कार्यक्रम का आरंभ करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने।

वाह, कितना खूबसूरत गीत। और ये गीत अपने साथ कुछ यादें भी ले आया। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि हम दुनिया से उतने ज्यादा नाराज नहीं होते जितना अपने किसी खास इंसान से। सोचा है आपने कभी क्यों? क्योंकि हमें उनसे उम्मीदें ज्यादा होती हैं। जब वो बात कम करें या हमारी बात को समझे नहीं या बस थोड़ा सा बदल जाए, दिल कहता है कि तुम ऐसे कैसे हो गए। लेकिन प्यार की सबसे प्यारी बात तो यही है कि नाराजगी चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर रिश्ता सच्चा है तो एक मुस्कान, एक छोटी सी कोशिश सब कुछ ठीक कर देती है। अगर आज आप भी अपने किसी से नाराज हैं तो बस इतना याद रखिए कि दुनिया की सारी चीजों से सबसे ज्यादा जरूरी है आपका रिश्ता। ठीक इस गीत की तरह, जिसे आवाज दी है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने।

दोस्तों, रात जैसे जैसे गहरी होती जाती है, दिल भी थोड़ा ज्यादा ईमानदार हो जा रहा है। दिन में जिन बातों को हम इग्नोर कर देते हैं, रात उन्हें धीरे से हमारे सामने रख देती है। कभी किसी का ठीक हूं भी झूठ लगता है, और कभी किसी की खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। मोहब्बत में, प्यार में थोड़ा सा अपसेट होना गलत नहीं है। गलत तब होता है जब हम बोलना छोड़ देते हैं, क्योंकि रिश्ते खामोशी से नहीं, समझने से चलते हैं। अगर आज आपका कोई आपसे नाराज है, शायद उसे आपकी सफाई नहीं बल्कि आपका साथ चाहिए। और अगर आप नाराज हैं, तो कभी कभी बस ये कहना काफी होता है, मुझे फर्क पड़ता है, तभी तो तुम्हारी बात मुझे बुरी लगी।

दोस्तों कभी कभी ना हम बस ये चाहते हैं कि सामने वाला हमारी बातें बिना कहे समझ जाए, लेकिन मोहब्बत में, प्यार में अंडरस्टैंडिंग भी धीरे धीरे बनती है। अगर आज कोई अपना आपसे दूर लग रहा है तो शायद एक छोटी सी कोशिश, एक ईमानदार बातचीत सब कुछ बदल सकती है, क्योंकि रिश्ते जीतने के लिए नहीं बल्कि निभाने के लिए होते हैं। और इसी प्यारे एहसास के साथ कार्यक्रम का अगला गीत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

दोस्तों, आपको पता है कि प्यार में सबसे खूबसूरत चीज क्या होती है? किसी रूठे हुए को मनाना, जब कोई आपके गुस्से को सीरियसली ले, जब कोई कहे ठीक है गलती मेरी नहीं थी शायद, लेकिन तुम उदास हो तो चलो बात करते हैं। यही तो प्यार है, जहां जीतना जरूरी नहीं बल्कि साथ रहना जरूरी होता है। कभी एक छोटा सा चाय का प्याला और एक छोटी सी मुस्कान दिलों के सारे गिले शिकवे दूर कर देते हैं। अगर कोई आपका अपना है और उसके लिए थोड़ा सा झुक जाना कमजोरी नहीं बल्कि रिश्ते को इम्पोर्टेंस देना है।

दोस्तों, अगर आज आप किसी से नाराज हैं तो सोने से पहले एक बात जरूर सोचिएगा कि क्या ये नाराजगी उस रिश्ते से बड़ी है, क्योंकि कुछ लोग जिंदगी में बार बार नहीं मिलते और कुछ बातें वक्त के साथ कहने में देर हो जाती है। अगर प्यार सच्चा है तो बात कीजिए, समझाइए और कभी कभी बिना वजह भी किसी को मना लीजिए, क्योंकि रिश्ते परफेक्ट नहीं होते लेकिन उन्हें निभाने वाले लोग उन्हें और खूबसूरत बना देते हैं। इसी प्यारी सी बात के साथ आज का कार्यक्रम के अगले गीत के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दिल में प्यार रखिए। अगर कोई आपसे नाराज है तो उसे मना दीजिए और सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉ जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। डॉ जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, भारत दुनिया को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमिपत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमिपत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
2: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार

0: और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश के कश्मीर और जम्मू डिवीजन के शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन क्षेत्रों को कवर करते हुए 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा की तिथियां जारी कर दी हैं। विस्तृत और ताजा जानकारी के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jkbose.jk.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिनों के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. The Ministry of External Affairs today acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added, India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. Addressing the media in New Delhi, spokesperson at the Ministry of External Affairs Randhir Jaiswal said that New Delhi continues to see a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. Mr. Jaiswal described them as a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses.
3: A pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are several reports of police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several people have been killed. There are several more who have been injured. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and its abuses.
2: Over 30 people have been killed and around 200 others have been injured in clashes between protesters and security forces in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Tensions in the region escalated after authorities banned the Joint Awami Action Committee, a prominent civil society alliance that has spearheaded protests over economic and political grievances in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India's foreign policy is now in sync with its core national goals. The minister said that foreign policy and diplomacy have got integrated with priorities of the government, focusing on social security and national development. Dr. Jaishankar made these remarks in an interview given to DD News. He said that national security in the present time is not just about protecting the borders, it includes security in terms of economy, energy, health, fertilizer and cyber strength. Dr. Jaishankar said that India is safeguarding its deep strategic and economic interests in the Gulf region while also maintaining its independent ties with Iran, the United States and Israel. Prime Minister Narendra Modi held a telephonic conversation this afternoon with the Emir of Kuwait, Sheikh Mashal Al Ahmed Al Jaber Al Sabah. The two leaders exchanged views on the evolving security situation in West Asia. The Prime Minister expressed deep concern over the escalation of tensions and reaffirmed India's strong condemnation of attacks on Kuwait's sovereignty and territorial integrity. He reiterated the call for de-escalation, dialogue and diplomacy for earliest restoration of peace and stability. Mr. Modi thanked Amir of Kuwait for his personal attention to the continued well-being and the safety of the large Indian community in Kuwait.

0: ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत। आज सुनिए सूचना और प्रसारण, रेलवे तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं पत्रकार शिशिर सिन्हा।
1: नमस्कार। 26 मई 2014 नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ सत्ता संभाली। तब से लेकर 12 वर्ष बीत चुके हैं और इन 12 वर्षों में देश की जनता ने दो बार और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। इस दौरान हमने कई परिस्थितियां बहुत ही कठिन देखी। कोविड का दौर था, फिर हमारा रूस और यूक्रेन की लड़ाई का भी असर देखने को मिला और उसके बाद अब पश्चिम एशिया का संकट। लेकिन इन सब के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था 7% या उससे ज्यादा की दर से विकास करती रही। कैसे संभव हुआ? क्या कुछ रही कहानी? आगे क्या कुछ हो सकता है? इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रेलवे, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: नमस्कार
1: सर। 12 वर्षों में आर्थिक जो परिस्थितियां रही, कई चुनौतियां भी थी, कई कठिनाइयां भी थी, लेकिन 7% या उससे ज्यादा की विकास दर को हम हासिल कर पाए। किस तरह से नीतियों ने इसमें मदद की?
2: इन 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ही एक मैच्योर तरीके से हैंडल किया है। हम अगर आज से 12 वर्ष पहले 2014 में जाएं, 2014 में हमारा पूरा फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर ऐसी अजब परिस्थिति में था कि सारी दुनिया में चिंता थी कि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 में गिनी जाने लगी थी। बैंक्स के एनपीएस बहुत हाई थे, बैंकों की बैलेंस शीट्स एकदम प्रैक्टिकली फिनिश होने के कगार पे थी, कौन सा बैंक कब इम्प्लोड हो जाएगा, ऐसी परिस्थितियां थी। आते ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले बैंक्स को बहुत सिस्टमेटिक वे में उनके एनपीएस कम करने का प्रोसेस चालू किया, कम से कम करीब 2,50,000 करोड़ के आसपास रिकैपिटलाइज किया बैंक्स की बैलेंस शीट्स को। बैंक्स को प्रॉपर एक हेल्दी कंडीशन में लेके आए, जो आज आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्रॉफिट हाईएस्ट लेवल पे है, एनपीएस लोएस्ट लेवल पे है। उसके बाद में एक इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस चालू किया, फिर आया कोविड। कोविड का शॉक था, बहुत बड़ा शॉक था, सारी दुनिया ने झेला, भारत ने उस शॉक के दौरान भी प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण एक इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल स्टार्ट किया। उस इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल के कारण जो पहले करीब करीब 30 बिलियन डॉलर के आसपास इन्वेस्टमेंट होता था, आज 130 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है देश में। इन्वेस्टमेंट जाता है फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रा में, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा दिखाई देता है। आज हम देखें, चाहे कोई भी सेक्टर हम लें, एयरपोर्ट्स, नंबर ऑफ द एयरपोर्ट्स डबल हो गए, हाईवेज 58,000 किलोमीटर्स बने, नई रेलवे ट्रैक्स 36,000 किलोमीटर्स बनी, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 99% कंप्लीट हुआ। कंपेयर करें यूके से तो मेरे ख्याल से less than 50% है। कई दूसरे देशों के कंपैरिजन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई, उसका देश में एक प्रभाव पड़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, लोगों की सुविधाएं बढ़ी, इंडस्ट्रीज को और ज्यादा ग्रो करने में मदद मिली। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक फोकस दिया इंक्लूसिव ग्रोथ। भारतीय जनता पार्टी का मूल विचारों में से एक विचार है अंत्योदय का विचार। इसमें प्रधानमंत्री जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से इस पे ध्यान दिया, और जब भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली तो जनधन अकाउंट हो, महिलाओं को सम्मान देने के अधिकार के साथ जो टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन हो, पक्के घरों का निर्माण हो, हर घर नल से जल पहुंचाने का भागीरथी संकल्प हो, ये ऐसे बड़े बड़े काम हाथ में लिए और उनको डिलीवर सक्सेसफुली किया कि

0: सबसे बड़ा इंक्लूसिव ग्रोथ का पूरे विश्व में उदाहरण है अपने पास। मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया और इनोवेशन पे फोकस किया और बहुत बड़ा सिंप्लीफिकेशन किया। तो इस तरह की वेल थॉट थ्रू स्ट्रेटजी के कारण आज भारत 6-8% के ग्रोथ ब्रैकेट में कंसिस्टेंटली रहेगा।
1: और अब जो हम कहते थे कि फ्रेजाइल 5 में है, अब वो कहीं पीछे रह गया है। क्योंकि आप रेलवे का कार्यभार काफी समय से संभाल रहे हैं और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में करीब 56 परियोजनाओं की मंजूरी दी गई, जिसमें लगभग 2,38,000 करोड़ रूपये का निवेश है। हम कहते हैं कि जब कभी भी किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, यानी कि आप 1 रूपया खर्च करते हैं तो 3 या 4 रूपये तक उसका फायदा देखने को मिलता है। रेलवे की परियोजनाओं से जो बदलाव हुआ है उसे आप किस तरीके से परिभाषित करते?
0: बड़ा फंडामेंटल चेंज आया है। अगर आप 2014 से पहले देखें तो एक साल में 700-800 हजार किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन होता था। आज 6,000-7,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन साल का करके करीब करीब पूरे देश के रेलवे नेटवर्क को 99.4% इलेक्ट्रिफाई कर चुके। 70,000 किलोमीटर के आसपास ट्रैक्स को अपग्रेड किया। जो पुरानी पटरियां थी, हालत बहुत खराब थी, स्लीपर्स टूटे हुए रहते थे, उन सबको रिप्लेस करके करीब 70,000 किलोमीटर को रेलवे ट्रैक्स को अपग्रेड किया। 36,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बने। 1,300 स्टेशन का पुनर्निर्माण, नव निर्माण हो रहा है। 1,300 स्टेशन में से करीब करीब 250 स्टेशन कम्प्लीट हो चुके हैं। इस साल के अंत तक 500 स्टेशन कम्प्लीट हो जाएंगे। 5,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण एक वर्ष में करना, मैंने स्विट्जरलैंड का रेलवे नेटवर्क है 5,000 किलोमीटर का, पूरा स्विट्जरलैंड के रेलवे नेटवर्क के बराबर का रेलवे नेटवर्क एक साल में एड करना। कई वर्षों पुराने जो प्रोजेक्ट्स पड़े थे, जिनको माने प्रधानमंत्री जी का जो प्रगति का मैकेनिज्म है, जिसमें हर महीने वो जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए होते हैं देश भर में, वो उनपे ध्यान देते हैं, उनका रिव्यू करते हैं चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट उन सबके साथ मिलके। तो प्रगति मैकेनिज्म के कारण बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आगे आए। ओवरऑल बहुत बड़ा चेंज आया। कई प्रोजेक्ट जैसे चेनाब का ब्रिज अगर आप देखते हैं, तो चेनाब के ब्रिज को तो लोगों ने एक तरीके से राइट ऑफ ही कर दिया था कि ये बन ही नहीं सकता, और बारामूला से श्रीनगर तक ही रेलवे लाइन का और जम्मू से कटरा तक ही रेलवे लाइन को करके एक तरीके से अबैंडन सा ही कर दिया था इस प्रोजेक्ट को। प्रधानमंत्री जी ने इसको कम्प्लीट किया।
1: सर, हम लोग जब प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो दुनिया भर में एक नीति अपनाई जाती है, उसको हम लोग ट्रिपल पी कहते हैं, पीपल प्लैनेट एंड प्रॉफिट। हमने आपके कैबिनेट ब्रीफिंग में देखा कि जब भी आप किसी परियोजना का ऐलान करते हैं तो आप प्लैनेट और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काफी जोर देते हैं, तो क्या ये समझा जाए कि अब गवर्नमेंट ने भी जो है ट्रिपल पी को पीपल प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी के फॉर्मूले में बदल दिया है?
0: ये आपने बहुत अच्छा नाम दिया, जरा वापस बताएं क्या कहा आपने?
1: पीपल प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी।
0: प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा नाम दिया। जनरली पीपीपी मैंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं, आपने इसे अच्छा नाम दिया है। डेफिनेटली यस। देखिए, रेलवे सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस 95% लेस है कंपेयर टू दी हाईवे सेक्टर। इसलिए बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट बहुत सारा हाईवे से शिफ्ट करके रेलवे की तरफ किया है, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोरिया हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, चाहे जर्मनी हो। बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट का फोकस, जो आपने कहा, प्लैनेट फ्रेंडली कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स में किया है, और भारत में भी इसका बेनिफिट भी साफ दिखाई देता है। माने प्रधानमंत्री जी ने आते ही जो रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन का एक बहुत बड़ा संकल्प लिया, उसका रिजल्ट आज दिखाई देता है। आज वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण जो बहुत सारा मिटिगेशन उसका रेलवे के कारण हो पाया, क्योंकि इलेक्ट्रिफाइड है रेलवे पूरी, और इलेक्ट्रिसिटी पूरी भारत में हम स्वयं प्रोड्यूस करते ही है, आत्मनिर्भर है उसमें पूरी तरह से। तो चाहे गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो या पीपल ट्रांसपोर्टेशन हो, वी आर एबल टू डू इफेक्टिवली विद इलेक्ट्रिफाइड रेलवे।
1: सर, चूंकि आपके पास एक मंत्रालय है इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, और इसमें अगर मैं एक, वैसे तो हर उपलब्धि अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन सेमीकंडक्टर एक ऐसा है, सेमीकंडक्टर मिशन के जरिए जो उपलब्धि हासिल हुई है उससे किस तरह का बदलाव आप, चूंकि कहते हैं कि वो भी एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हम बात करें, चाहे एविएशन इंडस्ट्री की बात करें, हर इंडस्ट्री के लिए उसमें सपोर्ट जरूरी होता है, वहां पर प्रगति को आप किस तरीके से मापते हैं?
0: सेमीकंडक्टर फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, और 1960 से भारत में प्रयास चल रहा था, 1962 से भारत में प्रयास चल रहा था सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लाने का। प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सबने प्रयास किए। आखिर सफलता मिली मोदी जी को। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में प्रेजेंटेशन लेने चालू किए थे, उनका बहुत स्पष्ट था कि हमें इकोसिस्टम पूरा बनाना है, और प्रधानमंत्री जी का यह भी बहुत स्पष्ट था कि हमें 20 साल का सोचना है, हमें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नहीं सोचना है। तीसरा, उन्होंने कहा था कि बहुत ध्यान रखना कि इसमें टैलेंट डेवलपमेंट पे पूरा फोकस रहे। ये तीन चीजें उन्होंने मूल रूप से हमको गाइडेंस दी थी। इसीलिए सेमीकंडक्टर मिशन जब चालू किया, इकोसिस्टम पे फोकस दिया, केमिकल्स, गैसेस, इक्विपमेंट, ये सब के सब इसमें इंडस्ट्री के जितने इकोसिस्टम प्लेयर

0: ऐसे वो ध्यान से आए। सेकंड, टैलेंट पे बहुत फोकस किया। टैलेंट में 324 यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर मोस्ट मॉडर्न डिजाइन टूल्स में, सेमीकंडक्टर के डिजाइन टूल्स में स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। ये इसका उदाहरण है आपके सामने। देखो, सिलचर, चेंबूर, इंदौर, ग्वालियर, शिवपुर, जम्मू, जालंधर, रोपड़, धनबाद, राउरकेला, मेघालय, जम्मू, कैलिकट, पूरे देश भर के स्टूडेंट्स के डिजाइन की हुई है चिप्स। ये चिप्स स्टूडेंट के डिजाइन की हुई, स्टूडेंट्स के द्वारा डिजाइन की हुई चिप्स को सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर किया और स्टूडेंट्स ने उनको वापस बोर्ड में टेस्ट करके, सर्किट में टेस्ट करके उसका यूज भी किया। हाल ही में डेवोस में मैंने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सारे लीडर्स जब बैठे थे, उनको पूछा दुनिया भर में कितनी यूनिवर्सिटीज होगी जहां पे कैडेंस, सिनॉप्सिस जैसे टूल्स को यूज, स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि हमने चिप डिजाइन की और मैन्युफैक्चर की, 20 से ज्यादा नहीं गिन पाए।
1: तो अब अगले अगर मैं 2 वर्ष में कहूं तो सेमीकंडक्टर में भारत की स्थिति आप कहां देखते हैं?
0: बहुत सिग्निफिकेंट जंप आया है। विद इन 4 ईयर्स जो कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड चिप्स हमारी, ये माइक्रोन के प्लांट से प्रोड्यूस की हुई, ये केन्स के प्लांट से, 28 फरवरी और ये 31 मार्च, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किए थे ये दोनों प्लांट्स। तो मात्र 4 वर्षों में 12 प्लांट प्रोडक्शन स्टार्ट कर देना, डिजाइन का इकोसिस्टम बनना, टैलेंट का पूरा पाइपलाइन रेडी होना, और अगला जो सेमीकंडक्टर मिशन होगा इसमें हमारा फोकस रहेगा डिजाइन को नंबर 1 प्रायोरिटी देना, मशीन मैन्युफैक्चरर्स को बुलाना, केमिकल और गैस मैन्युफैक्चरर्स को बुलाना, और फैब और एटीएमपी यूनिट्स और आएंगे। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह का एफर्ट अभी लगा है और जो सक्सेस अभी तक मिली है उससे लगता है कि सारी दुनिया भारत को एक ट्रस्टेड पार्टनर की तरह देखती है।
1: सर, एक चीज हमने और भी देखा कि जो PLI इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक के लिए आपने किया और उसका एक सबसे ज्यादा बड़ा फायदा हमें मोबाइल हेडसेट के मामले में देखने को मिला। एक ऐसा भी दौर था कि जब भारत में हर मोबाइल फोन की बड़ी तादाद जो है वो इम्पोर्टेड होता था या मेड इन कहीं और होता था। अब हम मेड इन इंडिया और असेंबल्ड इन इंडिया की बात करें तो ये जो PLI स्कीम है, ये मोबाइल हैंडसेट और इलेक्ट्रॉनिक के मामले में किस तरीके से योगदान किया और वहां पर हम आगे का सफर कैसे देख रहे हैं?
0: बहुत फायदा हुआ। सबसे पहले तो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स थे उसकी मैन्युफैक्चरिंग चालू की, फिर कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग चालू हुई, और कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्रिसीजन का काम होता है। ये एक क्लासिक एग्जांपल है, आप इसको देखें अगर जी, तो आपको ये एक फुल स्टील का ब्लॉक दिखेगा, राइट, तो कोई कहीं कट या कुछ नहीं दिखेगा। ये एक्चुअली इतना प्रिसीजन का मैन्युफैक्चरिंग है, ये एक्चुअल में इतने ज्यादा इसमें कट्स लगे हुए थे इसमें, राइट, इतना प्रिसीजन का काम था। जो सिंगल सॉलिड ब्लॉक दिखता था वो सिंगल सॉलिड ब्लॉक नहीं है। तो इस प्रिसीजन का काम जो स्टूडेंट्स सीख पाते हैं वही मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं आके, इस तरह का काम है। तो अब कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में आफ्टर द सक्सेस ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड मॉड्यूल्स, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में 75 फैक्ट्रीज ऑलरेडी अप्रूव हो गई है जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, करीब 250 फैक्ट्री होंगी, और कंपोनेंट का एक्सपोर्ट करना भी भारत ने चालू कर दिया है। प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग के मैं कई एक एग्जांपल आपको दूंगा। रेलवे का जो प्रोपल्शन होता है, ट्रेन का जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है वो प्रोपल्शन है, रेलवे की इलेक्ट्रॉनिक्स। लास्ट ईयर वी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग रेलवे प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी टू जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड US। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। प्रधानमंत्री जी का जो मेक इन इंडिया का थ्रस्ट है, जो फोकस है, वो फोकस अब रिजल्ट दिखाने लगा है जब ऐसी कॉम्प्लेक्स चीजें भारत से एक्सपोर्ट होने लगी।
1: तो अगले अगर मैं PLI के अगले चरण की बात करूं तो उसमें हम क्या कुछ देख सकते हैं, क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं?
0: बहुत फोकस आएगा कंपोनेंट्स को यूज करके भारत में एक्स्ट्रा डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करना, डिजाइन की कैपेबिलिटीज बढ़ना, और क्वालिटी में जो भारत ने एक पहचान बनाई है उसको एक नए लेवल पे लेके जाना, 6 सिग्मा लेवल पे लेके जाना।
1: सर, अगर मैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिस्कशन की बात करूं तो 2 ऐसे बिल हैं जो एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन के तौर पे कहे जा सकते हैं। एक जैसे आपका डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन है और दूसरा जो है रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। ये दोनों कानून को लेकर के प्रतिक्रिया जैसी भी रही हो, आप इसके काफी मुखर तरीके से, आपने खासतौर पर ऑनलाइन गेमिंग की मैं बात करूं कि उस पर रियल मनी वाले ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के आपने काफी उस पर अपनी बात बहुत ही मजबूती के साथ रखा था, इन दोनों लेजिस्लेशन को आप किस तरीके से देखते हो और इनके जरिए पूरी इंडस्ट्री में किस तरह का बदलाव हुआ है वो अगर बता सकते?
0: ऑनलाइन मनी गेमिंग सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा एक अभिशाप बन के उभरा था। हजारों सुइसाइड्स, परिवार की सारी इनकम एक गेम में नष्ट हो जाना। ऑनलाइन बेटिंग, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग वॉज अ बिग प्रॉब्लम फॉर दिस सोसाइटी। इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कठोर निर्णय लिया और ऑनलाइन मनी गेमिंग को बैन किया। इसका बहुत बेनिफिट मिला है। अभी हाल ही में टाइटन इंडस्ट्रीज के CEO का इंटरव्यू था कि ऑनलाइन मनी गेमिंग के बैन के कारण बहुत सारा जो लोग पैसा वेस्ट कर देते थे मनी गेमिंग में, वो पैसा आज अपने परिवार के लिए अच्छे सामान खरीदने के लिए लगा रहे हैं, घर में बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, हेल्थ केयर के लिए, घर बनाने के लिए, उस सब में लग रहा है। इसी तरह से कई एग्जांपल्स है। एक इंडस्ट्री है जिसमें 30,000 लोग काम करते हैं, उनके सीईओ मुझे बता रहे थे कि महीने का पहला हफ्ता करीब करीब ऐसा होता था जिसमें व्यक्ति ने जितनी सैलरी ली वो सारी सैलरी ऑनलाइन मनी गेमिंग में लूज कर देता था, और उसके बाद में एचआर डिपार्टमेंट को फोन करके किसी तरीके से परिवार कैसे चलाए उसकी व्यवस्था में चिंता रहती थी। मतलब उनका कहना था कि उनके जान पहचान के लोगों में महीने में एक सुसाइड होता था गेमिंग के कारण। वो सारी चीजें फिनिश हो गई। अभी हाल ही में एक जगह से प्रवास से लौटने के टाइम में इंडिगो का कर्मचारी मुझे मिला, उसने कहा कि मोदी जी को धन्यवाद देना कि ऑनलाइन मनी गेमिंग आपने बंद कर दी, कि मुझे 35,000 रुपए मिलती थी सैलरी, पूरे के पूरे 35,000 रुपए मैं गेमिंग में गंवा देता था, और अब मेरा परिवार, मेरा छोटा सा बच्चा है, उसने कहा मेरा शायद 3 या 4 साल का बच्चा है, अब परिवार हमारा खुश है।
1: लेकिन
0: इस तरह के कई एग्जांपल्स।
1: लेकिन कई बार ये भी बात कही जाती है कि वीपीएन के जरिए और उन सब के जरिए,
0: ये बात ठीक है आपकी,
1: तो आप कैसे उस पर रोक लगा?
0: ये बात ठीक है। देखो, जब भी इस तरह के कड़े कठोर कानून आते हैं तो 90% प्रॉब्लम सॉल्व होती है, लेकिन कुछ हद तक लोग गैर कानूनी तरीकों से करने का प्रयास करते हैं, चाहे किसी भी सेक्टर में ले लो, चाहे ड्रग्स का ले लो, चाहे किसी भी तरह के सेक्टर को ले लो। तो इसमें प्रयास हमारा लगातार रहता है कि इस तरह की जो इलीगल साइट्स हैं उनको बैन करने का। अब तक करीब करीब 10,000 के आसपास इलीगल साइट्स को बैन किया जा चुका है।
1: और सर, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के किस तरीके की?
0: बहुत ही वेल थॉट थ्रू बिल है ये, जिसमें 7 प्रिंसिपल्स के बेसिस पे सिटीजन्स के डिजिटल डेटा को, डिजिटल पर्सनल डेटा को प्रोटेक्शन करने का मेथड है। इंडस्ट्री के साथ बातचीत करके उसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और दुनिया भर में इस बिल के कारण भारत की एक नई पहचान भी बनी, क्योंकि जो प्रिस्क्रिप्टिव मेथड यूरोप ने लगाया उसके कारण उनका इनोवेशन फिनिश हुआ। भारत के इस बिल में इस तरह से बैलेंस आया इनोवेशन और रेगुलेशन में, जिससे कि इनोवेशन भी फ्लरिश कर सके और रेगुलेशन भी प्रॉपर लेवल पे हो सके।
1: अगर मैं आखिरी में आपसे पूछूं कि हमने शुरुआत करी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से, अगर मैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो अगले 3 से 5 सालों में हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कुछ और बदलाव देखेंगे, और डिजिटल इंडिया किस तरीके से आगे बढ़ेगा, अगर उसकी रूपरेखा पेश कर सकें आप तो?
0: टेलीकॉम सेक्टर में बड़े बदलाव आने वाले हैं। टेलीकॉम सेक्टर में जो सबसे बड़ा चेंज आएगा वो चेंज आएगा रेजिडेंट AI। एक टेलीकॉम टावर करीब 2,000 पैरामीटर्स लेता है जिसपे वो काम करता है एक साथ। उन पैरामीटर्स को अभी जो एल्गोरिदम्स होती है वो एल्गोरिदम्स बड़ी प्रिस्क्रिप्टिव टाइप की एल्गोरिदम्स होती है, किस सिचुएशन में क्या करना है उस पर डिफाइंड होती है। अगर उसमें AI लगता है हर टावर के अंदर तो सिग्निफिकेंट लेस पावर कंजम्पशन हो पाएगा, सिग्निफिकेंटली बेटर कॉल क्वालिटी हो पाएगी, और डिजिटल इंडिया के नेक्स्ट फेज में टेलीकॉम का जो रोल है वो रोल और टेलीकॉम में AI का रोल वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा।
1: लेकिन ये भी कहा जाता है कि AI बहुत सारी नौकरियां ले सकता है, तो जब हम डिजिटल इंडिया के एक्सपेंशन की बात करेंगे, AI के इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, हमारे लिए एक बड़ी चुनौती नौकरियां नहीं रहेंगी?
0: जितनी IT सेक्टर की इंडस्ट्रीज है उनके साथ हम लगातार एंगेज्ड हैं, किस तरह से नए प्रकार के स्किल्स क्रिएट किए जाए, नए प्रकार की ट्रेनिंग क्रिएट की जाए। अभी हाल ही में NASSCOM के माध्यम से IT इंडस्ट्री ने अपना नया कोर्स का पूरा करिकुलम बना के दिया है, जिसको AICT के माध्यम से लागू करेंगे, जिससे कि टेक्नोलॉजिकल चेंज के कारण जब भी डिसरप्शन आता है, जब भी परिवर्तन आता है, तो उस समय में अगर इंडस्ट्री और एकेडेमिया दोनों आपस में मिल जाए तो उस चेंज को बहुत स्मूथली कर सकते हैं। तो वही प्रयास है IT इंडस्ट्री के साथ मिलकर नए तरह के जो जॉब्स क्रिएट होंगे उन जॉब्स के लिए हमारे युवाओं को तैयार करने का प्रयास है।
1: अश्विनी वैष्णव साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सूचना और प्रसारण, रेलवे तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे पत्रकार शिशिर सिन्हा। ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत। अब सुनिए संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पराशर।
3: नमस्कार। 26 मई 2014 वो दिन था जब सिर्फ सरकार नहीं बदली थी बल्कि करोड़ों भारतवासियों की जो आकांक्षा थी, जो सपने थे,

0: वो भी ऐसा लगा था पूरे होने की कगार पर अब आगे बढ़ रहे हैं, और इसीलिए अब जब 12 साल पूरे हो रहे हैं तो फिर ये तो एक सवाल बनता है ना कि भाई 12 साल में इस देश में ऐसा क्या बदलाव आया कि लोग मोदी मोदी मोदी मोदी कर रहे हैं? ऐसी क्या बात हो गई कि नरेंद्र मोदी हर राज्य में विजय पताका फहराते जा रहे हैं, लहराते जा रहे हैं, और भारत जो है वो विश्व स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब अपना एक अलग मुकाम रखकर लाया है। चलिए, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज बेहद ही खास मेहमान है, और वो खास मेहमान जो कि जब नॉर्थ ईस्ट में बात होती थी ना कि कौन चेहरा है, तो एक चेहरा सबसे पहले सामने आता था, किरण रिजिजू जी का, और वो अब अल्पसंख्यक मामलों के भी मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, इससे पहले कानून मंत्री रह चुके। तो एक तरीके से 2014 से लेकर अब तक का सफर इन्होंने लंबा तय किया है। बहुत बहुत स्वागत है रिजिजू जी आपका।
1: धन्यवाद।
0: और 12 साल की ये जर्नी, आप इस जर्नी को कैसे देखते हो?
1: ये जर्नी भारत का इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट किए गए थे, मंत्रिमंडल का शपथ लेने से पहले उन्होंने हम 44 लोगों को बुला करके पहला संदेश जो दिया था वो मुझे आज भी याद है। मोदी जी ने कहा था कि हम लोग सिर्फ सत्ता में कुर्सी ऑक्यूपाई करने के लिए नहीं आया है, हम देश का दशा दिशा और जनता गरीब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लेने के लिए हम आए हैं। तो तब से लेकर एक एक नीति आप देखेंगे तो भारत को एक नई मोड़ पर लेकर के 2014 के बाद हमने काम शुरू किया है, और गवर्नेंस शासन करने का प्रक्रिया है उसमें बदलाव किया है, और अब तो एक आम सा बात हो गया है कि भारत सरकार कोई भी कदम उठाते हैं उसका लाभ तुरंत जनता तक मिल जाता है। नहीं तो पुराने दिनों में कांग्रेस के शासन के समय तो बातें बहुत होती थी, कई घोषणाएं भी होती थी, बजट में घोषणाएं, रेलवे बजट में नई प्रोजेक्ट का घोषणाएं, और हर समय चुनावों में तो घोषणा ही घोषणा होते थे, गरीबी हटाओ नारा लगाना, ये एक फैशन सा बन गया था उस जमाने में। लेकिन इन 12 सालों में सचमुच में जो काम हुआ है, मैं मानता हूं कि मोदी जी का कार्यकाल है ये सचमुच में भारत को फिर से एक महान देश, और जो पुराने में भारत का एक नाम था उसको फिर से पुनर्जीवित और फिर से पुनर्स्थापित करने में कामयाब हुआ है।
0: आपने, क्योंकि रिजिजू जी गरीबों वाली बात की ना, पहले का वो स्लोगन एक याद आता है कि जब 1 रुपया भेजते थे 10 पैसे पहुंचते थे, आज 1 रुपया भेजते हैं तो कितने पैसे पहुंचते हैं?
1: आज तो जितना भेजता है उतना ही पहुंचते हैं, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री खुद ही सरेंडर हो गए थे, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और खुद ही सरेंडर करके बोल दिया कि 100 रुपया भेजता तो 15 रुपया पहुंचते हैं, 1 रुपया में 15 पैसे पहुंचते हैं। आज तो एक बटन दबाया, केंद्र सरकार के ओर से कोई भी स्कीम घोषणा करके उसको सिर्फ बटन दबाना है, डीबीटी के माध्यम से लोगों के खाता में पहुंच जाते हैं और सारा स्कीम जो है समयबद्ध क्रियान्वित हो जाते हैं। इसलिए जो बदलाव आज देखने को मिला है, ऐसे ही सोचने से आपको पता नहीं चलेगा 12 साल पहले देश का हालत क्या था। जब कांग्रेस यूपीए सरकार थे तब हम भ्रष्टाचार से ग्रस्त होकर के, पॉलिसी पैरालिसिस होकर के, और गरीबों को सरकार का कोई भी कार्यक्रम तुरंत कुछ भी नहीं मिलते थे। तो इतना बदलाव जो आया है इसको चंद शब्दों में कहना तो मुश्किल है, मगर इतना तो कह सकता हूँ कि जो हमारा सरकार का थीम है सेवा सुशासन और गरीब कल्याण, तो गरीबों का कल्याण तो हुआ ही है, सेवा तो हम कर ही रहे हैं और सुशासन देश को भला हो रहा है, तो हर दृष्टि से हम कामयाब हैं।
0: तो आप कह रहे हो पॉलिसी पैरालिसिस, ये जो नारा और स्लोगन चला था उस वक्त मनमोहन सिंह सरकार के समय में, आज राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज पीएम का नारा चला रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई आपने ऐसा किया तो अब कॉम्प्रोमाइज पीएम वो बोल रहे हैं।
1: कांग्रेस के समय में जो हालत था वो हमको बताने का कोई आवश्यकता ही नहीं है, देश के जिस आदमी का भी आप पूछो कांग्रेस जमाने में क्या हालत था, और कांग्रेस के खुद नेताओं से पूछो, कांग्रेस के नेता खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में तो अमेरिका उसका मास्टर थे, चिदंबरम साहब खुद होम मिनिस्टर थे तो खुद ही बताया कि पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला किया और भारत कुछ नहीं कर पाया क्योंकि अमेरिका ने वार्निंग दिया कि कुछ नहीं करना है। फिर चिदंबरम जी ने खुद भाषण दिया था पार्लियामेंट में जब हमारा सत्ता में आए, कहा कि आप डिजिटल इंडिया का बात करते हैं, गांव में गरीब लोगों को डिजिटल से क्या लेना देना है, और जो हमारा पेमेंट होता है यूपीआई के बारे में मजाक उड़ाया था, कि गरीब जो सब्जी बेचते हैं, सामान बेचते हैं, उनका डिजिटल पेमेंट कैसे होगा,
0: वो बैंक के खाते का क्या करेंगे?
1: तो ये सारा चीज जो है वो तो कांग्रेस खुद ही कहते हैं। राजनीतिक दृष्टि पर कुछ भी आप कह लो, लेकिन मालिक तो जनता है। तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज तो पूरी तरीके से कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस पार्टी ने देश को

0: कॉम्प्रोमाइज करके रख दिया था। आज तो मोदी जी अपना निर्णय लेते हैं देश हित में, और देश हित में किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। तो राजनीतिक दृष्टि से कोई अगर कह देगा तो वो तो उसके ऊपर भारी पड़ेगा। स्पेशली कांग्रेस पार्टी तो कुछ कह नहीं सकते हैं। उन्होंने लगभग 60 वर्ष इस देश को शासन किया और देश को बहुत गरीब राष्ट्र बना दिया था। सबको मालूम है हमारा इकोनॉमी, हमारा पर कैपिटा इनकम कांग्रेस के जमाने में कितने नीचे थे। अब हम इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं तो सपना देखता था उस जमाने में कि चाइना 8% 10% से ग्रोथ करते हैं, हम कब चाइना की तरह ग्रोथ करेंगे। और मोदी जी ने हमको चाइना से भी ज्यादा स्पीड में अपने इकोनॉमी का ग्रोथ पाथ को आगे लेके खड़ा कर दिया। तो ये सब देखिए, इसमें तो कोई भी भारतीय फख्र होगा कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हमको मिले हैं जो भारत को एक विकसित भारत की ओर ले जा रहे हैं।
1: आपने क्योंकि चाइना की बात कही ना, तो नॉर्थ ईस्ट जहां से आप आते हैं, वो समय और वो दौर भी हम लोग देखते थे कि जब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अपनी पहचान का संकट था, पहचान बताने में भी उनको घबराहट होती थी, दिल्ली तक आने में तो उनको बहुत समय लग जाता था। वो बदलाव भी देखा है क्या हमने?
0: बदलाव तो क्या कहेंगे, मैं ये कहूंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा परिवर्तन हो गया है। बदलाव सिर्फ इंक्रीमेंटल बदलाव नहीं है ना, ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव आया है, क्रांतिकारी बदलाव आया है। क्योंकि जो दूर दराज के इलाके हैं वो तो दिल्ली से बहुत दूर महसूस करते थे। जैसे मैं अरुणाचल प्रदेश से आता हूँ, अरुणाचल के लोग दिल्ली जाने के लिए भी सोचना पड़ता था और दिल्ली वाले भी नहीं आते थे, अगर आते तो भी मेहमान की तरह आते हैं। आजकल तो चाहे लद्दाख हो, चाहे मिजोरम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, सब जगह ट्रेन से कनेक्ट हो गए हैं, एयरपोर्ट से सबको कनेक्ट किया गया है और टनल बन रहे हैं, नए नए परियोजनाएं, हाईवे कितना बन गया है। जो एक इंच हाईवे नहीं बने थे 12 साल पहले, आज वहां चकाचक हाईवे बन गए हैं, लोग आराम से गाड़ी लेकर के आना जाना हो रहा है। गांव मोबाइल टेलीफोन पहुंच गए हैं, वो भी इतना सस्ता है डेटा कि आप आराम से एक बार आपने अपना डेटा लोड कर लिया फिर आराम से बात करो, आप इंटरनेट में काम करो। उस जमाने में तो फोन करने के लिए भी कितना चिंता करता था कि उसका जो बिल आते थे। तो आजकल तो डेटा भी दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ता भारत में है मोबाइल।
1: लेकिन इसका फायदा या नुकसान, हर गांव में बच्चा कंटेंट क्रिएटर बना हुआ है,
0: वो तो विषय अलग है। उसको एक व्यवहारिक तरीके से क्या करना चाहिए वो विषय अलग है, लेकिन सुविधा सबको मिला है ये बड़ी बात है।
1: जेन जी के बारे में क्या सोच रहे हो आप, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर हम बात कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर और जेन जी खतरा लग रहा है क्या?
0: देखो जेन जी का तो ये शब्द पश्चिमी देशों से उन्होंने क्रिएट किया है, हम तो अपना पारंपरिक जो मानक है हम उसी से चलते हैं। फिर भी एक टाइटल दिया गया है नए युवाओं को, जो एक पर्टिकुलर वर्ग को जेन जी जो कहते हैं, वो आज 18 साल 20 साल 25 साल के लगभग उसमें ज्यादातर लोग हैं।
1: क्योंकि सबकी निगाह उन्हीं पर लगी, राहुल गांधी जेन जी से मिल रहे हैं, अखिलेश यादव जेन जी से मिल रहे हैं, सब जेन जी से।
0: राहुल गांधी जी हो या अखिलेश यादव जी हो, वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। लोकतंत्र में कुछ लोग तो विरोध रहेंगे ही, एक पक्ष होते हैं एक विपक्ष होते हैं, लेकिन आप दिल से अगर नहीं जुड़ेंगे तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर आपको कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में, लगभग 50% वर्ष एक साल में वो विदेश में रहते हैं, वहां वो छुट्टियां मनाते हैं, रिजोर्ट में छुप के कहीं कहीं जाते हैं, कभी कभी बताते भी नहीं है। और फिर जब एक बार आएंगे देश में और फिर एक स्टेटमेंट देंगे, मोदी जी को गाली देते हैं, फिर विदेश गायब हो जाते हैं, फिर वापस आएंगे मोदी जी को फिर दूसरा गाली देंगे, फिर विदेश चले जाते हैं। तो ये जो पार्ट टाइम वाला राजनीति है उससे आप लोगों का दिल नहीं जीत सकते हैं और लोगों के अंदर आप नहीं घुस सकते हैं। हमारा तो नेता और हमारा पार्टी 24 घंटे हम तो देश के लिए और देश के जनता के बीच में हम रहते हैं।
1: ये विदेश वाला जो है, विदेश जाने में क्या बुराई है?
0: वो तो अच्छा है, अगर वो विदेश जाते रहे तो कांग्रेस का नैया जो है डूबते रहेंगे। राजनीतिक तौर पर हमको कुछ नहीं कहना है, अगर राहुल गांधी को राजनीति में कोई रुचि नहीं है और विदेश में ही उसका दिल है और अपने विदेशी दोस्तों के साथ ही अगर वहाँ दिल बहलाने के लिए विदेश में रहता है, हमारा क्या आपत्ति है? हम तो इसलिए कह रहे हैं कि वो कभी कभी वापस आते हैं भारत में, अपने देश में आ करके फिर गाली देते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, चुनाव के बीच में भी वो विदेश चले जाते हैं, तो नुकसान तो कांग्रेस का है, हमारा क्या नुकसान है?
1: अब वो कांग्रेस पार्टी कहती है भाई सरकार आपकी, आप पता करो विदेश में वो क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते।
0: देखो, किसी का जिंदगी में कौन क्या खाता है, पीता है, कहाँ रहते हैं, किसके साथ में वो घूम रहे हैं, इतना हमारा रुचि नहीं है। हमारा सिर्फ इतना तक सीमित ध्यान जाता है कि वो देश के विरोधी ताकतों के साथ में मिलना जुलना होते रहते हैं विदेश में, इससे हमें आपत्ति है, हम उसको आपत्ति करते हैं।
1: आपको लगता है कि ये जो विदेश विदेश वाला राहुल गांधी का है, उसके बाद वो आते हैं पार्लियामेंट

0: में पार्लियामेंट में फिर वो एक एजेंडा बोलते हैं, कहीं ना कहीं वही एजेंडा वो लेकर के आते हैं क्या?
1: जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो झलकते ही है, क्योंकि देश को कोसते हैं, देश के प्रधानमंत्री को कोसते हैं, तो उससे पता चलता है कि वो देश के विरुद्ध जो लोग काम करते हैं उनसे काफी इन्फ्लुएंस हुए हैं। उदाहरण के तौर पर जो राहुल गांधी जी कहते हैं पार्लियामेंट में वो सेम चीज पाकिस्तान कहते हैं, और जो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल और इन जैसे लोग जो भी नैरेटिव चलाते हैं उसके तालियां पाकिस्तान में बजता है। तो ये तो कहीं ना कहीं एक तरीके से तो जुड़े हुए हैं। अब मैं इसको किस तरीके से समझाऊं देशवासियों को कि जो विपक्ष है वो भी तो देश के लिए सोचना चाहिए ना। विपक्ष का काम ये नहीं है कि देश के खिलाफ काम करे, वो सरकार को गाली दे सकते हैं, सरकार के खिलाफ उनका बोलने का अधिकार है, और लोकतंत्र में सरकार के खिलाफ मजबूती से अगर विपक्ष खड़ा रह करके निगरानी रखेंगे, कोई करप्शन हुआ है क्या, कहीं कोई नीति में भूल चूक हुआ है क्या, अगर उसमें विपक्ष हमला करते हैं तो ये तो स्वागत है। लेकिन कोविड का समय, ये इमरजेंसी समय है, तब भी प्रधानमंत्री को गाली देंगे, देश के खिलाफ काम करेंगे। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, देश गर्व है हमारा सेनाओं के, जो देश के प्रति उन्होंने जो बल दिखाया है उसको भी विरोध करते हैं, सवाल उठाते हैं। और अभी ईरान अमेरिका इसराइल का लड़ाई के चलते तेल गैस आने में कष्ट हो रहे हैं, ये तो एक तरीके से एक आपातकालीन टाइप का सिचुएशन हरमूज में पैदा हो गया है मिडिल ईस्ट में, तो उससे हमको दिक्कत हो रहे हैं। तो ऐसा में तो देश के साथ खड़ा होना चाहिए, ऐसा में भी देश का खिलाफ बोलते रहते हैं और मोदी जी का खिलाफ बोलते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आमतौर पर विरोध जो है सरकार के खिलाफ आप जितना कर सकता है कर सकते हैं, उसमें लोकतंत्र में कोई रुकावट नहीं है। लेकिन जब इमरजेंसी सिचुएशन होता है, जब एक विशेष परिस्थिति होता है, ऐसे समय में सबको एक साथ खड़ा होना होता है। जैसे जब 1962 में लड़ाई हुआ चीन के साथ, तो पूरा देश एकजुट खड़ा हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी में टूट हुआ, एक ग्रुप जो है चीन का समर्थन में आया, वो कम्युनिस्ट भाग हो गया। 1965 हो, 71 हो, या कारगिल के समय में भी हो, हर समय इस तरीके के जो विशेष परिस्थिति आते हैं, जब देश किसी से लड़ रहे हैं, दुश्मनों के साथ में देश मुकाबला कर रहे हैं, ऐसा समय में पूरा देश एकजुट खड़ा रहना चाहिए, ये तो सब मानते हैं। लेकिन पहली बार मैंने देखा है ऐसा विपक्ष आज का दिन में पैदा हो गया है कि देश किसी विपत्ति से जूझने के लिए, कोई आपातकाल स्थिति को नियंत्रण करने के लिए जब काम कर रहे हैं, ऐसे समय में सरकार के खिलाफ देश के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं, इससे मैं बहुत दुखी हूँ।
0: संसद में आपको लगता है ये जो बर्ताव है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है इतने समय में?
1: देखिए, राहुल गांधी जी को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, मुझे लगता है। मैं इतने सालों से उसको देख रहा हूँ, पहले तो मैंने सोचा था कि वो हल्के फुल्के से इधर उधर घूमते रहते हैं, अनाप शनाप बात करते रहते हैं, लेकिन जब वो नेता प्रतिपक्ष बने तो मैंने सोचा कि वो नियंत्रित होंगे, लेकिन और बिगड़ गया। नेता प्रतिपक्ष होने के बाद तो और भी उसका भाषा पूरा बिगड़ गया है। अब तो पार्लियामेंट में जब बोलते हैं तो नियम के बाहर बोलते हैं और गाला गाली पे उतर जाते हैं, दिन भर नारा लगाते रहते हैं, अपना एमपीओ को जो पार्लियामेंट हाउस के बाहर गेट में खड़ा करके वही दिन भर वहाँ तमाशा कराते रहते हैं। तो एमपी इसके लिए नहीं आया, एक नॉर्मल सी कर दिया। अब कांग्रेस के एमपी लोग भी ये सोचने लग गया कि वो तो पार्लियामेंट में इसलिए चुन के आए कि वो इस तरह का हरकतें करना है, उसी को अपना दायित्व तो मान लिया है, संसद के अंदर में बोलना, अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बोलना और सरकार का नीति में खामियां है तो उसको उजागर करना, और फिर जहां जरूरत है सुझाव भी दे सकते हैं या आप उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। लेकिन वो संसद में बोलना, वहां प्रदर्शन करना, ये सारा चीज जो है लोग देख रहे हैं ना, लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस का हरकत कैसे है।
0: मोदी जी ने जो कोई एक बात आपसे इन 12 सालों में कही हो जो आपको हमेशा याद रहेगी?
1: मुझे तो इतना बातें प्रधानमंत्री जी की ओर से सुझाव निर्देश या हमको गाइडेंस देते रहते हैं, तो एक बोलना मुश्किल है। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं कि देश हित में जो भी आपको दायित्व मिला है उसको पूरी तरह से निभाना है, इसलिए हम अपना ड्यूटी से प्रतिबद्ध हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी, आपने इतनी बेबाकी से ये सब बात कही। और जाहिर तौर पर देखिए 2014 से अभी तक की ये जो जर्नी है, इसीलिए हमने इसको भारत रीलोडेड का नाम दिया है, क्योंकि इस वक्त नए भारत की बात हो रही है और नए भारत का जो सपना भारतवासियों ने देखा था वो कितना पूरा हुआ, इस पर हमसे खास बातचीत की। नमस्कार।
1: नमस्कार जी।
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉ जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। डॉ जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, दुनिया भारत को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर शेख मेशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के परिवर्तनकारी शासन, ग्लोबल साउथ के लिए उनके प्रयासों और समावेशी एवं आर्थिक रूप से गतिशील भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बात की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि होर्मुज जल डम मध्य के पास अमरीकी सैन्य हेलीकॉप्टर को गिराने के लिए ईरान जिम्मेदार है और अमरीका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। श्री ट्रंप की यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में की गई जब एक ड्रोन ने रणनीतिक जलमार्ग के पास दुर्घटनाग्रस्त हुए अपाचे हमलावर हेलीकॉप्टर के चालक दल को बचाया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कल नई दिल्ली में डिजिटल धोखाधड़ी के जरिए मानवाधिकारों की सुरक्षा पर एक खुली बैठक का आयोजन किया। एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यन ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए साइबर धोखाधड़ी

बढ़ते खतरे पर चिंता व्यक्त की और नागरिकों के अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा पर इसके गंभीर प्रभाव के बारे में बताया। उन्होंने ऐसे अपराधों को रोकने, पीड़ितों के लिए वसूली तंत्र में सुधार करने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और फिर निर्बाध रूप से दुनिया भर के गंतव्यों के लिए आगे की यात्रा कर सकते हैं। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय की तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यूं तो हैं बातें बहुत सी दिल की और दिलदार की, यूं तो हैं बातें बहुत सी दिल की और दिलदार की, आओ सुनाएं हम तुम्हें आज कहानी प्यार की। दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ अंजू और लेकर आई हूं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है निशिगंधा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना फिल्म कभी कभी से लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। नई शाम ढलती नई महफिल सजती, नई शाम ढलती नई महफिल सजती, और ना लफ्ज मिलते ना गजल बनती, बेजान सी थी जिंदगी हमारी, हम कुछ भी ना होते अगर तुम ना होते।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म अगर तुम ना होते से ये गीत सुना। तुम क्या जानो कि कितना प्यार है तुमसे, तुम क्या जानो कि कितना प्यार है तुमसे, लफ्ज कम पड़ जाए वो इकरार है तुमसे, धड़कन बनकर जो सीने में उतरती है बस वही बेपनाह मोहब्बत है तुमसे।

कभी बस बात इतनी सी थी कि तुम अच्छे लगते थे, कभी बस बात इतनी सी थी कि तुम अच्छे लगते थे, और अब बात इतनी बढ़ गई है कि तुम बिन कुछ अच्छा नहीं लगता।

बता पाऊंगी। दिल से प्यार करती हूं तुझे, ये कैसे समझा पाऊंगी। पर तेरे दिल में क्या है मैं नहीं जान पाऊंगी। तुम ही बता दो कि तुम्हारे दिल में क्या है।

तुमसे कितनी मोहब्बत है ये मैं बता नहीं सकती, तुमसे कितनी मोहब्बत है ये मैं बता नहीं सकती, अपनी जिंदगी में तुम्हारी अहमियत जता नहीं सकती। मेरी जिंदगी का हर लम्हा तुम्ही से तो शुरू होता है, तुमसे दूर रह के

सब कुछ भूल बैठे हैं तेरे प्यार में हम। अब तो खुद से भी वाकिफ नहीं रहे हम। तूने इस कदर अपना बनाया है हमें कि तेरी धड़कन और अपनी सांसों में फर्क भी भूल गए हम।

होश वालों को मुबारक हो उनकी समझदारी, होश वालों को मुबारक हो उनकी समझदारी। हम तो तेरे इश्क में सब कुछ लुटा बैठे हैं, इस कदर खोए हैं तेरी चाहत के उजाले में कि अपने ही घर का पता भूल बैठे हैं।

लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि हम कहीं नहीं जा रहे हैं। हम मिलेंगे आपसे 1:10 पर कार्यक्रम गीत सुहाने लेकर। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉ जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। श्री जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, दुनिया भारत को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कल कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के परिवर्तनकारी शासन, ग्लोबल साउथ के लिए उनके प्रयासों और समावेशी एवं आर्थिक रूप से गतिशील भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बात की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
1: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि होर्मुज डल डमरू मध्य के पास अमरीकी सैन्य हेलीकॉप्टर को गिराने के लिए ईरान जिम्मेदार है और अमरीका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। श्री ट्रंप की यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में की गई, जब एक ड्रोन ने रणनीतिक जलमार्ग के पास दुर्घटनाग्रस्त हुए अपाचे हमलावर हेलीकॉप्टर के चालक दल को बचाया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कल नई दिल्ली में डिजिटल धोखाधड़ी के जरिए मानवाधिकारों की सुरक्षा पर एक खुली बैठक का आयोजन किया। एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यन ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए साइबर धोखाधड़ी से बढ़ते खतरे पर चिंता व्यक्त की और नागरिकों के अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा पर इसके गंभीर प्रभाव के बारे में बताया। उन्होंने ऐसे अपराधों को रोकने, पीड़ितों के लिए वसूली तंत्र में सुधार करने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और फिर निर्बाध रूप से दुनिया भर के गंतव्यों के लिए आगे की यात्रा कर सकते हैं। मौसम विज्ञान ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय की तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बिहार, केरल, माही, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आज लू चलने का अनुमान है। श्रीलंका के दामुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है 1:11:13। मैं हूं आपके साथ अंजू, कार्यक्रम लेकर आई हूं गीत सुहाने। तो रहिए इस गीतों के सफर में मेरे साथ। पहला गीत लेकर आई हूं फिल्म अभिनेत्री से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

सच पूछे तो इसकी हमें भी खुद खबर नहीं कि मौसम बदल गया या बदलने लगे हैं हम, क्योंकि अभी तो धुंध में लिपटे हैं सब मंजर। तुम आओगे तो तुम्हारे आने तक ये मौसम बदल चुका होगा।

जब भी थाम लेते हो तुम बाहों में मुझे, लगता है जैसे वक्त वहीं थम गया है। दुनिया तो चलती रहती है अपनी रफ्तार से, पर मुझे मेरा पूरा जहां तुझ में सिमट गया लगता है।

लेती हूँ तेरा नाम हर एक नाम से पहले, लेती हूँ तेरा नाम हर एक नाम से पहले, कुछ जिक्र नहीं करती हूँ उस काम से पहले, मेरी हर गजल मेरी हर शायरी बस तेरा ही नाम लेती है हर काम से पहले।

दिन तो ढल चुका है, ये रात भी देखो हम पर हंसे जा रही है। हर पल तन्हाई खामोशियां बहुत सता रही हैं। कहना तो सिर्फ तुमसे इतना है कि तुम्हारी याद

0: दोस्तों अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। समाचारों के बाद तो बजकर 10 मिनट पर आपसे फिर से मुलाकात होगी। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा।

0: विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कल कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जावेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के परिवर्तनकारी शासन, ग्लोबल साउथ के लिए उनके प्रयासों और समावेशी एवं आर्थिक रूप से गतिशील भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप हैं। डॉ जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। श्री जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, दुनिया भारत को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
2: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ चाउलेन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग हो गया, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कल नई दिल्ली में डिजिटल धोखाधड़ी के जरिए मानवाधिकारों की सुरक्षा पर एक खुली बैठक का आयोजन किया। एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए साइबर धोखाधड़ी से बढ़ते खतरे पर चिंता व्यक्त की और नागरिकों के अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा पर इसके गंभीर प्रभाव के बारे में बताया। उन्होंने ऐसे अपराधों को रोकने, पीड़ितों के लिए वसूली तंत्र में सुधार करने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए व्यवहारिक उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और फिर निर्बाध रूप से दुनिया भर के गंतव्यों के लिए आगे की यात्रा कर सकते हैं। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय की तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आज लू चलने का अनुमान है। श्रीलंका के दामबला में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत की ओर से ऋतुराज गायकवाड़ ने सर्वाधिक 101 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु।

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं एक बार फिर से आपके साथ अंजुर, कार्यक्रम लेकर आई हूं रात सुरमई। आप सब रहिए इस घंटे मेरे साथ, सुनेंगे बहुत ही मधुर गीत। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

कहना तो बहुत कुछ है पर लफ्ज साथ नहीं देते, कहना तो बहुत कुछ है पर लफ्ज साथ नहीं देते। तुम निगाह से समझ लो, हम जुबान से नहीं कहते।

मैं तेरे गम में शामिल हूं, तू मेरी खुशी में शामिल हो। मैं तेरे गम में शामिल हूं, तू मेरी खुशी में शामिल हो। मेरी हंसी हो तेरे चेहरे पर, हर दर्द तेरा मुझे हासिल हो।

उसने कहा, तुम इस कदर हसीन हो कि क्या कहें, तुमको ही देखते रहें या खुद को संभाले। जानती हो, सादगी में भी तुम कयामत ढाती हो और जब भी सामने आती हो तो धड़कने बढ़ाती हो।

जी भर के देख लूं तुम्हें अगर वक्त ठहर जाए, जी भर के देख लूं तुम्हें अगर वक्त ठहर जाए, बढ़ती हुई दिल की धड़कन भी कहती है कि ये समा बदल जाए। तुमसे बिछड़ने का खौफ इस दिल को सताता है, ये कहता है कि तुम पास रहो और रात का ये पल यही ठहर जाए।

दोस्तों अब समय हो गया है जाने का, क्योंकि अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आपके साथ रहेंगे पंकज हमराही लेकर। मैं आपसे मिलूंगी जल्द ही किसी न किसी मोड़ पर। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उनके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का

0: पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कल कुवैत के अमीर शेख मेशाल अल अहमद अल जाबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के परिवर्तनकारी शासन, ग्लोबल साउथ के लिए उनके प्रयासों और समावेशी एवं आर्थिक रूप से गतिशील भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
2: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कल नई दिल्ली में डिजिटल धोखाधड़ी के जरिए मानवाधिकारों की सुरक्षा पर एक खुली बैठक का आयोजन किया। एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यन ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए साइबर धोखाधड़ी से बढ़ते खतरे पर चिंता व्यक्त की और नागरिकों के अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा पर इसके गंभीर प्रभाव के बारे में बताया। उन्होंने ऐसे अपराधों को रोकने, पीड़ितों के लिए वसूली तंत्र में सुधार करने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी आईएनएसए ने सतत विकास के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर ब्रिक्स विज्ञान अकादमियों के फोरम की पहली बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि यह बैठक एआई का उपयोग और ग्लोबल साउथ सहयोग को सुदृढ़ करने के विषय पर आयोजित की गई। इसमें 10 देशों ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका, बेलारूस, नाइजीरिया और वियतनाम की विज्ञान अकादमियों ने जिम्मेदार और न्यायसंगत एआई विकास पर एक साझा घोषणा को आगे बढ़ाने के लिए भाग लिया। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय की तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आज लू चलने का अनुमान है। श्रीलंका के दाम्बला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका को 1-8 रन से हरा दिया है। भारत की ओर से ऋतुराज गायकवाड़ ने सर्वाधिक 101 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। The Ministry of External Affairs acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added, India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. Addressing the media in New Delhi yesterday, spokesperson at the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said that New Delhi continues to see a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. Mr. Jaiswal described them as a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its

बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि आप गांव में ही हैं। मतलब मुझे तो स्टूडियो में बैठकर बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही थी। हेमलता और सुरेश वाडकर की आवाज में नदिया के पार मूवी से ये गाना था, रविंद्र जैन के बोल और संगीत था। हमराही शो शुरू हो चुका है मेरे यानी पंकज के साथ, सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। और बताइए कैसा बीता आज आपका दिन। आई नो जिंदगी की उठा पटक और भाग दौड़ इंसान को मन और शरीर से थका देती है, लेकिन अच्छी बात पता ये भी है कि रात का ही सफर ना हमें सुस्ताने और सुकून के कुछ पल जीने के लिए देता है। तो आप सब कुछ भूलकर मेरे साथ गानों की हसीन दुनिया में चलिए और वहां से आपको जो कुछ भी मिले ना उसे झट से अपनी जेबों में भर लीजिए। यकीन मानिए आज की ये वाली रात फिर नहीं आएगी, कल जो रात आएगी वो और होगी। इन दो गानों के बाद आपसे मिलता हूं। अभी के लिए चांदनी मूवी का ये गाना, बाबला मेहता और लता जी की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल और शिव हरी का म्यूजिक। एंजॉय।

आई एम श्योर आपने ये वाली मूवी तो जरूर देखी होगी और ये सच में इतनी प्यारी फिल्म है कि इस फिल्म को तो कम से कम महीने में दो बार तो देख ही सकते हैं। इतनी अच्छी ये फिल्म है। भूपिंदर सिंह और लता जी की आवाज में मौसम फिल्म का ये गाना था, मदन मोहन की म्यूजिक कंपोजिशन और गुलजार के बोल थे। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि प्यार मोहब्बत के मामले में आपको अपने आप से कोई शिकायत है या नहीं, तो शायद आप कहेंगे हाँ। और वो ये है कि काश अपने पसंदीदा इंसान को आपने समय रहते अपना बना लिया होता तो शायद जिंदगी और ज्यादा सुंदर होती। इसलिए मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि अपने मन की बात ना सामने वाले को जरूर कह देनी चाहिए, उसको बताना चाहिए कि भाई आप उससे प्यार करते हैं, आप उसको पसंद करते हैं। मुझे बड़ी हैरानी होती है जब हम अपने मन की बातें जो है छुपाते हैं, और वो भी वो बात

जो सामने वाले को खुश कर सकती हैं। अब राम जाने ऐसा ही हम ये क्यों करते हैं कि हम बताना नहीं चाहते, लेकिन कुछ लेकिन जो नेगेटिव बातें होती हैं वो हम बहुत जल्दी सामने एक्सप्रेस कर देते हैं कि नहीं भाई हमें आपसे चिढ़ है, ये है वो है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो होनी नहीं चाहिए, प्यार होना चाहिए और प्यार हमेशा जताया जाता है, छुपाया नहीं जाता। इसलिए हिम्मत करके अपने मन की बात कह देनी चाहिए। हमराही है शो का नाम, मैं हूं पंकज आपके साथ FM गोल्ड पर, और दो गाने के बाद आपसे मिलता हूं। रत्नादीप मूवी का ये गाना किशोर दा और लता जी की आवाज

क्या हसीन जमाना रहा होगा वो जब ऐसी फिल्में बनती होंगी। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी मैं बहुत मिस करता हूँ कि मैं उस टाइम उस मूवी के उस जमाने में सेट पर क्यों नहीं था, ताकि मैं सामने से मीना कुमार जी को देख सकता हूँ। भाई उनके बारे में तो बहुत सुना है कि बला की खूबसूरत थी। आशा जी और मोहम्मद रफी की आवाज में बहु बेगम फिल्म से गाना था, साहिर लुधियानवी के लिरिक्स थे और रोशन का म्यूजिक था। जब आप किसी से प्यार करें तो इसका ना इंतजार भी जरूर कीजिए, बार बार पलट कर उसे आवाज दे के बुलाइए ताकि उसे आप अपना बना सकें। अब दिक्कत ये है कि लोग ना अपने अहंकार में आके अपने प्यार को आवाज नहीं देते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ठीक है सामने वाला अपने आप समझ जाएगा। अरे भाई अपने आप कोई नहीं समझता, समझाना पड़ता है। लेकिन बात जो है वो यहां आकर खत्म हो जाती है कि तुमने कहा नहीं मैंने सुना नहीं। यकीन मानिए एक पसंद का शख्स अगर जिंदगी में आ जाए ना, फिर हर दिन हर पल बेहद हसीन लगता है और जिंदगी इतनी प्यारी लगती है कि बस जीने का पल। ऐसा मन करता है कि हर पल जिंदगी जो है बहुत गुलजार सी लगती है, मन करता है जीने का, जिंदगी अच्छी लगती है।

आप मानो या ना मानो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्यार में ना किस्मत का बहुत बड़ा रोल होता है, और किस्मत आपको मिलाने के लिए ऐसी सिचुएशंस डिजाइन कर देती है कि एक दूसरे के दिल में प्यार पैदा हो ही जाता है, और मोहब्बत का हसीन परिणाम होता है शादी, और ये दुनिया की सबसे प्यारी रस्म है। बस इतना ध्यान रखें कि पार्टनर आपकी और आप उसकी पसंद हो। अब अगले घंटे नेक्स्ट शो अरुणिमा में मैं मिलूंगा आपसे सुबह 4:10 पर, 4 बजे के हिंदी और अंग्रेजी समाचारों के बाद। और अब ये वाला गाना जो हमें अलग ही दुनिया में ले जाता है, फ्रॉम द मूवी लम्हे, हरिहरन और लता जी की आवाज। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। मैं हूं पंकज आपके साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उनके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कल कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जावेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के परिवर्तनकारी शासन, ग्लोबल साउथ के लिए उनके प्रयासों और समावेशी एवं आर्थिक रूप से गतिशील भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
2: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कल नई दिल्ली में डिजिटल धोखाधड़ी के जरिए मानवाधिकारों की सुरक्षा पर एक खुली बैठक का आयोजन किया। एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए साइबर धोखाधड़ी से बढ़ते खतरे पर चिंता व्यक्त की और नागरिकों के अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा पर इसके गंभीर प्रभाव के बारे में बताया। उन्होंने ऐसे अपराधों को रोकने, पीड़ितों के लिए वसूली तंत्र पर सुधार करने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए व्यवहारिक उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी आईएनएसए ने सतत विकास के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर ब्रिक्स विज्ञान अकादमियों के फोरम की पहली बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि यह बैठक एआई का उपयोग और ग्लोबल साउथ सहयोग को सुदृढ़ करने के विषय पर आयोजित की गई। इसमें 10 देशों ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका, बेलारूस, नाइजीरिया और वियतनाम की विज्ञान अकादमियों ने जिम्मेदार और न्यायसंगत एआई विकास पर एक साझा घोषणा को आगे बढ़ाने के लिए भाग लिया। मौसम विज्ञान ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आज लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी न्यूज रेड बाय आरएस रघु। The Ministry of External Affairs acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added, India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. Addressing the media in New Delhi, spokesperson at the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said that New Delhi continues to see a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. Mr. Jaiswal described them as a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses.
1: A pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are several reports of police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several people have been killed. There are several more who have been injured. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and its abuses.
3: Over 30 people have been killed and around 200 others have been injured.

सुबह के 4:10 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। मैं हूं पंकज आपके साथ और अब शुरू होता है कार्यक्रम अरुणिमा। और इस पूरे घंटे आप सुनेंगे एक से बढ़कर एक गाने और शुरुआत करते हैं सीमा फिल्म से। इस गाने के साथ मोहम्मद रफी और शारदा की आवाज में ये दो गाने सुनिए और फिर मैं आपसे मिलता हूं।

आपको पता नहीं ये गाना कैसा लगता है, मतलब सुनने में, लेकिन अच्छा ही लगता होगा, लेकिन मुझे गाना बहुत इमोशनल लगता है। मतलब मेरी तो आंखें भर आती हैं गाना सुन के। है कुछ इस गाने में ऐसे कुछ इमोशंस अटैच हैं मेरे, लेकिन गाना वाकई बहुत अच्छा है। राजेश रोशन का म्यूजिक, किशोर दा और लता जी की आवाज में, खट्टा मीठा फिल्म का ये गाना था गुलजार के बोल। और सुबह के 4:20 हो चुके हैं। देखिए भाई, रात कितनी भी काली हो ना, सुबह जरूर आती है और अरुणिमा आ चुकी है। आसमान में अभी बहुत हल्की है, लेकिन हाँ छोटी सी सुबह तो हो गई है। और पता है, अभी खिड़की से मैंने चांद को देखा, आधा सा चांद निकला हुआ, इतना सुंदर लग रहा है, मैंने उसे अपनी मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया है। अब दिन में देखूंगा उसे, बाकी बहुत अच्छा लग रहा है। अगर अभी आप आसमान की तरफ देख सकते हो ना, तो आप देखें आधा चांद निकला हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा है। लेकिन आधे चांद को देखे थोड़ी सी सैडनेस होती है कि अकेला है बेचारा, और आसमान में समय सब लोग सो रहे हैं लेकिन ये जाग रहा है। लेकिन फिर भी यही तो नेचर की खूबसूरती है। मैं पंकज हूं आपके साथ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। अरुणिमा है शो का नाम। जिंदगी चलती रहेगी और अब इसमें रंग भरने की जिम्मेदारी आपकी है। अपनी पसंद के रंगों से इसे जैसे चाहे सजा लीजिए।

ऐसी दुनिया तो हम अपने मन के अंदर बनाकर शांति से जी सकते हैं, लेकिन बस इतना करना है कि बाहर घट रही किसी भी परिस्थिति को ना अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि यही चीजें जो है हमारे मन की मजबूती को तोड़ती हैं। सुनते रहिए अरुणिमा मेरे यानी पंकज के साथ सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। अगर मन पर हावी हुई ना कोई भी बात, जो बाहर की बातों को हम अपने अंदर जब ले जाते हैं तो ये सिचुएशन जो है ना हमारा दिमाग खराब कर देती है और बहुत सारी चीजें हमारे आसपास जो अच्छी होती हैं वो भी हमें खराब लगने लगती है। कहते हैं ना कि अगर आपका मन खुश है तो आपके लिए हर सिचुएशन जो है वो अच्छी होती है, और कई बार तो हम मन में उठ रही बातों से ही भागते हैं। हमारा मन बार बार हमें हमारी सच्चाई से रूबरू करवा रहा होता है, वो बताता है कि आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं, मन खुद हमें बताता है, लेकिन हम मन की उस आवाज़ को दबाते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि शायद ये ठीक नहीं है। लेकिन अपने ही मन से भागना और अपने ही मन की बातों को नज़रअंदाज करने वाकई बहुत बड़ी नाइंसाफी है मन के साथ और अपने साथ ही। खैर अभी मैं आपको सुनवा रहा हूँ, अब मन की बात चली है और मन पर गाना ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर मैं हूं पंकज आपके साथ और शो का नाम है अरुण मैं। जिस दिन हम दूसरों के मूड पर अपनी खुशियों को डिपेंड करना छोड़ देते हैं ना, उस दिन आप सही मायने में जो है विजेता हो जाते हैं। और कहते भी हैं कि मतलब अपने जो है आत्मदीपो भवा, हमें अपने लिए जो है अपनी खुशियों के लिए जो है जीना चाहिए। और एक चीज़ ये भी

कि किसी ने अगर आपकी तारीफ की तभी आप अपने आप को सफल माने, ये ठीक नहीं है, क्योंकि आपका मन आपकी मेहनत और कठिनाइयों को अच्छे से जानता है और बता देता है कि आप कितने सही हैं। इसलिए अपना हर तरह से बेस्ट दीजिए और ऑटोमेटिकली ही आप खुश रहेंगे। बस बदले में आप कोई उम्मीद ना रखें, क्योंकि उम्मीदें कई बार हर्ट कर जाती हैं। लेकिन ये वाला जो गाना है दोस्त मूवी का, मैं आपको गाना प्ले करके सुनाने वाला हूँ। ये गाना वाकई एक बहुत अच्छी मोटिवेशन देता है, और मतलब लिखने वाले ने भी क्या गजब का गाना लिखा है और बहुत ही अच्छा है। तो इस गाने को सुनिए, फील कीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में।

आशा भोसले जी की आवाज़ में नरम गरम फिल्म का ये गाना था और सडनली मुझे आशा जी की याद आ गई, तो मैंने सोचा आपके साथ ये गाना शेयर करना चाहिए। और ये फिल्म भी बहुत अच्छी है, अगर आपने नहीं देखी तो नरम गरम मूवी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, आप इस मूवी को देखिएगा, आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। अब वैसे तो मुझे आशा जी की याद आई थी, लेकिन याद के साथ एक इसका अपोजिट भी होता है, वो है भूलना। लेकिन भूलने के बारे में मैं बात कहूँगा कि हमारी जो कुछ नेगेटिव सोच होती है, कुछ ऐसी बातें जो हमें हर्ट करती हैं, वो भूलना जो है वो एक अच्छी आदत है। देखिए, भूलिए कड़वी बातों को, यादों को, भूलिए हर उस चीज़ को जो आपको दुख दे। समझ लीजिए कि कोई सपना था जो बीत गया, लेकिन आगे बस इतना प्रयास रखिए कि आपके जीवन में जो कुछ भी कड़वी सिचुएशन हो उसको आप पहली चीज़ तो आने ना दें, और अगर वो आ जाती है तो फिर उसको ज़्यादा दिमाग पर हावी ना होने दें। ठीक है, आई है, चली जाएगी। तो इस तरह से सिचुएशंस को हैंडल किया जा सकता है। हालांकि कहना बहुत आसान है और जब एक्चुअल में सिचुएशन आती है तो मुश्किल तो होती है, लेकिन फिर भी इस तरह की बातों को ढाल बनाकर जो है अपने आप को बचाया तो जा ही सकता है। और सब ऐसे ही करते हैं, एट द एंड सब ऐसे ही कर रहे हैं। अब मैं पंकज आपसे अगले घंटे सुबह 5:10 पर नेक्स्ट शो भोर सुहानी में आपसे मिलूंगा, सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। अरुणिमा शो का समय जो है कुछ मिनटों में पूरा हो जाएगा, तो मैंने सोचा आपके लिए कुछ और गाने लाइनअप करता हूँ, बहुत अच्छे गाने, आपको बहुत मजा आएगा गाने सुनने में। तो आप इन गानों को सुनिए और सुबह 5 बजे हिंदी और इंग्लिश में समाचार होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक सेवा की थी। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिनों का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिनों का हो गया है, जिससे वे भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के परिवर्तनकारी शासन, ग्लोबल साउथ के लिए उनके प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से गतिशील भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के भी इस बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में सभी घटक दलों के नेताओं के अलावा एनडीए शासित सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और

0: दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉ जयशंकर 14वीं कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। इस वार्ता का विषय है परिवर्तनशील दुनिया, वैश्विक, क्षेत्रीय और स्थानीय परिप्रेक्ष्य। डॉ जयशंकर फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत की भूमि सीमाओं पर माल प्रसंस्करण और यात्री आवागमन को डिजिटल बनाने तथा सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। श्री शाह ने कहा कि यह पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कल नई दिल्ली में डिजिटल धोखाधड़ी के जरिए मानवाधिकारों की सुरक्षा पर एक बैठक का आयोजन किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमणियन ने बैठक में साइबर धोखाधड़ी से बढ़ते खतरे पर चिंता व्यक्त की और नागरिकों के अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा पर इसके गंभीर प्रभाव के बारे में बताया। उन्होंने ऐसे अपराधों को रोकने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक उपायों की आवश्यकता पर भी बल दिया। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय की तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आज लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi has become the longest serving elected Prime Minister of India today. Mr. Modi took the oath of office on 26 May 2014. He has surpassed the record of Pandit Jawaharlal Nehru, who first took oath as an elected Prime Minister on 13th May 1952 and served until 27th May 1964. Pandit Nehru's tenure as an elected Prime Minister amounted to 4,398 dates. From 26th May 2014 to today, 10th June 2026, Prime Minister Modi's continuous tenure is now 4,399 days, making him the longest serving elected Prime Minister in India's history. A meeting of the National Democratic Alliance NDA will be held in New Delhi today to celebrate its government completing 12 years and Prime Minister Narendra Modi becoming the longest continuously serving elected PM of India. All constituents of the alliance besides the top leadership of the BJP including Prime Minister Modi are expected to attend the meeting. The NDA meeting will also be attended by chief ministers and deputy chief ministers of all 22 NDA governed states and union territories besides the leaders of all alliance constituents. Prime Minister Narendra Modi held a telephone conversation yesterday with the Emir of Kuwait, Sheikh Maishal Al Ahmad Al Jaber Al Sabha. The two leaders exchanged views on the evolving security situation in West Asia. Prime Minister expressed deep concern over the escalation of tensions and reaffirmed India's strong condemnation of attack on Kuwait's sovereignty and territorial integrity. The Ministry of

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल। सुबह के 5:10 हो चुके हैं। मैं हूं पंकज आपके साथ और अब शुरू होता है कार्यक्रम भोर सुहानी, जिसमें आप सुनेंगे एक से बढ़कर एक गीत। तो दो गानों के बाद मैं आपसे मिलता हूं और शुरुआत करते हैं परिचय मूवी के इस गाने से।

सुबह के 5:20 हो चुके हैं। रामलखन फिल्म से ये गाना था, मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक और आनंद बख्शी के बोल थे। 10 जून 2026 बुधवार की गर्मा गर्म सुबह हो चुकी है, मतलब अभी तो इतनी गर्म नहीं लेकिन हाँ गर्मी तो है। अब भोर सुहानी शो का नाम शुरू हो चुका है और मेरे यानी पंकज के साथ आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। अब भाई हम दिल्ली वाले हैं, तेज गर्मी में भी हम लोग सुबह चाय पीकर ही जो है हमारी आंख खुलती है, बाकी दोस्त पहले जब तक हम चाय वगैरह ना पी लें तब तक तो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल आलस गया ही नहीं है। बाकी आपकी आलस से आंखें भरी जो हैं वो मैं खोल दूंगा इन गानों से, तो बस आप इन गानों का मजा लीजिए और दो गानों के बाद मैं आपसे मिलता हूं। और ये गाना आप सुनिए त्रिदेव फिल्म से साधना सरगम और मोहम्मद अजीज की आवाज में, मजे लीजिए इस गाने का। मुझे पता है आपको ये गाना पसंद है इसलिए मैंने पहले ही एडवांस में इस गाने को निकाल के रख लिया था। अब आप सुनिए और झूमते रहिए।

1989 की मूवी चांदनी से ये गाना था विनोद कुमार राठौर और आशा जी की आवाज में। वैसे मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे इन गानों से ना बर्फ जैसी ठंडी ठंडी बूंदें निकलकर जो है वो हमारे ऊपर गिरती हैं और इतने अच्छे और ठंडक वाले गाने एकदम फील आ जाती है ठंडक की। हालांकि भाई तेज गर्मी का ये महीना है और ऐसे में हम प्रकृति से ज्यादा जुड़े और पानी बिजली बचाएं और खूब सारे पेड़ लगाएं। पता है मेरे एक ना जानने वाले हैं, वो मुझे कह रहे थे कि वो घर में आम खाने के बाद ना गुठलियों को ले जाकर जो है किसी पार्क या बड़ी जगह पर रखकर जो है उसे जमीन में दबा देते हैं ताकि वो पेड़ बन सके। अब सोचिए हम सभी किसी न किसी घने पेड़ को कहीं ना कहीं अगर लगाते रहें तो पूरी दिल्ली जो है वो कितनी हरी भरी साफ शुद्ध होगी और अगस्त में जो है बारिश भी खुलकर होगी। वैसे मुझे आइडिया अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर देना बनता है। लेकिन भाई एक बात तो है कि पर्यावरण की रक्षा में हम सभी अपना योगदान जरूर दें। सुनते रहिए बहुत सुहानी FM गोल्ड पर, मैं हूं पंकज आपके साथ।